मीडियम वेव 216.45 मीटर यानी 1386 किलोहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के ग्वालियर केंद्र से बोल रहे हैं। आज शनिवार है। शक संवत 1948 के श्रावण मास की 24वीं तिथि, तदनुसार 15 अगस्त सन 2026। प्रातः के 5:56:40 हुए हैं। आरंभ होती है आज की हमारी प्रातःकालीन सभा। इस सभा में आपके साथ है आपकी दोस्त तुलिका शर्मा। आप सभी को हमारा नमस्कार और स्वाधीनता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं।

0: ये आकाशवाणी का ग्वालियर केंद्र है। सुबह के 6 बजते हैं, अब समाचार होंगे।
1: के साथ मैं फरहत नाज। राष्ट्र आज 80वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नई दिल्ली में ऐतिहासिक लाल किले की प्राचीर से स्वतंत्रता दिवस समारोह का नेतृत्व करेंगे। प्रधानमंत्री के राष्ट्रीय ध्वज फहराने के साथ ही वायुसेना के 2 MiG-17 हेलीकॉप्टर समारोह स्थल पर पुष्प वर्षा करेंगे। ध्वजारोहण के साथ 21 तोपों की सलामी दी जाएगी। इसके बाद प्रधानमंत्री लाल किले की प्राचीर से राष्ट्र को संबोधित करेंगे। इस वर्ष लाल किले पर स्वतंत्रता दिवस समारोह देखने के लिए विभिन्न क्षेत्रों से लगभग 5,000 विशेष अतिथियों को आमंत्रित किया गया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि विश्व के अनेक क्षेत्रों में युद्ध और अस्थिरता का प्रभाव सभी देशों पर पड़ रहा है। ऐसी परिस्थिति में भी भारत की अर्थव्यवस्था तेज गति से आगे बढ़ रही है। 80वें स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर कल शाम राष्ट्र को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति ने राष्ट्र निर्माण और देश की प्रगति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले प्रत्येक नागरिक की सराहना की है। उन्होंने कहा कि विश्व के अनेक क्षेत्रों में युद्ध और अस्थिरता का प्रभाव सभी देशों पर पड़ रहा है। ऐसी स्थिति में भी भारत की अर्थव्यवस्था तेज गति से आगे बढ़ रही है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने देश के डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को विश्व की सबसे बड़ी और सबसे अच्छी भुगतान प्रणाली बताया।
2: हमारे देश में विश्व का सबसे बड़ा और सबसे अच्छा डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित किया गया है। गांव की छोटी छोटी दुकानों में तथा रेहड़ी पटरी पर भी डिजिटल पेमेंट्स हो रहे हैं। विश्व में आधे से अधिक रियल टाइम डिजिटल ट्रांजैक्शंस भारत में हो रहे हैं। हमारे देशवासियों और सरकार ने मिलकर डिजिटल क्रांति का उदाहरण विश्व समुदाय के सामने प्रस्तुत किया है।
1: राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा कि हमारे अनेक युवा स्वरोजगार अपनाते हुए रोजगार देने की क्षमता भी मजबूत कर रहे हैं। उन्होंने भावी पीढ़ी के लिए प्राकृतिक संसाधनों के दायित्वपूर्ण उपयोग का आह्वान किया।
2: प्राकृतिक संपदाओं पर हमारी भावी पीढ़ियों का भी उतना ही अधिकार है जितना हमारा है। हमें यह सुनिश्चित करना है कि हमारे किसी भी कार्य से आने वाली पीढ़ियों द्वारा इस अधिकार के प्रयोग में तनिक भी कमी ना हो। हमारा प्रयास होना चाहिए कि हम उनको और अधिक समृद्ध प्राकृतिक संपदाएं प्रदान करें।
1: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर रक्षा बलों और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के जवानों के लिए 78 वीरता पुरस्कारों की स्वीकृति दी। इन पुरस्कारों में 9 कीर्ति चक्र, 19 शौर्य चक्र, 36 सेना मेडल, 3 नौसेना मेडल और 5 वायुसेना मेडल शामिल हैं। अमेरिका के सीनेटरों और नेताओं ने भारत के स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर कहा कि दोनों देशों की भागीदारी मजबूत है और भारत की उपलब्धियां तथा भारत के लोग विश्व को प्रेरित करते रहते हैं। न्यूयॉर्क से लेकर सिएटल तक अमेरिका के राज्यों के गवर्नर और सीनेटरों ने कहा है कि उनके यहां 15 अगस्त का दिन भारत दिवस के रूप में मनाया जाएगा। विदेश मंत्रालय ने फिर कहा है कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख भारत के अभिन्न अंग हैं। नई दिल्ली में कल विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय समुदायों को पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में हो रहे अत्याचार और सीमा पार आतंकवाद के लिए इसका इस्तेमाल किए जाने पर चिंता व्यक्त करनी चाहिए। एक प्रश्न के उत्तर में श्री जायसवाल ने कहा कि पिछले कुछ महीनों में भारत ने अफगानिस्तान के साथ कई बैठकें की हैं। अफगानिस्तान के कई मंत्री भारत के दौरे पर आए हैं जिनसे विकास, सहयोग, व्यापार और संपर्क जैसे क्षेत्रों में साझेदारी मजबूत हुई है। जल शक्ति मंत्रालय ने कहा है कि केन बेतवा लिंक परियोजना से प्रभावित परिवारों को मुआवजा या पुनर्वास न मिलने के आरोप गलत और भ्रामक हैं। मंत्रालय ने कहा है कि अधिकांश पात्र परिवारों को पूरा मुआवजा और पुनर्वास लाभ मिल चुका है और कुछ मामलों में केवल प्रक्रियात्मक औपचारिकताएं शेष हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा है कि प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना उद्योग की अपेक्षाओं और नौकरियों के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवारों के कौशल के बीच की दूरी कम करने में मदद के लिए तैयार की गई है। 18 से 25 वर्ष के आयु वर्ग के लोग प्रधानमंत्री

0: इंटर्नशिप योजना के पात्र हैं और उन्हें इंटर्नशिप करने पर प्रतिमाह न्यूनतम 9000 रुपए की वित्तीय सहायता मिलती है। दिल्ली की विशेष फास्ट ट्रैक अदालत ने नीट अंडर ग्रेजुएट परीक्षा पेपर लीक मामले में केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई को आगे की जांच करने की अनुमति दे दी है। ब्यूरो ने इस मामले में 13 आरोपियों के अलावा अन्य साजिशकर्ताओं की जांच जारी रखने की अनुमति की मांग की थी, जिनके विरुद्ध पहले ही आरोप पत्र दाखिल किया जा चुका है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: हम आकाशवाणी भोपाल,
2: ये आकाशवाणी का ग्वालियर केंद्र है। प्रस्तुत है कार्यक्रम वंदना। सभी सुनने वालों को स्वाधीनता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज की वंदना देशभक्त गीतों पर आधारित है और इसे लेकर हाजिर है आपकी दोस्त तुलिका। साथियों, स्वाधीनता अपने साथ बहुत बड़ी जिम्मेदारी लाती है। हमारी स्वतंत्रता सिर्फ राजनीतिक स्वतंत्रता नहीं है, बल्कि एक दूसरे के साथ सम्मान, समानता और भाईचारे से जीने की जिम्मेदारी भी है। आज साझेपन और संवेदना के भाव को संपूर्ण विश्व में फैलाने का हमारा सदियों पुराना प्रण हमें निभाने का संकल्प लेना होगा।

बंधुत्व का अर्थ है जाति, धर्म, भाषा, क्षेत्र और विचारों की विविधता के बावजूद एक दूसरे को अपना मानना। हमारा तिरंगा हमें याद दिलाता है कि भारत की शक्ति उसकी एकरूपता में नहीं, बल्कि चारों दिशाओं में फैली उसकी विविधता में है।

राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त ने मातृभूमि के लिए कृतज्ञता से कहा है, जिसकी रज में लोट लोट कर बड़े हुए हैं, घुटनों के बल सरक सरक कर खड़े हुए हैं, परमहंस सम बाल्यकाल में सब सुख पाए, जिसके कारण धूल भरे हीरे कहलाए, हम खेलें कूदें हर्ष युद्ध जिसकी प्यारी गोद में, हे मातृभूमि तुझको निरख मग्न क्यों न हो मोद में। हम भी ऐसे ही मुदित मना हैं, उपकृत हैं अपनी मातृभूमि के।

0: इस देशभक्ति गीत के साथ ही आज की वंदना संपन्न होती है। ये आकाशवाणी का ग्वालियर केंद्र है, प्रस्तुत है कार्यक्रम चिंतन। आइए सुनते हैं स्वतंत्रता दिवस पर ये विशेष चिंतन। चिंतक हैं श्री यतीन्द्र चतुर्वेदी।
1: निसंदेह स्वाधीनता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। समस्त प्राणी जगत के लिए ही स्वतंत्रता नितांत आवश्यक है। स्वच्छ नीले आसमान में विहंगम उड़ान भरते पक्षीगण कितना सुखद अनुभव करते हैं और उन्हें देखना भी कितना भला लगता है। जल के जीव सागर की अतल गहराइयों में और वन्य जीव सघन वन के प्राकृतिक संसर्ग में एक असीम आनंद का अनुभव करते हैं। लेकिन स्वतंत्रता के असीम आनंद का अनुभव करने वाले सभी जीव मानव जाति सहित अपनी स्वतंत्रता के ऊपर मंडराने वाले खतरों से अनभिज्ञ नहीं रहते। वो जानते हैं कि पराधीन सपने सुख नहीं, अतः हर पल हमें अपनी स्वतंत्रता के प्रति सजग और जागरूक तो रहना ही होता है। मानवीय वृत्तियों या मानव मनोविज्ञान का विश्लेषण करें तो हम पाते हैं कि जो कुछ उसके पास नहीं होता वो अति महत्वपूर्ण उसे प्रतीत होता है, और जैसे ही वो महत्वपूर्ण उसे उपलब्ध हो जाता है उसे महत्वहीन लगने लगता है। हम नहीं समझते कि ये स्वाधीनता हमने कितने त्याग, कितने संघर्ष, कितने बलिदान और कितनी पीड़ाओं के बाद प्राप्त की है। आज आवश्यकता उन संघर्षगाथाओं को समझने की है। हम स्वतंत्र तो हुए 15 अगस्त 1947 को, हमने ये स्वाधीनता एकता और अखंडता के माध्यम से प्राप्त की। स्वतंत्रता संघर्ष में उस वक्त न जातिपात थी, न धर्म, न क्षेत्रीय संकीर्णताएं आड़े आई थी। आज़ादी के पश्चात प्रारंभ हुई हमारी विकास यात्रा। आज़ादी के इन 60 वर्षों में हमने उल्लेखनीय प्रगति की है। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने तीव्र औद्योगिक विकास को योजनाओं का आधार बनाया। हम उद्योग के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बने। कृषि के क्षेत्र में हरित क्रांति हुई। विज्ञान टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में भी आज हमारा कोई सानी नहीं है। शिक्षा के क्षेत्र में बढ़ते हमारे कदम समूचे विश्व को अचंभे में डाले दे रहे हैं। किंतु फिर भी हमें जागरूक तो रहना ही होगा बढ़ती जनसंख्या के प्रति, जातिगत, क्षेत्रगत, भाषागत संकीर्णताओं के प्रति। उदारीकरण ने हमारे उद्योगों व व्यावसायिक उपक्रमों के सामने एक बड़ी चुनौती खड़ी की है। देश का युवा, देश का उद्यमी इस चुनौती का सामना करने के लिए संकल्पबद्ध है और ये संकल्प उसके परिश्रम के रूप में परिलक्षित होता है। आवश्यकता है कि हम आज़ादी के सच्चे अर्थों को समझें और उसे आत्मसात करने की कोशिश करें।

0: अनुशासन से ही हम सच्ची स्वतंत्रता का आनंद ले सकेंगे। जो बातें हमारे विकास में बाधक हैं, हम उन पर नियंत्रण कर सकेंगे। किंतु परिदृश्य इतना नकारात्मक भी नहीं है। सारी बाधाओं और विवशताओं के बाद भी हमारी आत्मा भारतीय है। स्वतंत्रता हमें प्रिय है। विकास के जनपथ पर हम निरंतर अग्रसर हैं। आगे बढ़ने का जज्बा हमें विश्व पटल पर एक सम्मानजनक स्थिति में ले आया है। विज्ञान, टेक्नोलॉजी, उद्योग, अंतरिक्ष, कृषि, साहित्य, संस्कृति, हमने स्वतंत्रता के बाद निरंतर प्रगति की है। किंतु इस सब के बाद भी हम विकासशील हैं, विकसित नहीं हैं। क्या कारण हो सकता है? इन कारणों पर हमें ध्यान अवश्य देना होगा। विशाल भारत में असमानताओं का बोलबाला जब तक रहेगा, हम विकसित नहीं कहला सकेंगे। और हमें विकसित कहलाना ही है। ये असमानताएं आर्थिक हों, क्षेत्रीय हों, शिक्षा के क्षेत्र में हों या सामाजिक हों। आज एक और विशाल सड़कें हैं। विज्ञान के क्षेत्र में हमने निश्चित रूप से प्रगति की है, लेकिन कहीं कहीं अभी भी विकास की बहुत आवश्यकता है। गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले हर गरीब के प्रति चिंता करना आज भी सार्थक है। स्वतंत्रता के संदर्भ में आज आवश्यकता है आत्मचिंतन, आत्ममंथन, आत्मदर्शन और आत्म परिमार्जन की।
1: कार्यक्रम चिंतन में अभी आप सुन रहे थे यतीन्द्र चतुर्वेदी के विचार। ये आकाशवाणी का ग्वालियर केंद्र है। प्रस्तुत है श्री रामचरितमानस से संगीतमय पाठ।

श्री रामचंद्र जी व लक्ष्मण जी पूजा के लिए फूल लेने बाग में गए। वसंत ऋतु के प्रभाव से सब ओर वहां प्राकृतिक सौंदर्य की छटा देखते ही बनती थी। नए नए पत्तों और फलों से युक्त सुंदर वृक्ष लहला रहे हैं। पपीहे, कोयल, तोते और चकोर आदि पक्षी अपनी मीठी बोली बोल रहे हैं और मोर सुंदर नृत्य कर रहे हैं। बाग के बीचों बीच निर्मल जल भरा सुहावना सरोवर बहुरंगी कमल पुष्पों से शोभित है और जल के पक्षी कलरव कर रहे हैं। मालियों से अनुमति लेकर दोनों भाई पुष्प एकत्रित करने लगे। उसी समय पार्वती की पूजा करने के लिए सीता जी भी वहां आईं। उनके साथ सुंदरी और सयानी सखियां थीं। सीता जी ने बड़ी श्रद्धा से मां पार्वती गिरिजा की पूजा की और योग्य तथा सुंदर वर की कामना की। इसी बीच एक सखी को राम लक्ष्मण पुष्प एकत्रित करते दिखे। दर्शन मात्र से उस सखी का शरीर पुलकित हो गया और नेत्रों में जल भराया। अन्य सभी सखियों ने उस सखी से उसकी प्रसन्नता का कारण पूछा। दोनों भाइयों के अमित सौंदर्य का वर्णन करते हुए वो बोली, वाणी बिना नेत्रों की है और नेत्रों के वाणी नहीं है, अतः मैं उन दोनों राजकुमारों के सौंदर्य का वर्णन कैसे करूं? ये सुनकर दूसरी सखी बोली कि संभवतः ये वही राजकुमार हैं जो कल विश्वामित्र मुनि के साथ आए हैं। इन दोनों राजकुमारों ने अपने रूप की मोहिनी फैलाकर नगर के सभी स्त्री पुरुषों को अपने वश में कर लिया है। सीता जी को ये वर्णन अत्यंत प्रिय लगा और वे उन राजकुमारों के दर्शन के लिए अपनी सखी को साथ ले आगे चलीं।

0: अभी आप सुन रहे थे श्री रामचरितमानस से संगीतमय पाठ। यह आकाशवाणी का ग्वालियर केंद्र है। प्रस्तुत है कार्यक्रम कृषि चर्चा। स्वाधीनता दिवस पर विशेष कृषि चर्चा प्रस्तुत कर रहे हैं SS चौधरी।
1: किसान भाइयों, आप सबको स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। किसान भाइयों, 15 अगस्त 1947 का दिन हमारे देश के इतिहास की महत्वपूर्ण घटना है। इसी दिन हमने अपनी स्वतंत्र धरा पर लगभग 200 वर्षों बाद खुली हवा में सांस ली थी और आजाद धरा पर पहली बार उगते हुए सूरज को देखा था। किसान भाइयों, आजादी के पूर्व हमारी कृषि बहुत पिछड़ गई थी, हमें खाद्यान्न भी बाहर से मंगाना पड़ता था। आजादी के बाद कृषि विकास का क्रम एक नई सोच के साथ आरंभ हुआ। कृषि मूल्य आयोग, राष्ट्रीय बीज निगम, कृषि विश्वविद्यालयों, भारतीय खाद्य निगम जैसे कई महत्वपूर्ण संस्थानों की कृषि उत्पादन बढ़ाने हेतु स्थापना की गई। इसी तरह आंचलिक और क्षेत्रीय अनुसंधान केंद्र भी स्थापित किए गए। उन्नत किस्म के बीज, रासायनिक खादों, सुधरी कृषि यंत्रों के प्रयोग और फसल सुरक्षा के आधुनिक उपायों से हमारे देश में हरित क्रांति का सूत्रपात हुआ। खाद्यान्न उत्पादन जहां सन 1950 में मात्र 50 मिलियन टन था, जो इस साल बढ़कर 250 मिलियन टन से भी ज्यादा हो गया है। आजादी के बाद खाद्यान्न उत्पादन में ये वृद्धि करीब 5 गुनी है। आज हम खाद्यान्न के क्षेत्र में आत्मनिर्भर ही नहीं हुए, बल्कि विभिन्न खाद्यान्न निर्यात करके हम करोड़ों रुपए की बहुमूल्य मुद्रा भी अर्जित कर रहे हैं। खाद्यान्न उत्पादन में ये वृद्धि दलहनी तिलहनी फसलों में भी पर्याप्त हुई है। विभिन्न अनुसंधान केंद्रों पर विकसित की जा रही खेती की नवीनतम तकनीक के प्रचार प्रसार के फलस्वरूप खाद्यान्न का उत्पादन निरंतर बढ़ता जा रहा है। फल और सब्जियों की अधिक पैदावार देने वाली प्रजातियों के प्रचार प्रसार से सभी को फल और सब्जियां पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। यद्यपि हमारी जनसंख्या भी इस दौर में काफी बढ़ी है, जो एक चुनौती है सभी को रोजगार उपलब्ध कराने की। इसी को ध्यान में रखते हुए कृषि आधारित उद्योगों पर पर्याप्त जोर दिया जा रहा है। इसके लिए मशरूम उत्पादन, मधुमक्खी पालन, फूलों की खेती, रेशम कीट पालन और पशुपालन जैसे उद्योगों पर पर्याप्त जोर दिया जा रहा है। इनको बढ़ावा देने के सभी प्रयास किए जा रहे हैं। संकर पशुओं की संख्या भी निरंतर बढ़ रही है। पशुपालक भाइयों का ध्यान अब संकर पशुओं को पालने की तरफ भी दिनों दिन बढ़ रहा है। दूध का उत्पादन बढ़े और दूध से बनने वाले विभिन्न तरह के उत्पाद बाजार में बेचकर किसान भाई आज अच्छा लाभ कमा रहे हैं। यद्यपि उत्पादन तो काफी बढ़ा है, लेकिन जल संरक्षण के उपायों की आज बहुत जरूरत है, तो इसके लिए किसान भाइयों को जल संरक्षण की टपक सिंचाई भी अपनाने के लिए सलाह दी जा रही है। इसी तरह से हमारी भूमि है, उसका भी निरंतर क्षरण ना हो, भूमि का स्वास्थ्य अच्छा बना रहे, इसके लिए मिट्टी परीक्षण के आधार पर किसान भाई खेतों में संतुलित मात्रा में खाद का प्रयोग करें। इससे भूमि की भौतिक और रासायनिक दशा नहीं बिगड़ेगी और निरंतर हमें खेती से उत्पादन भी मिलता रहेगा। अब किसान भाई

0: को ये भी सलाह दी जा रही है कि हम जैविक खेती अपनाएं, इसके लिए बर्मी कंपोस्ट, राइजोम कल्चर और एजेटोबैक्टर का खेती में अधिक से अधिक प्रयोग करें। इससे भूमि की दशा सुधरेगी। खेती को लाभ का धंधा बनाने के लिए औषधि पौधों की खेती पर भी अब पर्याप्त जोर दिया जा रहा है। देश के प्रत्येक जिले में कृषि विज्ञान केंद्रों की स्थापना होने से अब किसान भाइयों को खेती की सुधरी तकनीक बहुत जल्दी सुलभ हो रही है। तो आज ये समय की मांग है कि हम खाद्यान्न उत्पादन तो बढ़ाएं, लेकिन वैज्ञानिकों द्वारा विकसित की जा रही नवीनतम तकनीक का लाभ उठाते हुए भूमि की दशा को न बिगड़ने दें, भूमि का स्वास्थ्य ठीक रखें और जल संरक्षण के पर्याप्त उपाय करें। इससे खेती में अधिक अन्न उगा करके किसान भाई समृद्ध होंगे, धन धन से परिपूर्ण होंगे। आप सबको पुनः स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं।
1: स्वतंत्रता दिवस पर यह विशेष कृषि चर्चा आप सुन रहे थे एसएस चौधरी से। यह आकाशवाणी का ग्वालियर केंद्र है। मीडियम वेव 216.45 मीटर यानी 1386 किलोहर्ट्ज पर। प्रस्तुत है कार्यक्रम विवरण।

सुनिए आज हमारे केंद्र से प्रसारित होने वाले कुछ मुख्य कार्यक्रमों की रूपरेखा। अब से कुछ ही देर बाद यानी 6:45 पर प्रादेशिक समाचार हम भोपाल से अनुप्रसारित करेंगे। 6:55 पर संस्कृत में समाचार दिल्ली से अनुप्रसारित होंगे। श्रोताओ, आज का हमारा विशेष कार्यक्रम आप सुनेंगे 7 बजे से। यह है स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर लाल किले की प्राचीर से माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा ध्वजारोहण एवं राष्ट्र को संबोधन का सजीव प्रसारण। इसे हमारे दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित किया जाएगा। माननीय प्रधानमंत्री के संबोधन के ठीक बाद आप समाचार प्रभात और मॉर्निंग न्यूज सुनेंगे। ये दोनों ही समाचार बुलेटिन आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित किए जाएंगे। इन समाचार बुलेटिनों के ठीक बाद मध्य प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव का प्रदेश की जनता के नाम संदेश का प्रसारण किया जाएगा। इसे हमारे भोपाल केंद्र से अनुप्रसारित किया जाएगा।

मध्य प्रदेश के विभिन्न स्थानों में स्वाधीनता दिवस के अवसर पर आयोजित कार्यक्रमों की समन्वित रेडियो रिपोर्ट आज शाम 6 बजे से हम अनुप्रसारित करेंगे। इसे आकाशवाणी के मध्य प्रदेश केंद्र से अनुप्रसारित किया जाएगा। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर ग्वालियर एवं चंबल संभाग में आयोजित स्वतंत्रता दिवस समारोहों की रेडियो रिपोर्ट आप सुनेंगे 6:45 पर।

0: 10:05 पर आप सुन सकेंगे साप्ताहिक कार्यक्रम सेहत की बात तरानों के साथ। आज के कार्यक्रम का विषय है डेंगू कारण लक्षण और उपचार। इस विषय पर डॉक्टर मनीष शर्मा से तुलिका शर्मा की बातचीत सुनवाई जाएगी। 11 बजे से सभी कार्यक्रम आकाशवाणी के मध्य प्रदेश केंद्र से हम अनुप्रसारित करेंगे। हमारी सायंकालीन सभा के कार्यक्रम भी आकाशवाणी के मध्य प्रदेश केंद्र से ही अनुप्रसारित किए जाएंगे, जिसके अंतर्गत 5 बजे आप सुनेंगे युवाणी कार्यक्रम, जो आकाशवाणी रीवा की प्रस्तुति होगा। शाम 7:30 बजे प्रायोजित कार्यक्रम सुनिए किसान वाणी। इससे ठीक पहले 7:20 पर हमारे केंद्र से देशभक्ति लोकगीतों का अनुप्रसारण होगा। 7:20 से 7:30 बजे तक 8 बजे से सभी कार्यक्रम आकाशवाणी के मध्य प्रदेश केंद्र से अनुप्रसारित होंगे। ये थे आज हमारे केंद्र से प्रसारित होने वाले कुछ मुख्य कार्यक्रमों की रूपरेखा। यह आकाशवाणी का ग्वालियर केंद्र है। सुबह के 6:45 होने को हैं। प्रादेशिक समाचार अब भोपाल से हम अनुप्रसारित करेंगे। उसके ठीक बाद संस्कृत में समाचार 6:55 पर दिल्ली से होंगे और 7 बजे से आप लाल किले से सजीव प्रसारण सुनेंगे। कृपया हमारे अगले कार्यक्रम की प्रतीक्षा।
1: आकाशवाणी का साकार हुआ सपना, जन जन सब गाएं मिल मधुर

0: पहुंचाएं हम जन जन तक, सपनों को दें हम आकार।
1: आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं रत्नेश सोनी। सबसे पहले मुख्य समाचार। राष्ट्र आज 80वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुछ ही देर में लाल किले की प्राचीर से राष्ट्र को संबोधित करेंगे। भोपाल में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ध्वजारोहण पर कर संयुक्त परेड की सलामी लेंगे। स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर प्रदेश में तिरंगा यात्राएं निकली और तिरंगे की रोशनी से जगमगाए प्रदेश के शहर। और प्रदेश के 21 जिलों में आज भारी बारिश का अलर्ट, कुछ इलाकों में 4 से 8 इंच तक बारिश का अनुमान। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्र आज 80वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुछ ही देर में नई दिल्ली में ऐतिहासिक लाल किले की प्राचीर से स्वतंत्रता दिवस समारोह का नेतृत्व करेंगे। प्रधानमंत्री के राष्ट्रीय ध्वज फहराने के साथ ही वायुसेना के 2 MI-17 हेलीकॉप्टर समारोह स्थल पर पुष्प वर्षा करेंगे। ध्वजारोहण के साथ 21 तोपों की सलामी दी जाएगी। इसके बाद प्रधानमंत्री लाल किले की प्राचीर से राष्ट्र को संबोधित भी करेंगे। इस वर्ष लाल किले पर स्वतंत्रता दिवस समारोह देखने के लिए विभिन्न क्षेत्रों से करीब 5,000 विशेष अतिथियों को आमंत्रित किया गया है। इनमें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के स्वयंसेवक, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना की महिला उद्यमी, माय भारत के उत्कृष्ट स्वयंसेवक, प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के लाभार्थी और पीएम स्वनिधि योजना से जुड़े स्ट्रीट वेंडर शामिल हैं। वहीं प्रदेश में भी आज 80वां स्वतंत्रता दिवस हर्षोल्लास और गरिमामय वातावरण में मनाया जा रहा है। राजधानी भोपाल के लाल परेड मैदान में आयोजित राज्य स्तरीय समारोह में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ध्वजारोहण करेंगे और संयुक्त परेड की सलामी लेंगे। ध्वजारोहण के बाद मुख्यमंत्री परेड का निरीक्षण करेंगे और प्रदेशवासियों के नाम संदेश का वाचन करेंगे। समारोह में पुलिस बैंड सहित 22 टुकड़ियां आकर्षक मार्च पास्ट प्रस्तुत करेंगी। परेड में सेना, अर्धसैनिक बल, पुलिस, एनसीसी, स्काउट गाइड और शौर्य दल की टुकड़ियां शामिल होंगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्र को संबोधित किया। उन्होंने देश के निर्माण और प्रगति में योगदान दे रहे प्रत्येक नागरिक की सराहना की। राष्ट्रपति ने 3 सेनाओं के जवानों और पुलिसकर्मियों की कर्तव्यनिष्ठा और प्रवासी भारतीयों के योगदान की विशेष प्रशंसा की। उन्होंने कहा कि दुनिया के कई हिस्से में युद्ध और अस्थिरता के बावजूद भारत की अर्थव्यवस्था तेज गति से आगे बढ़ रही है। राष्ट्रपति ने आत्मनिर्भर भारत अभियान को आर्थिक प्रगति और सुरक्षा का मजबूत आधार बताया। उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर में सेना के पराक्रम और आतंकवाद के खिलाफ भारत के कड़े रुख का भी उल्लेख किया।
2: आर्थिक सहयोग बढ़ाने तथा पारस्परिक संबंधों को और प्रगाढ़ बनाने के लिए हमने अनेक देशों के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स किए। ग्लोबल साउथ के देशों में हम अग्रणी भूमिका निभा रहे हैं। विश्व पटल पर हमारे देश का सम्मान बढ़ा है। हम रूल्स बेस्ड इंटरनेशनल ऑर्डर में विश्वास रखते हैं। हमारे प्रयास है कि संयुक्त राष्ट्र संघ सहित मल्टीलेटरल ऑर्गेनाइजेशंस में विश्व समुदाय का समुचित प्रतिनिधित्व हो।
1: प्रदेश के कई शहरों में कल तिरंगा यात्राएं निकाली गईं। भोपाल में कोलार से संत नगर तक 32 किलोमीटर लंबी तिरंगा यात्रा निकाली गई, जिसमें मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव भी शामिल हुए। मार्ग में जगह जगह यात्रा का स्वागत किया गया। यात्रा के दौरान युवाओं को नशे से दूर रहने और देश हित में आगे बढ़ने का संदेश दिया गया। वहीं दूसरी तरफ रात के समय कई शहर तिरंगे की रोशनी से

0: जगमगा उठे। भोपाल में मंत्रालय, विधानसभा, लोक भवन और मिंटो हॉल समेत कई सरकारी इमारतों को तिरंगे के रंगों में सजाया गया। इंदौर में राजवाड़ा, गांधी हॉल और कृष्णपुरा छतरी भी तिरंगी रोशनी से सजे नजर आए। इसके अलावा राज्यपाल मंगूभाई पटेल की ओर से भोपाल के स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों का उनके घर पहुंचकर सम्मानित किया गया। जबलपुर के नेताजी सुभाष चंद्र बोस केंद्रीय कारागार से स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर आज 18 बंदियों को रिहा किया जाएगा। रिहा होने वालों में एक महिला बंदी भी शामिल है। जेल प्रशासन के अनुसार सभी बंदियों ने शासन की निर्धारित पात्रता और जेल नियमावली की शर्तें पूरी की हैं। जेलर मदन कमलेश ने बताया कि अब पात्र बंदियों को वर्ष में 5 अवसरों पर रिहा किया जाता है। स्वतंत्रता दिवस पर यह रिहाई बंदियों को नई शुरुआत का अवसर देने के उद्देश्य से की जा रही है। जबलपुर में विभाजन विभीषिका दिवस के अवसर पर पंजाबी महासंघ ने कल मौन यात्रा निकाली। यह यात्रा गोरखपुर के गुलाटी चौक से शुरू होकर भगत सिंह चौक तक पहुंची। यात्रा में समाज के वरिष्ठ जन, महिलाएं, व्यापारी और बड़ी संख्या में नागरिक शामिल हुए। लोगों ने विभाजन के दौरान जान गंवाने वाले लाखों लोगों को मौन रखकर श्रद्धांजलि दी। इस दौरान विभाजन की पीड़ा और उस दौर में लोगों के संघर्ष को याद किया गया। वहीं दूसरी तरफ सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के केंद्रीय संचार ब्यूरो ने भी भोपाल में विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के अवसर पर संगोष्ठी आयोजित की। अब समाचारों, वक्त एक छोटे से विराम का।
1: ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन यूट्यूब पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और फेसबुक, साथ ही एक्स प्लेटफॉर्म पर EIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsoneair.gov.in पर अथवा न्यूज ऑन EIR ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं।
0: शहडोल दक्षिण वन मंडल के बुढ़ार रेंज में पदस्थ वन रक्षक समरुद्दीन बेगा और राकेश बेगा को मानव हाथी संघर्ष प्रबंधन में उल्लेखनीय योगदान के लिए गज गौरव अवार्ड से सम्मानित किया गया है। दोनों वन रक्षकों ने वर्ष 2025-26 में हाथियों की गतिविधियों पर दिन रात निगरानी और रात्रि गश्त की। उन्होंने ग्रामीणों के साथ समन्वय कर लोगों की सुरक्षा और हाथियों के सुरक्षित आवागमन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उनके प्रयासों से मानव और हाथियों के बीच संघर्ष की घटनाओं को रोकने में सफलता मिली है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कल बड़वानी में सामाजिक कार्यकर्ताओं, खिलाड़ियों, उद्यमियों और किसानों से संवाद किया। उन्होंने राष्ट्रीय स्तर पर चयनित निशानेबाज वैष्णवी माहुले सहित अन्य खिलाड़ियों को सम्मानित किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि निमाड़ की पहचान कपास से है और सरकार कपास आधारित उद्योगों तथा रोजगार को बढ़ावा दे रही है। उन्होंने कस्तूरी कॉटन के उत्पादन और प्रसंस्करण को प्रोत्साहित करने की बात भी कही। मुख्यमंत्री ने बड़वानी में 25 करोड़ रुपए की लागत से नए घाट बनाने और 10 करोड़ रुपए से आदर्श अनाज मंडी विकसित करने की घोषणा भी की। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कल विदिशा में आयोजित बलराम कृषि महोत्सव को वर्चुअली संबोधित किया। उन्होंने कहा कि महोत्सव का उद्देश्य किसानों को आधुनिक तकनीक और प्राकृतिक व जैविक खेती से जोड़कर कृषि को लाभ का धंधा बनाना है। मुख्यमंत्री ने किसानों से जैविक खाद अपनाकर मिट्टी की उर्वरा शक्ति बढ़ाने और फूड प्रोसेसिंग को बढ़ावा देने की अपील की। डॉ. यादव ने विदिशा की ड्रोन दीदी प्रभा वर्मा से भी संवाद किया। प्रभा वर्मा ने बताया कि ड्रोन से अब तक 1160 खेतों में स्प्रे कर वे 3 लाख रुपए से अधिक कमा चुकी हैं। प्रदेश में हीरा खनन की संभावनाओं को बढ़ाने के लिए मुंबई में कल राउंड टेबल चर्चा आयोजित की गई। खनिज संसाधन विभाग की ओर से आयोजित इस बैठक में प्रमुख खनन कंपनियों और उद्योग जगत के प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। चर्चा में प्रदेश में हीरा खनन को गति देने, निवेश बढ़ाने और नीलामी के बाद खनन गतिविधियां जल्द शुरू करने पर विचार किया गया। उद्योग प्रतिनिधियों ने हीरा खनन क्षेत्र में मौजूद अवसरों और चुनौतियों के बारे में अपने सुझाव दिए। भोपाल की बड़ा तालाब में चल रही तीसरी राजा भोज मल्टी क्लास नेशनल सेलिंग चैंपियनशिप में प्रदेश के खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन किया। प्रतियोगिता के चौथे दिन प्रदेश के खिलाड़ियों ने कई वर्गों में पहला स्थान हासिल किया। ILCA 4 पुरुष वर्ग में शुभम यादव पहले स्थान पर रहे और शीर्ष चारों स्थान प्रदेश के खिलाड़ियों ने हासिल किए। वहीं IQ5 में आर्यन पाटीदार और प्रार्थना भोई ने अपने अपने वर्ग में पहला स्थान हासिल किया। प्रतियोगिता में 12 राज्यों के करीब 100 खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं। कल मुख्यमंत्री डॉ. यादव के मुख्य आतिथ्य में चैंपियनशिप का समापन होगा। अब बात मौसम की। प्रदेश में 21 जिलों में आज भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग के अनुसार अगले 24 घंटे में कुछ इलाकों में 4 से 8 इंच तक बारिश हो सकती है। नर्मदापुरम, छतरपुर और उमरिया में अति बारिश का अनुमान है। वहीं जबलपुर, सागर, रायसेन, रीवा, शहडोल समेत कई जिलों में भारी बारिश हो सकती है। प्रदेश के पूर्वी हिस्से में सक्रिय मौसम प्रणाली का असर अगले 4 दिनों तक बने रहने की संभावना है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। झाबुआ के में खाद्य

खाद्य सुरक्षा प्रशासन ने डेयरी और पनीर विक्रेताओं के प्रतिष्ठानों का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान पनीर के नमूने जांच के लिए लिए गए और 17 लीटर घी जब्त किया गया। रीवा में मुख्यमंत्री जन विश्वास अभियान के तहत दूसरे शिविर में 290 आवेदन पत्र प्राप्त हुए, इनमें से 194 का मौके पर निराकरण किया गया। कटनी में विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस पर विभाजन से प्रभावित लोगों के साहस को याद किया गया एवं श्रद्धांजलि दी गई। इस बुलेटिन में इतना ही। अगला बुलेटिन सुनिए दोपहर 2:10 पर। नमस्कार।

0: हमारे अगले प्रसारण की प्रतीक्षा कीजिए। ये आकाशवाणी है। अब हम आपको लाल किला लिए चलते हैं, जहां से आप भारत के 80वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर ध्वजारोहण समारोह और भारत के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा राष्ट्र को संबोधन का सजीव प्रसारण सुन सकेंगे। विवरण दे रहे हैं श्री जैनेन्द्र सिंह, सुश्री नीलम मलकानिया और श्री देवेंद्र त्रिपाठी।
1: हॉलमार्क का निशान देखकर ही आभूषण लें, क्योंकि BIS हॉलमार्क मतलब गुणवत्ता की गारंटी। जागो ग्राहक जागो, उपभोक्ता मामले विभाग भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
2: चाहे प्रेशर कुकर हो या बच्चों के खिलौने, ISI मार्क देखकर ही खरीदें, क्योंकि BIS ISI मार्क मतलब सुरक्षा की गारंटी। जागो ग्राहक जागो, उपभोक्ता मामले विभाग भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
1: MRP यानी अधिकतम खुदरा मूल्य से अधिक भुगतान ना करें। जागो ग्राहक जागो, उपभोक्ता मामले विभाग भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
3: PM जय अब गरीबों की जय बन गई है।
4: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, पात्र परिवार के लिए 5,00,000 रुपए का मुफ्त इलाज प्रतिवर्ष प्रति परिवार। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना ने दी है 60 करोड़ से अधिक भारतीयों को इलाज की चिंता से आजादी।
5: अब तक 12 करोड़ से अधिक मुफ्त इलाज हो चुके हैं, जिससे चिकित्सा खर्च में गरीब परिवारों की लगभग 2,00,000 करोड़ रुपए की बचत हुई है। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 1-4-5-5-5।
4: आयुष्मान भारत, अब इलाज की चिंता से आजादी।

0: सुलभ समाधान, सहज प्रक्रिया, घर वापस सुख से जाएं। न्याय में ना हो कोई बाधा, 1500 पर सहायता पाएं। लोक अदालत, त्वरित, निष्पक्ष और सुलभ न्याय।
1: आइए लाल किला चले।
2: वंदे मातरम। स्वतंत्र भारत देश के 79 वर्षों की गौरवशाली यात्रा और इस स्वतंत्रता को प्राप्त करने में अपना सर्वस्व न्यौछावर करने वाले भारत भूमि के वीरों और वीरांगनाओं द्वारा किए गए बलिदान का स्मरणोत्सव। श्रोताओं, ये स्वतंत्रता दिवस समारोह जिनके अद्वितीय बलिदान का प्रतिफल है ये दिवस। नमन ऐसे लाखों ज्ञात अज्ञात सेनानियों को, नमन राष्ट्रनायकों और राष्ट्र निर्माताओं को जिनके दूरदर्शी नेतृत्व का ही परिणाम है कि आज भारत दुनिया की चौथे सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन सका है और पूरे विश्व में भारत की पहचान और प्रतिष्ठा बढ़ी है। ऐसे राष्ट्रनायकों को भी नमन है आज के इस अवसर पर। गौरव के इन पलों में श्रोताओं, आप सभी को देश के 80वें स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक बधाई और बहुत सारी शुभकामनाएं। दिल्ली स्थित लाल किले के प्राचीर से मैं जैनेन्द्र अपने साथी कमेंटेटर्स नीलम मलकानिया, देवेंद्र त्रिपाठी और आकाशवाणी की पूरी टीम के साथ आप सभी का इस विशेष प्रसारण में हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूँ।
3: वंदे मातरम। लाल किले की इस ऐतिहासिक प्राचीर से आप सभी को पुनः स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। 15 अगस्त 2026 की ये सुनहरी सुबह भारत के इतिहास में एक और स्वर्णिम अध्याय जोड़ने जा रही है। लोकतंत्र की जननी भारत भूमि आज पूरे गर्व और उल्लास के साथ अपना 80वां स्वतंत्रता दिवस मना रही है। कोटि कोटि कंठ आज वंदे मातरम, जय हिंद और भारत माता की जय का उद्गार कर रहे हैं। देशभक्ति, राष्ट्र प्रेम और उत्साह के रंग में रंगे हुए भारतीय और भारतवंशी देश विदेश में विविध कार्यक्रमों का आयोजन कर रहे हैं। साथियों, आप जानते ही हैं कि मुख्य आयोजन यहां लाल किले पर हो रहा है, जिसमें हमारे माननीय प्रधानमंत्री स्वयं राष्ट्र का नेतृत्व करते हुए प्राचीर पर बने ध्वज स्थल पर राष्ट्रीय ध्वज फहराएंगे और राष्ट्र को संबोधित भी करेंगे। आकाशवाणी की तकनीकी और कार्यक्रम टीम यहां से आंखों देखा हाल आप तक पहुंचाने के लिए तैयार है। आज तो किले की छटा ही निराली है, जैसे ये स्वयं पर इठलाता हो कि यहीं से हर वर्ष हमारे इस राष्ट्रीय पर्व ने देश दुनिया को एक नई राह दिखलाई है। चहुं ओर भक्ति भाव और उत्साह का भाव परिलक्षित हो रहा है। किले की विशाल और शक्तिशाली दीवारें रंग बिरंगे पुष्पों और पताकाओं से सजाई गई हैं। स्वतंत्रता दिवस की बधाई वाले होर्डिंग्स हैं, बैनर हैं, पोस्टर्स लगे हैं तो सुरुचिपूर्ण पुष्प सज्जा भी की गई है। इस बार के आयोजन की थीम है वंदे मातरम। हमारे इस राष्ट्रीय गीत के 150 गौरवशाली वर्षों

0: को याद करते हुए आज वंदे मातरम की गूंज यहां बार बार सुनाई दे रही है। ज्ञान पथ के सामने किले की विशाल दीवार पर ताजे पुष्पों से वंदे मातरम लिखा गया है। प्रेरणादायी संवर्धन ये है कि पहली बार लाल किले की प्राचीर से राष्ट्रगान के साथ राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम भी गूंजेगा। किले की बाहरी दीवार पर लगे कटआउट्स परमाणु और अंतरिक्ष तकनीक में भारत की प्रगति को दर्शा रहे हैं। नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमि, मातृभूमि का वंदन करते हुए, नमन करते हुए, मातृभूमि के प्रति प्रेम प्रदर्शित करते हुए यहां पर अनेक प्रतीक चिन्ह हैं। हम आपको बताएं कि लाल किले की भव्य प्राचीर पर दोनों ओर दो बड़े बुर्ज हैं, इन्हीं से सटा हुआ हमारा कमेंट्री बूथ है। प्राचीर के ठीक बीच में कुछ ऊंचाई पर ध्वज स्थल है जो हमारे दाहिनी ओर है और इस समय ताजे फूलों से सजा हुआ है। ध्वज दंड को भी फूलों की लड़ियों से सजाया गया है। खुशनुमा मौसम में सुबह की मध्यम बहती मंद बयार के साथ ताजे फूलों की गंध हमारी उत्सव धर्मिता में शामिल हो रही है। आज वैसे भी तीज है, आप सभी को तीज पर्व की भी शुभकामनाएं। और तीज को माना जाता है बहुत ही शुभ अवसर क्योंकि त्योहारों की शुरुआत इससे होती है। ऐसे में तीज के अवसर पर जब हमारा राष्ट्रीय पर्व है तो हमारे राष्ट्रीय पर्व ने अनेक पर्वों की गरिमा साथ ही बढ़ा दी है। ध्वज स्थल के दोनों ओर दर्शक दीर्घा बनाई गई है। लाल रंग की कुर्सियां करीने से सजी हुई हैं और उन पर आमंत्रित अतिथि गणों के नाम भी लिखे हैं। दाहिनी ओर की दर्शक दीर्घा में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीश हैं तथा पद्म पुरस्कार विजेता अन्य अतिथि हैं। और बाईं ओर की जो दर्शक दीर्घा है उसमें केंद्रीय मंत्रियों की उपस्थिति है। हम आपको बताएं कि यहां से हम देख सकते हैं उपस्थिति है श्रीमती निर्मला सीतारमण जी की, श्री पीयूष गोयल हैं, श्री नितिन नवीन यहाँ से हम देख सकते हैं, श्री हरदीप सिंह जी की उपस्थिति है, श्री मनसुख मांडविया जी हैं, श्री गजेंद्र सिंह शेखावत जी हैं, डॉक्टर जयशंकर उपस्थित हैं, श्री गिरिराज सिंह जी हैं, श्री नितिन गडकरी जी हैं, श्री अश्वनवी वैष्णव जी हैं, दिल्ली के माननीय उपराज्यपाल सरदार तरनजीत सिंह संधू जी की भी गरिमा में उपस्थिति यहाँ पर है। वर्दी पहने सैन्य अधिकारियों की उपस्थिति है तो आकर्षक परिधानों में उल्लासित बच्चे भी हमें दिखाई पढ़ रहे हैं यहां से।
1: माननीय प्रधानमंत्री महोदय कुछ ही देर में यहाँ लाल किले के प्राचीर पर पहुंचेंगे और जब वे प्राचीर के ऊपर बने ध्वज स्थल पर पहुंचेंगे तो सबसे पहले राष्ट्रगीत, पहली बार स्वतंत्र भारत के इतिहास में यह पहला अवसर होगा जब स्वतंत्रता दिवस के समारोह में राष्ट्रीय गीत की धुन और स्वर यहाँ पर गूंजेगा। राष्ट्रीय ध्वज फहराया जाएगा और उसके बाद राष्ट्रगान होगा, राष्ट्रीय सलामी दी जाएगी। यहाँ आने से पहले माननीय प्रधानमंत्री महोदय राजघाट पहुंचकर वहां राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को अपनी श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे और उसके बाद यहाँ के लिए वो प्रस्थान करेंगे। लाल किले के ये प्राचीर और ये पूरा परिदृश्य अद्भुत है। इस समय ईश्वर की कृपा भी है क्योंकि मौसम बहुत खुशनुमा है, आसमान घने बादलों से ढका हुआ है, इसलिए धूप की रश्मियाँ जो हैं वो धरती तक नहीं पहुँच पा रही हैं और लोग बहुत ही सुखद वातावरण में यहाँ बैठे हुए हैं। लगभग 27 डिग्री का यहाँ तापमान हम समझ पा रहे हैं, देख पा रहे हैं, लगभग इतना ही यहाँ पर तापमान है। और पक्षियों के कलरों के साथ हल्की हल्की बयार के साथ जो पताकाएं लगी हैं वो लहरा रही हैं हवा के साथ, हमारे राष्ट्रीय ध्वज जहां जहां तक हमारी दृष्टि जाती है वहां तक लगे हुए हैं, वो भी लहराते हुए एक नई ऊर्जा का संचार हम सबके भीतर कर रहे हैं। वैसे भोर तो हर सुबह हर रोज होती है लेकिन आज की भोर सामान्य दिनों से बिल्कुल हटकर है क्योंकि भारतवासियों के लिए बहुत विशेष है। हो भी क्यों ना, आज ही के दिन तो 15 अगस्त को सन 1947 में दुनिया के मानचित्र पर स्वतंत्र देश के रूप में भारत का उदय हुआ था। वही भारत जिसके बारे में विष्णु पुराण में कहा गया है, उत्तरम यत् समुदस्य हिमाद्रेश्चैव दक्षिणम वर्षम तद् भारतम नाम भारती यत्र संतति। अर्थात समुद्र के उत्तर में और हिमालय के दक्षिण में जो भूभाग है उसे भारत कहते हैं और हम स्वयं को भारतीय कहते हैं। मंच की सज्जा को आपने जाना, अनुभव किया होगा, अपने अपने कल्पना में उसे सजीव भी किया होगा आपने। मंच के ठीक सामने जो ज्ञानपथ का क्षेत्र है वहाँ सबसे पहले हमारी दृष्टि जहां जाती है वो है राष्ट्रीय सलामी गारद जो वहां पर उपस्थित है ठीक सामने। इसमें सेना के तीनों अंगों और दिल्ली पुलिस की टुकड़ियां शामिल हैं। प्रत्येक टुकड़ी में 32 सैनिक हैं और एक अधिकारी उसमें शामिल है। राष्ट्रीय सलामी गारद का नेतृत्व कर रहे हैं मेजर लोकेंद्र सिंह, सेना की अपनी यूनिफॉर्म में, वर्दी में सजे धजे, गर्व से सीना तरा हुआ। सेना की टुकड़ी की कमान मेजर विकास यादव के हाथों में है जबकि लेफ्टिनेंट कमांडर अभिलाष नौसेना की टुकड़ी का नेतृत्व कर रहे हैं अपने सफेद यूनिफॉर्म में और पीकैप के साथ। वायुसेना की टुकड़ी का नेतृत्व कर रहे हैं स्क्वाड्रन लीडर उमेश जी। और एडिशनल डीसीपी विकास मीणा दिल्ली की टुकड़ी, दिल्ली पुलिस की टुकड़ी का नेतृत्व कर रहे हैं। और हमारे ठीक सामने उस राष्ट्रीय सलामी गारद के दाहिनी हिस्से में वहां पर बैंड दल उपस्थित

0: थे जो राष्ट्रीय सलामी के समय राष्ट्रीय धुन बजाएगा और उसके पहले राष्ट्रीय गीत यहाँ पर बजाएगा। लेकिन उनके पीछे भी एक ऊर्जा का अनुभव अद्भुत दृश्य हम देख पा रहे हैं श्रोताओं, क्योंकि ये इस बार का आयोजन कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को बहुत ज्यादा अच्छे ढंग से प्रदर्शित कर रहा है, जिसको हम यहाँ के कण कण में, यहाँ के पूरे वायुमंडल में हम उसको महसूस कर सकते हैं, यहाँ के वातावरण में महसूस कर सकते हैं। क्योंकि जहाँ वंदे मातरम की गूंज यहाँ पर हम सबको उत्कंठा से प्रतीक्षा उस क्षण की जब पहली बार यहाँ से उसे बजाया जाएगा और गाया जाएगा, उसके साथ साथ बड़ी संख्या में युवा शक्ति यहाँ पर एक नई ऊर्जा का प्रतिबिंब लेकर उपस्थित है। और इसमें सामने जो दृश्य हम देख पा रहे हैं ज्ञानपथ पर, वहाँ लगभग 2500 की संख्या ऐसे विद्यार्थियों की है जो एनसीसी से संबंधित रखते हैं, एनसीसी के तीनों विंग से संबंधित रखते हैं, और उसके साथ साथ हमारे माय भारत वॉलंटियर स्वयंसेवक भी इसमें शामिल हैं। और इन्होंने जो अधिसंख्य हैं, बहुसंख्यक हैं, उसमें उन्होंने सफ़ेद रंग की वेशभूषा पहन रखी है, ज़्यादातर जिनकी संख्या है, लेकिन बीच में कुछ ऐसा रंग है जो हमारे केसरिया रंग यानी हमारे बलिदान का भी प्रतीक है, और उसी रंग के साथ केसरिया रंगों की वेशभूषा के साथ उन्होंने यहाँ रचा है वंदे मातरम। क्योंकि वंदे मातरम इस बार, इस पहली बार इस स्वतंत्रता दिवस समारोह में गूंजेगा।
1: जी, उत्तर से लेके दक्षिणी लकीर तक, पूर्वा से लेके पश्चिमी समीर तक, सागरों से लेके नदियों के तीर तक, पर्वतों से लेके घाटियों के तीर तक, आत्मा से लेके नश्वर शरीर तक, कन्याकुमारी से लेके कश्मीर तक, चाहे जिंदा रहें चाहे मर जाएं, हम गाएंगे गाएंगे हम वंदे मातरम। देश की संचयी शक्ति जो देश का इतिहास अपने आप में समेटे है, एक अभिवादन भी है, सम्मान भी है, हमारे सांस्कृतिक कार्यक्रमों की पहचान भी है। ये दो शब्द जिन्होंने स्वाधीनता संग्राम में देशवासियों को एकजुट किया और आज़ाद भारत को भी सदा आगे बढ़ने की प्रेरणा दी है। हम आपको बताएं साथियों, वंदे मातरम जो यहां से हम देख रहे हैं, एनसीसी कैडेट्स ने जो मानव संरचना में लिखा है, बेहद प्रेरक, बेहद खूबसूरत यहां से जान पड़ रहा है। और साथ ही जो अन्य यहां पर बच्चे हैं वो उत्सुकता से एक टक इन बच्चों को निहार रहे हैं। आज के आयोजन के लिए राजधानी में परिवहन व्यवस्था में बड़े बदलाव किए गए हैं। वैकल्पिक मार्गों के बारे में काफी पहले से ही जानकारी साझा की गई है। कई दिन पहले से ही सभी प्रमुख चौक चौराहों पर, महत्वपूर्ण भवनों पर रंग बिरंगी प्रकाश सज्जा की गई है। साथ ही जन समुदाय की सुविधा का भी ध्यान रखा गया है। राजधानी को गति देने वाली मेट्रो भी हमारे इस राष्ट्रीय पर्व का आज है अपनी सेवा देते हुए आज सुबह 4 बजे से सरपट दौड़ रही है। यहां आयोजन स्थल के आसपास क्लॉक रूम, व्हीलचेयर और पेयजल की व्यवस्था की गई है। लगभग 23,000 आगंतुकों को इस आयोजन का हिस्सा बनने के लिए आमंत्रित किया गया है। अपनी सजीली सैन्य वर्दी पहने अधिकारी हैं, आकर्षक परिधानों में यहां पर सामान्य जन हैं। एनसीसी कैडेट्स हैं, माय भारत स्वयं सेवकों ने जो संरचना बनाई है, हमने आपको बताया कि बेहद यहां पर बनाई है, हमने आपको बताया कि बेहद यहां पर आकर्षक है। सीढ़ीदार व्यवस्था में इनके दोनों ओर दर्शक दीर्घा बनाई गई है। एक ओर विद्यालय के छात्र छात्राएं अपने शिक्षकों के साथ बैठे हैं, अन्य आगंतुक हैं, तो दूसरी ओर भी सीढ़ीदार व्यवस्था में कुर्सियां करीने से लगाई गई हैं। हल्के जामुनी रंग की दरी पर, हरे रंग की कुर्सियों पर आगंतुक आज के अवसर के लिए विशेष तौर से हमारे तिरंगे के जो तीन प्रधान रंग है उनके परिधान पहने हुए हैं। आज का ये आयोजन अलग अलग क्षेत्रों में हमारे युवाओं की उपलब्धियों को भी उजागर कर रहा है। इंटरनेशनल फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स ओलंपियाड में मेडल विजेता युवाओं को भी आयोजन का हिस्सा बनने के लिए आमंत्रित किया गया है। नेशनल इनोवेशन कार्यक्रम से जुड़े युवा हैं, पीएम इंटर्नशिप योजना के छात्र हैं, विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत चयनित बेहतरीन स्टार्टअप के तहत चुने गए श्रेष्ठ प्रतिभागी हैं, माय भारत के स्वयंसेवक हैं, दिल्ली के विभिन्न विद्यालयों में हुई परीक्षाओं और प्रतियोगिताओं के विजेता विद्यार्थी भी इस समय यहां बैठे हैं। इस अवसर पर देश के अलग अलग राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के दिल्ली में रहने वाले 1500 से ज्यादा ऐसे लोगों को भी आमंत्रित किया गया है जो इस समय अपनी पारंपरिक वेशभूषा में यहाँ बैठे हैं और लघु भारत का दृश्य हमारे सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। और एक खास बात यह है कि हमारी जल शक्ति का सम्मान रखते हुए इस बार जो प्रांगण घेरे हैं, एनक्लोजर्स हैं, इनके नाम प्रमुख झीलों के नाम पर रखे गए हैं। भीमताल, चंद्रताल, दूध सागर, रोबिंद्र सरोवर, रुद्र सागर चिलिका हाफलोंग नाम रखे गए हैं। हमें यहाँ दिखाई दे रहा है वो भारत जो समृद्ध है, जो संपन्न है, साथ ही जो संकल्पित है आगे बढ़ने के लिए, और साथ ही विकसित भारत 2047 का लक्ष्य लिए, जिसमें हर उम्र का देशवासी अपनी ओर से योगदान करने के लिए तैयार है। हिमाद्री तुंग श्रृंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती स्वयं प्रभा समुज्ज्वला स्वतंत्रता पुकारती। ये स्वतंत्रता जिसने पराधीन भारत में जब देशवासियों को पुकारा तो अपनी जान की परवाह न करते हुए देशवासी जुट गए कि भारत माँ को हमें परतंत्रता की बेड़ियों से आज़ाद करवाना है। और अब यही स्वतंत्रता हमें ये प्रेरणा देती है कि लगातार आगे बढ़ते हुए हम जहाँ हैं, जो कर सकते हैं, देश प्रेम मन में रखे हुए, संजोए हुए, देश को विकसित करने की ओर लगातार बढ़े, अपना योगदान करें।
0: निश्चित रूप से, और इसीलिए भारत के भविष्य को लेकर जो संकल्पना है, विजन है, विशेष तौर पर माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश जिस गति से आगे बढ़ते हुए वर्ष 2047 तक यानी 100 वर्षों के स्वतंत्र भारत की यात्रा को पूरा करते हुए एक विकसित भारत के रूप में अपने आप को स्थापित कर सके, उसका भी यहाँ दृश्य हमें साफ नजर आता है। यहाँ लाहौरी गेट पर प्रधानमंत्री महोदय का आगमन कुछ ही पलों में होने जा रहा है। वहाँ पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी, रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ और साथ ही रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह वहाँ पर उपस्थित हैं। साथ ही दिल्ली क्षेत्र के जनरल ऑफिसर कमांडिंग भी वहाँ पर उपस्थित हैं, जो वहाँ प्रधानमंत्री महोदय की अगवानी करेंगे और वहाँ माननीय प्रधानमंत्री महोदय को सलामी दी जाएगी। और उसके बाद सलामी गारद का वो निरीक्षण करने के बाद लाल किले के प्राचीर पर पहुँचेंगे और आगे का जो कार्यक्रम है वो यहाँ आरम्भ होगा। इस रूप में बिगुल वादन के साथ इस बात का संकेत मिल चुका है कि माननीय प्रधानमंत्री महोदय के वाहनों का काफिला यहां प्रवेश कर रहा है। आइए आपको आगे के विवरण के लिए सीधे लिए चलते हैं देवेंद्र के पास, जो लाहौरी गेट पर उपस्थित हैं।
2: धन्यवाद जैनेन्द्र। मैं देवेंद्र त्रिपाठी आप सभी श्रोताओं का लाल किले के ऐतिहासिक प्रांगण में लाहौरी गेट से स्वागत करता हूँ। इस द्वार के समक्ष होने वाली सभी गतिविधियों की जानकारी आपसे साझा करूंगा, जहां माननीय प्रधानमंत्री को तीनों सेनाओं और दिल्ली पुलिस की संयुक्त सलामी दी जाएगी। प्रधानमंत्री सम्मान गारद का निरीक्षण करेंगे, उसके बाद ऐतिहासिक 13वीं बार ध्वज फहराएंगे और देश और दुनिया को संबोधित करेंगे। आजादी का ये दिन 15 अगस्त भारत के इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में अंकित, ना जाने कितने रक्तों से रंजित। ये स्वाधीनता का ही उत्सव नहीं, ये अवसर है माँ भारती के वीर बलिदानियों के प्रति श्रद्धा सुमन अर्पित करने का भी, उन्हें ये विश्वास दिलाने का कि आपके बलिदानों का ऋण हम माँ भारती की सेवा करके चुकाएंगे। ये वीर शहीदों के प्रति कृतज्ञता प्रकट करने का अवसर है, जिनके त्याग और बलिदान से ये प्रतिफल आज हमें मिला। श्रोताओं, माननीय प्रधानमंत्री के वाहनों का काफिला प्रांगण में प्रवेश कर रहा है और यहाँ का पूरा परिदृश्य नई ऊर्जा से ओतप्रोत। माँ भारती का वंदन और वीर बलिदानियों का अभिनंदन करने के इस पावन आयोजन में उत्साह, उल्लास और श्रद्धा का भाव। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का आगमन लाहौरी गेट के समक्ष सलामी मंच पर हो रहा है, जहां उनकी अगवानी के लिए उपस्थित हैं माननीय रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह, माननीय रक्षा मंत्री राज्य मंत्री श्री संजय सेठ, रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह और जीओसी दिल्ली एरिया लेफ्टिनेंट जनरल राजेश सेठी। श्रोताओं, सलामी मंच के सामने तीनों सेनाएं और दिल्ली पुलिस तथा नौसेना बैंड वादकों का दस्ता, विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र के लोकप्रिय नेता माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी को सलामी देने के लिए सभी मुस्तैद। दस्तों के पृष्ठभाग में लगा है तीन रंगों में बैनर, जिस पर झलक है विकसित भारत और विविध भारत की। अंतर सेना सम्मान गारद का जिम्मा इस बार थल सेना को दिया गया है, कमान है लेफ्टिनेंट कर्नल अर्जुन सिंह के हाथों, और सलामी मंच के दोनों ओर खड़े हैं कैप्टन विक्की मेहता और प्रथम नेगी। प्रधानमंत्री के वाहनों का काफिला पहुंचा है सलामी मंच के पास और माननीय प्रधानमंत्री अपने वाहन से उतरते हुए लाल रंग का साफा और ब्राउन यानी भूरे रंग की सदरी, सफेद रंग का कुर्ता पैजामा माननीय प्रधानमंत्री श्री राजनाथ सिंह, श्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री, रक्षा राज्य मंत्री और रक्षा सचिव का अभिवादन स्वीकार करते हुए और रक्षा सचिव जीओसी दिल्ली एरिया राजेश सेठी से परिचय कराते हुए अब माननीय प्रधानमंत्री पहुंचे हैं सलामी मंच की ओर, जहां उन्हें अंतर सेना पुलिस सम्मान गारद सलामी देगी, कमान लेफ्टिनेंट कर्नल अर्जुन सिंह के हाथों में।
3: अंतर सेना पुलिस सम्मान गारद।

संयुक्त कमांडर के नेतृत्व में टुकड़ों की सलामी। भारतीय सैन्य बलों के पराक्रम और शौर्य का प्रदर्शन लाल किले की इस प्रांगण में। अब संयुक्त कमांडर सलामी मंच की ओर आगे बढ़ते हुए प्रधानमंत्री जी से सम्मानगर टुकड़ियों का निरीक्षण करने के लिए आग्रहपूर्ण अनुमति लेंगे। सधे हुए कदमों से, हाथों में तलवार लिए और जोश भारतीय सैन्य बलों का

जो झलक रहा है। प्रधानमंत्री जी ने सहमति दी और सलामी मंच से नीचे उतरते हुए मंच के बाईं ओर से बिछा है रेड कार्पेट, जो लोकप्रिय प्रधानमंत्री के स्वागत में अपनी लालिमा से इस स्थल को और गौरव प्रदान कर रहा है। प्रधानमंत्री के दाईं ओर दो कदम पीछे हाथों में तलवार और भारतीय सैन्य बलों का शौर्य लिए चल रहे हैं लेफ्टिनेंट कर्नल अर्जुन सिंह। प्रधानमंत्री पहुंच रहे हैं नौसेना बैंड दस्ते के पास। बैंड मास्टर डी सेल्वम के नेतृत्व में नौसेना का ये बैंड आनंद लोके की धुन बजाएगा, जिसे तैयार किया बैंड मास्टर जे रोड्रिक्स ने, और बच्चों की आवाजें आप सुन पा रहे हैं। यहाँ मौजूद उपस्थित बच्चे माननीय प्रधानमंत्री का अपनी आवाज के साथ स्वागत करते हुए प्रधानमंत्री के अब का आगमन हुआ है थल सेना की टुकड़ी के पास। 25 जवान नेतृत्व

0: कमांडर अरुण कलमाड़ी के हाथों में तीनों सेनाएं देशवासियों को विश्वास दिलाती हुई, हम है भारत के प्रहरी, हम है मां भारती के सेवक और रक्षक। और अब प्रधानमंत्री वायुसेना के दस्ते के समक्ष 24 जवानों की टुकड़ी भारतीय वायुसेना का प्रतिनिधित्व 80वें स्वतंत्रता दिवस पर करती हुई कमान स्क्वाडन लीडर विपिन कुमार के हाथों में। दिल्ली पुलिस का नेतृत्व एडिशनल डीसीपी विनीत कुमार कर रहे हैं। सभी ने अपने भावों से माननीय प्रधानमंत्री को विश्वास दिलाया मां भारती के रक्षक सदैव तत्पर। और अब लेफ्टिनेंट कर्नल अर्जुन सिंह परेड कमांडर माननीय प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद प्रकट करते हुए, और अब लाहौरी गेट से माननीय प्रधानमंत्री प्रस्थान कर रहे हैं समारोह स्थल लाल किले की प्राचीर की ओर, जो 1947 से हर वर्ष केंद्र बना है भारत के स्वाधीनता उत्सव का। प्रधानमंत्री के साथ हैं जीओसी दिल्ली एरिया लेफ्टिनेंट जनरल राजेश सेठी। लाहौरी गेट, लाल किले की प्राचीर और दोनों गुंबद साक्षी हैं भारत के स्वाधीन होने, विकासशील से विकसित बनने के अमृतकाल के। स्वाधीन 79 वर्षों में भारत ने अपने विकास की लंबी यात्रा तय की है। श्रोताओं, 2026 का भारत विश्व पटल पर भी अपनी छाप छोड़ रहा है। भारत के विचार दुनिया के लिए मायने रखते हैं, जो समाधानों के लिए आज भारत की ओर देखते हैं, क्योंकि भारत की नीतियों के मूल में है वसुधैव कुटुंबकम के आदर्श और भारत का उत्कर्ष। विकास भी और विरासत भी भारत की विचारधारा, और भारत हमारा प्यारा भारत बढ़ रहा आगे। एक तरफ अपने हृदय में संजो रहा अपने पूर्वजों के बलिदानों को, तो दूसरी ओर माथे पर चंदन की तरह बिठा रहा युवाओं को, जो भविष्य के भारत की गाथा लिखने को तत्पर। एक ओर इंडियन नॉलेज सिस्टम का सम्मान, दूसरी ओर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उद्घोष भी। 80वां स्वाधीनता दिवस अवसर है अपने पूर्वजों को प्रणाम करने का, उनके प्रति श्रद्धावनत होने का, जिन्होंने तन मन और धन से मां भारती की सेवा की। 21वीं सदी का सबल भारत वीर बलिदानियों का ऋणी है, जिनके समर्पण और बलिदान से हमें आज का यह सौभाग्य मिला। और श्रोताओं, मुख्य समारोह स्थल की ओर चलते हैं, लाल किले की प्राचीर पर, जहां 150 वर्ष वंदे मातरम के पूर्ण होने के अवसर पर इस बार पहली बार लाल किले की प्राचीर से वंदे मातरम की धुन आप सुनेंगे। उसके बाद ध्वज फहराया जाएगा और फिर राष्ट्रगान होगा और प्रधानमंत्री देश को संबोधित करेंगे। और विवरण के लिए हम लाल किले की प्राचीर कमेंट्री बूथ पर लिए चलते हैं अपने साथी कमेंटेटर नीलम और जैनेन्द्र के पास।
1: धन्यवाद देवेंद्र। साथियों, कुछ ही देर में ये पावन और ऐतिहासिक क्षण आएगा जब माननीय प्रधानमंत्री जी यहाँ पर ध्वज फहराने के लिए लाल किले की प्राचीर पर बने ध्वज स्थल की ओर आएंगे। जैसे ही प्रधानमंत्री जी ध्वज स्थल पर पहुंचेंगे, तब भारतीय सेना का बैंड वंदे मातरम की धुन बजाएगा। अपने राष्ट्रगीत के सम्मान में हम सावधान मुद्रा में खड़े होंगे। प्रधानमंत्री जी भारत माँ की अस्मिता के प्रतीक राष्ट्रीय ध्वज को जब फहराएंगे, तब राष्ट्रगान होगा, साथ ही तिरंगे को सलामी भी दी जाएगी। आर्मी सिग्नल कोर से कैप्टन रितिका खरेटा माननीय प्रधानमंत्री जी का सहयोग करेंगी ध्वज फहराने में। 21 तोपों की सलामी दी जाएगी और साथ ही भारतीय वायुसेना के MI-17 हेलीकॉप्टर आकाश से झंडा वंदन करते हुए पुष्प वर्षा करेंगे। ध्वज फॉर्मेशन का नेतृत्व करते हुए कमान अधिकारी विंग कमांडर ऋषिकांत के साथ को पायलट स्क्वाड्रन लीडर मोहित सिंह राष्ट्रीय ध्वज वहन किए हुए आएंगे। दूसरा हेलीकॉप्टर वंदे मातरम का ध्वज लिए हुए आगे बढ़ेगा और स्क्वाड्रन लीडर पुनीत यादव पुष्प वर्षा करेंगे, इस तरह से अपनी ओर से झंडा वंदन भी करेंगे और साथ ही यहां बैठे उत्साहित देशवासियों पर भी पंखुड़ियां जब गिरेंगी तो वो दृश्य देखने लायक होता है। बच्चे बेहद उत्साहित हो जाते हैं इसे देखते हुए। और आप जानते ही हैं कि अब राष्ट्रीय गीत और राष्ट्रगान दोनों के सम्मान में हम सावधान मुद्रा में खड़े होते हैं। इस तरह से अपने राष्ट्रीय प्रतीक चिन्हों को, राष्ट्र को प्रेरणा देने वाले इन गीतों को हम सम्मान देते हैं। मैं हिंदू हूँ, मुस्लिम हूँ, सिख हूँ, मैं ईसाई हूँ, भगत सिंह की फांसी, मैं बापू की अंगड़ाई हूँ, हूँ जलियांवाला बाग भी मैं, पानीपत का पानी हूँ, ऊधम की पिस्तौल भी मैं, झांसी वाली रानी हूँ, रंग दे बसंती चोला, मैं गुरु गोविंद सिंह का बलिदान हूँ, चेतक की हुंकार में ही मैं राणा प्रताप की शान हूँ, मैं छुपा बोस किनारों में, मैं जंग लगी तलवारों में, मैं इनकलाब की बोली हूँ, आजाद की आखिरी गोली हूँ, मैं भारत का हर भाव चंगा हूँ, मैं सबका पूज्य तिरंगा हूँ। इसी तिरंगे के सम्मान में पूरा आयोजन यहाँ का हो रहा है और यहाँ पर जो सलामी गारद है वो भी जब राष्ट्रीय ध्वज फहराया जाएगा उस समय राष्ट्रीय सलामी देगी
0: निश्चित रूप से, और सभी को उस पल की प्रतीक्षा है। श्रोताओं, लाल किले के प्राचीर से जब हमारी दृष्टि सामने इस पूरे क्षेत्र की तरफ जाती है, चांदनी चौक की तरफ जाती है, तो अनायास ही बहुत सारे ऐसे इतिहास के पन्ने अपने आप सजीव होने लगते हैं जो हमारे
2: पूरे राष्ट्र के लिए, देश के लिए संघर्ष का एक बहुत कठिन दौर रहा है जिससे देश गुजरा है। धर्मांधता और बलपूर्वक धर्मांतरण के वो विभत्स और क्रूर घटनाएं दृश्य आंखों के सामने सजीव होने लगते हैं। आपको मालूम ही है लाल किले के प्राचीर के सामने चांदनी चौक में ही स्थित है गुरुद्वारा सीसगंज। सन 1675 में 24 नवंबर की वो तारीख थी जब यहीं हमारे नौवें गुरु श्री गुरु तेग बहादुर का सिर धड़ से अलग कर दिया गया था। गुरु साहब ने बलिदान से पहले, गुरु साहब के बलिदान से पहले उनके शिष्य भाई मतीदास, भाई दयाला और भाई सतीदास के ऊपर भी बर्बरता भला कौन भूल सकता है। देश के स्वतंत्रता के आंदोलन में भी ये दिल्ली स्थित चांदनी चौक एक महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक केंद्र रहा है। 1857 की क्रांति का दमन करने के लिए ब्रिटिश सेना ने यहाँ की मुख्य सड़कों और कोतवाली के आसपास के क्षेत्रों में अपना दमन चक्र चलाया। क्रांतिकारियों को खुलेआम फांसी दी गई। 1857 में आपको याद होगा ब्रिटिश सत्ता को चुनौती देने वाले जिन्हें दिल्ली का आयरन वॉल कहा जाता था, बल्लभगढ़ के राजा नाहर सिंह को 9 जनवरी 1858 में 32 साल की मात्र उनकी उम्र थी तब उनको इसी चांदनी चौक में फांसी पर लटकाया गया था खुले में। 23 दिसंबर 1912 को जब ब्रिटिश वायसराय लॉर्ड हार्डिंग दिल्ली को राजधानी बनाने के उपलक्ष्य में इसी चांदनी चौक से होकर शाही जुलूस निकाल रहा था तब यहाँ घंटाघर के पास क्रांतिकारियों ने उस पर बम फेंका और उस हमले की योजना राजबिहारी बोस ने बनाई थी। उसमें मास्टर रमीर चंद, अवध बिहारी, बाल मुकुंद जी और बसंत कुमार विश्वास जैसे क्रांतिकारी शामिल थे। बाद में बाल मुकुंद और बसंत कुमार विश्वास को फांसी दे दी गई थी जबकि राजबिहारी बोस वेश बदलकर देश से बाहर निकल गए और जापान पहुंचकर आज़ाद हिंद फौज की स्थापना की और उसके आगे का इतिहास आप सबको विदित है। सन 1915 से 1934 के बीच महात्मा गांधी ने चांदनी चौक में कई ऐतिहासिक बैठकें की थी। यहाँ की मारवाड़ी पब्लिक लाइब्रेरी हो, गांधी मैदान हो, ये सब क्रांतिकारियों और देशभक्तों की बैठकों का बहुत महत्वपूर्ण केंद्र हुआ करता था। अंग्रेजों के दमनकारी कानून रॉलट एक्ट के को लेकर जब देश भर में विरोध प्रदर्शन हो रहे थे तब 1919 में ही स्वामी श्रद्धानंद जी ने चांदनी चौक के घंटाघर पर पुलिस की संगीनों के सामने खड़े होकर निडरता से रॉलट एक्ट का विरोध किया था। कोतवाली के सामने का जो क्षेत्र है इसी चांदनी चौक की एक गली में क्रांतिवीर स्वतंत्रता संग्राम के पर्चे और बुलेटिन चुपके चुपके छापा करते थे और पूरे शहर में बांटकर स्वतंत्रता की अलख जगाया करते थे। यहाँ चाहे वो कटरा नील हो, खारी बावली हो, दरीबा कला हो, इन सभी क्षेत्रों के व्यापारी और आम नागरिक भी इस लड़ाई में शामिल थे। और इस समय जबकि माननीय प्रधानमंत्री महोदय के आगमन के साथ जब शुरू होगा यहाँ का मुख्य आयोजन और वंदे मातरम के स्वर गूंजेंगे उसकी उत्कंठा में और उल्लास में बहुत बड़ी संख्या में जो यहाँ उपस्थित जनसमुदाय है विशेष रूप से बच्चे अपने अपने स्थान पर खड़े होकर हाथ हिला रहे हैं। प्राचीर की तरफ देख कर उनके उत्साह और उमंग की अभिव्यक्ति उनके चेहरे पर साफ नजर आती है और जो पारंपरिक वेशभूषा में यहाँ बड़ी संख्या में लोग उपस्थित हैं उनके स्वर, उनकी पहचान और उनकी आभा जो व्यक्तित्व की है वो भी बहुत आकर्षित कर रही है।
1: बिल्कुल जानेंद्र जी, और मैं देख पा रही हूँ कि बच्चे जो हैं वो बार बार टुकुर टुकुर निहार रहे हैं यहाँ ध्वज स्थल की ओर, क्योंकि वो जानते हैं कि कुछ ही क्षणों में यहाँ पर पूरे विश्व में सर्वाधिक लोकप्रिय और सम्मानित प्रधानमंत्री जी का आगमन होने जा रहा है। साथियों, आज का दिन हम अपने उन स्वतंत्रता सेनानियों के प्रति सम्मान प्रदर्शित करने के लिए, उनकी स्मृति को नमन करने के लिए भी विशेष तौर पर मनाते हैं। विशेष तौर पर आज का दिन हमें ये अवसर देता है क्योंकि हम जानते हैं तुम न समझो देश को स्वाधीनता यूं ही मिली है, हर कली इस बाग की कुछ खून पीकर ही खिली है। स्वतंत्रता संग्राम के चिर परिचित सेनानियों के साथ ही गुमनाम नायकों के प्रति आज कृतज्ञता का भाव है, तो आज़ाद भारत के उन वीरों का गुणगान भी है जिन्होंने विभिन्न क्षेत्रों में देश का नाम रोशन किया है। मंगल पांडे की पहली चिंगारी से लेकर रानी लक्ष्मीबाई का दम्य साहस, सब कुछ हमें प्रेरित करता है। और हम देख रहे हैं माननीय प्रधानमंत्री जी का आगमन हो चुका है। इस समय ध्वज

और अब माननीय प्रधानमंत्री महोदय राष्ट्रीय ध्वज फहराते हैं।

और इस समय आकाश आकाश में जो स्वर हमें सुनाई दे रहे हैं, ध्वनि सुनाई दे रही है, वो उन हेलीकॉप्टर्स की है जो पुष्प वर्षा करते हुए लाल किले के प्राचीर के ऊपर से गुजर रहे हैं और लोगों की निगाह उसी आसमान की तरफ है। एक हेलीकॉप्टर ये मी 17 हेलीकॉप्टर्स हैं भारतीय वायुसेना के।

0: जिसमें एक हेलीकॉप्टर में राष्ट्रीय ध्वज उस समय दिखाई दे रहा है हवा के साथ अटखेलिया करता हुआ, और दूसरे हेलीकॉप्टर में नीचे लिखा है वंदे मातरम और पुष्प वर्षा करते हुए ये सभी यहाँ से हमारी बाई तरफ से दाहिनी तरफ आसमान में आगे बढ़ते हुए बच्चों के बीच खासतौर पर उल्लास और फूलों की पंखुड़ियां यहाँ चारों तरफ बिखरी दिखाई देती है। खासतौर पर जो सफेद वेशभूषा में बच्चे बैठे हुए हैं वहाँ ठीक सामने उनके कपड़ों पर सफेद रंग पर जो पुष्प है पंखुड़ियां है पीले रंग की वो बहुत ही खूबसूरत बहुत ही आनंदित करने वाली लग रही
1: जी। और जनेंद्र किस तरह से बच्चे उल्लासित होकर प्रधानमंत्री जी को भी निहार रहे हैं और उनकी कोशिश है कि एक दो पंखुड़ी को वो कैच कर पाए और ये पंखुड़ियां इस समय हमारे बूथ की ओर भी आई, बेहद रमणीय दृश्य है ये
0: जी। और राष्ट्रीय सलामी गारद अब राष्ट्रीय ध्वज फहराए जाने के बाद और राष्ट्रीय सलामी देने के बाद यहाँ से प्रस्थान करती हुई सेना के बैंड कुमायूं रेजिमेंट सेंटर जो इसमें शामिल थे जिसने आज पहली बार ये इतिहास रचा गया स्वतंत्रता दिवस के आयोजन में पहली बार यहाँ राष्ट्रगीत वंदे मातरम की धुन बजी, लेकिन सस्वर यहाँ उपस्थित हजारों लोगों ने उस गीत को अपने मुखार बिंदु से गाया है, चाहे वो प्राचीर के ऊपर बैठे हुए हमारे सभी अतिथियों दर्शक दीर्घाओं में या ठीक सामने हमारे बाईं और दाहिनी तरफ बड़ी संख्या में जो दर्शक दीर्घा में हजारों की संख्या में देश भर से पधारे हमारे दर्शक हैं, विशेष मेहमान हैं, दिल्ली वासी हैं, अलग अलग प्रदेशों के और केंद्र शासित प्रदेशों के वासी हैं, उन सबने अपने वेशभूषा में जिसमें बहुत सारे लोग हैं पारंपरिक वेशभूषा में खड़े होकर बड़े गर्व के साथ इस बार पहली बार राष्ट्रीय गीत गाया। इस समय परेड कमांडर मेजर लोकेंद्र सिंह शेखावत के नेतृत्व में राष्ट्रीय सलामी गारद जो है हमारी दाहिनी तरफ जो उनका स्थल है इकट्ठे होने का वहाँ आगे की तरफ लाल किले के प्राचीर से ज्ञानपथ से होते हुए यहाँ से प्रस्थान करते हुए और आतुरता से यहाँ उपस्थित हजारों की संख्या में उपस्थित जनसमुदाय देश के 145 करोड़ जनता और दुनिया भर के लोग आतुरता से इस बात की प्रतीक्षा कर रहे हैं। लाल किले की ये प्राचीर जिसने पिछले 12 वर्षों में विकास के नए नए प्रतिमानों का बीजारोपण जहां से हुआ है लाल किले के प्राचीर से और इस प्राचीर से विकसित भारत के संकल्प को जन जन तक पहुंचने और जन जन की प्रेरणा प्राप्त करने का अवसर मिला है। राष्ट्र को जब प्रधानमंत्री महोदय संबोधित करते हैं तो उसे सभी सुनते हैं, सभी प्रेरणा लेते हैं, सभी उसको अपने जीवन में उतारने की कोशिश भी करते हैं, क्योंकि आज राष्ट्र के प्रति सोच, राष्ट्र के प्रति हमारी संवेदनाएं अपनी गहनता के शिखर पर हैं, क्योंकि हमें आगे बढ़ना है, विकसित भारत बनना है। श्रोताओं,
2: मेरे प्यारे देशवासियों, आज हम सब 80वां स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं। आज हर दिलों की धड़कन वंदे मातरम के नाद से गूंज रही है। आज हर घर तिरंगा है, हर मन तिरंगा है और देश उत्साह और उमंग के साथ नए संकल्पों को लेकर के आज आगे बढ़ रहा है। आप सबको स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। देश आज उन महान सपूतों का पुण्य स्मरण करती है जिन्होंने देश की आजादी के लिए त्याग बलिदान की पराकाष्ठा की। अपने तप त्याग और बलिदान से आजादी के एकमात्र लक्ष्य को लेकर के अपनी पूरी जिंदगी खपा दी। पूज्य बापू समेत सभी स्वातंत्र सेनानियों को बलिदान की महान परंपरा जगाने वाले महान क्रांतिकारियों को आज मैं श्रद्धापूर्वक नमन करता हूं। आज जो इस समारोह में

उपस्थित हैं, उन सब के लिए आज एक ऐतिहासिक पल भी है। आजादी के बाद 15 अगस्त को लाल किले पर पहली बार वंदे मातरम गूंज रहा है। आज जब हम देश के लोग वंदे मातरम के 150 वर्ष मना रहे हैं, तो इससे बड़ा उत्तम अवसर क्या हो सकता है। मेरे प्यारे देशवासियों, पिछले दिनों देश के कुछ हिस्सों में बाढ़ का प्रकोप रहा, भूस्खलन का प्रकोप रहा, अनेक परिवार प्रभावित हुए। उनके दुख दर्द को हम भली भांति अनुभव करते हैं। पीड़ित परिवारों को मैं विश्वास दिलाता हूं कि हम और पूरा देश उनके साथ खड़े हैं। मेरे प्यारे देशवासियों, कोई भी राष्ट्र तब महान बनता है, तब अपनी सिद्धियों को प्राप्त करता है, जब अपने सपनों, अपने संकल्पों और अपने सामर्थ्य के दम पर आगे बढ़ता है। मेरे देशवासियों, अब छोटे सपनों से चलने वाला नहीं है, हमें बड़े सपने, क्योंकि बड़े सपने हमारी सोच को भी विस्तार देते हैं, हमारी सोच की क्षितिज को विस्तृत करते हैं, हमारे संकल्प दृढ़ होने चाहिए। जब संकल्प दृढ़ होता है तो कठिनाइयों से, आपदाओं के बीच से रास्ते निकालने का सामर्थ्य अपने आप उभर करके आता है। और मेरे प्यारे देशवासियों, हमारे संकल्प भी ऊंचे होने चाहिए, क्योंकि जब सपने ऊंचे होते हैं, संकल्प ऊंचे होते हैं, तो हमारे सामर्थ्य की ऊंचाई भी बढ़ती है, हमारे प्रयासों की ऊंचाई भी बढ़ती है, और तब जाकर के हम सपनों को साकार कर सकते हैं। मेरे प्यारे देशवासियों, आज भारत ने भी एक बहुत बड़ा सपना देखा है, दृढ़ संकल्प के साथ देखा है, नई ऊंचाइयों को छूने के लिए देखा है। और वो सपना है, जब आजादी के 100 साल होंगे, 2047 में हम विकसित भारत बना के रहेंगे, 140 करोड़ देशवासियों के पुरुषार्थ से इस लक्ष्य को हमें हासिल करना है। और जब दुनिया की सबसे बड़ी आबादी वाला देश विकसित होने का संकल्प लेता है, तो ये दुनिया की नजरों में भी हमारे साहस का परिचायक बन जाता है। दुनिया हमारी तरफ देखने का नजरिया बदलने के लिए मजबूर हो जाती है। प्यारे देशवासियों, और मैं ऐसे ही नहीं कह रहा हूं, पिछले 12 वर्ष में देश के कोटि कोटि नागरिकों ने, दलित हो, पीड़ित हो, वंचित हो, आदिवासी हो, गांव में रहने वाला हो, शहर में रहने वाला हो,
गरीब हो, मध्यम वर्ग का हो, युवा हो, बुजुर्ग हो, नारी हो, पुरुष हो, उत्तर हो, दक्षिण हो, पूर्व हो, पश्चिम हो, हर किसी ने पिछले 12 साल में एक संकल्प के साथ, समर्पण के साथ देश को नई ऊंचाइयों पर ले जाने में हर प्रकार से प्रयास किया है। मैं उनके इस प्रयासों का आदरपूर्वक स्वीकार करता हूं और उसी का परिणाम है कि इतने कम समय में 25 करोड़ देशवासी गरीबी को परास्त करके गरीबी से बाहर निकले हैं। इन्हीं देशवासियों का प्रयास का परिणाम है कि हम कभी फ्रेजाइल फॉल में गिरे जाते थे, 12 साल के भीतर भीतर हम एक मेजर इकोनॉमी में फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी बन गए हैं। साथियों, देश आजाद हुआ, बहुत सारे सपने लेकर के आजाद हुआ, लेकिन हम गति नहीं पकड़ पाए, रफ्तार नहीं पकड़ पाए। होती है, चलती है, अरे हो जाएगा, देखा जाएगा, उसी में खोए रहे। 2014 तक आते आते तो पूरे विश्व ने हमें फ्रेजाइल फाइव के उस में डंप कर दिया था। ऐसे समय पिछले 12 साल में भारत ने एक नई रफ्तार पकड़ी है, तेज गति से हम आगे बढ़ रहे हैं और देशवासियों का संकल्प है कि अब 140 करोड़ देशवासियों के संकल्प को, सामर्थ्य को रोकना नामुमकिन है। प्यारे देशवासियों, पिछले 12 वर्षों में डिफेंस प्रोडक्शन करीब 4 गुना हुआ, खादी और ग्रामोद्योग का उत्पादन करीब 5 गुना हुआ, इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग करीब 7 गुना बढ़ा, आधुनिक रेलवे कोच का निर्माण 21 गुना बढ़ा, मोबाइल फोन उत्पादन 33 गुना बढ़ा। इतना ही नहीं, आधुनिक युग को देकर के भी, डिजिटल और इनोवेशन की दुनिया में भी हमने अपना परचम लहराया। इंटरनेट कंज्यूमर करीब करीब 4 गुना बढ़े, पेटेंट ग्रांट होने की संख्या 4 गुना बढ़ी, डिजिटल ट्रांजैक्शन 100 गुना बढ़े, सामान्य मानवीय की सुविधाओं की तरफ भी हमने उतना ही गंभीरता से काम किया। हर साल औसतन 15 गुना ज्यादा तेजी से हमने नल से जल कनेक्शन दिए, हर साल औसतन 6 गुनी ज्यादा रफ्तार से लोगों को गैस कनेक्शन दिए, हर साल 4 गुनी रफ्तार से गरीबों के लिए टॉयलेट बनाने का काम किया, हर साल 3 गुना ज्यादा तेजी से गरीबों को घर देने का काम किया। देश ने गवर्नेंस में भी बहुत बदलाव लाया, हजारों की संख्या में कंप्लायंसेस खत्म किए, सैकड़ों की तादाद में पुराने कानून खत्म किए। पिछली शताब्दी के कानूनों से 21वीं शताब्दी की मार्च नहीं हो सकती है। हमने आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए मेट्रो का विस्तार किया, हमने पब्लिक ट्रांसपोर्ट को ताकत दी, जिस स्पीड से काम, जिस स्केल पर काम किया, ये सब, ये रफ्तार, ये विस्तार, ये अचीवमेंट आजादी के बाद पहली बार पिछले एक दशक ने देखा है। और जब इतनी सारी सिद्धियां हमारे सामने हो, इतनी तेज गति दिखाई देती हो, देशवासियों का सामर्थ्य पल पल प्रकट होता है, तब तो 2047 में विकसित भारत बनने का संकल्प कभी भी अधूरा नहीं रह सकता है। ये सारे आंकड़े इस बात की गवाही देते हैं कि हम आगे बढ़ने वाले हैं। मेरे प्यारे देशवासियों,
लेकिन उसके लिए आत्मविश्वास की जरूरत होती है, आत्मगौरव की जरूरत होती है और साथ साथ आत्मनिर्भर भारत होना भी बहुत जरूरी होता है। और इसलिए बीते वर्षों में हमारा कन्विक्शन रहा है कि भारत को हमें अब दूसरे देशों पर निर्भर रह करके नहीं जीना चाहिए, हमें आत्मनिर्भर बनना चाहिए। दुनिया में बहुत कुछ मिलता है, सस्ता मिलता है, जल्दी मिल सकता है, लेकिन उससे हमारा सामर्थ्य तैयार नहीं होता है, न हमारे सामर्थ्य की कसौटी होती है। और इसलिए हमें भी अपनी क्षमताओं को बढ़ाना है, अपने हितों की सुरक्षा हमें खुद को करनी है। और इसलिए आत्मनिर्भर भारत का संकल्प बहुत दृढ़ता के साथ हम लेकर के आगे बढ़ रहे हैं। मेक इन इंडिया, स्वदेशी, वोकल फॉर लोकल, इन सारे क्षेत्रों में आज हर भारतीय का मन जुड़ रहा है। मेरे प्यारे देशवासियों, मैं आपको एक उदाहरण देता हूं सेमीकंडक्टर का। देश आजाद होने के बाद विश्व में तो सेमीकंडक्टर की चर्चा हो चुकी थी, हमारे यहां भी बातें होती थी, लेकिन सेमीकंडक्टर का कोई बड़ा प्लान हम आगे नहीं बढ़ा पाए। और आज स्थिति क्या है? आज की डिजिटल दुनिया में, आज की टेक्नोलॉजी में चिप का महात्म्य हम समझते हैं। कोई भी इलेक्ट्रॉनिक गुड्स होगा, हमारे मेडिकल इक्विपमेंट होंगे, हमारे ट्रांसपोर्ट के रास्ते होंगे, हर किसी में चिप अनिवार्य है। और इसे इस चिप के बिना दुनिया थम जाए, ऐसी स्थिति पैदा हो चुकी है। और इसलिए भारत ने आत्मनिर्भर होने की दिशा में अपना सेमीकंडक्टर प्लान, बड़ा सेमीकंडक्टर प्लान, 3 सेमीकंडक्टर प्लांट शुरू हो चुके हैं। और मुझे बताया गया है कि वहां जो प्रोडक्शन हो रहा है वह एक्सपोर्ट होना शुरू हो चुका है। और मैं देशवासियों को कहना चाहता हूं, आने वाले 7-8 वर्ष में और 5, 7 या 8 सेमीकंडक्टर प्लांट बहुत ही जल्द शुरू होने वाले हैं। ये आत्मनिर्भर भारत हमें विकसित भारत की दिशा में जाने का महामार्ग देते हैं। मेरे प्यारे देशवासियों, वैसी ये चर्चा क्रिटिकल मिनरल की हो रही है। पूरी टेक्नोलॉजी क्रिटिकल मिनरल पर निर्भर है। भारत इसमें भी अपने आप को सुरक्षित करने में जुटा हुआ है कि क्रिटिकल मिनरल का लक्ष्य साझा किया जाए। नेशनल क्रिटिकल मिनरल यह हमने लॉन्च किया। बजट में क्रिटिकल मिनरल कॉरिडोर की हमने घोषणा की है। कई देशों के साथ एग्रीमेंट हो रहे हैं। विश्व के कई देश अब इस क्रिटिकल मिनरल के विषय में भारत के पर भरोसा करने लगे हैं। मेरे प्यारे देशवासियों, जैसे सेमीकंडक्टर की बात हो, क्रिटिकल मिनरल की बात हो, वैसे ही जिस टेक्नोलॉजी की दिशा में हम जा रहे हैं, दुनिया जा रही है, उसमें एनर्जी का महत्व और बढ़ता चला जा रहा है। अब एनर्जी के बिना भी नई दुनिया को चलाना मुश्किल है। और इसलिए हमें चिप हो, एआई हो, डेटा सेंटर हो, हमें बहुत बड़ी मात्रा में बिजली की जरूरत होगी। एनर्जी सिक्योरिटी ये हमारे समय की मांग है। और इसलिए हमने पहले से ही उस दिशा में एक के बाद एक
मजबूत कदम उठाए हैं। एनर्जी सिक्योरिटी का एक बड़ा माध्यम है परमाणु ऊर्जा, न्यूक्लियर एनर्जी। हमने पार्लियामेंट में शांति एक्ट पास कर करके एक नए लक्ष्य तरफ जाने का रास्ता तय कर लिया है। 2047 तक हम 100 गीगावाट न्यूक्लियर पावर का लक्ष्य लेकर के चल रहे हैं। इसी एक दशक में हम 5 नए न्यूक्लियर रिएक्टर शुरू करने का लक्ष्य लेकर के चल रहे हैं। इस वर्ष भारत ने फास्ट ब्रीडर न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी में महारत हासिल करके एक अहम पड़ाव पार किया है और इसके कारण परमाणु ईंधन में आत्मनिर्भर बनने की दिशा में हमें एक बहुत बड़ा सफलता का कदम हमने रखा है। मेरे प्यारे देशवासियों, कई बार संसाधनों की कमी के कारण देश रुकता नहीं है, लेकिन रुकने का कारण सोच की सीमाएं होती है। जब सोच बंद जाती है, सीमाओं में सड़ने लग जाती है, तब हम अपने सामर्थ्य को भी पहचान नहीं पाते हैं। देश को आज कच्चे तेल पर निर्भर रहना पड़ रहा है और हमारी गलत सोच के कारण है। आप जान के हैरान हो जाएंगे, हमने समुद्री तट पे 99% हमारा समुद्री तट का पूरा हिस्सा ऐसी सोच के कारण नो गो एरिया घोषित करके रखा। हमने ही समंदर के अंदर जाकर के एक्सप्लोरेशन न करने का निर्णय कर लिया था। ये सोच का दारिद्र था, हमने फैसला किया ये नहीं चल सकता। हमने उस 99% को जो कभी नो गो एरिया हुआ करते थे, हमने उसको गो अहेड एरिया के रूप में खुला कर दिया। और अब हम समुद्र के भीतर भी एक्सप्लोरेशन करने की और नए नए भंडार खोजने की दिशा में हम प्रवृत्त हैं, हम प्रयास कर रहे हैं। हमने पिछले वर्ष उसी दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम रखते हुए समुद्र मंथन की घोषणा की थी और पिछले दिनों हमने 85,000 करोड़ रुपए इस काम के लिए आवंटित करके काम को गति देने का निर्णय कर लिया है। मेरे प्यारे देशवासियों, एनर्जी सिक्योरिटी, इसका मैंने कहा कि हमें अल्टरनेट स्रोतों की तरफ भी पूरी शक्ति लगाना बहुत जरूरी है और इसलिए ऊर्जा का सही इस्तेमाल बढ़ाते हुए भारत इसी दिशा में आज तेजी से काम कर रहा है। 2014 से पहले, मतलब आज से 12 साल पहले, हमारे देश में सिर्फ 70 शहरों में पाइप से गैस की व्यवस्था थी, पाइप से गैस डिस्ट्रीब्यूशन होता था। 12 साल में इन 70 शहरों को हमने 700 शहरों तक पहुंचा दिया है। ये होती है रफ्तार, ये होता है विस्तार। 2014 के पहले मुश्किल से 20-22 लाख घरों में पाइप से गैस पहुंचता था, आज 2.25 करोड़ घरों में पाइप से गैस पहुंचाने का काम हो रहा है। 12 वर्ष पहले देश में सोलर एनर्जी की कैपेसिटी सिर्फ 2 गीगावाट थी, 2 गीगावाट, आज 160 गीगावाट हमने प्राप्त किया है लक्ष्य। मेरे प्यारे देशवासियों, मैं एक और जानकारी देता हूं।

हर परिवार को हम इस काम के लिए 80,000 रुपया सरकार की तरफ से एक एक परिवार को मदद दी जा रही है, तब जाकर के हम इस काम को पूरा कर रहे हैं। मेरे प्यारे देशवासियों, आपको जानकर के हैरानी होगी, ये जो हमारी रेलवे है उसका इलेक्ट्रिफिकेशन का काम हमारे देश में 1925 में शुरू हुआ था। 1925 में इलेक्ट्रिफिकेशन का काम शुरू हुआ, लेकिन 90 साल में, 1925 से लेकर के 90 साल में सिर्फ 30% रेल का इलेक्ट्रिफिकेशन हुआ था। यानी 90 साल में 30%। हमारी रफ्तार देखिए, लक्ष्य को पाने के लिए हमारी दौड़ देख लीजिए। हमें इन एक दशक के अंदर 100% काम पूरा कर दिया। 90 साल में 30%, 10 साल में 70%, ये होता है काम। और इसके कारण डीजल जो हमें बाहर से लाना पड़ता है उसकी बचत हुई, बिजली से हमारी ट्रेनें चली, पर्यावरण को फायदा होने लगा। मेरे प्यारे देशवासियों, हम यहां से नहीं रुके हैं, हम दुनिया के अंदर पीछे रहना नहीं चाहते। पिछले दिनों आपने खबर सुनी होगी, भारत ने ईंधन का एक नया क्षेत्र को भी छू लिया है। देश ने पहली हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन शुरू कर दी है और मुझे खुशी है ये सबसे लंबी ट्रेन है और सबसे ताकतवर ट्रेन है। और दुनिया में हाइड्रोजन ट्रेन के क्षेत्र में भी भारत ने अपना झंडा गाड़ दिया है। प्यारे देशवासियों, पिछले 10-12 साल हम लगातार 2047 के लक्ष्य को पाने के लिए दौड़ रहे हैं, एक के बाद एक सोपान सिद्ध कर रहे हैं। हमने सोचा भी नहीं था कि हमें इसमें भी कुछ मुसीबतों का झेलना पड़ेगा। पिछले 10-12 वर्ष में कितने संकटों का सामना करना पड़ा। कोरोना जैसी वैश्विक महामारी ने पूरी दुनिया को चिंता में डाल दिया, सारी व्यवस्थाएं चरमरा गई थी। कोरोना से बाहर निकले, युद्ध की विभीषा की खबरें आने लगी, कहीं यूक्रेन तो कहीं पश्चिम एशिया, हर जगह पर तनाव का माहौल। और पता नहीं भविष्यवेत्ताओं ने तो न जाने क्या क्या घोषणाएं कर दी थी। देश को डराना, देश को भयभीत रखना, देश को चिंतित रखना, इसी में कुछ लोगों को आनंद आता है। वैक्सीन नहीं मिलेगी, कोविड में लोग बचेंगे नहीं, कुछ भी नहीं होने वाला, वेस्ट एशिया का क्राइसिस आया, पेट्रोल पंप पे पेट्रोल नहीं मिलेगा, गैस नहीं मिलेगा, डीजल नहीं मिलेगा, फर्टिलाइजर नहीं मिलेगा, सारी दुनिया भर की अफवाहें फैला करके भारत के लोगों को भयभीत करने का, डराने का, चिंता के अंदर डुबो देने का कुछ लोगों को आनंद आ रहा था। लेकिन देश ने देख लिया कि पिछले 10-12 साल की सुविचारित योजनाएं रंग ला रही है और हम इतने बड़े संकट के बावजूद भी नागरिक देवो भव के मंत्र को लेकर के जीते हुए भारत ने जो तैयारियां की थी, एक के बाद एक कदम उठाया था। सोचा नहीं था यह संकट आएगा, लेकिन संकट के समय में ये सारी चीजें काम आ गई। और आज देश में गैस भी है, पेट्रोल भी है, यूरिया भी है, हम अपनी ताकत के ऊपर खड़े हो रहे, चल रहे हैं। मेरे प्यारे देशवासियों, दुनिया के इन संकटों का प्रभाव हर किसी पर हुआ, हम भी अछूते नहीं। यूरिया के दाम दुनिया में 3,000 रुपया पहुंच गए एक बोरी का।

आज भी हम मेरे देश के किसानों को वो बोझ सहने के लिए मजबूर नहीं कर रहे, सरकार अपने कंधों पर वो बोझ उठा रहा है। और दुनिया से जो 3000 रुपया में यूरिया का बोरा हमें मिलता है, वो हमारे किसानों को हम सिर्फ 300 रुपये में दे पाते हैं। इतना ही नहीं, डीएपी आज दुनिया में बाजार 5000 पहुंच चुका है, लेकिन मेरे देश के किसानों को दिक्कत ना हो इसलिए 1350 रुपए में आज भी डीएपी देने का काम हम कर रहे हैं। मेरे प्यारे देशवासियों, एक समय था जब मैं आत्मनिर्भरता की बात कर रहा था तो कुछ लोग एयर कंडीशन चैम्बर में बैठ करके सोचने वाले लोग हमें बता रहे थे ग्लोबलाइजेशन का क्या होगा, लेकिन दुनिया देख रही है कि पिछले एक दशक में ऐसा लग रहा है कि दुनिया ने ग्लोबलाइजेशन बोलना ही बंद कर दिया है। जहां से ग्लोबलाइजेशन की आवाज आती थी वो बंद सुनाई नहीं देती है। दुनिया का हर देश अपनी अपनी संभालों के मिजाज की तरफ गया है, लेकिन दुर्भाग्य से इस संकट के कालखंड में कुछ लोगों ने अपना रुतबा दिखाने के लिए संसाधनों को वेपनाइज करने का खेल खेला है। दुनिया अपने पास जो कुछ भी है उसको वेपनाइज करने में लगी है, संसाधनों का वेपनाइज, रिसोर्स का वेपनाइज, पेट्रोल, डीजल, फर्टिलाइजर्स, दवाइयां, टेक्नोलॉजी की चिप्स। इतना ही नहीं, भूभाग को भी वेपनाइज किया जा रहा है। मुझे और ऐसे समय अगर हम आत्मनिर्भरता मंत्र को लेकर 10 साल सही दिशा में न चले होते तो हम कल्पना कर सकते हैं कि ऐसी चुनौतियों का मजबूती से मुकाबला कैसे करते। और हमारी तैयारियां निरंतर बढ़ती जा रही है मेरे प्यारे देशवासियों। दूसरी तरफ आज भारत का प्रोफाइल पूरी तरफ बढ़ रहा है। आज भारत दुनिया के लिए एक स्वीकृत और सम्मानीय देश के रूप में बन रहा है। भारत के पास स्थिर पॉलिटिकल मैंडेट है, स्थिर सरकार है, भारत का वाइब्रेंट लोकतंत्र है, भारत का मजबूत न्याय तंत्र है, और हम सबको दिशा देने वाला भारत का संविधान है। और अब दुनिया हमारे इन सामर्थ्य को पहचानने लगी है, और इसलिए 2014 के बाद दुनिया करीब करीब 40 देशों के साथ हमारा एफटीए एग्रीमेंट हो रहा है। अब देखिए कितना बड़ा अवसर आया है। लेकिन मैं ये जो ट्रेड एग्रीमेंट हुए हैं ये एक बहुत बड़ा अवसर है, और इसलिए खास करके मैं मेरे एमएसएमईस को कहना चाहूंगा कि हमें इस मौके को छोड़ना नहीं है। दुनिया में हमें पहुंचना है, भारत के उत्पाद की हर चीज विश्व के बाजार में पहुंचे, और हमारा टेक्सटाइल हो, हमारी मशीनरी हो, हमने दवाइयां हो, हमने मौका छोड़ना नहीं है। लेकिन वैश्विक जो पैरामीटर्स हैं उस पैरामीटर को हमें पार करना होगा। हमें दुनिया से जो मिलता है उसे अच्छा देना पड़ेगा, दुनिया में जो मिलता है उसे सस्ता देना पड़ेगा। और पंजाब के लुधियाना से लेकर के तमिलनाडु के तिरुपुर तक हमारा टेक्सटाइल सेक्टर दुनिया में पहुंच सकता है। इतना ही नहीं, केरलम से लेकर के गुजरात और तमिलनाडु से लेकर के बंगाल, ये हमारा समुद्री तट, हमारे मछुआरे भाई बहन आज इस एफटीए के कारण हमारे श्रीप यानी झींगा उसके एक्सपोर्ट की बहुत संभावना बनी है, हमारे सी फूड की दुनिया में पहुंच बनने की संभावना पड़ी हुई है। और इसे मैं चाहूंगा तो हमें इस परिस्थिति का फायदा उठाते हुए हम आगे चलते हुए हम इन कामों को पार करने के लिए प्रयास करें। मेरे प्यारे देशवासियों, मैंने जो भूमिका आपके सामने रखी है उसके पीछे 2047 का लक्ष्य इन मजबूत नींव पर खड़ा है।
2047 विकसित भारत का लक्ष्य हमने पिछले 10-12 साल में देशवासियों ने जो सामर्थ्य दिखाया है उस सामर्थ्य का हिस्सा है। और इसलिए मेरे प्यारे भाइयों बहनों, सभी का 1/4 हिस्सा बीत चुका है और अगला 1/4 हमारे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। अब हम रुक नहीं सकते हैं, हमारी गति नहीं रुक सकती है, हमारी दिशा तय हो चुकी है, हमें प्राप्त करके रहना है। और इसके लिए हमें अपना वर्क कल्चर बदलना होगा, हमारे वर्क कल्चर को बदलते हुए हमें हमारी सोच को भी बदलना होगा, हमें हमारे काम की गति को भी बदलना होगा। जो काम पिछले 5-7 दशक में नहीं हुए हैं वो काम हमें आने वाले 5-7 साल में करने हैं। और मेरा भरोसा है मेरे देश की युवा शक्ति पर, मेरे देश के नौजवानों पर, मेरे देश की माताओं को बहनों पर, मेरे देश के किसानों पर, मेरे देश के मजदूरों पर कि हम इस सपने को साकार कर सकते हैं। और इसलिए हमें रिफॉर्म की गति को भी आगे बढ़ाना है। और जब मैं रिफॉर्म की बात कर रहा हूं, रिफॉर्म नहीं हमारे लिए कोई कंपल्शन है, नहीं रिफॉर्म ये हमारे के लिए कोई बजबड़ है, हमारे लिए रिफॉर्म ये कन्विक्शन है। आउट ऑफ कन्विक्शन हम रिफॉर्म एक्सप्रेस पर चल पड़े हैं और हम आने वाले दिनों में भी नेक्स्ट लेवल रिफॉर्म की ओर बढ़ने वाले हैं। और इसलिए सरकार, समाज, उद्योग, उत्पादक, किसान, हर किसी ने अपनी ट्रेडिशनल व्यवस्थाओं में रिफॉर्म करना पड़ेगा, सोच में रिफॉर्म करना होगा, अपने लक्ष्यों को रिफॉर्म करना होगा। और इसलिए मेरे प्यारे देशवासियों, हमें एक निश्चित दिशा में को लेकर के चलना होगा। मैं आज उस युग को भी याद करना चाहूंगा जब देश, भारत का सामर्थ्य सप्त सिंधु के रूप में हम जानते थे, हम समझते थे, हम सुनते थे। अब विकसित भारत बनाने के लिए हमें नई धारा चाहिए। आज लाल किले की प्राचीर से मैं देश के सामने शक्ति की सप्त धारा का आह्वान करता हूं। आने वाले 5-7 साल में जो पिछले 5-7 दशक में नहीं, धारा के सामर्थ्य से, शक्ति से हम देश को नई ऊंचाई, नई गति देंगे और नए लक्ष्यों को पार करने वाला सामर्थ्य देंगे। और इसके साथ साथ देश की युवा शक्ति का सामर्थ्य का भरपूर राष्ट्र निर्माण में उपयोग होगा, उनकी शक्ति जोड़ी जाएगी। आने वाले दिनों में जब मैं सप्त धारा की बात करता हूं, सप्त धारा की पहली शक्ति है मैन्युफैक्चरिंग पावर। मेरे प्यारे देशवासियों, हमें मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को बहुत आगे बढ़ाना होगा और प्रोडक्शन बढ़ाने के साथ साथ हमें छोटे छोटे पुर्जे भी बनाने हैं और बड़े बड़े प्रोडक्ट भी बनाने हैं। पूरा वैल्यू चेन हमारा होना चाहिए और उसे लेकर के चाहे हमें कंपोनेंट भी चाहिए और हमें कंप्लीट मैन्युफैक्चरिंग भी चाहिए, कंप्लीट प्रोडक्ट भी चाहिए। डिजाइन से लेकर मैन्युफैक्चरिंग तक भारत को ग्लोबल सप्लाई चेन का भरोसामंद केंद्र बनना होगा। इसके लिए मैं 3 चीजों पर विशेष जोर देना चाहता हूं। मैन्युफैक्चरिंग के क्षेत्र में जो मेरे भाई बहन हैं, यह समय का यह अवसर है, इस अवसर को जाने मत दें। और इसके लिए हमें कॉस्ट, क्वालिटी और स्केल, इसके विषय में वैश्विक मानदंडों से खरा उतरना पड़ेगा। हमारी फैक्ट्रीज कॉम्पिटिटिव हो, हमारे प्रोडक्ट्स यूजर फ्रेंडली हो, हमारा पैकेजिंग दुनिया के लोगों को लुभावने वाला हो, आकर्षित करने वाला हो, हमारा जीरो डिफेक्ट प्रिसीजन मैन्युफैक्चरिंग ये हमारी पहचान बनना चाहिए। हर मैन्युफैक्चरर, हर एंटरप्रेन्योर, हर एमएसई से, एमएसएमई से
मैं कहना चाहता हूं, ग्लोबल मार्केट में हमारी पहचान विश्वसनीयता और गुणवत्ता के आधार पर होनी चाहिए, क्वालिटी के संबंध में नो कॉम्प्रोमाइज, और इसलिए हमारा मंत्र क्वालिटी क्वालिटी क्वालिटी होना चाहिए, यही हमारा ग्लोबल ब्रांड वैल्यू बनेगा। मेरे प्यारे देशवासियों, इस सप्तधारा की दूसरी शक्ति है कृषि और फूड प्रोडक्शन, फूड प्रोसेसिंग। हमें इस दिशा में आगे बढ़ना होगा। हमारे किसानों ने अब दुनिया के बाजार खुल चुके हैं, एफपी के कारण हमें एक बहुत बड़ा मार्केट मिल रहा है, हमें वहां पहुंचना है, हमें उस जगह को हाथ लगाना है, हमें खेत से लेकर हमें एक्सपोर्ट मार्केट की ओर जाना होगा। हमारे पारंपरिक खान पान हो, हमारे मिलेट्स हो, हमारे मसाला हो, हमारे फल हो, फूल हो, क्या कुछ नहीं है हमारे पास, वो ग्लोबल ब्रांड्स बनने चाहिए। हमारे किसान केमिकल फ्री खेती को बल देंगे, दुनिया में इनकी मांग और बढ़ने वाली है, और जो ग्लोबल पैरामीटर्स के अंदर हर प्रकार से सिद्ध होने वाले हमारे एग्रो प्रोडक्ट होंगे तो दुनिया में हम आसानी से पहुंच पाएंगे। मेरी सप्तधारा की तीसरी शक्ति है टेक्नोलॉजी और इनोवेशन। मेरे प्यारे देशवासियों, आज जमाना एआई का है, क्वांटम का है, स्पेस का है, रोबोटिक्स का है, डेटा सेंटर्स का है, पूरी तरह एक नया क्षेत्र खुल चुका है, और इमर्जिंग टेक्नोलॉजी ये भी हर पल हमें चुनौती दे रही है, और इसलिए देश को दुनिया के लिए मार्केट नहीं बना देना, हमें इनोवेशन का हब बनना है। हमने यूपीआई और डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर में लोहा मनवा लिया है, हमारी ताकत का परिचय करवा दिया है। अब भारत को डिजिटल पब्लिक टेक्नोलॉजीज, उसको भी दुनिया के कोने कोने तक पहुंचाना है। भारत को नेक्स्ट जनरेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी में लीड करना है। मेड इन इंडिया 6G हर कोने में पहुंचे, यह हमारा लक्ष्य होना चाहिए, और हमें उसमें तेजी करनी चाहिए, और इसके लिए हमारा प्रयास कम नहीं होना चाहिए। सप्तधारा की चौथी शक्ति है गति शक्ति। यह गति शक्ति देश के अंदर सीमलेस फास्ट कनेक्टिविटी पर हमें बल देना होगा, शहरों को हाई स्पीड रेल से हमें जोड़ना होगा, मॉडर्न हाईवे चाहिए, इनलैंड वाटरवेज चाहिए, एयरपोर्ट चाहिए, मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक की व्यवस्था चाहिए। हमें पोर्ट्स को सिर्फ सामान उतारना चढ़ाने की जगह नहीं, दुनिया के शिप्स आकर के लंगर हो जाए इतना नहीं, हमें हमारे पोर्ट्स को पोर्ट लेड डेवलपमेंट ग्रोथ की दिशा में हमें आगे बढ़ना होगा। हमारी पांचवी शक्ति है सप्तधारा की, वो है रक्षा शक्ति, और ये रक्षा शक्ति का महत्व तो हर प्रकार से है। मेरे प्यारे देशवासियों, डिफेंस में आत्मनिर्भर होना अब भारत ने अनुभव कर लिया, दुनिया ने अनुभव कर लिया है, इसके बिना कोई चारा नहीं है। विश्व जब अपनी अपनी ही सोच रहा है तब भारत विश्व के लिए बाजार बन करके नहीं रह सकता है। हमें डिफेंस के क्षेत्र में आत्मनिर्भर होना हुआ, नेक्स्ट जनरेशन डिफेंस टेक्नोलॉजी डेवलप करके हमें ग्लोबल सप्लायर बनने की दिशा में हमें लक्ष्य लेकर के चलना है। हमें ड्रोन काउंटर ड्रोन सिस्टम को विकसित करना होगा, और हाइपरसोनिक डिफेंस टेक्नोलॉजीज उस पर हमें लीडरशिप लेनी होगी। साथियों, साइबर सुरक्षा भी आज हर घर के लिए एक समस्या बन रही है, वो भी एक रक्षा का क्षेत्र है जिसमें हमारे युवाओं की जो सामर्थ्य है उस सामर्थ्य का उपयोग हम देश के और दुनिया के लिए कर सकते हैं। हमारी सप्तधारा की छठी शक्ति है ग्रीन इकोनॉमी, ब्लू इकोनॉमी, जो ग्रीन जॉब को भी जन्म देती है। हमें ग्रीन हाइड्रोजन, रिन्यूएबल एनर्जी, एनर्जी स्टोरेज, ग्रीन मोबिलिटी, ग्रीन मैन्युफैक्चरिंग, इन ग्लोबल स्केल हमें पा करके रहना है। हमें दुनिया में, दुनिया जब ग्लोबल वार्मिंग की चर्चा करती रहती है, हम रास्ते खोजते रहते हैं, हम समस्याओं का समाधान दे रहे हैं, और भारत ये ग्रीन मूवमेंट का बहुत बड़ा सामर्थ्य लेकर के चलिए। भारत के पास ब्लू इकोनॉमी के लिए भी
बहुत बड़ा अवसर है, बहुत बड़ा लंबा हमारा कोस्ट लाइन है, ब्लू इकोनॉमी के लिए बहुत बड़े अवसर है, फिशरीज है, कोस्टल टूरिज्म है, ओशन टेक्नोलॉजी है, ऐसे कितने ही क्षेत्र हैं जिसमें हम आगे बढ़ सकते हैं। मेरे प्यारे देशवासियों, भारत सप्तधारा की जब बात करके चला है तब हमारी सातवीं धारा है और दुनिया के लिए इसका अपना भी एक महत्व है और वो है भारत का सॉफ्ट पावर। भारत के सॉफ्ट पावर की ताकत है। आज योग ने पूरी दुनिया को भारत के साथ जोड़ के रखा हुआ है। योग दुनिया के लिए एक ऊर्जा बनता जा रहा है, भारत के लिए विश्वास का बड़ा कारण बनता जा रहा है। जिस भारत के पास आस्था के केंद्र हो, जिस भारत के पास आयुर्वेद हो, जिस प्रकार से भारत के पास होलिस्टिक हेल्थ केयर की व्यवस्था हो, हीलिंग इंडिया का मूवमेंट हो, हम दुनिया के अंदर हमारे सामर्थ्य को लेकर के जा सकते हैं। हैंडीक्राफ्ट हो, संस्कृति हो, हमारी फिल्में हो, हमारा क्रिएटिव वर्ल्ड हो, वीएफएक्स हो, हमारा एनिमेशन हो, हमारे गेमिंग हो, डिजिटल कंटेंट हो, क्रिएटिव वर्ल्ड के अंदर भारत अपना रुतबा दिखा सकता है। हमने उसको वैश्विक सामर्थ्य के रूप में विकसित करना होगा। आज भारत ने वेव समिट को एक बहुत बड़ी ताकत दी है। दुनिया धीरे धीरे भारत का ये जो वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंड एंटरटेनमेंट समिट है उसकी राह देखता रहता है और वो भारत के सॉफ्ट पावर को, भारत के क्रिएटिव दुनिया को परिचित करेगा। मेरे प्यारे देशवासियों, भारत के पास विशाल वन्य संपदाएं हैं, हमारे पास 100 से ज्यादा नेशनल पार्क है। क्षमता बहुत है लेकिन विदेशी टूरिस्टों को आकर्षित करने में हम कम पड़े हैं। हमें मौका है हमारे सॉफ्ट पावर के माध्यम से दुनिया के टूरिस्टों को भारत के लिए आकर्षित करने का। हमारा सामर्थ्य हमें दुनिया को दिखाना है। हम ये काम आरा से करें और हम जल्द से जल्द हम इन लोगों आज दुनिया में स्पोर्ट्स की जो है वो भी एक बहुत बड़ा भारत के प्रति आकर्षण का केंद्र। दुनिया के स्पोर्ट्स इवेंट भारत में क्यों ना हो। कॉन्सेंट इकोनॉमी बहुत बढ़ रही है, देश के नौजवानों का आकर्षण है। विश्व का हर कोई कलाकार चाहता है कभी न कभी भारत की धरती पर अपना कॉन्सेंट करे। ये बहुत बड़ा अवसर है, हमें इसको मोबिलाइज करने के लिए व्यवस्थाएं खड़ी करनी होगी। साथियों, सप्तधारा की सप्त शक्तियां उद्देश्य सिर्फ एक सेक्टर में प्रगति करने का नहीं है। एक होलिस्टिक अप्रोच के साथ हमें राष्ट्र को जो लक्ष्य लेकर के हम चल रहे हैं, जो एम्बिशन लेकर के चल रहे हैं, उस स्केल को हमें पार करने की दिशा में काम करना है। मेरे प्यारे देशवासियों, कुछ चीजें मैंने बताई हैं लेकिन मैं इससे भी आगे सोचता हूं। मैं जरा देश को झकझोरना चाहता हूं, मैं देश की शक्ति को भी झकझोरना चाहता हूं। देश यानी सिर्फ सरकार नहीं होती है, देश यानी हर नागरिक जुड़ता है। क्या हम सोच नहीं सकते कि फॉर्च्यून 500 की चर्चा तो बहुत सुनते हैं, आने वाले एक दशक में इन फॉर्च्यून 500 में 50 कंपनियां भारत की क्यों न हो, ये लक्ष्य हमारा क्यों न होना चाहिए। आज बैंकिंग सेक्टर फल फूल रहा है। दुनिया की टॉप बैंक के अंदर भारत की बैंक का झंडा भी क्यों न फहरता हो, भारत की बैंक भी टॉप बैंक 5 बैंक में भारत की भी एक बैंक होनी चाहिए। भारत की फार्मा की दिशा में हमने बहुत काम किया है लेकिन समय की मांग है कि दुनिया की 5 बड़ी फार्मा कंपनियों में भारत की भी 1-2 फार्मा कंपनियों का नाम गूंजना चाहिए। भारत उसमें अपना स्थान बनाना चाहिए। लॉ फर्म्स होते हैं, रेटिंग एजेंसी होती है, क्या समय की मांग नहीं है कि ग्लोबल लीडरशिप अब हमारे हाथ में होनी चाहिए। टैलेंट है, सामर्थ्य है, हमारा लंबा इतिहास भी है, भाषाओं पर हमारा प्रभुत्व है, हमें विश्व में पहुंचना चाहिए। हमारी कोई कंसल्टिंग फर्म, अकाउंटिंग फर्म दुनिया के टॉप फर्म्स के अंदर क्यों नहीं होनी चाहिए। भारत की टेक्नोलॉजी कंपनियां दुनिया के अंदर सिरमौर हो, यह हमारा लक्ष्य होना चाहिए। हमारे ऐसे ब्रांड हो जिससे दुनिया आकर्षित होती हो,
हमारे ब्रांड, हमारे देश की पहचान हो।

और विश्व के लिए एक डेस्टिनेशन बन जाए, उस दिशा में हमें काम करना है। और इसके लिए मैं राज्य सरकारों को कहना चाहता हूं, मैं स्थानीय स्वराज की संस्थाओं को कहना चाहता हूं, भारत सरकार का भी यह दायित्व है कि हमें हमारे रिफॉर्म की गति बढ़ानी होगी, हमें 2047 के लक्ष्य के अनुरूप हमारी व्यवस्थाओं को विकसित करना होगा, हमें बीते हुए काल के नीति नियमों से नहीं चल सकते, हमें आने वाले सपनों के हिसाब से नीति नियमों को गढ़ना होगा। और इसको अगर हम करेंगे तो मुझे पूरा विश्वास है और मैं देशवासियों को भरोसा देता हूं, इसी रास्ते मेहनत में कोई कमी न करते हुए हम विकसित भारत का सपना पार करके रहेंगे। हमें सबको मिलकर के चलना है, केंद्र सरकार हो, राज्य सरकार हो, इंडस्ट्री हो, हम सब ने मिलकर के आगे बढ़ना है। हमें रिफॉर्म्स करते रहना है, रिफॉर्म्स को आगे बढ़ाते रहना है। और मैंने पहले भी कहा था, हम रिफॉर्म कंपल्शन से नहीं, कन्विक्शन से कर रहे हैं, लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कर रहे हैं। मेरे प्यारे देशवासियों, जब मैं विकसित भारत की बात कर रहा हूं, देश को तेज गति से आगे बढ़ाने की बात कर रहा हूं, उसका सबसे बड़ा लाभार्थी कौन है? इन सारे प्रयासों का सबसे बड़ा साधक कौन है? अगर साधक है तो मेरे देश का युवा है, मेरे देश की युवा शक्ति है। विकसित भारत की यात्रा में युवाओं की बहुत बड़ी भूमिका है। इतना ही नहीं, विकसित भारत का सबसे बड़ा लाभार्थी भी मेरे देश का युवा है। और इसलिए हमें विकसित भारत के लक्ष्य को युवाओं के साथ जोड़ करके आगे बढ़ाना है। युवाओं हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता के साथ हमें आगे बढ़ना है। साथियों, पिछले 10-12 साल में उस दिशा में बहुत कुछ हुआ है। स्टार्टअप इंडिया अभियान, आज पूरे देश में 2.5 लाख से ज्यादा रजिस्टर्ड स्टार्टअप बन गए। देश के नौजवान खुद तो काम कर रहे हैं, अनेकों को रोजगार दे रहे हैं। 1 लाख करोड़ रुपया इनोवेशन फंड भारत सरकार ने घोषित किया है। मैं देश के नौजवानों को कहना चाहता हूं, आप अपने सपनों को लेकर के आइए, संसाधनों की कमी नहीं रहने देंगे। 1 लाख करोड़ रुपया आपके दिल दिमाग को सामर्थ्य देने का एक व्यवस्था हमने कर दी है। रिसर्च के नए अवसर मिले, डिजिटल इंडिया के नए सस्ते डेटा युवाओं को सशक्त किया। दुनिया में सस्ता डेटा कहीं है तो भारत की धरती पर है। और देश के नौजवानों ने नौजवानों को उसने नवी ताकत दी है। स्किल इंडिया हमने नेशनल प्रोग्राम बनाया है, स्पेस सेक्टर को हमने ओपन कर दिया, नेशनल ड्रोन पॉलिसी हमने बनाई है, खेलो इंडिया पॉलिसी बनाई है, 35 वर्षों तक एजुकेशन पॉलिसी नहीं थी, नई एजुकेशन पॉलिसी लेकर के आए हैं। और इसका फायदा मिडिल क्लास के परिवारों को हुआ है। साथियों, 2004 से 14 आंकड़े मुझे देना चाहिए आपको, 2004 से 14 हमारे देश में 350 से भी कम यूनिवर्सिटी थी और आज 10-12 साल के भीतर भीतर करीब 650 नई यूनिवर्सिटी जुड़ चुकी है, करीब 1000 का आंकड़ा हम पहुंच रहे हैं। 2014 के पहले मेडिकल की सिर्फ 400 सीटें हुआ करती थी, आज करीब करीब 850 सीटें मेडिकल की हो रही है। इतना ही नहीं, अब विदेशी यूनिवर्सिटी भी भारत की धरती पर आ रही है। भारत के अंदर विदेशी यूनिवर्सिटी की डिग्री मेरे नौजवान को मिले, इसका प्रबंध भी हो चुका है। हमारे देश के युवा मन बचपन से ही टेक्नोलॉजी की तरफ आकर्षित हो, उस दिशा में हम काम कर रहे हैं। और इसलिए हमने करीब 10,000 से अधिक अटल टिंकर की लैब छोटे छोटे बच्चों के हवाले कर दी है, ताकि उनका इनोवेशन और टेक्नोलॉजी के अंदर उनका मन बने। 12 वर्ष युवा, हमने अनेक रास्ते खोले, हम स्टार्टअप ओपन कर दिया। आपने देखा होगा भारत के प्राइवेट स्टार्टअप 28 साल के एवरेज उम्र के बच्चों ने, नौजवानों ने दुनिया में पहले ही ट्रायल में अपना सैटेलाइट लॉन्च कर दिया और रॉकेट लॉन्च कर दिया उन्होंने, बहुत बड़ा काम कर दिया। साथियों, आज करीब 2.5 लाख से ज्यादा रजिस्टर्ड स्टार्टअप है। हमने पिछले दिनों
एआई इंपैक्ट समिट किया था। एआई का विस्तार बहुत तेजी से बढ़ रहा है। लाल किले से मैं देश के नौजवानों के लिए घोषणा करना चाहता हूं, हमने तय किया है कि आने वाले एक वर्ष में 1 करोड़ युवाओं को एआई स्किल के लिए ट्रेनिंग देने का हम काम करेंगे, ताकि हमारा देश का नौजवान एआई की दुनिया में भी नेतृत्व करने का सामर्थ्य। मेरे साथियों, बायो इकोनॉमी एक नया क्षेत्र है। एक समय था 2014 के पहले सिर्फ 60,000 करोड़ रुपए का बायो इकोनॉमी का काम होता था। मेरे देश के नौजवान, आपने क्या कमाल कर दिया है। देखिए, नीतियां जब सही होती है, लक्ष्य जब साफ होता है, तो मेरे देश के नौजवान कैसा करके दे। बायो इकोनॉमी में देश की युवा शक्ति ने सामर्थ्य दिखाया। 2014 के पहले जो 60,000 करोड़ का कारोबार था, आज वो कारोबार बायो इकोनॉमी का, बायो इकोनॉमी 20,00,000 करोड़ पहुंच चुकी है। दोस्तों, दो हजार नौ दस का कालखंड था सिर्फ 25,00,000 इलेक्ट्रिक व्हीकल हमारे देश में बिके थे। 1.5 लाख इलेक्ट्रिक व्हीकल बिके थे 2009-10 में, 1.5 लाख इलेक्ट्रिक व्हीकल। इस 25-26 में 25,00,000 इलेक्ट्रिक व्हीकल बिके। मेरे प्यारे देशवासियों, एविएशन सेक्टर भी मेरे नौजवानों के लिए बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। नए एयरपोर्ट, नए रूट, नए नए रोजगार के अवसर बना रहे हैं। मेंटेनेंस, ओवरहॉलिंग, इसके भी कारण देश में बहुत बड़ी मात्रा में स्किल मैन पावर को काम मिल रहा है। मेड इन इंडिया हवाई जहाज बनाने की दिशा में हमने सफलता पाई है। मेड इन इंडिया डिफेंस ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट C-295 ऑलरेडी अपनी उड़ान भर चुका है, सफल उड़ान भर चुका है। ये देश के नौजवानों के लिए। मेरे साथियों, ड्रोन ने भी बहुत बड़ा काम किया है। स्वामित्व योजना, गांव में ड्रोन से स्वामित्व योजना सफल हो रही है। करीब 3.25 करोड़ परिवारों को स्वामित्व योजना का लाभ मिला है, और इसके कारण 140,00,000 करोड़ रुपए जैसी संपत्ति अनलॉक हुई है, जिसके कारण बैंक से लोन मिल सकता है, लोग अपना कारोबार कर सकते हैं। मेरे प्यारे देशवासियों, हमारे मध्यम वर्ग के परिवारों के सामने एक बहुत बड़ा बोझ बन चुका है कोचिंग क्लासेस की स्पर्धा। हर माँ बाप को लग रहा है कि कोचिंग क्लास में बच्चे को नहीं भेजा तो हम प्रतिष्ठित परिवार नहीं है। इन गरीब और मिडिल क्लास परिवारों की हम चिंता करते हुए, 1,000,000 करोड़ रुपए का उनका खर्च है, वो भी बचे, बेटे भी अपने आसपास रह सके, उनकी देखभाल हो सके, परिवार पर आर्थिक बोझ ना आए, और इसलिए हमने युवाओं के लिए विभिन्न परीक्षाओं की फ्री ऑनलाइन कोचिंग हमने करने का निर्णय किया है। डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, हमारे पास उत्तम टैलेंट है, टीचर्स हैं, उन संसाधनों को जोड़ करके हम देश के नौजवानों को फ्री कोचिंग देने का एक पूरा नेटवर्क हम खड़ा करने वाले हैं। मेरे प्यारे देशवासियों, मैं हमेशा कहता आया हूं, जो खेले वो खिले। जब मैं खेले वो खिले की बात कर रहा हूं, तब मेरे प्यारे देशवासियों, आज भारत खेल की दुनिया में अपनी जगह बना रहा है। अब खेल के पोडियम में भारत का राष्ट्रगीत सुनाई देता है, भारत का राजगान सुनाई देता है, भारत का तिरंगा झंडा लहराता दिखाई नजर आ रहा है। टॉप्स योजना ने बहुत बड़ी सफलता पाई है। खेलो इंडिया गेम्स, यूनिवर्सिटी गेम्स, विंटर गेम्स, बीच गेम्स, स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर, स्पोर्ट्स के लिए कोचिंग, स्पोर्ट्स मेडिसिन, स्पोर्ट्स के लिए न्यूट्रिशन, इन सारे विषयों में भारत अब महारत करने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। नौजवानों के लिए पूरा नया क्षेत्र, खिलाड़ी न बन सके तो उसकी सपोर्ट सिस्टम में भी बहुत बड़ा क्षेत्र खुल रहा है।
स्पोर्ट की दुनिया में भारत का प्रदर्शन बेहतर होता रहा है और हम 2036 में ओलंपिक के मजबूत दावेदार बनकर के आगे बढ़ रहे हैं और 2030 में कॉमनवेल्थ गेम्स का को भारत होस्ट करने वाला है। और मेरे साथियों, दुनिया में जो ओलंपिक की खेल होते हैं करीब 40 प्रकार के गेम होते हैं और करीब 350-350 स्पर्धाएं होती है ओलंपिक में। और आपको जानकर के दुख होगा मेरे देशवासियों, मेरे नौजवानों, मैं आपको चुनौती देता हूं, मैं आह्वान करता हूं, मैं आपकी मदद चाहता हूं। 350 जितने स्पर्धाओं में भारत 2/3 खेलों में कहीं होता ही नहीं, हमारी मौजूदगी नहीं होती, हम क्वालिफाई नहीं होते हैं। हमने तय किया है कि 2036 में जो ओलंपिक होगा हम चाहते हैं कि वो भारत में हो, लेकिन 2036 में जिन विधाओं में आज भारत खेलता नहीं है, जिन विधाओं में भारत क्वालिफाई नहीं करता है, जिन स्पर्धाओं में भारत ने छोड़ के रखा है, 3/4 हिस्सा हमारे इंतजार कर रहा है, भारत उस पर बल देगा। और इसके लिए हम टैलेंट हंट का एक अभियान भी चलाना चाहते हैं। हमें अगर 2036 के लिए खिलाड़ी चाहिए तो आज जो 5 साल 10 साल 15 साल की उम्र के नौजवान हैं, बेटे हैं, उनके तरफ ध्यान देना होगा, उन बेटियों पर ध्यान देना होगा। और इसलिए 5 से 15 उम्र के बच्चों में खेल प्रतिभा ढूंढने के लिए गांव गांव, शहर शहर, स्कूल स्कूल एक टैलेंट हंट का अभियान चलाया जाएगा, बच्चों की प्रतिभा को देखा जाएगा और फिर उनको स्पेशल ट्रेनिंग दे करके देश के लिए खेलने वाले अच्छे खिलाड़ी बनाए जाएंगे। मेरे प्यारे युवा, देश के सामने, देश के नौजवानों के सामने नशा एक बहुत बड़ा संकट बनता जा रहा है। नशा मुक्त भारत, ये हम सबका सामूहिक दायित्व होना चाहिए। हमारे उज्जवल भविष्य के लिए हमारी युवा पीढ़ी मजबूत हो, हमारा युवा सामर्थ्य हमारे देश के लिए काम आए, इसलिए नशा मुक्त भारत। पिछले दिनों माय भारत के वॉलेंटियर्स ने, देश के एनजीओ ने, देश के सामाजिक सांस्कृतिक संगठनों ने, देश के आध्यात्मिक पुरुषों ने मिलकर के नशा मुक्त भारत का 100 सप्ताह का एक कार्यक्रम तय किया है। 100 सप्ताह तक एक अभियान चलने वाला है। मैं हर परिवार को कहना चाहता हूं कि आप भी इस अभियान का हिस्सा बने, आप इसके साथ जुड़िए और देश के नशा मुक्त भारत के सपने को पूरा करने के लिए आप आगे आइए। मेरे प्यारे देशवासियों, 21वीं सदी में दशकों पुरानी जो चुनौतियां हैं उन चुनौतियों को खत्म करना बहुत अनिवार्य है। नक्सलवाद, माओवाद, लाखों युवाओं के भविष्य को तबाह कर दिया, अनेक माताओं के दुर्बल नौजवानों को छीन लिया, बर्बाद कर दिया, हर मां बाप के सपनों को चूर चूर कर दिया। इस नक्सलवाद ने 4-4 दशक तक हिंदुस्तान के बहुत बड़े हिस्से को, बहुत बड़ी आबादी को दबोच करके रखा था, बंदूक के नोक पर दबोच करके रखा था, संविधान की धज्जियां उड़ा दी थी और देश के सामान्य नागरिकों की रक्षा में 3,500 से ज्यादा हमारी पुलिस के सुरक्षा बल के जवान शहीद हो गए। युद्ध के अंदर जितने सैनिक मरते हैं उससे ज्यादा हमारे पुलिस जवानों को जान की बाजी लगानी पड़ी ताकि देश के सामान्य मानवी को सुरक्षा मिले। ये नक्सलवाद ने धरती को लहू लुहान कर दिया था। 2014 में आपने जब हमें मौका दिया, उसी दिन हमने संकल्प लिया था कि हम देश को नक्सलवाद से मुक्त करेंगे। और आज मुझे खुशी है कि नक्सली माओवादी हिंसा आखिरी सांस विषाद रहने की अब तो ताकत नहीं रही है, पूरी तरह उसे खत्म करने की दिशा में जहां पर कभी नक्सलवादियों की गोलियां चलती थी, जहां पर कभी धरती रक्त रंजित रहा करती थी, आज उसी नक्सल क्षेत्रों में
उसी इलाकों में नक्सल मुक्त होने के कारण विकास, विश्वास और प्रयास का तिरंगा लहरा रहा है मेरे प्यारे देशवासियों। लेकिन इस चुनौती को हमने कम नहीं आंकना, इस चुनौती से हमें और भी सावधान रहने की जरूरत है। वर्षों तक देश की सत्ता में माओवादी सोच के लोग गलियारों में अपनी जगह बना करके बैठे थे, सरकारी कमेटियों में सलाहकार के रूप में भी ये माओवादी सोच ने नीतियों को प्रभावित किया था। मेरे प्यारे देशवासियों, जंगलों में हमें हथियारी नक्सलों का खात्मा बुलाने में, उस संकट से देश को मुक्त कराने में सफलता मिली है। लेकिन हथियारी नक्सल तो गए, लेकिन दिमागी नक्सल मौके की तलाश में है, हिंसा अराजकता के वो रास्ते खोज रहे हैं, समाज को गलत राह पर घसीटने के लिए भांति भांति के दांव कर रहे हैं। इन दिमागी नक्सलियों को पहचानना होगा, इन दिमागी नक्सलियों को आइसोलेट करना होगा और राष्ट्र को विकसित राष्ट्र बनाने की मुख्य धारा की ओर देश की युवा पीढ़ी को जोड़ना होगा। मेरे प्यारे देशवासियों, सुरक्षित भारत बनाना हम सबका दायित्व है। चुनौती सीमा के भीतर हो या सरहद से बाहर, भारत हर परिस्थिति के लिए तैयार है। आज युद्ध का नेचर बदल रहा है, अब युद्ध सीमा पर ही होता है गारंटी नहीं है, युद्ध सीमा के अंदर कहीं रिफाइनरी पे जाकर के, कहीं बैंकिंग सेक्टर को जाकर के, कहीं डेटा सेंटर को जाकर के, एक प्रकार से लड़ाई का नया रूप, इंफ्रास्ट्रक्चर तोड़े जा रहे हैं, फैक्ट्रियां तोड़ी जा रही है। हमने मिशन सुदर्शन चक्र की पिछले सालों घोषणा की, बहुत तेजी से उस पर काम चल रहा है। आज डिफेंस एक्सपोर्ट हमारा करीब 50 गुना बढ़ा है, करीब 100 देशों में हमारे अस्त्र शस्त्र पहुंच रहे हैं, वैश्विक पटल पर भारत की प्रतिष्ठा धीरे धीरे बढ़ रही है। बदलते हुए समय में अस्त्र शस्त्र की तरफ काम करना है, सैन्य बलों का सामर्थ्य बढ़ाना है, लेकिन साथ साथ नागरिकों को भी तैयार करना होगा। पिछली शताब्दी के युद्धों के अनुरूप जो सिविल डिफेंस की व्यवस्थाएं हमारे देश में विकसित हुई है वो कालबाह्य हो चुकी है, और इसलिए मैं आज लाल किले से घोषणा कर रहा हूं कि हम आने वाले दिनों में सिविल डिफेंस का एक वाइब्रेंट नेटवर्क खड़ा करेंगे, आधुनिक व्यवस्थाओं से उनको परिचित कराएंगे, आधुनिक संकटों से नागरिकों को रक्षा करने की क्या व्यवस्था हो सकती है, एक बहुत बड़ा वॉलेंट्री फोर्स सिविल डिफेंस का आधुनिक चुनौतियों को पार करने वाला हम बनाने वाले हैं। मेरे प्यारे देशवासियों, राष्ट्र के निर्माण में आज हमारी बहनों बेटियों का योगदान हम सबके लिए बहुत बड़ा प्रेरणा का कारण बना हुआ है। फाइटर जेट हो या सिविल एविएशन, हमारी बेटियां सबसे आगे दिखाई दे रही है। खेल कूद का मैदान हो, हमारी बेटियां आगे दिखाई दे रही है। स्टेम एजुकेशन में भर्ती होने की प्रक्रिया हो, सबसे ज्यादा हमारी बेटियां आगे दिख रही है। आज सेना में भी एनडीए से जो बेटियां निकली हैं वो बड़े रौब के साथ देश की सेना का नेतृत्व करने का सामर्थ्य दिखाने लगी। मेरी बेटियों की ताकत कैसी है, मैं पिछले दिनों सारण में एक सेमीकंडक्टर प्लांट में गया, वहां आदिवासी बेटियां, देश के अलग अलग कोने से आई हुई बेटियां काम कर रही थी। वो उस गांव से आई थी जिन्होंने पासपोर्ट क्या होता है पता तक नहीं था, वो बेटियां विदेशों में गई ट्रेनिंग लेकर के आई और आज चिप निर्माण का काम कर रही है, और बड़े कॉन्फिडेंस, मैं जो उनका कॉन्फिडेंस देखा मैं सचमुच में बहुत प्रभावित हुआ था। आज तीन करोड़ बहनों को हमने लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य तय किया था, उसको पार कर लिया। अब हम 6 करोड़ लखपति दीदी बनाने के लक्ष्य को लेकर के आगे बढ़ रहे हैं। 3 करोड़ नई लखपति दीदी बनना मतलब ग्रामीण अर्थव्यवस्था में बहुत बड़ा बदलाव,
मातृशक्ति के द्वारा आने वाला है। मेरे प्यारे देशवासियों, आज पंचायतों में, नगर पालिका में, महानगर पालिका में बहुत बड़ी मात्रा में हमारी महिलाएं जनप्रतिनिधि बनकर के देश का मार्गदर्शन कर रही है, समस्याओं का समाधान कर रही है, बहुत ही सक्षम नेतृत्व दे रही है। और इसी को ध्यान में रखते हुए हमने पार्लियामेंट में नारी शक्ति वंदन अधिनियम पारित किया था, लेकिन किसी न किसी कारण से राजनीति के अखाड़े में पिछले 40 साल से ये सपना हमेशा राजनीति के अखाड़े का शिकार हो गया है। मैं देश के सभी राजनीतिक दलों से आज लाल किले की प्राचीर से तिरंगे झंडे की छाया में खड़े होकर के प्रार्थना करता हूं, आग्रह करता हूं, आइए उन महिलाओं के सामर्थ्य के पुजारी बनिए, उन महिलाओं के सम्मान में आगे आइए और जल्द से जल्द हमारी माताओं बहनों को 33% विधानसभा और लोकसभा में उनको प्रतिनिधित्व मिले। ये भारत की नीति घड़तर के अंदर अपना योगदान दे, समय की मांग है। और मैं सभी राजनीतिक दलों से फिर से आग्रह करता हूं, आइए महिला आरक्षण लागू करके महिला सम्मान में आप भी जुड़िए, आप भी यश लीजिए, आप भी क्रेडिट लीजिए, लेकिन मेरी माताओं बहनों को हक दीजिए। मेरे प्यारे देशवासियों, विकसित भारत का संकल्प तभी पूरा होगा जब विकास अंतिम व्यक्ति तक पहुंचेगा। 2014 से पहले सिर्फ 25 करोड़ लोगों के पास सोशल सिक्योरिटी का कवर था, सिर्फ 25 करोड़ के पास। साथियों, पिछले 5-7 दशक में सिर्फ 25 करोड़, हमने एक दशक के भीतर भीतर 100 करोड़ देशवासियों को सोशल सिक्योरिटी का कवच दिया है। आयुष्मान भारत योजना से 70 साल की उम्र के बुजुर्गों से भी आज 5 लाख रुपए तक मुफ्त दवाई की व्यवस्था हो रही है। करोड़ों करोड़ों परिवारों को इसके कारण बहुत बड़ी सुविधा मिली है। और इस आयुष्मान कार्ड के कारण 2 लाख करोड़ रुपया जो दवाई और ऑपरेशन के पीछे खर्च होना था, वो मेरे परिवारों के बच्चे हैं, वो गरीब परिवार है, वो मध्यम वर्ग के परिवार है, उनको इतनी बड़ी। मेरे प्यारे देशवासियों, आज मुझे एक काम के लिए आपकी मदद चाहिए। मैं आप सबसे एक मदद मांग रहा हूं। सभी नौजवानों से मैं चाहता हूं कि आप इसका नेतृत्व करिए। आपका 1 या 2 घंटे देश को बहुत बड़ी शक्ति देने वाले हैं। आपको लगेगा ये 1-2 घंटे में मैं देश की क्या शक्ति, मैं बताता हूं, आप बहुत बड़ी शक्ति बनने वाले हैं। और इसलिए हर घर में वातावरण बने, इन दिनों देश में जनगणना का काम हो रहा है, सेंसस का काम हो रहा है, गिनती चल रही है। और गिनती सिर्फ आंकड़ों से बात बनती नहीं है, उसकी बारीकियों से नीतियां बनती हैं, योजनाएं बनती हैं, देश आगे बढ़ने की अपनी रूपरेखा तैयार करता है। और इसलिए सटीक जानकारियां होना बहुत जरूरी है। कभी कभी जो सरकार की तरफ से प्रतिनिधि आते हैं वो इतनी जल्दी में होते हैं, कभी स्पेलिंग एक लिख देते हैं, कभी अलग लिख देते हैं, और इसके कारण अल्टीमेट परिणाम हमें सही मिलने में दिक्कतें आती हैं। अब जब टेक्नोलॉजी अवेलेबल है और इस बार निर्णय किया है, आप स्वयं भी जनगणना में अपनी जानकारियां अपने मोबाइल फोन से भर करके दे सकते हैं। बाद में कोई बाबू आएंगे, कोई प्रतिनिधि आएंगे, आपसे चर्चा करेंगे, लेकिन आप परिवार के सब बैठ करके अगर डिजिटली अपना रजिस्ट्री करवा दे, सारी बारीकियां, स्पेलिंग में भी गलती ना हो, कोई भी जानकारियों में गलती ना हो, आप जितनी परफेक्ट जानकारी देंगे देश को आगे बढ़ने में बहुत बड़ी मदद मिलेगी। और इसलिए मैं देश के नौजवानों कहता हूं कि आप अपने परिवार के लोगों को बिठा करके पूरे फॉर्म को समझिए, पहले कागज पे फॉर्म को भर दीजिए, कोई गलती है तो करेक्ट कर लीजिए, और फिर टेक्नोलॉजिकली उसको डिजिटली
इसको अपलोड कर दीजिए, आप देखिए इतना बड़ा काम देश कर लेगा और देश का समय और शक्ति सही काम के लिए उपयोग आएगा। और इसलिए मेरे देश के नौजवानों को जनगणना के इस काम में सक्रियता से जुड़ने के लिए मैं आग्रह करता हूं। मेरे प्यारे देशवासियों, मैंने लाल किले से पंच प्राण की बात कही थी, इस पंच प्राण ने देश को अपने आत्मगौरव की ओर लेकर के आगे बढ़ने का, लक्ष्यों को पार करने के सामर्थ्य के साथ आगे बढ़ने का एक बहुत बड़ा संबल दिया है। हमें गुलामी की मानसिकता हर पल मिटाते ही रहना है। जिस भारत का सपना नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने देखा था, बाबा साहब अंबेडकर ने देखा था, पंडित नेहरू ने देखा था, सरदार पटेल, भगत सिंह, सुखदेव राजगुरु ने देखा था, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने देखा था, भगवान बिरसा मुंडा ने देखा था, ज्योतिबा फुले ने देखा था, उन सबसे प्रेरणा लेकर के हम आगे बढ़े। इस आइए इस संकल्प को हम दोहराए, स्वयं से ऊपर राष्ट्र का हित हो, स्वयं से ऊपर राष्ट्र का हित हो और कर्तव्य ही हमारी पहचान हो। मैं सभी देशवासियों से कहूंगा, समय हमारा है। मैं सभी देशवासियों से कहूंगा, समय हमारा है, अवसर हमारा है, संकल्प हमारा है। आइए सपनों को संकल्प बनाए, संकल्प को सामर्थ्य बनाए और सामर्थ्य को सफलता में बदल के रहे। आइए हर कदम को विकास का कदम बनाए, कदम से कदम मिलाए, मन से मन मिलाए, लक्ष्य से जुड़े रहे। एक दीप से जले दीप हजारों, आओ मिलकर विकसित भारत बनाए। इसी एक भावना के साथ इस मंगल पर्व पर आप सबको अनेक अनेक शुभकामनाएं। मेरे साथ बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे। बहुत बहुत धन्यवाद।

0: बहुत आभार महोदय। और वो सामने
1: माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने अभी लाल किले की प्राचीर पर बने ध्वज स्थल से राष्ट्र को संबोधित किया। प्रेरणादायी वक्तव्य आपके जो लंबे समय तक सभी को प्रेरित करते रहेंगे। और इस समय हम देख रहे हैं कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो राष्ट्रीय ध्वज फहराया है, शान से वो लहराता हुआ, और हमारे दाहिनी ओर से तीन रंगों के गुब्बारे इस समय गगन को चूमने के लिए तैयार ऊपर उड़ते हुए सभी की निगाहें इन गुब्बारों को देखती हुई माननीय प्रधानमंत्री जी इस समय अपने केंद्रीय मंत्रियों का अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं और ध्वज स्थल से ही हाथ हिलाकर जो विशाल जनसमुदाय यहां पर उपस्थित है उनका अभिवादन, उनका स्नेह भी स्वीकार कर रहे हैं। साथ ही जो एनसीसी कैडेट्स बैठे हैं, माई भारत के स्वयंसेवक इस समय बैठे हैं अपने श्वेत वस्त्र धारण किए हुए और बीच में नारंगी रंग से वंदे मातरम जिन्होंने लिखा है, वो करतल ध्वनि से माननीय प्रधानमंत्री जी के प्रति सम्मान और स्नेह प्रकट करते हुए माननीय प्रधानमंत्री जी का इस समय लाल किले की प्राचीर से उसके प्रांगण में प्रस्थान हो रहा है और सभी केंद्रीय मंत्री अपने अपने स्थान पर खड़े होकर हाथ जोड़कर माननीय प्रधानमंत्री जी का अभिवादन करते हुए उनके प्रति सम्मान प्रकट करते हुए शान से हमारा तिरंगा यहाँ पर लहराता हुआ सभी की निगाहें कभी प्राचीर की ओर, कभी आसमान में उड़ते तीन रंगों के गुब्बारों की ओर और कभी दाहिनी ओर जाती है, क्योंकि सब जानते हैं कि माननीय प्रधानमंत्री जी के वाहनों का काफिला उस ओर से आएगा कुछ ही देर में। और सभी इस उत्कंठा से भरे हुए कि अपने प्रिय प्रधानमंत्री जी को, जिन्होंने स्वयं को प्रधान सेवक कहा है, उन्हें नजर भर देख लें और अगर ये सौभाग्य प्राप्त हो जाए कि माननीय प्रधानमंत्री जी उनके सर पर हाथ रख दें तो जीवन भर के लिए ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि और एक ऐसी याद रहेगी जो इन युवाओं को तो प्रेरित करेगी ही, साथ ही इनके पूरे परिवार को और विद्यालयों को भी प्रेरित करेगी। हम आपको बताएं कि हर घर तिरंगा माननीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से जो ये अभियान शुरू हुआ है 9 अगस्त से इस बार 17 अगस्त तक चलेगा। इस बार नया ये है कि सूर्य पथ तिरंगा भी हमारे पास है जिसने कि भूखंड और कालखंड की सीमाओं को छोटा कर दिया है। यही है वसुधैव कुटुंबकम का वास्तविक भाव। अलग अलग देशों में जहां जहां सूर्य रश्मियां पहुंचेंगी यानी सूर्योदय के साथ ही भव्य उदय होगा हमारे राष्ट्रीय ध्वज का भी, हमारे प्रिय तिरंगे का भी। विभिन्न देशों में स्थित भारतीय दूतावास और मिशन के परस्पर संयोजन से तिरंगा फहराया जाएगा, अनेक माध्यमों से प्रदर्शित किया जाएगा, वैश्विक स्तर पर तकनीक का परंपरा के साथ समागम होगा। माननीय प्रधानमंत्री जी ने यहां राष्ट्रीय ध्वज फहराया और साथ ही इस मंच से आपने बात की शक्ति की, सप्त धारा की, यहीं से पंचप्रण का उल्लेख हुआ, स्वच्छ भारत यहीं से हमने अपनाया और फिर उसे दुनिया को भी दिखाया कि भारतीय जब एकजुट हो जाएं एक लक्ष्य के प्रति तो क्या कर सकते हैं। ऑपरेशन सिंदूर की सराहना इसी

मंच से हुई। आज माननीय प्रधानमंत्री जी ने विनिर्माण क्षेत्र में विशेष उपलब्धियों को हासिल करने की प्रेरणा दी है, इनोवेशन का हब भारत को बनाने की बात कही है। भारत की सॉफ्ट पावर किस तरह दुनिया में अपना स्थान

0: बड़ी उत्कंठा से यहाँ उपस्थित होते हैं इस बात के लिए, और उस काफिले के राह के किनारे कहीं खड़े होकर एक झलक पाने को आतुर होते हैं। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का युवाओं के साथ जो जुड़ाव है, जो भविष्य में 1 करोड़ ऐसे युवाओं को जो कि कर्तव्य को अपनी पहचान बनाए, राष्ट्र हित को सर्वोपरि रखे, ऐसे 1 करोड़ युवा अपने आप को कौशल के साथ जोड़ते हुए राष्ट्र के निर्माण में अपनी भूमिका निभाएं, इस बात का बहुत विशेष उल्लेख किया उन्होंने। इसके पहले भी उन्होंने अनेक बार युवाओं को केंद्र में रखते हुए अपने विजन को अपनी सोच को यहां से इस मंच से साझा किया है। शक्ति की सप्तधारा का बहुत विशेष उन्होंने आज एक नई सोच दी है इस देश को और देश के प्रगति को, विकास को, और इसमें जो 7 अलग अलग क्षेत्रों की उन्होंने बात की। दरअसल इसके पीछे चूंकि कार्य तो हर क्षेत्र में हो ही रहा है, लेकिन इसको गति देने की बात है, इसको शक्ति देने की बात है। और अब माननीय प्रधानमंत्री महोदय अपने वाहन से उतरकर बच्चों के बीच में पहुंच रहे हैं, इसलिए करतल ध्वनि के जो गूंज है वो आप तक पहुंच रही होगी। प्रधानमंत्री जी ने दोनों हाथ हवा में लहराते हुए उन बच्चों को अपना आशीष दिया है, और जो 7 बच्चे वहां निकट हैं उनके उन बच्चों के साथ वो हाथ मिलाकर उन्हें अपना स्नेह दे रहे हैं। इस समय बच्चों के लिए ये विशेष अवसर होता है, क्योंकि एक बार का दृश्य मुझे याद है, पहले का बच्चे जब खड़े होते हैं तो सब निकट आने की कोशिश करते हैं, और ऐसे में थोड़ी सी अफरा तफरी भी होती है, लेकिन चूंकि अनुशासन और संयम का ये एक दृश्य इस समय एनसीसी के विद्यार्थी यहां पर दिखा रहे हैं, तो वो दृश्य हम यहां पर देख पा रहे हैं। सभी अपने अपने स्थान पर बैठे हुए युवा साथी अभिवादन कर रहे हैं प्रधानमंत्री जी का और उनका स्नेह प्राप्त कर रहे हैं।
1: जी, और जिन बालिकाओं से माननीय प्रधानमंत्री जी ने हाथ मिलाया है उनके लिए तो ये एक ऐसा पल है जो वो लंबे समय तक याद करेंगी, और जब एक लक्ष्य चुनेंगी, अपने जीवन को एक दिशा देंगी, उस समय भी ये पल उन्हें अभिभूत करता रहेगा, प्रेरित करता रहेगा। माननीय प्रधानमंत्री जी इस समय एनसीसी कैडेट्स के बीच से दोनों ओर हाथ हिलाते हुए जैसे एक साथ सभी को अपना स्नेह, अपना आशीष देना चाहते हों, और ये कैडेट्स जो हैं बहुत ही मुश्किल से संयम दिखा रहे हैं, इस समय अपने अपने स्थान पर बैठे हुए हैं निर्देशों का पालन करते हुए, लेकिन अपना स्नेह लगातार प्रकट कर रहे हैं माननीय प्रधानमंत्री जी के प्रति। हवा में दोनों हाथ हिलाते हुए नमस्कार भी कर रहे हैं, और साथ ही भारत माता की जय के नारे यहां पर माननीय प्रधानमंत्री जी के समक्ष लगा रहे हैं। मैं भारत के उज्ज्वल भविष्य का प्रमाण हूं, राष्ट्र हित में होने वाला सारा उत्थान हूं, स्वामी विवेकानंद के विचारों का चितवान हूं, मैं युवा हूं, मैं भारत का प्राण हूं।
0: प्रधानमंत्री जी ने एक जो उनके पूरे व्यक्तित्व और कृतित्व से एक बात, एक संदेश जो साफ झलकती है वो है नई सोच नागरिक देवो भव का। नागरिक को केंद्र में रखते हुए अपने पूरे सुशासन के तंत्र को, व्यवस्था को उस ढंग से रूप देना, आकार देना। बच्चों के बीच से होते हुए प्रधानमंत्री महोदय अब दर्शक दीर्घा की तरफ जा रहे हैं। हमारी बाई तरफ जो दर्शक दीर्घाएं बनी है उसके रेलिंग के साथ साथ बहुत बड़ी संख्या में लोग बड़े उत्साह उमंग से अपने अपने मोबाइल को हाथ में पकड़े हुए, वे कोई सेल्फी लेना चाहता है, कोई फोटो खींचना चाहता है, कोई हाथ हवा में लहराते हुए प्रधानमंत्री जी का अभिवादन और अभिनंदन कर रहे हैं। देश का ये वो नेतृत्व है जो दुनिया में सबसे अधिक लोकप्रिय है, जो विकसित भारत की सोच और विजन को इस देश को जिन्होंने दिया है, इस देश के करोड़ों युवाओं को नई ऊर्जा, आत्मविश्वास और आत्मगौरव का भाव जिन्होंने भरा है, और हर व्यक्ति आज, हर भारतवासी इस विश्वास के साथ कि भारत विकसित होगा, भारत आत्मनिर्भर होगा, भारत अपने स्वदेशी सोच और अपने पुरातन चिंतन के साथ, धर्म और आध्यात्म के साथ विश्व में अपनी पहचान बनाएगा, भारत विकसित भी होगा, अपनी विरासत के साथ विकसित होगा। इस समय दर्शक दीर्घा में काफी आगे तक प्रधानमंत्री जी बढ़ चुके हैं, और उनकी इच्छा होती है कि कोई भी दूर दूर तक, जहां तक भी दर्शक आए हुए हैं, और बल्कि ये देश के अलग अलग हिस्सों से आए हुए हैं, इसमें ऐसी बड़ी संख्या में हमारे दर्शक हैं जो अलग अलग जो सरकार की नीतियां रही हैं, उनकी योजनाएं रही हैं, उसका लाभ लेते हुए जिन्होंने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है, और उन सबको विशेष रूप से इस आयोजन का हिस्सा बनने के लिए देश के अलग अलग हिस्सों से यहां आमंत्रित किया गया है। और सबसे बड़ी खास बात यह है, आकर्षण की चीज ये लगती है कि वो सभी अपने अपने प्रदेश की अलग अलग वेशभूषा में यहां पर आए हुए हैं, अधिकांशता उसमें से। वहां प्रधानमंत्री महोदय के निकट अपने आप को पाकर वो निश्चित रूप से बहुत सौभाग्यशाली महसूस कर रहे होंगे।
1: जी बिल्कुल जैनेन्द्र, और यहाँ पर भारत में जो अन्य देशों के दूतावास हैं उनके प्रतिनिधियों की उपस्थिति भी है, इस समय वे भी बेहद आह्लादित महसूस कर रहे हैं, और माननीय प्रधानमंत्री जी की यही शैली जो अपने देशवासियों से जुड़ने की शैली है, इससे दुनिया के बहुत सारे नेता प्रेरित हुए हैं, और यही वजह है कि खाड़ी और मध्य पूर्व के देशों या हमारे पड़ोसी और एशियाई देशों या फिर कई अंतर्राष्ट्रीय संगठनों, आपने माननीय प्रधानमंत्री जी को सम्मानित किया है अपने देश के सर्व

0: सर्वोच्च राजकीय सम्मान दिए हैं, सैन्य सम्मान दिए हैं, क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री जी ने, श्री नरेंद्र मोदी जी ने अपने व्यवहार से अन्य देशों को भी दिखाया है कि किस प्रकार से अपने देशवासियों से जुड़ना है, उनके आकांक्षाओं को कैसे समझना है और किस प्रकार से उनके लिए जनहित की नीतियां बनाकर जन जन को राष्ट्र निर्माण के लिए, राष्ट्र के विकास के लिए प्रेरित करना है। माननीय प्रधानमंत्री जी, अपने प्रिय ये जो जनता है, इनसे भेंट करने के बाद, शासन भेंट करने के बाद, अब पुनः जो एनसीसी कैडेट्स हैं उनकी ओर प्रस्थान कर रहे हैं, लेकिन लगातार हाथ हिलाते हुए, सभी का अभिवादन स्वीकार करते हुए, और जो माननीय प्रधानमंत्री जी के सुरक्षा कर्मी हैं उनके लिए ये थोड़ी सी कठिन घड़ी है, क्योंकि लगातार पैनी दृष्टि हर ओर उन्होंने बना रखी है, लेकिन वो भी समझते हैं कि माननीय प्रधानमंत्री जी प्रत्युत्तर दे रहे हैं सबके स्नेह का, इसलिए उचित दूरी उन्होंने बनाए रखी है, लेकिन पूरी तरह से मुस्तैद और चौकस हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी के चेहरे पर स्नेहिल मुस्कान है अपने देशवासियों को देखकर, और साथ ही जो बच्चे हैं यहाँ पर उन्हें देखते हुए, और ये जो देशवासी है इस समय आभार प्रकट कर रहे हैं एक तरह से उन नीतियों के लिए जिन्होंने इनके जीवन में बड़ा बदलाव किया है, चाहे वो मेक इन इंडिया हो, जीएसटी हो, आर्थिक सशक्तिकरण हो, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, प्रधानमंत्री जी की कही ये उक्ति हो, हरित ऊर्जा हो, अंतरिक्ष अनुसंधान हो, जनधन से जन जन तक होता वित्तीय समावेशन हो, उन सभी के प्रति एक तरह से आभार प्रकट करते हुए माननीय प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद कहते हुए अपने जो ये संकेत है उनसे, और अब माननीय प्रधानमंत्री जी के बेहद नजदीक पहुंच गए कुछ एनसीसी कैडेट और सुरक्षा कर्मी, उन्हें स्नेहिल भाव से थोड़ा हटाते हुए, वहाँ थोड़ा अनुशासन बनाते हुए, स्वच्छ भारत, स्वस्थ भारत का सपना, डिजिटल भारत जिसकी धूम अब दुनिया भर में है, और साथ ही आत्मनिर्भर भारत, माननीय प्रधानमंत्री जी हमेशा ये कहते रहे हैं हमारे उत्पाद जो हैं वो वैश्विक गुणवत्ता के हो, हमारे बाजार दुनिया भर के लिए खुले रहें, और जब भी कोई विदेशी मेहमान हमारे यहां आता है तो जो भोजन परोसा जाता है उसमें हमारे हर प्रांत का कोई एक व्यंजन उसमें होता है, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, और साथ ही जो हमारे बुनकर हैं उनके द्वारा बुनी हुई जो वस्तुएं हैं वो भेंट स्वरूप माननीय प्रधानमंत्री जी देश दुनिया के बड़े नेताओं को देते हैं, और बहुत सारी इस तरह की सरकारी योजनाएं हैं जिनका लाभ लगातार हमारे देशवासियों को मिलता रहा है। साथ ही माननीय प्रधानमंत्री जी ने ये जो मंच है, गरिमामयी मंच है, यहाँ से भी देश दुनिया को एक नई दिशा दिखाई है, नए प्रयास किए हैं, देशवासियों को लगातार प्रेरित किया है आगे बढ़ने के लिए, और अब नया लक्ष्य हमारे सामने विकसित भारत का, जिसमें हम सभी को लगातार योगदान देना है।
1: आज प्रधानमंत्री जी ने इस लाल किले के प्राचीर से जहां संकल्पों की बात की, संकल्प से सामर्थ्य के निर्माण की बात की, और सामर्थ्य से सफलता की राह पर आगे बढ़ते हुए देश को समृद्धि के राह पर विकसित भारत बनाने का एक संकल्प उन्होंने दिया है। बीते 12 वर्षों में सरकार की तरफ से माननीय प्रधानमंत्री महोदय के नेतृत्व में जो तमाम प्रयास किए गए हैं, उनके बारे में इस बात की परिकल्पना शायद पहले भी किसी ने नहीं की होगी कि उनका इतना बड़ा परिणाम और फल इस देश को मिलेगा। उदाहरण के लिए अगर हम बात करें जनधन योजना की ही, तो जब जनधन योजना की शुरुआत हुई, आज आप अंदाजा लगा सकते हैं कि बैंकिंग सेवा देश के कोने कोने तक पहुंची है, हर गांव तक पहुंची है, 99.92% गांवों तक इस सेवा की पहुंच बनी है, ये निश्चित रूप से 100% आप इसको कह सकते हैं। और किसी भी गांव में, 6 लाख से अधिक गांव में देश में मात्र 5 किलोमीटर की दूरी के भीतर भीतर बैंकिंग सेवाएं प्राप्त होती हैं। प्रधानमंत्री महोदय बच्चों के बीच से निकलते हुए और एक बार फिर से प्राचीर की तरफ उन्होंने हाथ हिलाकर यहाँ के अतिथियों का भी अभिवादन स्वीकार करते हुए अब अपने वाहन में वो सवार हो चुके हैं, और अब समय है जब 80वें स्वतंत्रता दिवस समारोह के अंतिम में माननीय प्रधानमंत्री महोदय राष्ट्र को संबोधित करने के बाद और यहां उपस्थित जनसमुदाय और विशेष रूप से युवा शक्ति के साथ संवाद और निकटता का एक भाव प्रेषित संप्रेषित करने के बाद अपने वाहन में सवार होकर यहां से अब प्रस्थान करने जा रहे हैं। आप सबके लिए उनकी तरफ से जो प्रेरणा मिली है इस राष्ट्र को निश्चित रूप से आगे लेकर जाएगी।
0: जी बिल्कुल, और माननीय प्रधानमंत्री जी अब अपने वाहन में सवार हो चुके हैं, वाहनों का काफिला मंथर गति से बूथ जो है हमारा उसकी बाईं ओर बढ़ता हुआ धीरे धीरे, और जो एनसीसी कैडेट्स हैं वो अब पुनः अपना स्थान ग्रहण कर चुके हैं, जो आगंतुक है वो माननीय प्रधानमंत्री जी के वाहनों की भी तस्वीर इस समय ले रहे हैं, और साथ ही प्रधानमंत्री जी अपने वाहन के भीतर से भी हाथ हिलाकर लगातार सभी का अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं। नया देश है, नया भारत।

0: है, बदलती तस्वीर है, जिसमें बेटियों को भी बराबरी मिल रही है। और इसी वजह से शायद माननीय प्रधानमंत्री जी ने जब एनसीसी कैडेट्स के बीच पहुंचे तो सबसे पहले एक बेटी के सर पर हाथ रखा। सैन्य क्षेत्र, शिक्षा, विज्ञान, कृषि, फैशन, खेल और उद्योग क्षेत्र में भारत माँ की बेटियां भी प्रभावशाली प्रदर्शन कर रही हैं। फाइटर कॉम्बैट लीडर बनना हो या ड्रोन दीदी, या फिर अपनी मेहनत से सफलता के नए अध्याय रचती लखपति दीदी हो, माँ भारती का नाम रोशन कर रही हैं देश की बेटियां। कॉमनवेल्थ गेम्स में हमारे मेहनती खिलाड़ियों ने 13 स्वर्ण पदक जीते, जिनमें 8 स्वर्ण पदक बेटियों ने जीते हैं। 10 करोड़ से अधिक महिलाएं स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी हैं। लगभग 3 करोड़ महिलाएं लखपति दीदी बन चुकी हैं। इस दिशा में नए लक्ष्य हासिल किए जा रहे हैं और ऐसे ही लक्ष्य माननीय प्रधानमंत्री जी ने आज भी हमें दिए हैं। मत पूछो मुझसे देश क्या है, ये कागज पर खींची रेखा नहीं, ये उन वीरों की आखिरी सांस है जिन्होंने पीछे मुड़कर देखा नहीं। हमारे स्वतंत्रता संग्राम के जो सेनानी हैं उनके प्रति आभार प्रकट करने का दिन आज, लेकिन साथ ही जो राष्ट्र निर्माण में लगातार सहयोग करते रहे हैं उनके प्रति भी। निष्ठावान विद्यार्थी और शिक्षक, विकास के लिए तत्पर वैज्ञानिक और इंजीनियर, स्वास्थ्य सेवा में कार्यरत डॉक्टर और स्वास्थ्यकर्मी, मेहनती श्रमिक और अन्नदाता किसान, प्रतिभावान खिलाड़ी, शिल्पकार और कलाकार, जनहित में सेवारत जनप्रतिनिधि, न्याय व्यवस्था से जुड़े न्यायकर्मी, कार्यनिष्ठ सिविल सेवक, अर्थव्यवस्था में योगदान देने वाले छोटे बड़े सभी निवेशक, निस्वार्थ समाज सेवी और स्वच्छता अभियान के अग्रणी कार्यकर्ता, हमारे सैनिक और सशस्त्र बल, अपनी कर्तव्य निष्ठा से हम सभी को विश्व पटल पर भारत का मान सम्मान बढ़ाना है, इसमें अपना दायित्व निभाते हैं प्रवासी भारतीय भी। सभी के ऊपर ये दायित्व के 2047 तक हमें भारत को विकसित भारत बनाना है। और आपको फिर से एक बार आकाशवाणी की पूरी टीम की ओर से 80वें स्वतंत्रता दिवस की बधाई देते हुए मैं तकनीकी टीम प्रमुख श्री जितेंद्र पुरुथी, तकनीकी टीम के सदस्य शांतनु घोष, शक्ति धरध्यानी, अशोक कुमार मिश्र, कमल सिंह, सुमित कटियार, नागेंद्र पटेल, नीरज तिर्की, बाबूलाल मीणा, राजकमल शर्मा, नरेंद्र नाथ, किरण पाल सिंह, विष्णु आनंद तिवारी, अतुल कुमार, हेमराज मीणा, विशाल कुमार, अभिषेक कुमार, कार्यक्रम प्रमुख श्रीमती मनीषा जैन, कार्यक्रम टीम के सदस्य विवेक कुमार तोमर, तुषार पाराशर, शाहनवाज खान, भगवती चरण बौखंडी, जगमोहन सिंह, कार्यक्रम संयोजक श्री प्रमोद कुमार वत्स के साथ मैं नीलम मलकानिया अपने साथी कमेंटेटर जैनेन्द्र सिंह और देवेंद्र त्रिपाठी के साथ पुनः 80वें स्वतंत्रता दिवस की बधाई और शुभकामनाएं प्रेषित करती हूँ। आपको आकाशवाणी के स्टूडियो वापस लेकर चलती हूँ। जय हिंद।
1: अभी आप भारत के 80वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर लाल किले से ध्वजारोहण समारोह और भारत के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा राष्ट्र को किए गए संबोधन का सजीव विवरण सुन रहे थे। विवरण दे रहे थे श्री जैनेन्द्र सिंह, सुश्री नीलम मलकानिया और श्री देवेंद्र त्रिपाठी।
2: पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है।
3: आयुष्मान भारत, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, पात्र परिवार के लिए 5 लाख रुपए का मुफ्त इलाज प्रति वर्ष प्रति परिवार। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना ने दी है 60 करोड़ से अधिक भारतीयों को इलाज की चिंता से आजादी।
4: अब तक 12 करोड़ से अधिक मुफ्त इलाज हो चुके हैं, जिससे चिकित्सा खर्च में गरीब परिवारों की लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई है। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 1-4-5-5-5।
3: आयुष्मान भारत, अब इलाज की चिंता से आजादी।

0: करते जा रही।
1: जब भी हेलमेट खरीदें या कोई इलेक्ट्रॉनिक सामान BIS ISI मार्क देखकर ही खरीदें, क्योंकि जान है तो जहान है। जागो ग्राहक जागो। उपभोक्ता मामले विभाग, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
2: PM जय अब गरीबों की जय बन गई है।
3: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, पात्र परिवार के लिए 5 लाख रुपए का मुफ्त इलाज प्रतिवर्ष प्रति परिवार। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना ने दी है 60 करोड़ से अधिक भारतीयों को इलाज की चिंता से आजादी।
4: अब तक 12 करोड़ से अधिक मुफ्त इलाज हो चुके हैं, जिससे चिकित्सा खर्च में गरीब परिवारों की लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई है। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 1-4-5-5-5।
3: आयुष्मान भारत, अब इलाज की चिंता से आजादी।

シュルー。

0: अब सभी अपने स्थान पर खड़े होंगे, वर्दीधारी सैल्यूट करेंगे।
1: शुरू कर।

0: यह आकाशवाणी भोपाल है। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर भोपाल के मोतीलाल नेहरू स्टेडियम में आयोजित समारोह एवं प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव का प्रदेश की जनता के नाम संदेश का सीधा प्रसारण हम आपको सुनवाने जा रहे हैं।
1: वापस जगह लो।
2: नमस्कार, आकाशवाणी परिवार की ओर से हमारे सभी श्रोताओं को 80वें स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाइयां। भोपाल के लाल परेड मैदान से मैं पुरुषोत्तम श्रीवास प्रदेश के मुख्य स्वतंत्रता समारोह का आंखों देखा हाल सुनाने के लिए भोपाल के लाल परेड मैदान में हम अपनी टीम के साथ उपस्थित। अभी थोड़ी देर पहले ही इस समारोह के मुख्य अतिथि प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी ने परेड का निरीक्षण किया और उसके बाद हर्ष फायर हुआ। आज मौसम की अगर हम बात करें तो मौसम बहुत ही साफ है, बादल जरूर है लेकिन एकदम साफ और खुशनुमा माहौल इस भोपाल के लाल परेड मैदान में। भोपाल के लाल परेड मैदान की अगर बात करें तो ये नए और पुराने भोपाल के मध्य स्थित है और बहुत ही ऐतिहासिक मैदान है। ये लगभग 150 वर्ष पुराना मैदान और इसी लाल परेड मैदान पर प्रदेश का मुख्य स्वतंत्रता दिवस समारोह आयोजित किया जा रहा है। इस समारोह में आज 22 प्लाटून जो हमारे सशस्त्र बल हैं, पुलिस बल हैं, एनसीसी के जो छात्र हैं, छात्राएं हैं, कैंडिडेट हैं, ऐसे 22 दल इस मार्च पास्ट में शामिल हो रहे हैं और कुल 47 लोगों को इस मुख्य समारोह में अलंकरण भी, पदक अलंकरण भी प्रदान किया जाएंगे। आप सुन रहे हैं ये जो 22 दल इस मुख्य परेड में शामिल हैं वो मार्च पास्ट करते हुए हैं।

0: नेतृत्व कर रहे हैं श्री अजय ने बाल्मीक। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल का नेतृत्व कर रहे हैं श्री सत्यनारायण। भारत तिब्बत सीमा पुलिस का नेतृत्व कर रहे हैं श्री सुदिष्ट कुमार। सशस्त्र सीमा बल को आगे नेतृत्व करने वाले हैं श्री केशव राम पटेल कुर्मी। साथ में सीमा सुरक्षा बल श्री अपर्ण मिश्रा सीमा सुरक्षा बल का नेतृत्व कर रहे हैं इस परेड में। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल श्री मनीष कुमार मेहरा के नेतृत्व में आगे बढ़ रही है। हाक फोर्स श्री सुमित कुमार मिश्रा, एसटीएफ श्री गजराज सिंह चौहान, महिला जो जिला बल है रेल का उसका नेतृत्व कर रही है सुश्री सपना डोटिया। विशेष सशस्त्र बल की अगुवाई कर रहे हैं श्री अग्रज समाधिया। विशेष सशस्त्र बल उत्तरी जोन श्री चंचल रोमड़े के निर्देशन में मार्च पास्ट कर रही है और जिला पुलिस बल श्री बलबीर सिंह खरतिया के निर्देशन में मार्च पास्ट करते हुए और अभी हमारे ठीक सामने से ये टुकड़ियां जो है सशस्त्र बलों की टुकड़ियां हमारे ठीक सामने से मार्च पास्ट करती हुई।
1: और अब इसके बाद आईटीबीपी प्लाटून नेतृत्व कर रहे श्री सुदिष्ट कुमार सेंट्रल।
0: जिला पुलिस बल जैसा हमने बताया श्री बलबीर सिंह खरतिया इस दल का नेतृत्व कर रहे हैं और जेल विभाग श्री सौरभ सिंह के अगुवाई में अभी मार्च पास्ट कर रहा है। शासकीय रेल पुलिस, नगर सेना, एनसीसी सीनियर डिवीजन, एयर विंग, नेवल विंग, एनसीसी सीनियर विंग, एयर विंग, गाइड गर्ल्स, स्काउट्स बॉयज, शौर्य दल, पुलिस बैंड और अश्वरोही दल, ये सारी जो टुकड़ियां हैं पुलिस बल की सशस्त्र बलों की ये अभी अभी हमारे सामने से मार्च पास्ट करती हैं और माननीय मुख्यमंत्री मंच पर इन बलों को सलामी दे रहे हैं। ये 80वां स्वतंत्रता दिवस हम मना रहे हैं जो कि राज्य का मुख्य समारोह है भोपाल के लाल परेड मैदान पर। अभी ये प्लाटून दल मंच के ठीक सामने से अपना परेड के साथ यहाँ से ठीक सामने से मंच से निकलते हुए और माननीय मुख्यमंत्री महोदय इन दलों को सलामी देते हुए।
2: अगले क्रम में अग्रसर होता हुआ विशेष सशस्त्र बल दक्षिणी जोन का प्लाटून।
0: इस मुख्य समारोह में आज कुल 9 पुलिस विभाग के जो राष्ट्रपति का विशेष सेवा पदक है 9 विभूतियों को ये प्रदान किया जाएगा। पुलिस विभाग सराहनीय सेवा के लिए कुल 33 पदक वितरित किए जाएंगे और पुलिस नगर सेना और नागरिक सुरक्षा सराहनीय सेवा के लिए जो पदक हैं वो 3 पदक आज यहाँ दिए जाएंगे और इस तरह से कुल मिला के 33 पदक यहाँ पर आज दिए जाएंगे। माननीय मुख्यमंत्री महोदय इस समारोह के मुख्य अतिथि इन बलों की सुरक्षा बलों की पुलिस बल की एनसीसी बलों की टुकड़ियों को सलामी देते हुए और ये बल यहाँ मार्च पास्ट करते हुए ठीक मंच के सामने से गुजरते हुए
2: बढ़ता हुआ एनसीसी सीनियर डिवीजन एयर विंग नेवल विंग बॉयज का प्लाटून नेतृत्व करता एसयूओ श्री वासुदेव मैथिल।
1: दिव्य सज्जनों इसके साथ है एनसीसी सीनियर विंग एयर विंग नेवल विंग गर्ल्स।
0: आज जिन लोगों को पुलिस विभाग के राष्ट्रपति का विशिष्ट सेवा पदक प्रदान किया जाएगा वो है श्री योगेश देशमुख महानिदेशक लोकायुक्त मध्य प्रदेश, श्री मकरंद दोईस्कर पुलिस महानिरीक्षक बीएसएफ नई दिल्ली, श्री राकेश गुप्ता अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक उज्जैन जोन, श्री संतोष कुमार सिंह पुलिस आयुक्त इंदौर, श्री मिथिलेश कुमार शुक्ला पुलिस महानिरीक्षक सागर जोन, श्री अवधेश कुमार गोस्वामी उप पुलिस महानिरीक्षक भोपाल, श्री शिव कुमार पटेल निरीक्षक विशेष शाखा इंदौर, श्री वाल्टर हेनरी एक्का प्रधान आरक्षक 25वीं वाहिनी भोपाल और श्री देवेंद्र कुमार कौशल प्रधान आरक्षक 7वीं वाहिनी भोपाल। इन 9 पुलिस अधिकारियों को आज पुलिस विभाग राष्ट्रपति का विशेष सेवा पदक यहां दिया जाएगा। इस पदक से इन अधिकारियों को सम्मानित किया जाएगा। अभी मंच के सामने से सुरक्षा बलों के दल टुकड़ियां मार्च पास्ट करती होगी।

0: मध्य प्रदेश पुलिस का बैंड अभी मंच के ठीक सामने से गुजरता हुआ, सुरक्षा बलों की ये दल मंच के ठीक सामने से गुजर रहे हैं और इस समारोह के मुख्य अतिथि प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी इन सुरक्षा बलों को, इन सुरक्षा बलों की टुकड़ियों को सलामी देते हुए मंच पर। कुल 33 लोगों को इस समारोह में आज पुलिस विभाग के सराहनीय सेवा पदक से सम्मानित किया जाएगा और पुलिस विभाग के राष्ट्रपति का विशिष्ट सेवा पदक है वो 9 लोगों को दिया जाएगा, 9 अधिकारियों को इस पदक से सम्मानित किया जाएगा। ये दिन आज हम सबके लिए बहुत ऐतिहासिक दिन होता है। आज़ादी हमें जो मिली है बड़ी मुश्किलों में मिली है, हज़ारों कुर्बानियों के बाद आज हमें आज़ादी मिली है और आज उन शहीदों को नमन करने का दिन है। ये स्वतंत्रता दिवस समारोह 80वां प्रदेश का मुख्य समारोह भोपाल के लाल परेड मैदान पर आयोजित हो रहा है। निश्चित तौर पर ये आज़ादी हमें जब मिली है तो इस आज़ादी को संभाल कर रखना भी हमारा दायित्व है, हमारी जिम्मेदारी है और इस आज़ादी को बचा कर रखना हम सबका दायित्व है और जिम्मेदारी है। भोपाल में लाल परेड पर आज मध्य प्रदेश का मुख्य समारोह 80वां स्वतंत्रता दिवस समारोह भोपाल के लाल परेड मैदान पर आयोजित हो रहा है। सशस्त्र बलों की ये टुकड़ियां मंच के सामने से गुजरती हुई अपना स्थान ले रही हैं। इसमें हम देख पा रहे हैं कि पुलिस का बैंड दल भी है और अश्व दल भी सबसे पीछे चल रहा है। इस तरह से लगभग अपने अपने स्थान की ओर ये टुकड़ियां पहुंच रही हैं। कुल 22 दल इस मार्च पास्ट में शामिल हुए हैं। महाराष्ट्र पुलिस से लेकर केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल, भारत तिब्बत सीमा पुलिस, सशस्त्र सीमा बल, सीमा सुरक्षा बल, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल, हॉक फोर्स, एसटीएफ, महिला बल, विशेष सशस्त्र बल, जिला पुलिस बल, जेल विभाग, शासकीय रेल पुलिस, नगर सेना, एनसीसी सीनियर डिवीजन, ईयर विंग, नेवल विंग, एनसीसी सीनियर विंग, ईयर विंग, नेवल विंग, गर्ल्स, गाइड गर्ल्स, स्काउट बॉयज, शौर्य दल, पुलिस बैंड और अश्वरोही दल। और अब मार्च पास्ट के बाद ये दल अपने अपने निर्धारित स्थान पर पहुंच चुके हैं। राज्य का मुख्य स्वतंत्रता दिवस समारोह, 80वां स्वतंत्रता दिवस समारोह भोपाल के लाल परेड मैदान पर आयोजित किया जा रहा है। ये वो मैदान है जो लगभग 150 वर्ष पुराना मैदान और नए और पुराने भोपाल को जोड़ने वाला ये ऐतिहासिक मैदान भोपाल का लाल परेड मैदान। बहुत ही खुशनुमा माहौल, केसरिया सफेद और हरे रंग के गुब्बारे से सजा हुआ ये मैदान। यहाँ हम जो भी देख पा रहे हैं सभी के चेहरों पर खुशी, गर्व और गौरव झलक रहा है। कितनी कुर्बानियों के बाद ये आज़ादी हमें मिली है, इस खुली हवा को महसूस करने का दिन स्वतंत्रता दिवस। और अब फिर हम देख पा रहे हैं जो सशस्त्र बलों की, पुलिस बल की, एनसीसी कैडेट्स की जो टुकड़ियां हैं वो सलामी देते हुए।
1: और अब अभ्युदय मध्य प्रदेश के शिल्पी मध्य प्रदेश की यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव से निवेदन है 80वें स्वाधीनता दिवस पर हम
0: और अब समारोह के मुख्य अतिथि प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन सिंह यादव का उद्बोधन।
2: इस अवसर पर आप सभी को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। मैं प्रदेश के 8.5 करोड़ नागरिकों की ओर से आजादी के सभी जननायकों और स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के चरणों में कोटि कोटि वंदन करता हूँ। स्वाधीनता के इस संग्राम में रानी दुर्गावती, रानी अवंतीबाई लोधी, महाराजा छत्रसाल, कंटिया मामा भील से लेकर चंद्रशेखर आजाद तक मध्यप्रदेश के अनगिनत वीर सपूतों ने अपनी अपनी आहुतियाँ दी है। कृतज्ञ मध्य प्रदेश आज उन सभी को श्रद्धापूर्वक नमन करता है। मैं मध्य प्रदेश वासियों की ओर से पुलिस और हॉक फोर्स के उन वीर जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ जो आंतरिक सुरक्षा के मोर्चे पर असीम शौर्य का परिचय देते हुए वीर गति को प्राप्त हुए। ऐसे ही जाबाजों की बदौलत नक्सल मुक्त प्रदेश बनाने की ऐतिहासिक उपलब्धियां हासिल हुई। पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न आदरणीय अटल जी ने भारतवर्ष की महिमा को इन पंक्तियों में व्यक्त किया है। भारत जमीन का टुकड़ा नहीं है, जीता जागता राष्ट्रपुरुष है। हिमालय मस्तक है, कश्मीर किरीट है, पंजाब और बंगाल दो विशाल कंधे हैं, पूर्वी और पश्चिमी घाट दो विशाल जंघाएं हैं, कन्याकुमारी इसके चरण है, सागर इसके पग पखारता है। ये चंदन की भूमि है, अभिनंदन की भूमि है, यह तर्पण की भूमि है, यह अर्पण की भूमि है। इसका कंकर कंकर शंकर है, इसका बिंदु बिंदु गंगा जल है। हम जिएंगे तो इसके लिए और मरेंगे तो इसके लिए। आज़ादी का ये महोत्सव इसीलिए भी अविस्मरणीय हो गया है क्योंकि राष्ट्रीय पर्व पर राष्ट्रगीत वंदे मातरम का भी गायन हो रहा है। माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जन कल्याण को केंद्र में रखते हुए भारत को आधुनिक, विकसित, आत्मनिर्भर, सुरक्षित, समृद्ध और गौरवशाली बनाने के लिए अनेक ऐतिहासिक उपलब्धियां प्राप्त हुई है। उनके कुशल मार्गदर्शन में आज भारत की गणना विश्व के अग्रणी राष्ट्रों में हो रही है। भाइयों और बहनों, भारत की भूमि समानता, समरसता और समभाव की भूमि है। भगवान श्री राम से लेकर भगवान श्री कृष्ण तक और संतों से लेकर महापुरुषों तक सभी ने समानता का संदेश दिया है। भारतीय संविधान की इसी मूल भावना के अनुरूप ऐतिहासिक कदम उठाते हुए मध्य प्रदेश में समान नागरिक संहिता का कानून लागू कर रहे हैं। हमने एक देश एक विधान एक प्रधान एक निशान के विचार को धरातल पर उतारकर सबके लिए एक जैसा कानून लागू कर रहे हैं। समान नागरिक संहिता एक और भेदभावपूर्ण व्यवहार को समाप्त कर समरसता का संचार करेगी तो दूसरी ओर महिलाओं को अत्याचार और अन्याय से मुक्ति दिलाएगी।

अमरस्ता के संत गुरु रविदास जी महाराज की 650वीं जयंती का उत्सव भी हम 18 अगस्त 2026 से प्रदेश में मनाने जा रहे हैं। वसुदेव कुटुंबकम भारतीय संस्कृति का मूल है। यह हर्ष का विषय है कि जून 2026 में ब्रिक्स देशों के कृषि मंत्रियों एवं कृषि कार्य समूह तथा अगस्त 2026 में ब्रिक्स देशों के संस्कृति मंत्रियों और ब्रिक्स कार्य संस्कृति के समूह की बैठक का आयोजन मध्य प्रदेश को प्राप्त हुआ। इन आयोजनों ने न केवल मध्य प्रदेश को दुनिया के मानचित्र पर नई चमक दी बल्कि वैश्विक शांति और साझी संस्कृति का एक मजबूत रोड मैप प्रस्तुत किया है। लोक का तंत्र पर ही भरोसा सुशासन की पहली सीढ़ी है। जन कल्याण यदि साध्य है तो जन विश्वास और जन संवाद उसके साधन। इसी लक्ष्य के साथ सरकार ने 7 अगस्त 2026 से मुख्यमंत्री जन विश्वास अभियान प्रारंभ किया है। जन विश्वास अभियान का लक्ष्य स्पष्ट है, ना देरी ना दूरी, समाधान से उत्थान के पवित्र भाव के साथ। इस अभियान का प्रथम चरण 8 जनवरी 2027 तक संचालित किया जाएगा। हमारी सरकार ने वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए 4,38,000 करोड़ रुपए का बजट पेश किया, जो पिछले वित्तीय वर्ष से 10% अधिक है। राज्य की प्रति व्यक्ति आय प्रचलित भावों पर पिछले वर्ष की तुलना में 9% से ज़्यादा की वृद्धि हुई है। त्रिवर्षीय रोलिंग बजट की अवधारणा को लागू करने वाला मध्य प्रदेश देश का पहला राज्य है। प्रधानमंत्री जी ने ज्ञान यानी गरीब, युवा, नारी और किसान का जो मंत्र दिया था, उसमें इंडस्ट्री और इंफ्रास्ट्रक्चर को जोड़कर हमने ज्ञानी के रूप में उसका विस्तार दिया है। किसानों के खेत सरकार के लिए देवस्थल है और खेत से उपजा एक एक दाना प्रसाद के समान है। वर्ष 2026 को हम किसान कल्याण वर्ष के रूप में मना रहे हैं। सभी जिलों में बलराम कृषि महोत्सव आयोजित कर किसानों की मेहनत और समर्पण को सम्मानित किया जा रहा है। प्रदेश के इतिहास में पहली बार शासकीय योजनाओं के लिए कृषि भूमि का भू अर्जन करने पर किसानों को 4 गुना मुआवजा देने का किसान हितैषी निर्णय हमारी सरकार द्वारा लागू किया गया है। हमारी सरकार ने किसानों को आर्थिक सुरक्षा देने के उद्देश्य से नई कवच योजना शुरू की। ऐसी समितियां जिनकी जांच लंबित है परंतु उनके किसान भाइयों का उसमें कोई दोष नहीं, उनको नियमित किया जाकर योजनाओं का लाभ दिलाया जाएगा। किसान कल्याण वर्ष के दौरान सरकार ने प्रदेश के हर किसान को खाद बीज की उपलब्धता, पर्याप्त बिजली, हर खेत और को सिंचाई का पानी, न्यूनतम समर्थन मूल्य पर फसलों का उपार्जन, चिन्हित फसलों में भावांतर की राशि का भुगतान, खेती पर संकट आने की स्थिति में बीमा और राहत राशि का वितरण, किसान सम्मान निधि का राशि का भुगतान आदि सभी लाभ दिलाने का कार्य किया गया है। हमारी सरकार ने विगत 2.5 वर्ष में विभिन्न योजनाओं के माध्यम से किसानों को खातों में 3,00,000 करोड़ से अधिक की राशि का अंतरण किया है। कई बार हमारे मन में ऐसी धारणा बन जाती है कि रोजगार मुख्य रूप से उद्योगों या नौकरियों से ही मिलता है, लेकिन मैं प्रदेश के युवाओं को बताना चाहूँगा कि मध्य प्रदेश में अब सिंचित खेती भी रोजगार के एक बड़े साधन के रूप में उभर रही है। मैं खेती में रुचि रखने वाले युवाओं से आह्वान करना चाहूँगा कि वे अधिक से अधिक उद्यानिक फसलों को अपनाएं। आज मध्य प्रदेश संतरा, केला, अंगूर, सब्जी और मसालों से लेकर मखाने, ब्लूबेरी से लेकर स्ट्रॉबेरी, ड्रैगन फ्रूट से लेकर गेंदा और गुलाब की खेती तक नई तकनीक और नई फसलें किसानों की तकदीर को बदल रही है। राज्य सरकार किसानों को देश की मिल्क कैपिटल बनने के संकल्प के साथ कार्य कर रही है। प्रदेश में दूध संकलन आज 12,00,000 लीटर प्रतिदिन के प्रति स्तर पर पहुंचा है। हमारे दुग्ध उत्पादकों को 8 रुपये से अधिक प्रति लीटर का मुनाफा हो रहा है। माननीय प्रधानमंत्री जी के महिला सशक्तिकरण के संकल्प से प्रेरित होकर प्रदेश में हम लखपति गोपालक दीदी योजनाओं को प्रोत्साहित कर रहे हैं। नस्ल सुधार के साथ बछिया पालन करके प्रदेश की महिलाएं लखपति बनने का सपना साकार कर सकेगी। सरकार ने मत्स्य पालन नीति
2026 लागू की है, जिसके कारण एक अग्रणी अंतर्राष्ट्रीय कंपनी के साथ मध्य प्रदेश ने 7,430 करोड़ रुपए से अधिक के निवेश और बायबैक एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर किए हैं। सरकार अंतिम छोर के अंतिम खेत तक सिंचाई के लिए पानी पहुंचाने के लिए संकल्पित है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी का मैं हृदय से आभार मानता हूं, जिन्होंने आदरणीय भारत रत्न अटल जी की 100वीं जयंती के अवसर पर 44,600 करोड़ की लागत से देश की पहली नदी जोड़ो केन बेतवा परियोजना की सौगात दी है। माँ नर्मदा के जल से विंध्य के आंचल में हरियाली लाने का सलीमनाबाद टनल परियोजना के सफल साकार होने में हमारी सरकार ठोस कदम बढ़ा रही है। वर्ष 2028-29 तक मध्य प्रदेश की सकल सिंचाई क्षमता को बढ़ाकर 100 लाख हेक्टर तक ले जाने का लक्ष्य है। राज्य सरकार खेत से लेकर कारखाने तक यानी फार्म टू फैक्ट्री तक पूरी वैल्यू चेन तैयार कर रही है। मृगनयनी देश का ऐसा पहला सार्वजनिक उपक्रम बना है जिसने प्रदेश के बुनकरों, कलाकारों, ODOP उत्पादों को ग्लोबल मार्केट से जोड़ने के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म बनाया है। राष्ट्रीय हाथकरघा दिवस के अवसर पर प्रदेश में हैंडलूम सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का भी शुभारंभ किया गया है। साथियों, युवा मध्य प्रदेश के सामर्थ्य का जीवंत प्रतीक है। राज्य सरकार ने वर्ष 2025 को निवेश और रोजगार के रूप में मनाया था, वर्ष 2026 किसान कल्याण वर्ष के रूप में हम मनाने जा रहे हैं। अब इससे आगे बढ़ते हुए वर्ष 2027 को हमने युवा वर्ष के रूप में मनाने का निर्णय किया है। युवाओं के संपूर्ण व्यक्तित्व विकास और कल्याण के लिए हमने इंद्रधनुषी रणनीति का निर्माण किया है, जिसके 7 महत्वपूर्ण पिलर्स हैं: गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, कौशल विकास, उद्यमिता और स्वरोजगार, सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र में रोजगार के अवसर, स्टार्टअप को सहयोग, खेल, कला, संस्कृति एवं शोध तथा अनुसंधान को प्रोत्साहन, नेतृत्व क्षमता का विकास। हमने 85,000 से अधिक युवाओं की शासकीय सेवाओं में नियुक्तियां की है तथा आने वाले समय में प्रतिवर्ष 1 लाख से अधिक युवाओं को सार्वजनिक क्षेत्र के रोजगार में अवसर उपलब्ध कराएंगे। इसी प्रकार अगले 1 वर्ष में 1 लाख से अधिक युवाओं को ITI में तथा प्रतिवर्ष 10,000 युवाओं को ग्लोबल स्किल पार्क में कौशल प्रशिक्षण दिलाने का काम करेंगे। हम कौशल विकास के अंतर्गत मध्य प्रदेश में एक अलग प्लेसमेंट सेल बनाएंगे, जो उद्योग और सरकार के बीच एक कड़ी का काम करेगा। उद्यम पोर्टल पर विगत 2.5 वर्षों में 3,34,000 से अधिक विनिर्माण इकाइयाँ पंजीकृत हुई है, जिनमें 33,80,000 से ज़्यादा युवाओं को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार के अवसर प्राप्त हुए हैं। वृहद औद्योगिक इकाइयों में 50,000 से अधिक युवाओं को रोजगार प्रदान किया गया है। राज्य सरकार अगले 2.5 वर्ष में उन युवाओं पर विशेष ध्यान फोकस करने जा रही है जो किसी कारण से 10वीं की परीक्षा में उत्तीर्ण नहीं कर पाए अथवा जिन्होंने 10वीं के बाद पढ़ाई छोड़ दी। हम ऐसे युवाओं के हाथ में हुनर देकर उन्हें इतना सशक्त बनाएंगे कि वे प्रदेश के लिए और देश में और विदेश में जाकर रोजगार प्राप्त कर सके। युवाओं को केंद्र में रखकर MSME स्टार्टअप का इकोसिस्टम को नई गति देने के लिए प्रदेश में मध्य प्रदेश MSME विकास नीति 2025, स्टार्टअप नीति एवं कार्यान्वयन नीति 2026 लागू की गई है। प्रदेश में वर्तमान में लगभग 8,000 स्टार्टअप संचालित हैं। इनमें से 50,000 स्टार्टअप, खास करके 50% स्टार्टअप का नेतृत्व नारी शक्ति कर रही है। हमारा संकल्प है कि प्रदेश के हर जिले में कम से कम 1 इनक्यूबेशन सेंटर हो। हमने आगामी 2.5 वर्ष में स्टार्टअप की संख्या 12,000 से अधिक और 100 से ज़्यादा इनक्यूबेशन सेंटर की स्थापना करने का लक्ष्य रखा है। प्रदेश में प्लग एंड प्ले मॉडल पर को वर्किंग स्पेस तैयार किए जाएंगे। युवा पीढ़ी की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए ड्रोन, सेमीकंडक्टर, AI, स्पेस टेक और ग्रीन मैन्युफैक्चरिंग जैसे उभरते क्षेत्रों में MSME की भागीदारी को अनिवार्य रूप से बढ़ाया जाएगा। प्रतियोगी परीक्षाओं से संबंधित न्यायालय मामलों की सुनवाई त्वरित
और निराकरण के लिए राज्य सरकार द्वारा 4 फास्ट ट्रैक कोर्ट स्थापित करने का निर्णय भी हमारे द्वारा किया गया है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के इस युग में माननीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से मध्य प्रदेश ऑरेंज इकोनॉमी के और भी तेजी से कदम बढ़ा रहा है। इसके अंतर्गत मल्टीमीडिया, गेमिंग, कला, मीडिया, मनोरंजन जगत, संस्कृति, आध्यात्म एवं अन्य रचनात्मक गतिविधियां शामिल है। राज्य सरकार ने समाज को दिशा देने वाले डिजिटल कंटेंट क्रिएटर्स को विभिन्न कैटेगरी में सम्मानित करने का निर्णय किया है। सरकार की उद्योग अनुकूल नीतियों के कारण प्रदेश में लगभग हर क्षेत्र में अभूतपूर्व निवेश प्राप्त हो रहा है। पिछले 2.5 वर्षों में विभिन्न क्षेत्रों में कुल 34 लाख करोड़ से अधिक के निवेश प्रस्ताव हमें प्राप्त हुए हैं, जिनमें से 10 लाख करोड़ रुपये से अधिक के प्रस्ताव धरातल पर उतर चुके हैं। नई तकनीक आधारित उद्योगों में मध्यप्रदेश तेजी से अपनी पहचान बना रहा है। प्रदेश के टेक सेक्टर में 12,000 करोड़ से अधिक का निवेश धरातल पर उतर चुका है। खासकर ग्वालियर में उभरता टेलीकॉम मैन्युफैक्चरिंग जोन, जबलपुर और शिवपुरी में आगे बढ़ता डिफेंस कॉरिडोर औद्योगिक विकास की कहानी खुद बयां कर रहा है। धार का पीएम मित्र पार्क 21,500 करोड़ रुपये से अधिक के निवेश के साथ वस्त्र उद्योग की नई कहानी लिख रहा है। राज्य सरकार का विजन है कि प्रत्येक जिले में 80 खास करके 1 एमएसएमई पार्क हम स्थापित करने वाले हैं। इसके साथ ही प्रदेश के 10 एमएसएमई क्लस्टर भी विकसित किए जाएंगे। भोपाल में इंजीनियरिंग सेक्टर हेतु 30 करोड़ रुपए की लागत से नए केंद्र की स्थापना की जा रही है। मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि औद्योगिक क्षेत्र में मध्यप्रदेश सरकार द्वारा बनाई गई विभिन्न नीतियों को भारत सरकार के नीति आयोग द्वारा सर्वाधिक निवेश मित्र नीति के रूप में सराहा गया है। मध्यप्रदेश की धरती पर ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2027 पुनः भोपाल में आयोजित की जा रही है। मुझे पूरा विश्वास है कि यह समिट मध्यप्रदेश के औद्योगिक विकास, निवेश और रोजगार की दृष्टि से मील का पत्थर साबित होगी। वैसे तो मध्यप्रदेश की सीमा किसी समुद्र को नहीं छूती है, लेकिन हमारा संकल्प 7 समंदर पार तक जाता है। हमारे उत्पाद विश्व के बाजार तक पहुँचे, इस लक्ष्य के साथ हम संकल्पित है कि हम प्रदेश के हर जिले का निर्यात का हब बनाएंगे। इसी के लिए सभी 55 जिलों में निर्यात कार्य योजनाएँ तैयार कर ली गई है। प्रधानमंत्री जी ने मंत्र दिया है, वोकल फॉर लोकल, लोकल गोज ग्लोबल। मध्यप्रदेश इसमें अपनी पंक्ति जोड़ रहा है। गर्व से कहो, ये मध्य प्रदेश में बना है। भारत जब $1 ट्रिलियन के वास्तु निर्यात का इतिहास रचेगा, तो मध्य प्रदेश की धड़कन भी सबसे तेज सुनाई देगी। गांवों का सर्वांगीण विकास सरकार की प्राथमिकता है। ग्रामीण विकास के क्षेत्र में विभिन्न महत्वाकांक्षी योजनाओं के क्रियान्वयन में मध्य प्रदेश निरंतर अग्रणी हो रहा है। आवास योजना में पूर्ण आवासों की संख्या के मान से मध्य प्रदेश देश में प्रथम स्थान पर है। विगत 2.5 वर्षों में जलगंगा संवर्धन अभियान मध्य प्रदेश में एक नई जल क्रांति लेकर आया है। जल संरक्षण और संवर्धन के इस मध्य प्रदेश मॉडल की देश भर में सराहना हो रही है। जल जीवन मिशन के क्रियान्वयन में भी मध्य प्रदेश अग्रणी है। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भारत पंचायत से लेकर पार्लियामेंट तक महिला सशक्तिकरण के स्वर्णिम युग में प्रवेश कर रहा है। मध्य प्रदेश में दिनांक 27 अप्रैल 2026 को विधानसभा के एक दिवसीय विशेष सत्र में देश की संसद और सभी विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 1/3 आरक्षण एवं परिसीमन लागू करने संबंधी नारी शक्ति वंदन संकल्प पारित किया गया है। जिस घर में बेटी मुस्कुराती है, उस घर में खुशियां आती है। जिस प्रदेश की नारी आगे बढ़ती, वही धरती नई कहानी गढ़ती है। मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना 1,25,00,000 से अधिक बहनों को जिंदगी में सशक्त बनाने का माध्यम बन गई है। लाडली लक्ष्मी योजना के माध्यम से 53,55,000 से अधिक बेटियां जुड़ी है। सर्व सुविधा युक्त सांदीपनी विद्यालय अब प्रदेश की पहचान बन गए हैं। इस मॉडल का अनुसरण अन्य प्रदेश भी कर रहे हैं। सांदीपनी विद्यालय के 50 से अधिक विद्यार्थियों ने राज्य स्तरीय मेरिट सूची में अपना स्थान बनाया है।
वर्ष 2026 के हाई स्कूल परीक्षा परिणाम में प्रदेश के सर्वश्रेष्ठ 10 जिलों में से 7 जनजाति बहुल जिले भी शामिल हैं। उच्च शिक्षा के क्षेत्र में प्रदेश कुल 73 विश्वविद्यालय, 1400 से अधिक महाविद्यालय, प्रदेश के 16 लाख से अधिक युवाओं के भविष्य को गढ़ रहे हैं। वर्ष 2026-27 में हमारे कॉलेजों में रिकॉर्ड ई प्रवेश हुए हैं। जब मैं देखता हूं कि प्रदेश में प्रत्येक 100 बेटों की तुलना में 171 बेटियां प्रवेश ले रही है, तो सच में मेरा मन आपके साथ प्रसन्नता से भर उठता है। भाइयों और बहनों, डॉक्टरों की कमी दूर करने के लिए हमारी सरकार ने पिछले 3 माह में 1000 नए डॉक्टरों की नियुक्तियां की है और अगले 6 माह में 1000 और चिकित्सकों की नियुक्ति हम करने जा रहे हैं। मध्य प्रदेश की स्थापना दिवस 1 नवंबर 2026 से हम मरीजों की जांच को पेपरलेस बनाने जा रहे हैं। इससे रोगी की सभी जानकारियां डिजिटल रूप में संधारित रहेगी। मरीजों की जांच के बाद उन्हें विशेषज्ञ डॉक्टरों का परामर्श भी ऑनलाइन उपलब्ध कराया जाएगा। इससे विशेषज्ञ डॉक्टरों की कमी की पूर्ति हो सकेगी। मरीजों को भी डॉक्टर का परामर्श लेने के लिए कहीं और जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। पूरे प्रदेश में बेहतर चिकित्सा सुविधा के लिए निरंतर नए मेडिकल कॉलेज खोल रहे हैं। इसमें पढ़ने वाले विद्यार्थियों को उच्च गुणवत्ता की शिक्षा प्राप्त हो सके, इसके लिए एक और चिकित्सा विश्वविद्यालय खोले जाने का निर्णय किया है। इस तरह से प्रदेश में अब 2 चिकित्सा विश्वविद्यालय हो जाएंगे। इसी तरह से हमने प्रदेश में 8 नए आयुर्वेदिक चिकित्सा महाविद्यालय प्रारंभ करने का निर्माण प्रारंभ कर दिया है तथा नवा कार्य भी शीघ्र प्रारंभ करेंगे। लोक निर्माण से लोक कल्याण के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए विगत 2.5 वर्ष में प्रदेश में लगभग 23,000 करोड़ की लागत से 15,000 किलोमीटर से अधिक सड़कों का निर्माण, उन्नयन और सुदृढ़ीकरण किया गया है। इंदौर उज्जैन कॉरिडोर, इंदौर पीथमपुर इकोनॉमिक कॉरिडोर, जावरा उज्जैन हाईवे का निर्माण का भूमि पूजन समस्त को लेकर के किया गया है। भोपाल, इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर और उज्जैन में रिंग रोड परियोजना प्रगति पर है, जिन्हें वर्ष 2028 तक पूर्ण करने का लक्ष्य रखा है। भोपाल एवं इंदौर के अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप सुनियोजित विकास के लिए यहां मेट्रोपॉलिटन रीजन के निर्माण का निर्णय किया गया है। कनेक्टिविटी, लॉजिस्टिक के अलावा पर्यावरण अनुकूल आधारभूत सुविधाएं विकसित की जा रही है। भविष्य में जबलपुर और ग्वालियर को भी इसी तर्ज पर मेट्रोपॉलिटन रीजन के रूप में विकसित किया जाएगा। प्रदेश के प्रत्येक नगरीय निकाय में गीता भवन के रूप में विचार विमर्श, अध्ययन और संवाद के नए केंद्र विकसित किए जा रहे हैं। विश्व के सबसे बड़े धार्मिक समागम बनने जा रहे हैं सिंहस्थ 2028 के भव्य और दिव्य आयोजन के लिए तैयारियां युद्ध स्तर पर चल रही है। संतों और श्रद्धालुओं की आस्था को केंद्र में रखते हुए मोक्षदायिनी क्षिप्रा जी के निर्मल जल में स्नान और अन्य सभी सुविधाओं के विकास के लिए घाट भी बनाए जा रहे हैं। मुझे विश्वास है वर्ष 2028 उज्जैन का सिंहस्थ आध्यात्मिक वैभव का पूरी दुनिया के लिए एक अलग प्रकार से निकल कर के आएगा और दुनिया आश्चर्य से चकित होगी। मध्य प्रदेश अब बिजली गुल के पुराने दौर से निकलकर बिजली फूल के युग में पहुंच गया है। बीते रबी मौसम में लगभग 20,000 मेगावाट और इस बार 21,000 मेगावाट से अधिक की मांग की आपूर्ति करने की हमने ऐतिहासिक तैयारियां की है। मध्य प्रदेश नवकरणीय ऊर्जा का नया पावर सेंटर बन रहा है। प्रदेश की विद्युत क्षमता में 30% हिस्सा ग्रीन एनर्जी का है, जिसे हम आने वाले समय में 50% तक ले जाने वाले हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी के सूर्य से ऊर्जा बनाने के अपील से प्रेरणा लेकर हमने न केवल सूर्य से बल्कि पानी से भी और पानी पर भी बिजली बनाई है। प्रदेश में सोलर सह एनर्जी स्टोरेज परियोजना पर भी कार्य किया जा रहा है। नर्मदापुरम में देश का पहला नवकरणीय ऊर्जा उपकरण का विनिर्माण क्षेत्र मक्सी में सोलर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट और मुरैना में ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट लगाया जा रहा है। प्रधानमंत्री ई बस सेवा योजना के अंतर्गत प्रदेश के प्रमुख शहरों में 550 से अधिक
ई बसों के संचालन का निर्णय भी लिया गया है। हमने इंदौर और भोपाल में मेट्रो रेल की सौगात भी दी है, जो तेजी से विकसित होते इन शहरों के यातायात की दृष्टि में बड़ी भूमिका अदा करेगी। बरसों बाद मध्य प्रदेश में सड़क परिवहन की तस्वीर बदलने के लिए मुख्यमंत्री सुगम परिवहन योजना भी शीघ्र उपलब्ध कराई जा रही है। हमारे धार्मिक आध्यात्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए सरकार के प्रयासों का भी परिणाम है कि हम अब आगरा में ताजमहल में एक वर्ष में जितने पर्यटक आते हैं उससे ज़्यादा तो एक माह में उज्जैन में ही आ रहे हैं। पिछले वर्ष प्रदेश में रिकॉर्ड 14 करोड़ से अधिक पर्यटकों ने पूरे प्रदेश के ओरछा से लगा करके दतिया तक और मांडव से लगा करके ओंकारेश्वर तक जो हमारे लिए उत्साहवर्धक परिणाम दिए हैं, ये हमारी अतिथि देवो भव की परंपरा का उज्ज्वल मान है। पर्यटकों को आकाश की ऊंचाई देने के लिए हमने पीएम श्री पर्यटन वायु सेवा एमपीएम श्री पर्यटन हेली सेवा की भी शुरुआत की है। प्रदेश में बीते दो वर्ष में 10 नए हवाई मार्गों की शुरुआत हुई है। उड़ान योजना के अंतर्गत मध्य प्रदेश को अगले चरण में 5 नए और एयरपोर्ट की सौगात मिल रही है। अब तो इंदौर से अबू धाबी के लिए सीधी अंतर्राष्ट्रीय उड़ान प्रारंभ हुई है और आने वाले समय में भोपाल से भी शारजाह की अंतर्राष्ट्रीय उड़ान प्रारंभ करने का टारगेट लिया है। राजा भोज द्वारा स्थापित भोजशाला सदियों तक ज्ञान विज्ञान अनुसंधान और संस्कृत भाषा का सबसे प्रखर केंद्र रही है। भोजशाला में राज्य सरकार भव्य सरस्वती लोक बनाएगी तथा राजा भोज संस्थान की स्थापना भी की जाएगी। मध्य प्रदेश के सांस्कृतिक आध्यात्मिक अभिनय के लक्ष्य के साथ 17 धार्मिक एवं सांस्कृतिक लोगों का निर्माण किया जा रहा है। एकात्म धर्म परिसर ओंकारेश्वर में 2400 करोड़ रुपए के विकास के कार्य प्रगति पर है। श्री राम वनगमन पथ श्री कृष्ण पाथे का निर्माण राज्य की आध्यात्मिक समृद्धि को वैश्विक मंच पर नई पहचान देगा और भावी पीढ़ियों को अपनी विरासत से जोड़ेगा। हमने अपने स्वर्णिम इतिहास से युवाओं को अवगत कराने के लिए सुशासन की उत्कृष्ट परंपरा के नायक सम्राट विक्रमादित्य के जीवन पर आधारित नाट्य का मंचन दिल्ली के लाल किले से बाबा विश्वनाथ की नगरी काशी तक किया है। भाइयों और बहनों, राज्य सरकार तन मन धन सबसे ऊपर वन की उक्ति को चरितार्थ कर रही है। उज्जैन सतना छतरपुर और भोपाल में सांस्कृतिक वन स्थापित किए जा रहे हैं। कूनो राष्ट्रीय उद्यान गांधी सागर को मिलाकर प्रदेश में 52 चीतों की आवाज़ें गूंज रही है। काजीरंगा टाइगर रिजर्व से 8 जंगली भैंसों को कान्हा टाइगर रिजर्व में प्रतिस्थापित किया गया है। कुल 40 विलुप्त प्राय कछुओं को स्थापित करते हुए 63 घड़ियालों को भी उनके प्राकृतिक आवास चंबल में छोड़ा गया है। हलाली डैम में भी दुर्लभ प्रजाति के गिद्ध जो हम भोपाल में छोड़ रहे हैं और गिर्गिस्तान तक उड़ान भर रहे हैं। सुशासन और सरकार का धैर्य स्थल भोपाल भोपाल में पहले साइबर पंजीयन कार्यालय का शुभारंभ किया गया। मध्य प्रदेश फार्मर रजिस्ट्री के अंतर्गत 1 करोड़ से अधिक ID जनरेट कर 100% प्रोत्साहन राशि प्राप्त करने वाला देश का एकमात्र राज्य है। सरकार ने स्वामित्व योजना में प्राप्त भू अधिकार अभिलेख के पंजीकरण की पूरी फीस ग्रामीण भाई बहनों के बजाय स्वयं वहन करने का निर्णय किया है। विगत 2.5 वर्षों में पुलिस में बड़े पैमाने पर भर्ती और पदोन्नति की प्रक्रिया को गति मिलने के फलस्वरूप पुलिस और पुलिसिंग दोनों की दक्षता और मनोबल में वृद्धि हुई है। साइबर अपराधों पर प्रभावी नियंत्रण और अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए एक अत्याधुनिक साइबर सिक्योरिटी रिसर्च सेंटर की स्थापना करने का निर्णय किया है। पुलिस विभाग में 2.5 वर्षों में अब तक 14,704 से अधिक अभ्यर्थियों का चयन हो चुका है। 9,751 अतिरिक्त पदों पर भर्ती की प्रक्रिया जारी है। हमारे खिलाड़ी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देश एवं प्रदेश का नाम रोशन कर रहे हैं। ग्लासगो में संपन्न कॉमनवेल्थ गेम्स मध्य प्रदेश के 2 खिलाड़ियों ने रजत पदक जीतकर प्रदेश की शान बढ़ाई है। प्रदेश की क्रिकेट खिलाड़ी सुश्री क्रांति गौड़ इंग्लैंड के लॉर्ड्स मैदान में आर्न्स बोर्ड ऑनर्स बोर्ड पर नाम दर्ज कराने वाली
दुनिया की पहली क्रिकेट खिलाड़ी बन गई है। मुख्यमंत्री युवा शक्ति योजना के अंतर्गत प्रत्येक विधानसभा में अब एक एक स्टेडियम बनाने का लक्ष्य हमारी सरकार द्वारा रखा गया है। शासकीय कर्मचारी सच्चे अर्थों में कर्मयोगी है। ये पिछले 10 वर्षों से पदोन्नति की राह दे

0: सभी लोगों को समझाएं कि इस चीज को किस तरीके से रखना चाहिए। देश का मान सिर्फ एक दिन एक दान से नहीं सीमित रहता है। तो मैं स्वच्छता रखती हूँ, आसपास कूड़ा कचरा कहीं भी कुछ ऐसा होता है, लोगों को खुद स्वयं उनको बोलती हूँ, खुद भी करती हूँ। मैं शायद समझती हूँ ये हमारा मेन उद्देश्य होना चाहिए।
1: जी, देश को साफ और सुरक्षित रखना हम अपने से ही। जी
0: बिल्कुल। और आजकल जिस तरीके का माहौल हम देख रहे हैं, तो एक छोटी लाइन आपको कहना चाहूंगी
1: जी,
0: कि आपको लोग हरा नीला पीला जैसा भी रंगे, पर आपको तिरंगे को ही अपने अंदर रखना है।
1: वाह,
0: तिरंगा आपका सम्मान होना चाहिए।
1: क्या बात है, बहुत बढ़िया। और ये हमें अपनी आने वाली पीढ़ी को भी बताना होगा।
0: बिल्कुल बिल्कुल बताना होगा। और ये जज्बा मैं शायद अब देख रही हूँ, अब हमारी नई जो पीढ़ी आ रही है उनके अंदर जज्बा दिख रहा है। और हाँ, हमने जो सीखा है वो हम उनको देते चलेंगे।
1: मैं यहाँ एक बात और कहना चाहूंगी रूपा जी, कि स्वदेशी सोच को अपनाकर भी हम अपने देश की तरक्की में हाथ बटा सकते हैं। जैसे हमारे स्थानीय कलाकार होते हैं और कुछ कारीगर ऐसे होते हैं, हमें उनका समर्थन करना होगा, उन्हें आगे बढ़ाना होगा, जिससे अर्थव्यवस्था बढ़ेगी और देश अपने आप तरक्की करेगा, आगे बढ़ेगा।
0: बिल्कुल बिल्कुल। जैसे अब हम ग्लोबलाइजेशन की दुनिया में हैं, तो हमारे चाहे वो कारीगर हो, हमारी चीजों को वहां विदेश में जाना, उनको सम्मान मिलना बहुत जरूरी है
1: जी।
0: उसी से हमारे राष्ट्र को बढ़ावा तभी मिलेगा जब हमारे यहाँ के कारीगर वहां जाके अपने हाथ की चीजें वहाँ उन लोग के साथ सामने प्रस्तुत करेंगे। ये बहुत जरूरी, बहुत अच्छी बात बोली आपने।
1: देखिए, रोजमर्रा की जिंदगी में बहुत सी छोटी छोटी ऐसी बातें हो जाती हैं जिनसे जो हमारी देशभक्ति को व्यक्त करती हैं। जैसे अभी आपने बात बताई कि साफ सफाई, घर की साफ सफाई से लेके आस पड़ोस की साफ सफाई के लिए प्रेरित करना, तो देश स्वच्छ रहेगा उससे हमारा।
0: वो छोटी सी कहते हैं ना, छोटी शुरुआत से ही बड़ी शुरुआत की तरफ हम अग्रसर होते हैं। और देश को स्वच्छता देना मतलब, आज जैसे मान लीजिए हम भोपाल शहर से मैं हूँ, आज उसको एक नंबर वन के खिताब मिली हुई है स्वच्छता के लिए, क्योंकि हर शायद हर व्यक्ति इस जगह में उस चीज के लिए अग्रसर है, कर रहा है। छोटी छोटी छोटी से ही हम आगे बढ़ेंगे बड़ी चीजों की तरफ।
1: बस हम आगे बढ़ेंगे, हमारा शहर आगे बढ़ेगा और ऐसे ही करके हमारा देश आगे बढ़ता चला जाएगा।
0: बिल्कुल बिल्कुल,
1: यही उम्मीद करते हैं हम और यही अपेक्षा है सभी श्रोताओं से भी। आपने हमसे बात की, इतनी अच्छी बात की, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
0: धन्यवाद, आपका भी धन्यवाद।
1: और स्वतंत्रता दिवस की एक बार फिर आपको बहुत सारी शुभकामनाएं।
0: आपको भी बहुत सारी शुभकामनाएं।

0: हेलो, नमस्कार.
1: नमस्कार दीदी।
0: नमस्ते. कार्यक्रम बात आपकी गीत हमारे में आपका बहुत बहुत स्वागत है. किन से हमारी बात हो रही है?
1: हाँ दीदी, मैं प्रमोद शर्मा बात कर रहा था। दीदी
0: प्रमोद शर्मा जी, कहाँ से आप बोल रहे हैं?
1: दीदी मैं नरवर से बोल रहा था।
0: नरवर से जी. प्रमोद जी, आज है स्वतंत्रता दिवस, तो
1: हाँ
0: आपको इस खास देश पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं.
1: दीदी, आपको और आप पूरे आकाशवाणी परिवार को हमारी ओर से और सभी श्रोता भाई बहनों को।
0: बहुत बहुत शुभकामनाएं. बहुत गर्व का पर्व है ये हमारे लिए.
1: हाँ दीदी, बहुत अच्छा लगता है जब ये पर्व होता है
0: जी
1: तो बहुत खुशी मिलती है। दीदी इसमें क्या है कि तिरंगा लहराता है,
0: जी
1: वो क्या है कि अपने देश का एक अभिमान है,
0: जी
1: देश का अभिमान है, और बहुत खुशी मिलती है दीदी इसमें जो तिरंगा फहराते हैं सब
0: जी बहुत गर्व
1: बच्चे।
0: महसूस
1: हाँ
0: होता है उस समय.
1: बच्चे, बूढ़े, बुजुर्ग लोग, सब जवान लोग, सब मतलब एक साथ मनाते हैं तो बहुत आनंद आता है दीदी।
0: जी आनंद तो बहुत आता है प्रमोद जी, लेकिन आज हमारा विषय इसी देशभक्ति से संबंधित है. आज हम आपसे बात करना चाह रहे हैं कि देशभक्ति का असली मतलब आपके लिए क्या है.
1: हमको भाईचारे से रहना चाहिए दीदी।
0: जी बहुत बढ़िया.
1: हाँ दीदी, दुश्मनी नहीं करना चाहिए, सबसे
0: जी
1: प्रेम से बोलना चाहिए, सबसे प्रेम से बात करो, सबसे प्रेम से बोलो, और सब एक साथ प्रेम से रहो।
0: जी दूसरों की
1: हाँ
0: मदद
1: दीदी,
0: करना और अपनापन, है ना?
1: हाँ
0: देश के लोगों का मुश्किल समय में हमें साथ देना होगा और बिना किसी
1: एक
0: भेदभाव के काम आना चाहिए हमें.
1: जब दीदी अपन एकता बना के रखेंगे तो सब एक दूसरे को दुश्मनी भी नहीं होगी,
0: जी
1: और दुश्मनी नहीं होगी तो एकता रहेगी और प्यार
0: प्यार
1: रहेगा, सब
0: रहेगा. बहुत बढ़िया.
1: एक साथ रहेंगे और अच्छा भी लगेगा दीदी।
0: जी बहुत बड़ी बात कही है आपने. देखिए, प्यार बना रहेगा, भाईचारा बना रहेगा, तो अपने आप हमारा देश तरक्की करेगा. हमारे लिए तो यही देशभक्ति है. हम इसी
1: हाँ दीदी,
0: तरीके से अपनी देशभक्ति दिखा सकते हैं.
1: हाँ दीदी,
0: जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका कॉल करने के लिए प्रमोद जी. आपको फिर से बहुत सारी शुभकामनाएं.
1: दीदी आपको भी और पूरे आकाश भवन परिवार को भी हमारी ओर से हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं दीदी।
0: धन्यवाद.

0: हेलो,
1: हेलो,
0: नमस्कार।
1: नमस्ते मैडम।
0: नमस्ते। कार्यक्रम बात आपके गीत हमारे में आपका स्वागत है।
1: बहुत बहुत धन्यवाद मैम। मैं छत्तीसगढ़ बेमेतरा वार्ड क्रमांक 20 से बोल रहा हूँ मैम, आपका अपना श्रोता साथी सुरेश कुमार सारथी।
0: सुरेश कुमार जी, कैसे हैं आप?
1: जी बहुत बढ़िया है मैम, और हरा भरा मौसम और बरसात की छोटी छोटी बूंदों के साथ हम आप के केंद्र से जुड़ रहे हैं मैम। सारथी परिवार की ओर से 15 अगस्त की हार्दिक शुभकामनाओं के साथ कोटि कोटि बधाई मैम आपके परिवार को।
0: आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं स्वतंत्रता दिवस की। स्वतंत्रता से जुड़े हुए, अपने देश से जुड़े हुए ये महापर्व हैं जिन्हें हम मनाते हैं।
1: पूरे भारतवर्ष हर्षोल्लास के साथ मनाते हैं मैम,
0: जी
1: और हमारे सारथी परिवार में भी इस दिन एक पौधा अवश्य लगाते हैं मैम।
0: अच्छा, तो आप अपनी देशभक्ति जो है वो पौधा लगाकर पूरा करते हैं, दिखाते हैं।
1: जी मैम, जी मैम।
0: जी सुरेश जी, आज का हमारा विषय भी यही है कि आपकी नज़र में देशभक्ति की क्या परिभाषा है? कैसे आप अपने देश का साथ देते हैं? कैसे उसके विकास में आप मदद कर सकते हैं?
1: अब कहा जाए मैम, तो वीरों ने हमारे देश को आजाद करके हमें बहुत बड़ा उपकार किया है,
0: जी
1: हम पूरे भारतवासियों के लिए, इसलिए उसको सजा कर संवार कर रखना ही एक अच्छे नागरिक की जिम्मेदारी है मैम।
0: बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी बात आपने कही है। देश को साफ और सुरक्षित रखना हमारी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है।
1: जिम्मेदारी है मैम, और मैं तो श्रोताओं से यही कहना चाहूंगा, यही अपील करना चाहूंगा कि हमारे देश को स्वच्छ बनाने में अपना भरपूर योगदान प्रदान करे।
0: जी देखिए, पर्यावरण सुरक्षा सबसे महत्वपूर्ण है।
1: बहुत महत्वपूर्ण है मैम, ताकि आने वाली पीढ़ी को प्रदूषित हवा और जल संकट एवं भीषण गर्मी से राहत मिल सके मैम।
0: जी, तो उसके लिए प्रयास हमें अभी से ही करना होंगे। बिजली
1: अभी से
0: बचानी
1: करेंगे तभी
0: होगी, पानी
1: तो
0: बचाना
1: आगे
0: होगा,
1: की पीढ़ी को, आने वाली पीढ़ी को
0: हम कुछ दे
1: साफ सुथरा
0: पाएंगे।
1: जल और पर्यावरण मिलेगा मैम।
0: जी, तो उसके लिए शुरुआत हमें ही करनी होगी।
1: जी मैम,
0: बच्चों को सिखाना होगा, बिजली बचानी होगी, पानी की बर्बादी से बचाना होगा।
1: बचाना होगा मैम, तभी आगे जाकर हमारी भविष्य सुधर पाएगा मैम।
0: जी, तो आज आप एक पेड़ लगा रहे हैं देश के नाम।
1: बिल्कुल मैम, 15 अगस्त के रोज लगाते हैं मैम।
0: जी बहुत बढ़िया, आपने हमसे बात की, देशभक्ति की नई परिभाषा हमें बताई, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
1: बहुत बहुत धन्यवाद मैम, हमारे सारथी समाज की ओर से पूरे आपके केंद्र की पूरी यूनिट को हम कोटि कोटि बधाई देते हैं मैम।
0: स्वतंत्रता दिवस की। जी
1: धन्यवाद।
0: धन्यवाद।

0: नमस्कार, कार्यक्रम बात आपके गीत हमारे में आपका स्वागत है।
1: सर जी, 15 अगस्त की हार्दिक शुभकामनाएं देशवासियों को।
0: आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं स्वतंत्रता दिवस की। कौन बोल रहे
1: धन्यवाद
0: हैं?
1: सर जी। अनोखे सिंह।
0: अनोखे सिंह जी, कैसे हैं आप?
1: ठीक, नॉर्मली है सर जी।
0: जी, आज क्या करने वाले हैं आप 15 अगस्त के दिन?
1: 15 अगस्त के दिन नगर का सर्व समाज, जो भी है विद्यार्थी वगैरह, सर्व समाज यहाँ से रैली निकलेगी और झंडा वंदन करेंगे और शासन की ओर से मिठाई बटेगी, उसका आनंद लेंगे।
0: जी, अच्छा आप एक बात बताइए, आपकी नज़र में देशभक्ति की क्या परिभाषा है?
1: देखो, देशभक्ति की सबसे अच्छी वो है कि जन सेवा या अपने आप की सेवा कर लो, वो भी देशभक्ति है।
0: जी, बहुत अच्छी बात आपने कही है। और
1: आप अगर अपने आप की भी सेवा कर लोगे तो वो भी बहुत अच्छी बात है,
0: साथ में दूसरों की भी मदद करना।
1: हाँ, जन सेवा भी,
0: जन सेवा, जी सबसे
1: वो तो
0: पहले आपने वही कहा। जी
1: महापुण्य कार्य है सर जी।
0: जी, और देखिए, स्वतंत्रता दिवस सिर्फ आज के दिन के लिए नहीं है, ये हमारे पूरे जीवन के लिए है। सिर्फ आज के दिन हम मना लें कि आज स्वतंत्रता दिवस है, झंडे फहरा दिए, उसके बाद उस तिरंगे का अपमान नहीं होना चाहिए, सबसे बड़ी बात वही है।
1: सर जी, आपकी भावना और आपके विचार बहुत बढ़िया है, लेकिन आज का युग सिर्फ फॉर्मेलिटी निभाता है सर जी।
0: पर तिरंगा फहराना ही हमारा मकसद नहीं होना चाहिए ना, उसका सम्मान हमें बनाए रखना चाहिए।
1: लोग आज में ये फॉर्मेलिटी निभाते, वास्तविकता तो ये रहती है कि आपका जीवन में जो शब्द आया वो शब्द आजीवन रहना चाहिए।
0: जी,
1: तो इसमें कुल मिला के एक ही है कि सत्य परमो धर्म, सत्य का ही धर्म होना चाहिए।
0: सत्य तो बोलना चाहिए जी, वो बहुत जरूरी है, झूठ ज्यादा दिन तक टिकता नहीं है। सत्य पे हमारी नींव है, हमारी बुनियाद सत्य होना चाहिए। लेकिन चूंकि
1: और आप दिखावे के भी लिए या फॉर्मेलिटी के लिए कार्यक्रम कर भी रहे तो उसकी कोई इतनी मान्यता भी नहीं मिलती है सर।
0: लेकिन मैं ये चाहती हूँ कि आप अपने माध्यम से श्रोताओं को देशभक्ति की परिभाषा बताएं कि हमें देश के लिए हम क्या कर सकते हैं।
1: भाई, आप अपने परिवार में संतुलित रहिए, आदर्शित रहिए, आप अपने परिवार का ख्याल रखिए, तो आप उससे मुक्त हो के फिर आप जनसेवा में जा सकते हो, जनसेवा से आप और भी कार्य में जा सकते हो, लेकिन पहले आप अपने परिवार में संतुलन होना चाहिए सर।
0: पहले अपना ख्याल रखें, फिर अपने साथ में, अपने आस पड़ोस के लोगों को, अपनी जनसेवा में आप अपना ध्यान रखें, जनसेवा करें। यही हमारी बड़ी देशभक्ति है। आप लगाइए
1: शुभकामनाएं राष्ट्र के हर वासियों को सर जी।
0: आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं, हमारे पूरे देशवासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं आज के दिन की। आप सभी स्वस्थ रहें, खुश रहें। नमस्कार।
1: आप भी खुश रहें।

0: नमस्कार,
1: हेलो,
0: नमस्ते। कार्यक्रम बात आपकी गीत हमारे।
1: बात आपकी गीत हमारे जी। हम ग्राम छातर तहसील उदयपुरा जिला रायसेन से भगत जी बात कर रहे हैं।
0: भगत जी,
1: जी,
0: नमस्ते भगत जी।
1: नमस्ते। आपको पूरे मध्य प्रदेश टीम को स्वतंत्रता दिवस की ढेरों ढेरों शुभकामनाएं।
0: आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं हमारे स्वतंत्रता दिवस की। बहुत बहुत
1: जी
0: बधाइयाँ। आपके नाम में ही देशभक्ति है भगत जी।
1: जी हमारे नाम में ही देशभक्ति है, जैसे भगत जी और
0: जी
1: बेटे भगत सिंह जो
0: जी
1: शहीद हुए थे। जी
0: जी तो आप बताइए, आज है कार्यक्रम बात आपकी गीत हमारे।
1: जी जी जी
0: आपकी नजर में देशभक्ति क्या है?
1: हमारे नजरिए में देशभक्ति अर्थात राष्ट्रभक्ति, क्योंकि हमें हर एक व्यक्तियों का सम्मान करना चाहिए और हमें वो काम करना चाहिए जिससे देश का और राष्ट्र का कल्याण हो सके।
0: बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी सोच है आपकी।
1: क्योंकि मानस में बाबा तुलसीदास जी लिखते हैं कि धन्य देश जो जहां सुर सरी और धन्य नारी पति व्रत अनुसरी। रामचित मानस में भी लिखा है कि हमारा देश अनेकों देशों में एक है। यहाँ पर देव नदी गंगा जी बहती हैं, यहाँ पर सभी व्यक्तियों का सम्मान होता है। जो कोई आता है वो हमारे देश में जाने का नाम नहीं करता। इसीलिए हमें राष्ट्र का मंगल हो ऐसा काम करना चाहिए, कभी भी अनहित वाले काम नहीं
0: नहीं
1: करने
0: करने चाहिए।
1: चाहिए मेरे मानस के धर्म प्रेमी बंधुओं।
0: बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी सोच है आपकी। देखिए, बड़े बुजुर्गों और महिलाओं को सुरक्षित महसूस कराना ही आज
1: जी,
0: की सबसे बड़ी सच्ची देशभक्ति
1: सबसे
0: है।
1: बड़ी जिम्मेदारी है।
0: जी, देश सेवा में
1: और
0: माना
1: जब आजकल
0: जाएगा।
1: तो बड़ी बड़ी बात सब लोग कर देते हैं, लेकिन कथनी और करनी में अंतर होता है। लेकिन जैसा हम कहें वैसा हमारे जीवन में उतारना चाहिए, यही राष्ट्र हित में कल्याण है।
0: बिल्कुल, सच्ची देश
1: जी
0: सेवा यही है।
1: जी
0: बहुत अच्छी और बहुत सार्थक बात आपने कही है भगत जी।
1: जी
0: बिल्कुल, नाम के साथ आप भी वैसे ही हैं। बहुत अच्छा लगा
1: जी
0: आपसे बात
1: बहुत
0: करके।
1: बहुत बहुत बहुत धन्यवाद।
0: धन्यवाद। आपको स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं।
1: आपको भी दीदी और पूरी टीम को भी।
0: जी, नमस्कार।

0: नमस्ते,
1: हेलो।
0: कौन बोल रहा है?
1: हम नवदमपुरा सोहागपुर से बोल रहे हैं, छोटू मीना।
0: छोटू जी, आज है स्वतंत्रता दिवस, आपको इस पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं।
1: आपको भी शुभकामना मैडम जी। ठीक
0: कैसे हैं आप?
1: है मैडम जी।
0: तो आज आप इस गर्व के पर्व को कैसे मनाएंगे छोटू जी?
1: यहाँ से मैडम जी बहुत धूमधाम से मनाते हैं यहाँ पर्व जी। कल से मना रहे हैंगे यहाँ यहाँ तो।
0: अच्छा
1: कल अच्छी रैली निकली थी, खूब सारे आदमी इकट्ठे हुए थे
0: जी,
1: और बच्चे भी इकट्ठे हुए थे, मैडम जी मास्टर भी सब इकट्ठे हुए मन आए थे, रैली निकाली थी उसमें उनमें।
0: अच्छा आपकी नज़र में देशभक्ति क्या है? आप क्या कहना चाहेंगे? देशभक्ति कैसी होना चाहिए?
1: देशभक्ति अच्छी होना चाहिए मैम, खराब
0: अच्छी
1: थोड़ी होना चाहिए। देशभक्ति के ऊपर तो अपन टिके ही हैं, अपन है वो नहीं कि वो
0: उसके लिए हमें क्या करना होगा? सच्ची देशभक्ति हम कैसे दिखा सकते हैं? देश
1: जी।
0: की सुरक्षा के लिए हम सरहद पे नहीं जा सकते, लेकिन
1: नहीं
0: हम
1: जैसा
0: कुछ ऐसे काम कर सकते हैं जो हमारी दिखाए कि हम देशभक्त हैं, देशभक्ति हमारी उन कामों से दिखे। तो ऐसे क्या हम कर सकते हैं?
1: ऐसे अच्छा काम करो मैम जी, उनको साथ दो देशभक्ति वालों के संगे
0: जी, हमें
1: जी।
0: अपनी जो रोज़मर्रा की ड्यूटी है उन्हें ईमानदारी से निभाना होगा, है
1: जी
0: ना? जैसे कई बार छोटी छोटी सी चीज़ें हैं, ट्रैफिक के नियम हैं, नियम को फॉलो नहीं करते हैं, तो वो भी
1: बोलो
0: गलत
1: भी
0: है। देशभक्ति ऐसे भी हम दिखा सकते हैं, अपनी ड्यूटियों को पूरा और सही तरह से निभा के, ये हमारी जिम्मेदारी है।
1: जी जी जी ओके
0: जी, नमस्ते छोटू
1: आप।
0: जी।

0: नमस्कार, कार्यक्रम बात आपकी गीत हमारे में आपका बहुत बहुत स्वागत है।
1: हेलो
0: हेलो, नमस्ते, कौन बोल रहा है?
1: जी, हमारा नाम प्राची वर्मा है, हम कटनी।
0: प्राची वर्मा जी। प्राची जी, स्वतंत्रता दिवस की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं।
1: हमारी तरफ से भी आपको और आकाशवाणी को और ढेर सारी शुभकामनाएं।
0: कैसी हैं आप?
1: जी, हम तो अच्छे हैं, आप सुनाइए, आप कैसे हैं?
0: हम भी बढ़िया हैं। आज 15 अगस्त है, आप कैसे मना रही हैं आज के दिन को?
1: हम तो कहीं जाते नहीं, घर पर ही रहते हैं, तो बस आप लोगों के प्रोग्राम सुन के खुश हो जाते।
0: अच्छा, आपकी नज़र में देशभक्ति क्या है? आज है कार्यक्रम बात आपके गीत हमारे, जिसमें हम यही बात कर रहे हैं कि देशभक्ति की परिभाषा आपकी नज़र में क्या है?
1: देशभक्ति की परिभाषा हमारी नजर में तो यही है कि सबसे हिल मिल कर रहे, सबको अपना समझे, कोई भेदभाव ना रखे,
0: जी,
1: यही
0: भाईचारा
1: हमारी
0: बना के रखें।
1: देशभक्ति है।
0: अच्छा, आपने बच्चों को देखा होगा, बहुत उत्साह से आज के दिन तिरंगा लेके वो घूमते हैं,
1: हाँ,
0: लेकिन उसके बाद शायद तिरंगे का सम्मान बहुत अच्छी तरह से नहीं हो पाता है।
1: छोटे बच्चों को क्या, बहुत से बड़े लोग भी बस एक ही दिन का उसको सम्मान देते हैं।
0: जी, तो ये यही हमें बताना होगा, हमारे हम भी अपनी देशभक्ति ऐसे ही दिखा सकते हैं कि अगर कोई ऐसा गलत काम करता है तो हमें उसको
1: हाँ,
0: समझाना होगा कि तिरंगा फहराना ही नहीं बल्कि उसका सम्मान बनाए रखना बहुत ज़रूरी है। और सिर्फ एक दिन के लिए देशभक्ति नहीं दिखानी है, ये देशभक्ति जब तक हम हैं तब तक हमें दिखानी होगी। देश
1: जज्बा दिल से होना चाहिए,
0: जी
1: दिखावे से नहीं।

0: की दिखावे कि झंडा लेके खड़े हो गए तो हम देशभक्त हो गए।
1: सही बात आपने कही है प्राची जी, दिखावा नहीं दिल से ये काम होना है, तभी तो हमारा देश आगे बढ़ेगा। तो हमें देश का सम्मान, तिरंगे का सम्मान बनाए रखना है। आज स्वतंत्रता दिवस की आपको बहुत बहुत दिल से शुभकामनाएं।
0: आपको भी बहुत सारी ढेर सारी
1: धन्यवाद। श्रोताओं, आज आप सभी से बात करके आपकी यादें और देशभक्ति के अलग अलग रंग देखकर दिल सच में खुश हो गया। आज समझ आया कि देश के लिए मर मिटना तो वीरों का ही काम है, लेकिन देश के लिए एक जिम्मेदार नागरिक बनकर जीना, यही आज के भारत की असली देशभक्ति है। चाहे सड़क पर कचरा ना फेंकना हो, किसी की मदद करना हो, या ईमानदारी से अपना काम करना हो, छोटे छोटे कदम ही देश को महान बनाते हैं। चलते चलते आपसे बस इतना ही कहूंगी, हम लहराएंगे हर जगह ये तिरंगा, ये तिरंगा हमारी देश की शान का है। आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। यूं ही बने रहिए आकाशवाणी मध्य प्रदेश के साथ।

अभी आप सुन रहे थे फोन इन कार्यक्रम बात आपकी, गीत हमारे, प्रस्तुति थी आकांक्षा की। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे इस घंटे की खास खबरें।

पेश इस घंटे की खास खबरें। देश आज 80वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले के प्राचीर से राष्ट्रीय ध्वज फहराया। प्रधानमंत्री ने कहा कि आज देश उन महान सपूतों का स्मरण कर रहा है जिन्होंने अपने त्याग और बलिदान से देश को स्वतंत्र कराया। प्रदेश में स्वतंत्रता दिवस हर्षोल्लास और गरिमामय वातावरण में मनाया जा रहा है। राजधानी भोपाल के लाल परेड मैदान में आयोजित राज्य स्तरीय समारोह में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ध्वजारोहण कर रहे हैं। इसे कृपया दोबारा सुन लें। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने ध्वजारोहण किया और संयुक्त परेड की सलामी ली। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर आकाशवाणी भोपाल में भी समारोह का आयोजन हुआ। क्लस्टर प्रमुख लोकेश कुमार द्वारा ध्वजारोहण किया गया। वहीं शहडोल के गांधी स्टेडियम में जिले के कलेक्टर पार्थ जायसवाल ने ध्वजारोहण किया और बैतूल में कलेक्टर डॉक्टर सौरभ संजय सोनवड़े ने ध्वजारोहण कर मुख्यमंत्री के संदेश का वाचन किया। प्रदेश के कई शहरों में कल तिरंगा यात्राएं निकाली गईं। भोपाल में कोलार से संत नगर तक 32 किलोमीटर लंबी तिरंगा यात्रा निकाली गई जिसमें मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भी शामिल हुए। भोपाल की बड़ा तालाब में चल रही तीसरी राजा भोज मल्टी क्लास नेशनल सेलिंग चैंपियनशिप में प्रदेश के खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन किया। कल मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के मुख्य आतिथ्य में चैंपियनशिप का समापन होगा और प्रदेश के 21 जिलों में आज भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग के अनुसार अगले 24 घंटे में कुछ इलाकों में 4 से 8 इंच तक बारिश हो सकती है। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।

यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण है। पेश है फिल्म संगीत का कार्यक्रम। आज के इस कार्यक्रम में हम आपको सुनवा रहे हैं देशभक्ति से भरे गीत। आपके साथ हूं मैं अनुराधा। ऐ मेरे वतन मेरी तस्वीर हो तुम, मेरा ज़मीर हो तुम, ऐ मेरे वतन मेरी तकदीर हो तुम, विश्व के सभी देशों में सबसे वीर हो तुम। तू जो अनोखा सा मिला है हम फूल हैं, तू गुलस्ता सा खिला है, मेरा अक्स है तू, तू ही मेरा बिछड़ा चमन, तुझसे ही तेरा गुरूर है और तू ही मेरा सच्चा अहम। स्वतंत्रता दिवस की हमारी सभी श्रोताओं को हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। कार्यक्रम में आपका स्वागत है। सबसे पहले हम आपको सुनवा रहे हैं उपकार फिल्म का गीत। महेंद्र कपूर और साथियों की आवाज़ में गुलशन बावरा ने इस गीत को लिखा है और संगीत से सजाया है कल्याण जी आनंद जी ने।

अगला गीत हम सुनवा रहे हैं आपको वीर ज़ारा फिल्म से। आवाज़ें हैं लता मंगेशकर, उदित नारायण, गुरुदास मान और प्रथा मजुमदार की। इस गीत को लिखा है जावेद अख्तर ने और संगीत से सजाया है संजीव कोहली ने। श्रोताओं, हम भाग्यशाली हैं कि हमारा जन्म भारत में हुआ है। इस बात पर हमें गर्व क्यों ना हो, क्योंकि इस पवित्र भूमि पर जन्म लेने के लिए देवता भी तरसते हैं। देश प्रेम की भावना हमें एक दूसरे से जोड़ती है, साथ ही अपने राष्ट्र का

अरिजीत सिंह की आवाज़ में हम आपको सुनवा रहे हैं मनोज मुंतशिर का लिखा हुआ गीत। संगीत दिया है आरकू ने और फिल्म का नाम है भोज द प्राइड ऑफ इंडिया। श्रोताओं, एक व्यक्ति के अंदर अपने देश के लिए सेवा और निष्ठा की भावना और देश के लोगों के हित के सम्मान देशभक्ति को प्रदर्शित करती है। देश के लिए जान देना ही देशभक्ति नहीं कहलाती। देश की सुरक्षा के लिए लड़ रहे सैनिक, देश के लिए अपने प्राणों का बलिदान करने वाले शहीद और देश के विकास की भावना के कार्य करने वाला आम आदमी भी देशभक्ति का उदाहरण प्रस्तुत करता है। सच्चा देशभक्त कहलाता है और आपस में जहां प्रेम का होना बहुत ज़रूरी है।

श्रोताओं, अगला गीत हमने लिया है फिल्म फना से। महालक्ष्मी की आवाज़ है और प्रसून जोशी का गीत, संगीत जतिन ललित का। हम अपने श्रोताओं को बताना चाहेंगे कि आज युवाओं में देश प्रेम की भावना को जागृत करने की आवश्यकता है, ताकि वो देश की समृद्धि और सुरक्षा के लिए आगे आएं। वर्तमान समय की व्यस्तता में भी हमें ये भूलना नहीं चाहिए कि स्वतंत्रता का महत्व कैसे हैं और शहीद हुए देशभक्त जो हमारे देश को जिन्होंने आज़ाद किया था, हमें उनसे प्रेरणा लेनी चाहिए और जिस प्रकार से हम कर सकते हैं राष्ट्र की सेवा करना चाहिए। विभिन्नता में एकता, यही हमारे भारत की विशेषता है। कई रंगों से रंगा हुआ हमारा भारत देश रंगीला

0: हमारे सभी श्रोताओं को स्वतंत्रता दिवस की एक बार फिर हार्दिक शुभकामनाएं। कुछ नशा तिरंगे की आन का है, कुछ नशा मातृभूमि की शान का है। हम लहराएंगे हर जगह ये तिरंगा, नशा ये हिंदुस्तान के सम्मान का है। इसी के साथ अपनी दोस्त अनुराधा को दीजिए इजाज़त। वंदे मातरम। यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण है।
1: भारतीय जीवन बीमा निगम मध्य क्षेत्र भोपाल की ओर से आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं।
2: बधाई हो, आपकी बीवी प्रेग्नेंट है।
3: सच?
2: हाँ हाँ सच। लेकिन इस खुशखबरी के साथ एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है आपके कंधों पर। आपको माँ और उसके होने वाले बच्चे दोनों की सेहत का ख्याल रखना होगा और जल्दी से जल्दी HIV की जांच भी करवाना, क्योंकि HIV का संक्रमण गर्भ के दौरान माँ से बच्चे को भी हो सकता है।
3: डॉक्टर, अगर HIV पॉजिटिव आए तो
2: बिना कोई देरी किए ART केंद्र से ART ट्रीटमेंट लो, ताकि समय पर माँ और बच्चे दोनों को सही केयर दी जा सके।
3: डॉक्टर, हम आज ही जाकर HIV की जांच कराते हैं।
2: और इस बारे में अगर कोई भी जानकारी लेनी हो तो मुझे या फिर 1097 पर कॉल कर लेना।
4: मध्य प्रदेश राज्य एड्स नियंत्रण समिति द्वारा जनहित में जारी।
1: भारतीय जीवन बीमा निगम मध्य क्षेत्र भोपाल की ओर से आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं।
5: रितेश, तुम्हारे पापा की तबीयत कैसी है?
6: डॉक्टर कह रहे हैं कि ऑपरेशन करना पड़ेगा, ब्लड भी चढ़ाना पड़ेगा शायद, लेकिन मुझे डर है कि हॉस्पिटल का ब्लड सेफ है या।
5: अगर लाइसेंस हॉस्पिटल या लाइसेंस ब्लड बैंक है तो सेफ ही होगा, क्योंकि ट्रांसफ्यूजन के लिए ब्लड स्टोर करने की अथॉरिटी सिर्फ लाइसेंस ब्लड बैंक और लाइसेंस हॉस्पिटल के पास ही है। और ये भी सुनिश्चित कर लेना कि ब्लड HIV टेस्टेड है या नहीं, क्योंकि असुरक्षित ब्लड ट्रांसफ्यूजन से HIV एड्स जैसे कई बीमारियों की संक्रमण का भी डर रहता है।
6: अच्छा, अब तो मैं लाइसेंस ब्लड बैंक या हॉस्पिटल से ही ब्लड लूंगा।
3: हाँ, और इस बारे में और जानकारी चाहिए हो तो 1097 पर कॉल कर लेना।
7: मध्य प्रदेश राज्य एड्स नियंत्रण समिति द्वारा जनहित में जारी।
1: भारतीय जीवन बीमा निगम मध्य क्षेत्र भोपाल की ओर से आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं।
8: अब पढ़ाई के साथ कमाई भी।
9: मध्य प्रदेश सरकार लाई है मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना। 18 से 29 साल के युवाओं को मिलेगी इंडस्ट्री ट्रेनिंग और हर महीने 8,000 से 10,000 रुपए तक का स्टाइपेंड। हुनर सीखो, पैसा कमाओ और करियर बनाओ एक साथ। रजिस्टर करने का मौका अभी है।
10: mmsky.mp.gov.in पर जाएं। सीखो, कमाओ और लाइफ में कुछ बड़ा करो।
1: भारतीय जीवन बीमा निगम मध्य क्षेत्र भोपाल की ओर से आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं।
11: सुनिए NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग, सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे आकाशवाणी भोपाल पर।
1: भारतीय जीवन बीमा निगम मध्य क्षेत्र भोपाल की ओर से आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं।
11: सुनिए NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग, सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे आकाशवाणी भोपाल पर।
1: भारतीय जीवन बीमा निगम मध्य क्षेत्र भोपाल की ओर से आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं।
12: राष्ट्रभाषा हिंदी द्वारा ही भारतीय संस्कृति की रक्षा हो सकती है। पुरुषोत्तम दास टंडन।
1: भारतीय जीवन बीमा निगम मध्य क्षेत्र भोपाल की ओर से आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं।

0: भारतीय जीवन बीमा निगम मध्य क्षेत्र भोपाल की ओर से आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं।
1: राष्ट्रभाषा हिंदी द्वारा ही भारतीय संस्कृति की रक्षा हो सकती है। पुरुषोत्तम दास टंडन।
0: भारतीय जीवन बीमा निगम मध्य क्षेत्र भोपाल की ओर से आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं।
1: महर्षि दयानंद सरस्वती ने कहा, हिंदी द्वारा सारे भारत को एक सूत्र में पिरोया जा सकता है।
0: भारतीय जीवन बीमा निगम मध्य क्षेत्र भोपाल की ओर से आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं।

यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण है। 12:30 हुए हैं। लीजिए अब सुनिए कार्यक्रम संग्रहालय से के अंतर्गत धारावाहिक अमर वीर बलिदानी झांसी वाली रानी का 5वां भाग।

0: नवजात उत्तराधिकारी की असमय मृत्यु के बाद झांसी के राजा गंगाधर राव ने अपने परिवार के एक बालक दामोदर राव को भारत की मान्य और प्रचलित परंपरा के अनुसार गोद लिया। राजा गंगाधर राव अस्वस्थ रहते थे और रानी लक्ष्मीबाई रियासत के दायित्व का संचालन निर्वहन करती थी। दामोदर राव के उत्तराधिकार की स्वीकृति के लिए झांसी की अर्जी लॉर्ड डलहौजी के पास भेजी गई। इस बीच राजा गंगाधर राव का देहावसान हो गया। अंग्रेजों की नीति दत्तक उत्तराधिकार को स्वीकार नहीं करने की थी और वो निसंतान रियासतें संधियों की दुहाई देकर हड़प लिया करते थे। झांसी के साथ भी अंग्रेजों ने यही किया।
1: सुनो सुनो सुनो, ध्यान से सुनो। हर खासो आम को इत्तला दी जाती है कि झांसी की रियासत पर अब कंपनी सरकार का अलम हो गया है और लॉर्ड गवर्नर डलहौजी साहब ने रियाया के नाम ये फरमान जारी किया है कि वो अंग्रेजों की मातहती में रहकर चैन से अपना काम काज करे। कंपनी सरकार किसी तरह की सरकशी और शरारत को बर्दाश्त नहीं करेगी और हरकत करने वाले बदमाशों को बामुताबिक कानूनी सजा दी जाएगी। इसलिए बेहतर यही है कि रियाया वफादारी के साथ रहे। सुनो सुनो सुनो, हर खासो आम को इत्तला दी जाती है कि अब झांसी पर कंपनी सरकार का राज्य कायम हो गया है और उसका ही हुक्म चलेगा।
2: काहे जू, अब झांसी में कौन है?
3: अरे होने का है भैया, हुई है वही जो राम रचिरा का।
2: गोद मनवाने के लाने जो अर्जी लाट साहब लोग पहुंचा दी थी, सो तो बिन्ने ना मानी।
3: गोद के मनवाने के लाने अर्जी जो कैसो अंधेर। हम अपने गांव में रोजे गोद लेट देत, ताके लाने अर्जी पूर्जी तो कौन दे।
2: अरे अंग्रेजन ने नए नए कानून

0: निकालें।
1: हाँ, इतना खाओ इतना सोचो, अब अकेला आने का अंग्रेज कानून बनाए।
0: कल चैतरी में चढ़ गई सो, अब उन्हें कुछ सूझत नहीं आ, तो कहा ऐसी आके फूट गई कि धर्म कर्म कुछ नहीं लेकत।
1: अधर्म राज है जिन अंग्रेजन को। हाँ,
2: फिरंगियों की राज्य घोषणा से उठी ज्वाला को रानी ने अपने मन के भीतर ही भीतर संयत कर लिया। यह समय नहीं था विस्फोटक प्रतिक्रिया का, आगा भी देखना था और पीछा भी सोचना था। रानी ने अंग्रेजों के निर्देश स्वीकार कर लिए। वो गंभीरता पूर्वक सारी स्थिति का अवलोकन कर रही थी।
3: उनकी दैनिक चर्या यथावत थी, पूजा पाठ, प्रतिदिन महल के आंगन में घोड़े की सवारी, तीरंदाजी, बंदूक से निशाना लगाना, तलवार चलाना इत्यादि।

इस अभ्यास में सुंदर, मुंदर, काशीबाई, झलकारीबाई और नगर की दूसरी स्त्रियां उनके पास होती। छद्म युद्ध के इन अभ्यासों में नगर और छावनी की सूचनाएं भी उनको मिलती रहती।

0: रानी के पास अपनी फरियाद लेकर नागरिक भी आते। वो उन्हें बताते कि अंग्रेजों ने झांसी की फौज तोड़ दी है, सिपाही बेरोजगार हो गए हैं, अंग्रेजों के कानूनों से प्रजा दुखी है, वो आपके इशारे का इंतजार कर रही है।
1: भाई साहब के हुकुम को मानेंगे, माँ धरती की कसम खा के कहते हैं।

0: स्वातंत्र संघर्ष का आह्वान संदेशा गांव गांव पहुंच रहा था। झांसी में रानी तक खबरें और सूचनाएं पहुंच रही थीं। उनसे मिलने जुलने वालों पर अंग्रेजों की तीखी नजर जरूर थी, लेकिन कोई बंदिश नहीं थी। बंदिश अगर लगाते तो समझा जाता कि रानी को नजरबंद कर लिया गया है और जनता भड़क उठती। अंग्रेज सावधान थे और उनके जासूस सतर्क, लेकिन तात्या टोपे एक दिन रानी के पास पहुंच ही गए।
1: संघर्ष की तैयारी में लगे हुए थे तात्या टोपे। छद्मवेश में पूरा हिंदुस्तान घूम रहे थे। अंग्रेजी फौजों के हिंदुस्तानी सिपाहियों से संपर्क करते हुए, उन्हें ये याद दिलाते हुए कि भारत माता उन्हें पुकार रही है, भारत माता की बेड़ियों की झंकार अनसुनी मत करो, सुनो और वीरों का बाना ग्रहण करो।

0: कहां कहां भ्रमण कराए इस बार सरदार तांत्या?
1: इस बार बहुत घुमा हूं भाई साहब, कहीं कहीं तो पकड़े जाने की नौबत भी आ गई, लेकिन बिठोवा की कृपा से बच निकला। यहां तो आपने पूरा सरंजाम जुटा रखा है। मैं देख रहा हूं कि आपकी सहेलियां सुंदर मुंदर, काशीबाई, झलकारी बाई, मोतीबाई सभी यहां हैं। आपने तो खासी स्त्री सेना तैयार कर ली। पंजाब के अलावा नारी जाति में ऐसा जागरण मुझे अन्यत्र नहीं मिला।
0: आधी आबादी जब पर्दे में बंद रहेगी तो सुराज का साधन कैसे सधेगा तात्या साहब?
1: और दूसरी बाधाएं भी हैं। अपने प्रवास में मैंने पाया कि बड़े राज्य जयपुर, जोधपुर, बीकानेर, ग्वालियर जैसे इतिहास के घटना चक्र से तटस्थ हो गए हैं। को नृप होए हमें का हानि जैसा रवैया है उनका, यह दुर्भाग्य की बात है भाई साहब। तमाम राजे रजवाड़े अंग्रेजों के संरक्षण में ही खुद को सुरक्षित समझते हैं। आराम तलबी, ऐश और आलस्य किसी भी जाति के दुर्गुण होते हैं, और ऊपर से तटस्थता तो एक अभिशाप है।
0: सही फरमाया तांत्या आपने, जब समर सामने हो तो पक्ष तो लेना ही पड़ता है, और पक्ष न्याय का होता है। आजादी और गुलामी के बीच से आज देश को आजादी को चुनना है। पूरा देश एक होकर आजादी के लिए जूझे, तभी आन और शान बच पाएगी।
1: ये बात जनता खूब समझती है भाई साहब। जहां जहां भी मैं गया, जनता को जागरूक देखा। राजों रजवाड़ों को तो पेंशनें मिल गई और वो संतुष्ट होकर पुराने ढर्रे को बनाए हुए हैं, लेकिन जनता की तो रोटी रोजी ही अंग्रेजों ने छीन ली। उसमें गुस्सा है, असंतोष है, कुछ कर गुजरने की चाहत है, अपना सर्वस्व न्यौछावर करने को तैयार हैं वे लोग।
0: ये शुभ संकेत है तांत्या साहब।
1: लेकिन भाई साहब, जनता के पास नेता नहीं है, जनता नेतृत्व विहीन है और इसलिए बेवश है।
0: मैंने कुछ नाम सुने हैं तात्या साहब, बार बार चर्चा में आते हैं, जैसे अपने नाना धोंदू पंत।
1: नाना साहब तो खार खाए बैठे हैं। पेशवा के साथ जो विश्वासघात हुआ उसने नाना साहब को धधकता हुआ अंगारा बना दिया है। अंग्रेजों ने पेशवा के साथ ही क्या,

0: सबके साथ यही किया है। नागपुर, सतारा और हाल फिलहाल आपकी झांसी, छत्रपति के सुराज का सपना छिन्न भिन्न हो गया है भाई साहब, ऐसा तो नहीं चले?
1: नहीं चलेगा, बिल्कुल नहीं चलेगा सरदार तांत्या।
0: यहां वहां कुछ लोग हैं भाई साहब, जिनके हृदय में प्रतिकार, आंखों में अंगार और संकल्पों में स्वराज अभी भी जीवित है और जिंदगी की तरह धड़क रहा है, लेकिन वो अलग थलग है। उन्हें जोड़ने के लिए एक सूत्र चाहिए। ठाकुर कुंवर सिंह, अजीमुल्ला खां, मौलवी मोहम्मद शाह, दिल्ली का शहजादा मिर्जा मुगल, बहादुर शाह जफर की बेगम जीनत महल, कितने कितने आजादी के परवाने हैं, लेकिन सब अपनी अपनी जगह पर अकेले।
1: दिल्ली से याद आया सरदार तांत्या, इस स्वातंत्र यज्ञ में दिल्ली की आहुति क्या होगी?
0: खानदाने मुगलिया के आखिरी चिराग बहादुर शाह जफर बूढ़े और बीमार हैं। अपनी हसरतों को वो शेर और शायरी में तलाशते रहते हैं। इस उम्र में उनसे ज्यादा उम्मीद करना फजूल है, किंतु उनकी बेगम जीनत महल बहुत तेजस्वी और सक्रिय है, और शहजादा मिर्जा मुगल भी, दोनों पूरी ताकत से जुटे हुए हैं। हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि आज भी बादशाहत एक प्रतीक है हमारे देश की आजादी का। लड़ाई तो बहादुर शाह जफर के नाम पर ही लड़ी जाएगी।
1: इसी प्रतीक को जनता स्वीकार करेगी। तांत्या साहब, इस मुक्ति संग्राम में अग्रणी भूमिका तो निसंदेह जनता की ही रहना है, वही अपने जननायकों को जन्म देगी।

तात्या साहब, जब से फिरंगियों ने झांसी को हड़पा है, हर दिन हमारे पास लोग आते हैं। किसान, मजूर, व्यापारी, आमजन, निर्धन, जिनके तन पर कपड़ा नहीं है, शायद पेट में रोटी भी नहीं है, लेकिन तांत्या साहब हौसला है, लक्ष्य है, बेचैनी है। वो कहते हैं, बाई साहब कुछ करो, लेकिन मैं कुछ नहीं कर पाती। अंग्रेजों के पास ताकत है, धूर्तता है, षड्यंत्रों वाला दिमाग है, विश्वासघाती देशद्रोहियों का समर्थन है, और हमारे पास साधन तक नहीं है कि इस समर को दूर तक चला सकें।

0: साधन जुट रहे हैं भाई साहब, आजादी के हर कार्य फिरंगियों की छावनी में घूम रहे हैं और उन्हें भारी समर्थन मिल रहा है। हिंदुस्तानी सिपाही गदर के लिए तैयार हो रहे हैं, वो सीखे सिखाए सदे सदाए हैं, वो लड़ना जानते हैं। अंग्रेजों के लिए उन्होंने लड़ाइयां लड़ी हैं और अब वो अपने देश और हम वतनों के लिए लड़ेंगे। उनके पास बंदूकें, गोले, कारतूस वगैरह हैं। विप्लव में उनके शामिल होने से हमें बड़ी मदद मिलेगी, साधन भी मिलेंगे।
1: लेकिन सिपाही हमारे साथ कैसे आएंगे? हम उन्हें पगार तक तो दे नहीं सकते।
0: सवाल पगार का नहीं, स्वाभिमान का है। आजादी की भावना स्वाभिमान के साथ जुड़ी हुई है भाई साहब। अंग्रेजों की फौज में 40,000 सिपाही अवध के हैं और इस भावना के रहते उनमें एक तरह की एकता है, राष्ट्रीयता है। जब किसी एक सिपाही का अपमान होता है तो वो इसे अपनी राष्ट्रीयता का अपमान मानते हैं और नाफरमानी पर उतारू हो जाते हैं।
1: यही भावना पूरे हिंदुस्तान के लिए होना चाहिए सरदार साहब। अवध, बंगाल, दक्षिण, पंजाब, बुंदेलखंड कहीं के हों, हमें अपने आप को भारतीय मानना और समझना चाहिए। दास्ता समूचे भारत का अपमान है।
0: फिरंगियों की फौज का हर हिंदुस्तानी सिपाही हर रोज इस अपमान को अनुभव करता है भाई साहब। तिल तिल जब वो अपमानित होता है उसके मन की आग भड़कती है और ये आग अवज्ञा के रूप में सामने आती है।
1: तांतिया साहब, इस आग में तपन और तेजी कब आएगी?
0: हम प्रयत्न तो कर ही रहे हैं भाई साहब। अपनी कोरी चमड़ी को लेकर अंग्रेज खुद को हिंदुस्तानियों से बेहतर समझते हैं।
1: ईश्वर अपनी रची हुई सृष्टि में भेदभाव की इस दृष्टि को सहन नहीं करेगा।
0: कदापि नहीं, ईश्वर ने सभी को समान भाव से रचा है, बिना किसी ऊंच नीच के। ईश्वर की सब संतानें हैं और सब मनुष्य हैं, बराबरी के मनुष्य, ना कोई स्वामी ना कोई दास।

0: स्वतंत्रता की ललक मनुष्य की गरिमा स्थापित करने का अभियान है भाई साहब। यह सिर्फ राजपाट के लिए किया जाने वाला संघर्ष नहीं है, यह तो मानवीय अधिकारों की लड़ाई है
1: और इसके पीछे हजारों सालों का इतिहास है। हम उस सिलसिले की एक कड़ी मात्र हैं, परंपरा का एक पांव, लक्ष्य की सनातन यात्रा की दिशा में गतिशील एक उठा हुआ कदम।
0: अंग्रेज छावनियों में आए दिन घटनाएं होती रहती हैं भाई साहब। फिरंगी अपना हुक्म लादने की कोशिश करते हैं और सिपाही उसे नहीं मानते। अभी हिंदुस्तानी फौजों को रंगून भेजा जाना था, बंगाल की फौजों ने इनकार कर दिया। पंजाब से सिखों की फौज बुलानी पड़ी। सभी जगह यही आलम है। बैरकपुर, रानी

0: देखता हूं बुंदेलखंड भी पीछे नहीं है। इस इलाके में झांसी पर ही हमारी आशाएं टिकी हुई है। भाई साहब, महाअभियान आपकी अगुवाई में ही संपन्न होगा।
1: झांसी प्रस्तुत है सरदार साहब। वीर प्रसू बुंदेलखंड की धरती, छत्रसाल और चंपतराय की संतानें आपको निराश नहीं करेंगी। तांत्या साहब, इस माटी के कण कण में अंगड़ाई है और इसके हौसलों में आग है, धार है और तरुणाई है।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम संग्रहालय से के अंतर्गत धारावाहिक अमर वीर बलिदानी झांसी वाली रानी का पांचवा भाग। यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। लीजिए अब सुनिए इस घंटे की खास खबरें।

देश आज 80वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले की प्राचीर से राष्ट्रीय ध्वज फहराया। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश आज उन महान सपूतों का स्मरण कर रहा है जिन्होंने अपने त्याग और बलिदान से देश को स्वतंत्र कराया। प्रदेश में स्वतंत्रता दिवस हर्षोल्लास और गरिमामय वातावरण में मनाया जा रहा है। राजधानी भोपाल के लाल परेड मैदान में आयोजित राज्य स्तरीय समारोह में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने ध्वजारोहण किया और संयुक्त परेड की सलामी ली। 80वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर दतिया के पुलिस लाइन ग्राउंड में समारोह आयोजित हुआ। समारोह में मध्य प्रदेश शासन के कैबिनेट मंत्री नारायण सिंह कुशवाहा ने ध्वजारोहण किया और परेड की सलामी ली और शिवपुरी में कलेक्टर अर्पित वर्मा ने जिला स्तरीय समारोह में ध्वजारोहण किया और परेड का निरीक्षण किया। जबलपुर में हर घर तिरंगा अभियान के तहत तिरंगा यात्रा निकाली गई। यात्रा की शुरुआत भगत सिंह चौक स्थित शहीद भगत सिंह की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर की गई। भोपाल की बड़ा तालाब में चल रही तीसरी राजा भोज मल्टी क्लास नेशनल सेलिंग चैंपियनशिप में प्रदेश के खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन किया। कल मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के मुख्य आतिथ्य में चैंपियनशिप का समापन होगा और प्रदेश के नर्मदापुरम, छतरपुर और उमरिया में आज अति भारी बारिश का अनुमान है। वहीं जबलपुर, सागर, रायसेन, रीवा, शहडोल समेत कई जिलों में भारी बारिश हो सकती है। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।

यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। दिन के 1 बजे हैं। लीजिए सुनिए महिला कार्यक्रम। हमारा आज का ये कार्यक्रम आकाशवाणी के रीवा केंद्र की प्रस्तुति है।

कार्यक्रम महिला सभा में हमारी सभी श्रोता बहनों का बहुत बहुत स्वागत है। स्वीकारिए कल्पना मिश्रा का प्यार भरा नमस्कार। तिरंगे की हर लहर में शहीदों का अरमान है, तिरंगे की हर लहर में शहीदों का अरमान है, इसकी ऊंची शान में ही भारत की पहचान है। सांसें चलें तो देश के लिए, सांसें रुकें तो देश के लिए, जीवन का हर सपना हिंदुस्तान के लिए। आंधी आए तूफान आए, हम पीछे हटने वाले नहीं, जब तक इस सीने में प्राण है तिरंगे को झुकने देंगे नहीं। इन पंक्तियों के साथ आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की ढेरों शुभकामनाएं। ये तो हम सभी जानते हैं बहनों कि हमारा देश 200 वर्षों तक ब्रिटिश शासन का गुलाम रहा है और इतने लंबे समय तक हमारे देशवासियों ने बहुत सी यातनाएं सही, परंतु कई ऐसे क्रांतिकारी और देशभक्त हुए जिन्होंने अपनी जान गंवाकर अपना लहू बहाकर हमें गुलामी की बेड़ियों से आजाद कराया। और इस स्वतंत्रता आंदोलन में महिलाओं ने भी पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर अद्भुत साहस, त्याग और बलिदान का परिचय दिया। रानी लक्ष्मीबाई और बेगम हजरत महल से लेकर अरुणा आसफ अली और मातंगिनी हाजरा जैसी अनगिनत वीरांगनाओं ने देश के लिए अपनी जान की बाजी लगा दी। रानी लक्ष्मीबाई ने 1857 की क्रांति में अंग्रेजों के नाक में दम कर डाला और झांसी की रक्षा के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। झलकारी बाई, जो कि रानी लक्ष्मीबाई की सेना दुर्गा दल की कमांडर थी, जो रानी की जान बचाने के लिए अंग्रेजों से मुकाबला करते हुए बलिदान हुई। वहीं कनकलता बरुआ असम की मात्र 17 वर्षीय क्रांतिकारी, जो भारत छोड़ो आंदोलन में तिरंगा लेकर जुलूस का नेतृत्व करते हुए शहीद हुई। लखनऊ के सिकंदर बाग में अंग्रेजों से मुकाबला करते हुए उदा देवी पासी ने अकेले ही कई ब्रिटिश सैनिकों को मौत के घाट उतारा और खुद वीर गति को प्राप्त हुई। असम में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान ब्रिटिश पुलिस की गोलीबारी में शहीद होने वाली वीरांगना थी भोगेश्वरी फुक्काननी। मैडम बीकाजी कामा ने जर्मनी के स्टार्टगार्ड में 1907 में सबसे पहले भारतीय तिरंगा फहराया। वहीं सरोजनी नायडू ने नाइटिंगेल ऑफ इंडिया के रूप में नमक सत्याग्रह और

लड़कियों की शिक्षा को बढ़ावा दिया, बाल विवाह, जातिगत भेदभाव का विरोध किया और विधवा पुनर्विवाह का समर्थन किया। बहनों, वहीं कस्तूरबा गांधी महात्मा गांधी के साथ सविनय अवज्ञा और कई विरोध प्रदर्शनों में शामिल रहीं और कई बार जेल भी गईं। कमला नेहरू ने भी जवाहरलाल नेहरू के साथ असहयोग आंदोलन में भाग लिया। बहनों, सरोजनी नायडू भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष थीं, जिन्होंने नमक आंदोलन, सविनय अवज्ञा और भारत छोड़ो आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाई। सुचेता कृपलानी सविनय अवज्ञा और भारत छोड़ो आंदोलन में भी सक्रिय रहीं और बाद में भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री बनी। बहनों, क्या आप रुक्मणी देवी अरुणडेल को जानती हैं? इन्होंने भारतीय शास्त्रीय नृत्य और कला को पुनर्जीवित और प्रोत्साहित किया, जिसकी वजह से देश की सांस्कृतिक पहचान सशक्त बनी। उषा देवी मेहता ने भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान गुप्त तरीके से कांग्रेस रेडियो का संचालन करके स्वतंत्रता का संदेश प्रसारित किया। तो बहनों, ऐसी ही कई अनगिनत क्रांतिकारी और देशभक्त महिलाएं थीं, जिन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से अपना योगदान दिया और वतन की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति दी। ऐसी महान विभूतियों को हमारे रेडियो परिवार की ओर से नतमस्तक होकर शत शत नमन है। जब आंख खुले तो धरती हिंदुस्तान की हो, जब आंख बंद हो तो यादें हिंदुस्तान की हो। हम मर भी जाएं तो कोई गम नहीं, लेकिन मरते वक्त मिट्टी हिंदुस्तान की हो। आइए क्रांति फिल्म का गीत सुनते हैं, जिसे आवाज दी है महेंद्र कपूर ने।

0: अभी हमने महेंद्र कपूर की आवाज में क्रांति फिल्म का गीत सुना। बहनों, आज है हमारे बीच महिला एवं बाल विकास कार्यकर्ता भावना पांडे, जिनसे करेंगे हम जरूरी बातचीत, जिसका विषय है बच्चों को मोबाइल फोन या सोशल मीडिया से दूर कैसे रखें।
1: भावना जी, आपका हमारे कार्यक्रम महिला सभा में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार।
2: नमस्कार।
1: तो भावना जी, बच्चों को सोशल मीडिया की लत इस कदर लगी हुई है कि वो कई कई घंटों टीवी और मोबाइल फोन में लगे रहते हैं, तो इन सब का उनके सेहत पर बुरा असर पड़ता होगा। आप बताइए कि उन्हें क्या करना चाहिए।
2: अब इसका बहुत बड़ा सवाल है ये तो बताइए, अब हम ही लोग नहीं छोड़ पा रहे तो हम अपने बच्चों को क्या बताएं। लेकिन फिर भी ये बहुत बड़ा सवाल है आज की जनरेशन के ऊपर, जो कि मोबाइल पे ही डिपेंडेंसी है उनकी। हम लोग अगर मोबाइल देख रहे हैं, कई महिलाओं को मैंने देखा, अगर उनके पास समय नहीं है तो बच्चों के लिए भी एक नया मोबाइल आ गया है, जो कि बहुत ही गलत है। हम अपने बच्चों को खाना खिला रहे हैं, उनके स्पून फीडिंग कर रहे हैं, बच्चे को पता ही नहीं है वो बच्चा क्या खा रहा है, बच्चे के अंदर जा रहा है, कितना खा लिया उसने उसको ये भी नहीं पता है। तो इस पे बच्चे पे स्वास्थ्य पे बहुत बुरा असर पड़ता है, क्योंकि वो सिर्फ खाने को देख नहीं रहा है, ना उसका टेस्ट पता कर रहा है कि वो खाना बना क्या है, क्या मैंने खा लिया, उससे हमें क्या स्वाद मिला, उसको कुछ पता नहीं चल रहा है। सिर्फ वो टीवी का स्वाद ले रहा है और माँ खुश होगी कि हमने इतना सारा अपने बच्चे के अंदर डाल दिया। तो इससे तो हमारे बच्चे के जीवन पे बहुत बुरा असर पड़ रहा है। तो हमें क्या करना है कि हम पहले अपनी आदत में सुधार लाएं, पहले तो माताएं अपने बच्चों के लिए समय निकालें। पहले भी हमारी माएं खिलाया करती थी, उनके पास टीवी मोबाइल नहीं हुआ था, तब भी बच्चे हमारे स्वस्थ रहते थे खिलाते। जब भी आप माताएं बैठी तो एक छोटी सी प्लेट, सुंदर सी प्लेट आप बच्चों की भी लगा दीजिए, बच्चों से बातें करिए, कहानी करिए, उनको खेल खेल में खेल खिलौने उनके हाथों में पकड़ा दीजिए और वो बच्चा खेलता रहेगा, झूमता रहेगा, और आप खाना खिलाइए, उनको दिखाइए कि आपने बच्चे को क्या खिलाया है, बच्चे आपके साथ एंगेज रहे। अगर आप बच्चे मटर छील रहे हैं तो आप बच्चे को भी एंगेज कर दीजिए, उसको पता चल जाएगा कि बच्चा ये मटर है, उसको अलग से पहचानने की जरूरत नहीं पड़ती है। हम जॉइंट फैमिली में रहते हैं, जब सब लोग खाने बैठते हैं आप बच्चे की भी एक सुंदर सी प्लेट लगा दीजिए तो बच्चा भी अपना उत्साह से खाएगा वो भी। तो हमें तो पहले, सबसे पहले अपनी आदतों में सुधार लाएंगे, उसके बाद धीरे धीरे हमारी माताएं बहनें भी सुधरेंगी, तो उसके बाद हमारे बच्चे अच्छे निखर के आएंगे। धन्यवाद।
1: बहुत बढ़िया भावना जी, आप हमारे कार्यक्रम में आई और कार्यक्रम में आपने इतनी अच्छी जानकारी हमारे श्रोताओं को दी, धन्यवाद आपका। नमस्कार।
2: नमस्कार कल्पना जी।
0: बहनों, भारत सरकार के आयुष मंत्रालय और महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की एक संयुक्त पहल है

0: मिशन उत्कर्ष। इस मिशन का उद्देश्य देश के आकांक्षी जिलों में किशोरियों जिनकी उम्र 14 से 18 वर्ष के बीच है, उनका एनीमिया यानी खून की कमी का आयुर्वेदिक उपायों से मुकाबला करना और पोषण स्तर में सुधार लाना है। इस राष्ट्रीय परियोजना का औपचारिक शुभारंभ फरवरी 2024 में किया गया था। बहनों, इसके तहत 95,000 किशोरियों के पोषण स्तर को सुधारने का लक्ष्य रखा गया है। इसके पहले चरण में 5 राज्यों के 5 आकांक्षी जिलों जैसे असम का धुबरी जिला, छत्तीसगढ़ का बस्तर, झारखंड का पश्चिमी सिंहभूम, महाराष्ट्र के गढ़चिरौली और राजस्थान के धौलपुर जिले को शामिल किया गया है। तो बहनों, इसका उद्देश्य एनीमिया से लड़ना और एनीमिया मुक्त भारत हासिल करने की दिशा में काम करना है। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए का दिल में है। आइए सुनते हैं पूरब और पश्चिम फिल्म का गीत महेंद्र कपूर की आवाज में।
1: जब

अभी हमने महेंद्र कपूर की आवाज में पूरब और पश्चिम फिल्म का गीत सुना। बहनों, वैसे तो बारिश का मौसम बहुत ही सुहाना लगता है। चारों तरफ हरी भरी हरियाली देखकर मन रोमांचित हो उठता है, परंतु इस मौसम में हमने अपनी स्किन की देखभाल सही तरीके से नहीं की तो कुछ स्किन प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। जैसे स्किन को हेल्दी रखना है तो शरीर को अंदर से हाइड्रेट रखना होगा। इसके लिए पर्याप्त मात्रा में पानी पिएं। पानी शरीर से विषाक्त पदार्थों को दूर निकालने का काम करता है, जिससे त्वचा में जरूरी नमी बनी रहे और रूखेपन को रोकने का काम भी पानी करता है। त्वचा का धूप से बचाव बेहद जरूरी है। बादल छाए रहने पर भी पराबैंगनी किरणें त्वचा को नुकसान पहुंचा सकती हैं, तो हानिकारक पराबैंगनी किरणों से बचने के लिए बाहर निकलने से पहले सनस्क्रीन लोशन लगाएं। मानसून में चेहरा ऑयली ज्यादा हो जाता है तो इसके लिए दिन में दो बार हल्के क्लींजर से चेहरा साफ करें। ऑयल फ्री मॉइस्चराइजर का इस्तेमाल करें और बार बार चेहरे को छूने से बचें। इसके अलावा बहनों, बारिश में भीगने के बाद त्वचा को तुरंत साफ पानी से धोएं और सूखे कपड़े पहनें, जिससे फंगल इन्फेक्शन ना हो। अब आइए, कुछ फेस पैक हैं जिन्हें हम घर पर बनाकर इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे ताजी नीम की पत्तियों का पेस्ट बनाकर उसमें चुटकी भर हल्दी मिलाकर चेहरे पर लगा सकते हैं। ये बैक्टीरिया और फंगस को दूर करता है। और एक चम्मच बेसन में थोड़ा सा दही मिलाकर लगा सकते हैं। ये अतिरिक्त तेल को सोखता है और स्किन को साफ करता है। गुलाब जल टोनर का काम करता है। चेहरा धोने के बाद कॉटन बॉल से गुलाब जल लगाएं। ये रोम छिद्र को टाइट करता है और ताजगी देता है। तो बहनों, कुछ छोटी छोटी चीजों को ध्यान में रखकर हम इस मानसून में अपनी त्वचा का ख्याल बखूबी रख सकते हैं और चेहरा चमकदार और खिला खिला बनाए रख सकते हैं। वंदना के इन स्वरों में एक स्वर मेरा मिला लो, हो जहां बलिशीश अगणित एक सिर मेरा मिला लो। अब आइए उपकार फिल्म का गीत सुनते हैं महेंद्र कपूर की आवाज में।

अभी आप सुन रहे थे महिला कार्यक्रम। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के रीवा केंद्र की प्रस्तुति था। यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है।

0: भारतीय जीवन बीमा निगम मध्य क्षेत्र भोपाल की ओर से आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं।
1: अब पढ़ाई के साथ कमाई भी। मध्य प्रदेश सरकार लाई है मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना। 18 से 29 साल के युवाओं को मिलेगी इंडस्ट्री ट्रेनिंग और हर महीने 8,000 से 10,000 रुपए तक का स्टाइपेंड। हुनर सीखो, पैसा कमाओ और करियर बनाओ एक साथ। रजिस्टर करने का मौका अभी है।
2: mmsky.mp.gov.in पर जाएं। सीखो, कमाओ और लाइफ में कुछ बड़ा करो।
0: भारतीय जीवन बीमा निगम मध्य क्षेत्र भोपाल की ओर से आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं।
3: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
4: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
3: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
0: भारतीय जीवन बीमा निगम मध्य क्षेत्र भोपाल की ओर से आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं।
3: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
4: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
3: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
0: भारतीय जीवन बीमा निगम मध्य क्षेत्र भोपाल की ओर से आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं।
3: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
4: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
3: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
0: भारतीय जीवन बीमा निगम मध्य क्षेत्र भोपाल की ओर से आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं।

यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है, लीजिए अब सुनिए लोक संगीत का कार्यक्रम। हमारा आज का ये कार्यक्रम रीवा केंद्र की प्रस्तुति है। इस कार्यक्रम में हम आपको सुनवा रहे हैं रमेश प्रसाद साकेत के गाए गीत। आइए सबसे पहले सुनते हैं झूला गीत।

लोक संगीत के कार्यक्रम में आप सुन रहे थे रमेश प्रसाद साकेत के गाए कुछ लोकगीत। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के रीवा केंद्र की प्रस्तुति था। यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण है। थोड़ी ही देर में हमारा अगला कार्यक्रम होगा।

यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है, लीजिए आप सुनते हैं सुगम संगीत का कार्यक्रम। आज के इस कार्यक्रम में हम आपको सुनवा रहे हैं सुधाकर प्रसाद मिश्रा की गाए चंद गजलें। हमारा आज का ये कार्यक्रम आकाशवाणी के रीवा केंद्र की प्रस्तुति है। पेश है पहली गजल, शायर हैं शकील पदायनी।

दिन के 2 बजे हैं, ले जाइए सुनते हैं देशभक्ति गीत। कार्यक्रम में सबसे पहले हम आपको सुनवा रहे हैं जिगरी दोस्त फिल्म का गीत, मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में। आनंद बख्शी के बोल हैं और संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का।

हर मजहब के लोग हैं मिलते इस बगिया में इस महफिल में हो हे हम सारे हैं भारतवासी।

0: मुकेश की आवाज़ में आप सुन रहे थे फिल्म जिस देश में गंगा बहती है का ये प्यारा सा गीत। शैलेंद्र के पुल थे और शंकर जयकिशन का संगीत। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार।
1: आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार।

0: आज 80वां स्वाधीनता दिवस मना रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज ऐतिहासिक लाल किले के प्राचीर से राष्ट्रीय ध्वज फहराया। राष्ट्र को स्वाधीनता दिवस की शुभकामनाएं देते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि आज हर दिल की धड़कन वंदे मातरम के गायन से गूंज रही है, हर घर तिरंगा है, मन तिरंगा है और देश उत्साह तथा उमंग के साथ नए संकल्प को लेकर आगे बढ़ रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले 12 साल में देश ने नई रफ्तार पकड़ी है और नई गति से आगे बढ़ा है। श्री मोदी ने कहा कि देश हर क्षेत्र में तेजी से आगे बढ़ा है, इलेक्ट्रॉनिक से लेकर मोबाइल विनिर्माण तक हर क्षेत्र में कई गुना उत्पादन बढ़ा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि हमने हजारों की संख्या में अनुपालन खत्म किए, सैकड़ों पुराने कानून खत्म किए। उन्होंने कहा कि पिछले एक दशक में बुनियादी ढांचागत विकास को नई ताकत दी गई। प्रधानमंत्री ने युवाओं के लिए बड़ी घोषणा करते हुए फ्री ऑनलाइन कोचिंग की घोषणा की।
1: विभिन्न परीक्षाओं की फ्री ऑनलाइन कोचिंग हमने करने का निर्णय किया है। डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, हमारे पास उत्तम टैलेंट है, टीचर्स हैं। उन संसाधनों को जोड़ करके हम देश के नौजवानों को फ्री कोचिंग देने का एक पूरा नेटवर्क हम खड़ा करने वाले हैं।
0: वहीं श्री मोदी ने लाल किले से 1 साल में 1 करोड़ युवाओं को AI ट्रेनिंग देने की घोषणा की।
1: हमने पिछले दिनों AI इम्पैक्ट समिट किया था। AI का विस्तार बहुत तेजी से बढ़ रहा है। लाल किले से मैं देश के नौजवानों के लिए घोषणा करना चाहता हूं, हमने तय किया है कि आने वाले 1 वर्ष में 1 करोड़ युवाओं को AI स्किल के लिए ट्रेनिंग देने का हम काम करेंगे।
0: इधर प्रदेश में भी 80वां स्वतंत्रता दिवस हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने भोपाल के लाल परेड मैदान पर आयोजित राज्य स्तरीय कार्यक्रम में तिरंगा फहराया। इस दौरान प्रदेश को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ज्ञान अर्थात गरीब, युवा, अन्नदाता और नारी का जो मंत्र दिया था, उसमें इंडस्ट्री और इंफ्रास्ट्रक्चर को जोड़कर हमने ज्ञानी के रूप में उसका विस्तार कर दिया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि किसानों के खेत सरकार लिए देवस्थल है और खेत में उपजा एक एक दाना प्रसाद के समान है, इसलिए सरकार प्राथमिकता से किसानों की उपज खरीद रही है। उन्होंने प्रदेश के ऐतिहासिक बजट का भी जिक्र किया।
2: हमारी सरकार ने वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए 4,38,000 करोड़ रुपए का बजट पेश किया, जो पिछले वित्तीय वर्ष से 10% अधिक है। राज्य की प्रति व्यक्ति आय प्रचलित भावों पर पिछले वर्ष की तुलना में 9% से ज्यादा की वृद्धि हुई है। त्रिवर्षीय रोलिंग बजट की अवधारणा को लागू करने वाला मध्य प्रदेश देश का पहला राज्य है।
0: प्रदेश में जिला स्तर पर भी स्वतंत्रता दिवस हर्षोल्लास धूमधाम एवं गरिमामय ढंग से मनाया जा रहा है। ग्वालियर में आयोजित कार्यक्रम में विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर ने परेड की सलामी ली। जिले के मुख्य समारोह में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के संदेश का सीधा प्रसारण हुआ। खंडवा में आयोजित जिला स्तरीय समारोह में जनजाति कार्य विभाग के मंत्री डॉ. कुंवर विजय शाह ने ध्वजारोहण किया। सतना में मुख्य समारोह में नगरीय विकास एवं आवास राज्य मंत्री प्रतिमा बागरी ने परेड की सलामी ली। रायसेन में स्वतंत्रता दिवस समारोह के बाद लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा राज्य मंत्री नरेंद्र शिवाजी पटेल ने शासकीय आदर्श कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय पहुंचकर छात्राओं के साथ मध्याह्न भोजन किया। कटनी में जिला कलेक्टर आशीष तिवारी के मुख्य आतिथ्य में स्वतंत्रता दिवस कार्यक्रम हुआ। आगरमालवा जिला मुख्यालय पर आज आयोजित हुए स्वतंत्रता दिवस के मुख्य समारोह में कलेक्टर डॉ. शेर सिंह मीना ने ध्वजारोहण कर परेड की सलामी ली। जबलपुर, नर्मदापुरम, बैतूल, छतरपुर, शहडोल, शिवपुरी, बड़वानी, नीमच में भी स्वतंत्रता दिवस हर्षोल्लास से मनाया जा रहा है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने पुलिस अधिकारियों कर्मचारियों को 9 विशिष्ट सेवा पदक, 33 सराहनीय सेवा पदक एवं होमगार्ड के अधिकारियों कर्मचारियों को सराहनीय सेवा के लिए 3 पदक प्रदान कर सम्मानित किया। जबलपुर के पश्चिम विधानसभा क्षेत्र में आज हर घर तिरंगा अभियान के तहत भव्य तिरंगा यात्रा निकाली गई। इस बुलेटिन में इतना ही। अगला बुलेटिन सुनिए 7:10 पर। नमस्कार।
3: समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार। आज 80वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली के लाल किला के प्राचीर पर ध्वजारोहण किया। लाल किला पर पहली बार वंदे मातरम का गायन। प्रधानमंत्री ने गरीब और मध्यम वर्ग के परिवारों के बच्चों के लिए मुफ्त ऑनलाइन कोचिंग और अगले एक वर्ष में 1 करोड़ युवाओं को AI कौशल का प्रशिक्षण देने की घोषणा की। प्रधानमंत्री ने कहा, महत्वपूर्ण खनिजों के क्षेत्र में भारत एक विश्वसनीय वैश्विक साझेदार के रूप में उभर रहा है। कई देशों के साथ समझौतों पर हस्ताक्षर किए जा रहे हैं। श्री मोदी ने कुछ देशों द्वारा संसाधनों का दुरुपयोग कर अपना वर्चस्व दिखाने के प्रयासों पर निराशा व्यक्त की। उन्होंने कहा, भारत आत्मनिर्भरता की भावना से इस चुनौती का सामना कर रहा है। विदेशों में स्थित भारतीय दूतावासों में भी स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। इंडोनेशिया के पूर्वी तट पर आए 7.7 तीव्रता के भूकंप में 20 लोगों की मौत और गाले में श्रीलंका के साथ पहले क्रिकेट टेस्ट में भारत ने 1 विकेट पर 106 रन बनाए। राष्ट्र आज 80वां स्वाधीनता दिवस मना रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज ऐतिहासिक लाल किला के प्राचीर पर ध्वजारोहण किया। श्री मोदी ने स्वाधीनता दिवस की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि आज हर दिल की धड़कन वंदे मातरम के गायन से गुंजायमान हो रही है।
1: आजादी के बाद 15 अगस्त लाल किले पर पहली बार वंदे मातरम गूंज रहा है। आज जब हम देश के लोग वंदे मातरम के 150 वर्ष मना रहे हैं, इससे बड़ा उत्तम अवसर क्या हो सकता है।
3: प्रधानमंत्री ने कहा कि AI शिखर सम्मेलन के आयोजन से भारत ने विश्व को अपनी ताकत दिखाई है। उन्होंने कहा कि देश की युवा शक्ति AI के क्षेत्र में भी प्रयास कर रही है।
1: हमने पिछले दिनों AI इम्पैक्ट समिट किया था। AI का विस्तार बहुत तेजी से बढ़ रहा है। लाल किले से मैं देश के नौजवानों के लिए घोषणा करना चाहता हूँ, हमने तय किया है कि आने वाले 1 वर्ष में 1 करोड़ युवाओं को AI स्किल के लिए ट्रेनिंग देने का हम काम करेंगे।
3: श्री मोदी ने कहा कि सरकार मध्यम वर्ग के परिवारों के बच्चों के लिए फ्री ऑनलाइन कोचिंग की व्यवस्था कर रही है।
1: विभिन्न परीक्षाओं की फ्री ऑनलाइन कोचिंग हमने करने का निर्णय किया है। डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, हमारे पास उत्तम टैलेंट है, टीचर्स हैं। उन संसाधनों को जोड़ करके हम देश के नौजवानों को फ्री कोचिंग देने का एक पूरा नेटवर्क हम खड़ा करने वाले हैं।
3: प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले 12 वर्ष में करोड़ों देशवासियों के संकल्प, समर्पण और हर संभव प्रयास की बदौलत देश ने नई ऊंचाइयों को छुआ है। उन्होंने कहा कि पहले भारत 5 सबसे कमजोर अर्थव्यवस्था वाले देशों में गिना जाता था, लेकिन अब भारत दुनिया की सबसे तेजी से विकसित होती अर्थव्यवस्था है।
1: इन्हीं देशवासियों का प्रयास का परिणाम है कि हम कभी फ्रेजाइल 5 में गिरे जाते थे, 12 साल के भीतर भीतर हम एक मेजर इकोनॉमी में फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी बन गए हैं।
3: प्रधानमंत्री ने कहा कि कई बार देश केवल संसाधन की कमी के कारण नहीं बल्कि सीमित सोच के कारण भी पिछड़ता है। उन्होंने कहा कि भारत को कच्चे तेल पर निर्भर रहना पड़ा है और ये भी सीमित सोच का परिणाम था। श्री मोदी ने कहा कि जिन अपतटीय क्षेत्रों में किसी भी प्रकार के काम की अनुमति नहीं थी, सरकार ने उनमें से 99% को खोल दिया, जहां अब समुद्र के भीतर नए संसाधनों और भंडारों की खोज की जा रही है।
1: हमने समुद्री तट पे समुद्र के अंदर जाकर के एक्सप्लोरेशन न करने का निर्णय कर लिया था। ये सोच का दारिद्र था, हमने फैसला किया ये नहीं चल सकता। हमने उस 99% को जो कभी नो गो एरिया हुआ करते थे, हमने उसको गो अहेड एरिया के रूप में खुला कर दिया। हम समुद्र के भीतर भी एक्सप्लोरेशन करने की और नए नए भंडार खोजने की दिशा में हम प्रवृत्त है।
3: प्रधानमंत्री ने कहा कि अगले 7-8 वर्ष में लगभग 8 सेमीकंडक्टर संयंत्र काम शुरू कर देंगे। उन्होंने कहा कि इस समय देश में 3 संयंत्रों में सेमीकंडक्टर का निर्माण हो रहा है और इस क्षेत्र में भारत की प्रगति तकनीकी आत्मनिर्भरता को दर्शाती है।
1: कोई भी इलेक्ट्रॉनिक गुड्स होगा, हमारे मेडिकल इक्विपमेंट होंगे, हमारे ट्रांसपोर्ट के रास्ते होंगे, हर किसी में चिप अनिवार्य है और इसे इस चिप के बिना दुनिया थम जाए ऐसी स्थिति पैदा हो जाए, और इसलिए भारत ने आत्मनिर्भर होने की दिशा में अपना सेमीकंडक्टर प्लांट, बड़ा सेमीकंडक्टर प्लांट, 3 सेमीकंडक्टर प्लांट शुरू हो चुके हैं।
3: स्वाधीनता दिवस समारोह पर

नमस्कार श्रोताओं, आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। समाचारों के साथ मैं राणा शाहिद। देश

0: हमारे संवाददाता की विस्तृत रिपोर्ट।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगमन के बाद अंतर सेवा और दिल्ली पुलिस के संयुक्त गार्ड ने उन्हें सलामी दी। इसके बाद प्रधानमंत्री ने गार्ड ऑफ ऑनर का निरीक्षण किया। राष्ट्रीय ध्वज फहराने के साथ 21 तोपों की सलामी दी गई। वहीं पहली बार लाल किले पर स्वतंत्रता दिवस समारोह के दौरान राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम का गायन किया गया। ध्वजारोहण के बाद भारतीय वायुसेना के दो MI-17 हेलीकॉप्टर ने समारोह स्थल पर फूलों की बारिश की। इनमें से एक हेलीकॉप्टर पर राष्ट्रीय ध्वज था और दूसरे पर वंदे मातरम लिखा हुआ ध्वज था। प्रधानमंत्री के संबोधन के बाद NCC कैडेट्स और मेरा भारत के स्वयंसेवकों ने वंदे मातरम का गायन किया। इसके बाद राष्ट्रगान हुआ। सेना, नौसेना और वायुसेना के कुल 2500 कैडेट्स और मेरा भारत के स्वयंसेवकों ने समारोह में हिस्सा लिया। इसके अलावा अलग अलग क्षेत्रों से करीब 5000 विशेष अतिथियों ने लाल किले पर आयोजित समारोह में भाग लिया। इनमें PM विश्वकर्मा योजना के कारीगर, PM मुद्रा योजना की महिला उद्यमी, PM स्वनिधि योजना के रेहड़ी पटरी वाले, भारत टैक्सी के चालक, स्वच्छ भारत मिशन के सफाई कर्मचारी और राष्ट्रीय नवाचार कार्यक्रम से जुड़े युवा शामिल थे। लाल किले पर आयोजित समारोह का समापन आसमान में तिरंगे गुब्बारे छोड़ने के साथ हुआ। अनुपम और आनंद के साथ दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: ये समाचार हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर राष्ट्रीय समर स्मारक पर वीर जवानों को श्रद्धांजलि दी। उन्होंने स्मारक पर पुष्पांजलि अर्पित कर शहीदों को नमन किया। उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन, गृहमंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 80वें स्वतंत्रता दिवस पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज राजघाट पर महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि दी। श्री मोदी ने कहा कि सरकार महात्मा गांधी के कार्यों और उनके दृष्टिकोण से सदैव प्रेरणा लेती रहेगी। उन्होंने कहा कि सरकार प्रत्येक नागरिक की प्रगति के लिए काम करती रहेगी, इससे देश प्रगतिशील और समृद्ध बनेगा। नई दिल्ली के आकाशवाणी मुख्यालय में भी 80वें स्वतंत्रता दिवस समारोह का आयोजन किया गया। इस अवसर पर आकाशवाणी के महानिदेशक राजीव कुमार जैन ने राष्ट्रध्वज फहराया और हार्दिक शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा यह दिन उन शहीदों को याद करने का दिन है जिन्होंने देश की आज़ादी के लिए अपने प्राणों का बलिदान दिया। उत्तर प्रदेश में स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्य की जनता से राष्ट्र के विकास में योगदान देने और राष्ट्र को कमजोर करने वाली शक्तियों से दूर रहने की अपील की है। पश्चिम बंगाल में मातृभूमि के प्रति गहरे श्रद्धा के साथ 80वां स्वतंत्रता दिवस मनाया जा रहा है।
2: कोलकाता में मुख्य कार्यक्रम में मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने राष्ट्रीय ध्वज फहराया। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि 2047 तक विकसित बंगाल विकसित भारत के निर्माण में योगदान दे सकता है। रेड रोड परेड में राज्य सरकार की कई झांकियां प्रदर्शित की गयी, जिनमें PM सूर्य घर योजना और विकसित भारत जी राम जी योजना जैसी विभिन्न योजनाओं को दिखाया गया। राज्यपाल RN रवि ने बैरकपुर के गांधी घाट पर आयोजित एक कार्यक्रम में भाग लिया और महात्मा गांधी को पुष्पांजलि अर्पित की। कोलकाता से आकाशवाणी समाचार के लिए कल्याण लाहा की रिपोर्ट के साथ मैं कुमार राधारमण।
0: जम्मू कश्मीर में स्वतंत्रता दिवस देशभक्ति और उत्साह के साथ मनाया गया। हमारे संवाददाता ने बताया कि मुख्य समारोह श्रीनगर के प्रसिद्ध बख्शी स्टेडियम में आयोजित किया गया।
3: स्वतंत्रता दिवस के हवाले से सबसे बड़ा समारोह श्रीनगर के बख्शी स्टेडियम में हुआ, जहां मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने राष्ट्रीय ध्वज फहराया और परेड की सलामी ली। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में आजकल के हालात अफसोसनाक है। उन्होंने कहा कि आज़ादी के 80 साल बाद जम्मू कश्मीर का भारत का हिस्सा बनने का फैसला सही साबित हुआ है। इधर उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने भी श्रीनगर के लोक भवन में तिरंगा फहराया और स्वतंत्रता दिवस के मौके पर लोगों को बधाई दी। इस बीच जम्मू कश्मीर के सभी जिला मुख्यालयों में भी ऐसे ही कार्यक्रम आयोजित किए गए। आकाशवाणी समाचार के लिए मैं श्रीनगर से इश्फाक शाह।
0: छत्तीसगढ़ में 80वां स्वाधीनता दिवस उत्साह, उल्लास और देशभक्ति की भावना के साथ मनाया जा रहा है। हमारे संवाददाता ने बताया कि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने राजधानी रायपुर में मुख्य समारोह में ध्वजारोहण कर परेड की सलामी ली।
4: रायपुर में आयोजित स्वाधीनता दिवस समारोह को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साहसिक नेतृत्व और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के दृढ़ संकल्प से नक्सलवाद के विरुद्ध ऐतिहासिक सफलता मिली है। माओवाद से मुक्त बस्तर में आज

0: यात्राओं के माध्यम से स्वतंत्रता का उत्सव मनाया जा रहा है। जो क्षेत्र कभी हिंसा और भय से प्रभावित थे, वहां आज शांति, विश्वास और विकास की नई सुबह हुई है। उन्होंने कहा कि बस्तर की सर्वांगीण प्रगति सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में से है। कभी माओवाद से प्रभावित रहे और अब नक्सलवाद से मुक्त हो चुके राज्य के बस्तर संभाग के करीब 90 गांव ऐसे हैं जहां आजादी के बाद आज पहली बार स्वाधीनता दिवस पर तिरंगा फहराया गया। विकल्प शुक्ला, आकाशवाणी समाचार, रायपुर।
1: केरलम में मुख्यमंत्री वीडी सतीशन ने तिरुवनंतपुरम में राष्ट्रध्वज फहराया। इसके बाद वायुसेना के हेलीकॉप्टर ने समारोह स्थल पर पुष्प वर्षा की।
2: तिरुवनंतपुरम में मुख्यमंत्री वीडी सतीशन ने परेड की सलामी ली। विभिन्न सशस्त्र बलों की टुकड़ियों के साथ माउंटेड पुलिस, एनसीसी, स्काउट्स एंड गाइड्स तथा स्टूडेंट पुलिस कैडेट्स ने इसमें हिस्सा लिया। मुख्यमंत्री ने स्वतंत्रता दिवस संदेश देने के बाद पुलिस, अग्निशमन और बचाव सेवा तथा कारागार विभाग के कर्मियों को विशिष्ट सेवा के लिए राष्ट्रपति पदक प्रदान किए। कोच्चि में दक्षिणी नौसेना कमान समारोह में वाइस एडमिरल समीर सक्सेना ने परेड की सलामी ली। समारोह के दौरान नौसेना के जहाजों को झंडों से सजाया गया। इडुक्की में बांधों और नौका केंद्रों पर स्वतंत्रता दिवस समारोह आयोजित किए गए, जिनमें पर्यटकों ने भी भाग लिया। कोवलम बीच के निकट एक निर्जन द्वीप पर तटरक्षक बल ने भी स्वतंत्रता दिवस समारोह आयोजित किया। स्मिथि एम पुल्लुरुथी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मनोज।
1: वैश्विक नेताओं ने भी स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं दी हैं। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने भारत और अमेरिका के बीच मजबूत संबंधों का उल्लेख किया है। इसराइल के राजदूत रूवेन अजार, अर्जेंटीना के राजदूत मारियानो कौसिना, श्रीलंका के उच्चायुक्त महेशिनी कुलोन, नेपाल दूतावास, फ्रांस दूतावास, ऑस्ट्रेलिया के उप उच्चायुक्त और कनाडा के उच्चायुक्त ने भी भारत की विरासत, विविधता, आर्थिक क्षमता और बढ़ते द्विपक्षीय संबंधों पर जोर देते हुए शुभकामनाएं दी। मालदीव के पूर्व राष्ट्रपति इब्राहिम मोहम्मद स्वाले और मालदीव नेशनल पार्टी के अध्यक्ष मोहम्मद नाजिम ने भारत के विकास और मालदीव के साथ घनिष्ठ साझेदारी की प्रशंसा की। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज़ ऑन AIR मोबाइल ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIR न्यूज़ हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। इंडोनेशिया के फ्लोरेंस क्षेत्र के पास आज सवेरे आए 7.7 तीव्रता के भूकंप से 20 लोगों की मौत हो गई। भूकंप से कई इमारतें ढह गईं। भूकंप के कारण 6 लोग घायल हुए हैं और 2 लापता हैं। भूकंप के बाद सुनामी की चेतावनी जारी की गई है। लेबनान में आज सवेरे इसराइल के हवाई हमले में 7 लोग मारे गए और 3 अन्य घायल हो गए। मलबे में दबे लोगों को बचाने के प्रयास जारी हैं। लेबनान और इसराइल के बीच इस वर्ष 26 जून को बनी सहमति के अनुसार दक्षिण लेबनान से इजरायली सैनिकों को वापस जाना था। इसके बदले ईरान के समर्थन वाले हिजबुल्ला गुट को हथियारों से मुक्त करने की पहल की जानी थी। गाले में श्रीलंका के साथ 2 मैचों की क्रिकेट टेस्ट श्रृंखला के पहले मैच में भारत ने ताजा समाचार मिलने तक 1 विकेट पर 118 रन बना लिए थे। इससे पहले भारत ने टॉस जीतकर बल्लेबाजी का फैसला किया। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्र आज 80वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली के लाल किला के प्राचीर पर ध्वजारोहण किया। लाल किला पर पहली बार वंदे मातरम का गायन। प्रधानमंत्री ने गरीब और मध्यम वर्ग के परिवारों के बच्चों के लिए मुफ्त ऑनलाइन कोचिंग और अगले एक वर्ष में 1 करोड़ युवाओं को AI कौशल का प्रशिक्षण देने की घोषणा की। प्रधानमंत्री ने कहा, महत्वपूर्ण खनिजों के क्षेत्र में भारत एक विश्वसनीय वैश्विक साझेदार के रूप में उभर रहा है। श्री मोदी ने कुछ देशों द्वारा संसाधनों का दुरुपयोग कर अपना वर्चस्व दिखाने के प्रयासों पर निराशा व्यक्त की। विदेशों में स्थित भारतीय दूतावासों में भी स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। इंडोनेशिया के पूर्वी तट पर आए 7.7 तीव्रता के भूकंप में 20 लोगों की मौत और गाले में श्रीलंका के साथ पहले क्रिकेट टेस्ट में भारत ने 1 विकेट पर 118 रन बनाए। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। फिल्म संगीत के कार्यक्रम में आइए हम आपको सुनवाते हैं देशभक्ति गीत। कार्यक्रम में सबसे पहले हमने लिया है फिल्म अमन की आशा का बहुत ही प्यारा सा गीत, सुप्रिया जोशी की आवाज़ में, साथ में है रवि त्रिपाठी, और संगीत और गीत प्रवीण जैन और आशीष झा का है।

अगला गीत हमने लिया है फिल्म परदेश से, हरिहरन कविता कृष्णमूर्ति आदित्य नारायण और शंकर महादेवन की आवाज़ है, संगीत नदीम श्रवण का है और शब्द रचना आनंद बख्शी की।

अनु मलिक की आवाज़ में आइए हम आपको सुनवा रहे हैं जुड़वा फिल्म का गीत। और इस गीत को लिखा है अनु मलिक और नितिन रैकवार ने, और अनु मलिक का ही संगीत है।

यहाँ का गुलशन जादू, यहाँ का जीवन जादू। बिरला टाटा बाबा, यहाँ का आटा बाबा, जूतों में बाटा बाबा, लड़की का चाटा बाबा। सचिन की बैटिंग बाबा, बच्चन की एक्टिंग बाबा, सुनील गावस्कर बाबा, कपिल द सिक्सर बाबा, लता मंगेशकर बाबा, जाकिर का तबला बाबा, भरतनाट्यम बाबा, यहाँ का भांगड़ा बाबा, यहाँ की लावणी बाबा, यहाँ का डांडिया बाबा। सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं इसकी ये गुलस्तान हमारा। ईस्ट और वेस्ट इंडिया इज द बेस्ट, ईस्ट और वेस्ट इंडिया इज द बेस्ट।

0: जीते हैं मस्त होके मस्ती में लोग सारे जो है मजा यहाँ पे वो ना मजा कहीं पे। यहाँ की ईद बाबा, यहाँ दिवाली बाबा, यहाँ की होली बाबा, दुल्हन की डोली बाबा, चनिया चोली बाबा, मीठी बोली बाबा।
1: North, South, East or West, India is the best, the land of culture, the land of dreams, this is the land of you and me.
0: राजे शिवाजी बाबा, अकबर बादशाह बाबा, महात्मा गांधी बाबा, चाचा नेहरू बाबा, बाबा अंबेडकर बाबा, मदर टेरेसा बाबा।
1: We're taking it up and we're taking it down, this is the Indian sound, together so strong in God we trust, yeah, you cannot beat us.
0: ताज महल बाबा, चार मीनार बाबा, आम का अचार बाबा, यहाँ का प्यार बाबा, ऐश्वर्य राय बाबा, सुष्मिता सेन बाबा, ऑल इंडिया रेडियो बाबा, डीडी मेट्रो बाबा, दूरदर्शन बाबा।

0: से अच्छा हिंदुस्तान हमारा,
1: सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा,
0: हम बुलबुले हैं इसकी ये गुलशन हमारा, ईस्ट और वेस्ट इंडिया इज द बेस्ट, ईस्ट और वेस्ट इंडिया इज द बेस्ट।

0: परदेसी बाबू का फिल्म का ये गीत आप सुन रहे थे। आनंद राज आनंद की आवाज़ थी और संगीत और गीत दोनों ही आनंद राज आनंद का था। इसके साथ ही ये कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। लीजिए आप सुनिए इस घंटे की खास खबरें।
1: देश आज 80वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले के प्राचीर से राष्ट्रीय ध्वज फहराया। प्रधानमंत्री ने युवाओं के लिए मुफ्त ऑनलाइन कोचिंग और एक साल में 1 करोड़ युवाओं को AI ट्रेनिंग अभियान की घोषणा की। प्रदेश में स्वतंत्रता दिवस हर्षोल्लास और गरिमामय वातावरण में मनाया जा रहा है। राजधानी भोपाल के लाल परेड मैदान में आयोजित राज्य स्तरीय समारोह में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने ध्वजारोहण किया और संयुक्त परेड की सलामी ली। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ज्ञान अर्थात गरीब युवा अन्नदाता और नारी का जो मंत्र दिया था उसमें इंडस्ट्री और इंफ्रास्ट्रक्चर को जोड़कर हमने ज्ञानी के रूप में उसका विस्तार कर दिया है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने पुलिस अधिकारियों कर्मचारियों को 9 विशिष्ट सेवा पदक, 33 सराहनीय सेवा पदक एवं होमगार्ड के अधिकारियों कर्मचारियों को सराहनीय सेवा के लिए 3 पदक प्रदान कर सम्मानित किया। भोपाल की बड़ा तालाब में चल रही तीसरी राजा भोज मल्टी क्लास नेशनल सेलिंग चैंपियनशिप में प्रदेश के खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन किया। कल मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के मुख्य आतिथ्य में चैंपियनशिप का समापन होगा और प्रदेश के नर्मदापुरम, छतरपुर और उमरिया में आज अति भारी बारिश का अनुमान है। वहीं जबलपुर, सागर, रायसेन, रीवा, शहडोल समेत कई जिलों में भारी बारिश हो सकती है। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।

शाम 6 बजे सुनेगा स्वाधीनता दिवस के अवसर पर मध्य प्रदेश के विभिन्न स्थलों पर आयोजित समारोह पर आधारित समन्वित रेडियो रिपोर्ट। रात्रि 8:15 पर सुनेगा स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर मोतीलाल नेहरू स्टेडियम भोपाल में आयोजित मुख्य समारोह की रेडियो रिपोर्ट। शाम 5:02 पर युवा श्रोता सुनेंगे अपना कार्यक्रम युवावाणी। ये कार्यक्रम रीवा केंद्र की प्रस्तुति होंगे। फिल्म संगीत में देशभक्ति गीत का आनंद लीजिएगा शाम 5:33 पर, 8:30 पर और 9:30 पर। 6:45 पर होगा प्रायोजित कार्यक्रम उड़ान किसान वाणी। ये कार्यक्रम हम आपको सुनवाएंगे 7:30 से, जिसमें आप सुनेंगे भेंटवार्ता, फसलों में सूक्ष्म पोषण तत्वों की कमी, लक्षण एवं समाधान। विशेषज्ञ होंगे डॉक्टर रूपेंद्र खांडवे। साथ ही स्थल रिकॉर्डिंग पर आधारित कार्यक्रम आप सुनेंगे, जिसमें विषय रहेगा बरसात में पशुओं की देखभाल, और जानकारी देंगे डॉक्टर तेजस्वी सातपुड़े। इस सप्ताह संसद में ये कार्यक्रम रात्रि 8:00 हम दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित करेंगे, और दिल्ली से ही रात्रि 10:00 आप सुनेंगे संगीत का अखिल भारतीय कार्यक्रम, जिसमें हम आपको सुनवाएंगे जुनैद खान का सितार वादन। ये थे हमारी केंद्र से आज की सांध्यकालीन सभा में प्रसारित होने वाले कार्यक्रम। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। दिन के 3:02 होने को हैं। अब हमारा प्रसारण मीडियम वेव पर समाप्त होता है। सांध्यकालीन सभा में कार्यक्रमों के साथ हम फिर हाजिर होंगे। तब तक हमारा प्रसारण DTH पर जारी रहेगा। DTH पर यह आकाशवाणी भोपाल है। लीजिए सुनिए लोक संगीत का कार्यक्रम, जिसमें हम आपको सुनवाएंगे रमेश प्रसाद साकेत के गाए लोकगीत। ये कार्यक्रम रीवा की प्रस्तुति है।

लोक संगीत के कार्यक्रम में आप सुन रहे थे रमेश प्रसाद साकेत के गाए लोकगीत। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के रीवा केंद्र की प्रस्तुति था। आकाशवाणी के रीवा केंद्र की प्रस्तुति है हमारा अगला कार्यक्रम सुगम संगीत का कार्यक्रम। इसमें हम आपको सुनवा रहे हैं सुधाकर प्रसाद मिश्रा की गाए चांद तसले।

सुधाकर प्रसाद मिश्रा की आवाज़ में आप सुन रहे थे चंद गज़लें, कार्यक्रम सुगम संगीत में। हमारा ये कार्यक्रम आकाशवाणी के रीवा केंद्र की प्रस्तुति था। यह आकाशवाणी भोपाल है। लीजिए सुनिए फिल्म संगीत के कार्यक्रम में कुछ देशभक्ति गीत।

देश के दुश्मन, आप सुन रहे हैं इस फिल्म का गाना महेंद्र कपूर और साथियों की आवाज़ में। वर्मा मलिक की बोल हैं और संगीत सोने ओमी का।

प्रेम पुजारी। आइए सुनते हैं इस फिल्म का गीत मोहम्मद रफ़ी, मन्ना डे और साथियों की आवाज़ में। नीरज के बोल हैं और सुर एसडी बर्मन के।

द लीजेंड ऑफ भगत सिंह। अभी आप सुन रहे थे इस फिल्म का गीत, सोनू निगम और हरिहरन की आवाज़ में, समीर के बोल थे और संगीत ए आर रहमान का।

रंग दे बसंती। आइए सुनते हैं इस फिल्म का गीत। दिलेर मेहंदी और चित्रा की आवाज़ में प्रसून जोशी का गीत है और संगीत ए आर रहमान का।

देशभक्ति गीतों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। एक छोटे से अंतराल के बाद कुछ ही पलों में आप सुनेंगे इस घंटे की खास खबरें। इसके बाद फिर हाजिर होंगे गीत संगीत लेकर।

देश आज 80वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले से कहा कि कोविड जैसी वैश्विक महामारी से पूरी व्यवस्था चरमरा गई थी, लेकिन सभी के प्रयासों से देश को उस संकट से बाहर निकाला गया। श्री मोदी ने कहा कि भारत नागरिक देवोभव के मंत्र के साथ आगे बढ़ रहा है। अब देश के पास तेल भी है और यूरिया भी है। प्रदेश में स्वतंत्रता दिवस हर्षोल्लास और गरिमामय वातावरण में मनाया जा रहा है। राज्यपाल मंगूभाई पटेल ने स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर लोकभवन में ध्वजारोहण किया। लाल परेड मैदान में आयोजित राज्य स्तरीय समारोह में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ध्वजारोहण किया और संयुक्त परेड की सलामी ली। मुख्यमंत्री ने कहा कि सांदीपनी विद्यालयों के 50 से अधिक विद्यार्थियों ने राज्य स्तरीय मेरिट सूची में स्थान बनाया है। उच्च शिक्षा में 73 विश्वविद्यालय और 1400 से अधिक महाविद्यालय 16 लाख से अधिक युवाओं के भविष्य को आकार दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करते हुए पिछले 3 माह में 1000 नए डॉक्टरों की नियुक्ति की गई है और अगले 6 माह में 1000 और डॉक्टरों की नियुक्ति होगी। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने पुलिस अधिकारियों कर्मचारियों को 9 विशिष्ट सेवा पदक, 33 सराहनीय सेवा पदक एवं होमगार्ड के अधिकारियों कर्मचारियों को सराहनीय सेवा के लिए 3 पदक प्रदान कर सम्मानित किया गया। और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने आज 80वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर नई दिल्ली में भाजपा मुख्यालय में राष्ट्रीय ध्वज फहराया। वहीं कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी पार्टी मुख्यालय में राष्ट्रीय ध्वज फहराया। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।

ये आकाशवाणी भोपाल है। एक बार फिर हाजिर हैं देशभक्ति गीतों के साथ। हमारा ये सफर जारी है। कार्यक्रम का पहला गीत कर्मा फिल्म से कविता कृष्णमूर्ति, मोहम्मद अजीज और साथियों की आवाज़ है, आनंद बख्शी की रचना है और तर्ज बनाई है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।

ए आर रहमान की आवाज़ में आप सुन रहे थे स्वदेश फिल्म का ये खूबसूरत नगमा। जावेद अख्तर के बोल थे और संगीत ए आर रहमान का।

फूल बने अंगारे। आइए सुनते हैं इस फिल्म का गीत। मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में संगीत दिया है कल्याण जी आनंद जी ने और बोल हैं आनंद बख्शी के।

साहिर का लिखा हुआ गीत आप सुन रहे थे फिल्म नया दौर से। दर्ज बनाई थी ओपी नैयर ने और खूबसूरत आवाज़ें मोहम्मद रफ़ी और बलबीर की थीं।

आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से लीजिए अब सुनिए कार्यक्रम संग्रहालय से के अंतर्गत धारावाहिक अमर वीर बलिदानी झांसी वाली रानी का पांचवा भाग।

0: नवजात उत्तराधिकारी की असमय मृत्यु के बाद झांसी के राजा गंगाधर राव ने अपने परिवार के एक बालक दामोदर राव को भारत की मान्य और प्रचलित परंपरा के अनुसार गोद लिया। राजा गंगाधर राव अस्वस्थ रहते थे और रानी लक्ष्मीबाई रियासत के दायित्व का संचालन निर्वहन करती थीं। दामोदर राव के उत्तराधिकार की स्वीकृति के लिए झांसी की अर्जी लॉर्ड डलहौजी के पास भेजी गई। इस बीच राजा गंगाधर राव का देहावसान हो गया। अंग्रेजों की नीति दत्तक उत्तराधिकार को स्वीकार नहीं करने की थी और वो निसंतान रियासतें संधियों की दुहाई देकर हड़प लिया करते थे। झांसी के साथ भी अंग्रेजों ने यही किया।
1: सुनो सुनो सुनो, ध्यान से सुनो। हर खासो आम को इत्तला दी जाती है कि झांसी की रियासत पर अब कंपनी सरकार का आलम हो गया है और लॉर्ड गवर्नर डलहौजी साहब ने रियाया के नाम ये फरमान जारी किया है कि वो अंग्रेजों की मातहती में रहकर चैन से अपना काम काज करे। कंपनी सरकार किसी तरह की सरकशी और शरारत को बर्दाश्त नहीं करेगी और हरकत करने वाले बदमाशों को बामुताबिक कानूनी सजा दी जाएगी। इसलिए बेहतर यही है कि रियाया वफादारी के साथ रहे। सुनो सुनो सुनो, हर खासो आम को इत्तला दी जाती है कि अब झांसी पर कंपनी सरकार का राज्य कायम हो गया है और उसका ही हुक्म चलेगा।
2: काहे जू, अब झांसी में कौन है?
3: अरे होने का है भैया, हुई है वही जो राम रचिरा का।
2: गोद मनवाने के लाने जो अर्जी लाट साहब लोग पहुंचा दी थी, सो तो बिन्ने ना मानी।
3: गोद के मनवाने के लाने अर्जी जो कैसो अंधेर, हम अपने गांव में रोजे ही गोद लेट देत, ताके लाने अर्जी पुर्जी तो कौन ना दे।
2: अरे अंग्रेजन ने नए नए कानून निकारे हैं।
3: हाँ, इतना खाओ इतना सोचो, अब इके लाने को अंग्रेज कानून बनाए।
2: अक्कल चैतरी में चढ़ गई सो, अब उन्हें कुछ सूझत नहीं आ, तो कहाँ ऐसी आके फूट गई कि धर्म कर्म कुछ नहीं लेकत।
3: अधर्म राज है जिन अंग्रेजन को। हाँ,
0: फिरंगियों की राज्य घोषणा से उठी ज्वाला को रानी ने अपने मन के भीतर ही भीतर संयत कर लिया। समय नहीं था विस्फोटक प्रतिक्रिया का, आगा भी देखना था और पीछा भी सोचना था। रानी ने अंग्रेजों के निर्देश स्वीकार कर लिए। वो गंभीरता पूर्वक सारी स्थिति का अवलोकन कर रही थीं।
4: उनकी दैनिक चर्या यथावत थी, पूजा पाठ, प्रतिदिन महल के आंगन में घोड़े की सवारी, तीरंदाजी, बंदूक से निशाना लगाना, तलवार चलाना इत्यादि।

इस अभ्यास में सुंदर, मुंदर, काशीबाई, झलकारीबाई और नगर की दूसरी स्त्रियां उनके पास होती। छद्म युद्ध के इन अभ्यासों में नगर और छावनी की सूचनाएं भी उनको मिलती रहती।

0: रानी के पास अपनी फरियाद लेकर नागरिक भी आते। वो उन्हें बताते कि अंग्रेजों ने झांसी की फौज तोड़ दी है, सिपाही बेरोजगार हो गए हैं, अंग्रेजों के कानूनों से प्रजा दुखी है, वो आपके इशारे का इंतजार कर रही है।
1: भाई साहब के हुकुम को मानेंगे, माँ धरती की कसम खा के कहते हैं

0: स्वातंत्र संघर्ष का आह्वान संदेशा गांव गांव पहुंच रहा था। झांसी में रानी तक खबरें और सूचनाएं पहुंच रही थीं। उनसे मिलने जुलने वालों पर अंग्रेजों की तीखी नजर जरूर थी, लेकिन कोई बंदिश नहीं थी। बंदिश अगर लगाते तो समझा जाता कि रानी को नजरबंद कर लिया गया है और जनता भड़क उठती। अंग्रेज सावधान थे और उनके जासूस सतर्क, लेकिन तात्या टोपे एक दिन रानी के पास पहुंच ही गए।
1: संघर्ष की तैयारी में लगे हुए थे तात्या टोपे। छद्मवेश में पूरा हिंदुस्तान घूम रहे थे। अंग्रेजी फौजों के हिंदुस्तानी सिपाहियों से संपर्क करते हुए, उन्हें ये याद दिलाते हुए कि भारत माता उन्हें पुकार रही है, भारत माता की बेड़ियों की झंकार अनसुनी मत करो, सुनो और वीरों का बाना ग्रहण करो।

0: कहां कहां भ्रमण कराए इस बार सरदार तांत्या?
1: इस बार बहुत घुमा हूं भाई साहब, कहीं कहीं तो पकड़े जाने की नौबत भी आ गई, लेकिन बिठोवा की कृपा से बच निकला। यहां तो आपने पूरा सरंजाम जुटा रखा है। मैं देख रहा हूं कि आपकी सहेलियां सुंदर मुंदर, काशीबाई, झलकारी बाई, मोतीबाई सभी यहां हैं। आपने तो खासी स्त्री सेना तैयार कर ली। पंजाब के अलावा नारी जाति में ऐसा जागरण मुझे अन्यत्र नहीं मिला।
0: आधी आबादी जब पर्दे में बंद रहेगी तो सुराज का साधन कैसे सधेगा तात्या साहब?
1: और दूसरी बाधाएं भी हैं। अपने प्रवास में मैंने पाया कि बड़े राज्य जयपुर, जोधपुर, बीकानेर, ग्वालियर जैसे इतिहास के घटना चक्र से तटस्थ हो गए हैं। को नृप होए हमें का हानि, जैसा रवैया है उनका, ये दुर्भाग्य की बात।

0: भाई साहब, तमाम राजे रजवाड़े अंग्रेजों के संरक्षण में ही खुद को सुरक्षित समझते हैं। आराम तलबी, ऐश और आलस किसी भी जाति के दुर्गुण होते हैं, और ऊपर से तटस्थता तो एक अभिशाप है।
1: सही फरमाया था त्या आपने, जब समर सामने हो तो पक्ष तो लेना ही पड़ता है, और पक्ष न्याय का होता है। आजादी और गुलामी के बीच से आज देश को आजादी को चुनना है। पूरा देश एक होकर आजादी के लिए जूझे, तभी आन और शान बच पाएगी।
0: ये बात जनता खूब समझती है भाई साहब। जहां जहां भी मैं गया, जनता को जागरूक देखा। राजों रजवाड़ों को तो पेंशनें मिल गई और वो संतुष्ट होकर पुराने ढर्रे को बनाए हुए, लेकिन जनता की तो रोटी रोजी ही अंग्रेजों ने छीन ली। उसमें गुस्सा है, असंतोष है, कुछ कर गुजरने की चाहत है, अपना सर्वस्व न्यौछावर करने को तैयार हैं वे लोग।
1: ये शुभ संकेत है तांत्या साहब।
0: लेकिन भाई साहब, जनता के पास नेता नहीं है, जनता नेतृत्वहीन है और इसलिए बेवश है।
1: मैंने कुछ नाम सुने हैं तांत्या साहब, बार बार चर्चा में आते हैं, जैसे अपने नाना धोंदू पंत।
0: नाना साहब तो खार खाए बैठे हैं। पेशवा के साथ जो विश्वासघात हुआ, उसने नाना साहब को धधकता हुआ अंगारा बना दिया है। अंग्रेजों ने पेशवा के साथ ही क्या, हम सबके साथ यही किया है। नागपुर, सतारा और हाल फिलहाल आपकी झांसी, छत्रपति के सुराज का सपना छिन्न भिन्न हो गया है भाई साहब। ऐसे तो नहीं चले।
1: नहीं चलेगा, बिल्कुल नहीं चलेगा सरदार तांत्या।
0: यहां वहां कुछ लोग हैं भाई साहब, जिनके हृदय में प्रतिकार, आंखों में अंगार और संकल्पों में स्वराज अभी भी जीवित है और जिंदगी की तरह धड़क रहा है, लेकिन वो अलग थलग है। उन्हें जोड़ने के लिए एक सूत्र चाहिए। ठाकुर कुंवर सिंह, अजीमुल्ला खां, मौलवी मोहम्मद शाह, दिल्ली का शहजादा मिर्जा मुगल, बहादुर शाह जफर की बेगम जीनत महल, कितने कितने आजादी के परवाने हैं, लेकिन सब अपनी अपनी जगह पर अकेले।
1: दिल्ली से याद आया सरदार तांत्या, इस स्वातंत्र यज्ञ में दिल्ली की आहुति क्या होगी?
0: खानदाने मुगलिया के आखिरी चिराग बहादुर शाह जफर बूढ़े और बीमार हैं। अपनी हसरतों को वो शेर और शायरी में तलाशते रहते हैं। इस उम्र में उनसे ज्यादा उम्मीद करना फजूल है, किंतु उनकी बेगम जीनत महल बहुत तेजस्वी और सक्रिय है, और शहजादा मिर्जा मुगल भी, दोनों पूरी ताकत से जुटे हुए हैं। हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि आज भी बादशाहत एक प्रतीक है हमारे देश की आजादी का। लड़ाई तो बहादुर शाह जफर के नाम पर ही लड़ी जाएगी।
1: इसी प्रतीक को जनता स्वीकार करेगी। तांत्या साहब, इस मुक्ति संग्राम में अग्रणी भूमिका तो निस्संदेह जनता की ही रहना है, वही अपने जननायकों को जन्म देगी।

0: तात्या साहब, जब से फिरंगियों ने झांसी को हड़पा है, हर दिन हमारे पास लोग आते हैं। किसान, मजूर, व्यापारी, आमजन, निर्धन, जिनके तन पर कपड़ा नहीं है, शायद पेट में रोटी भी नहीं है, लेकिन तांत्या साहब हौसला है, लक्ष्य है, बेचैनी है। वो कहते हैं, बाई साहब कुछ करो, लेकिन मैं कुछ नहीं कर पाती। अंग्रेजों के पास ताकत है, धूर्तता है, षड्यंत्रों वाला दिमाग है, विश्वासघाती देशद्रोहियों का समर्थन है, और हमारे पास साधन तक नहीं है कि इस समर को दूर तक चला सकें।
1: साधन जुट रहे हैं भाई साहब, आजादी के हर कार्य फिरंगियों की छावनी में घूम रहे हैं और उन्हें भारी समर्थन मिल रहा है। हिंदुस्तानी सिपाही गदर के लिए तैयार हो रहे हैं, वो सीखे सिखाए सदे सदाए हैं, वो लड़ना जानते हैं। अंग्रेजों के लिए उन्होंने लड़ाइयां लड़ी हैं और अब वो अपने देश और हम वतनों के लिए लड़ेंगे। उनके पास बंदूकें, गोले, कारतूस वगैरह हैं। विप्लव में उनके शामिल होने से हमें बड़ी मदद मिलेगी, साधन भी मिलेंगे।
0: लेकिन सिपाही हमारे साथ कैसे आएंगे? हम उन्हें पगार तक तो दे नहीं सकते।
1: सवाल पगार का नहीं, स्वाभिमान का है। आजादी की भावना स्वाभिमान के साथ जुड़ी हुई है भाई साहब। अंग्रेजों की फौज में 40,000 सिपाही अवध के हैं और इस भावना के रहते उनमें एक तरह की एकता है, राष्ट्रीयता है। जब किसी एक सिपाही का अपमान होता है तो वो इसे अपनी राष्ट्रीयता का अपमान मानते हैं और नाफरमानी पर उतारू हो जाते हैं।
0: यही भावना पूरे हिंदुस्तान के लिए होना चाहिए सरदार साहब। अवध, बंगाल, दक्षिण, पंजाब, बुंदेलखंड, कहीं के हों, हमें अपने आप को भारतीय मानना और समझना चाहिए। दास्ता समूचे भारत का अपमान है।
1: फिरंगियों की फौज का हर हिंदुस्तानी सिपाही हर रोज इस अपमान को अनुभव करता है भाई साहब। तिल तिल जब वो अपमानित होता है उसके मन की आग भड़कती है और ये आग अवज्ञा के रूप में सामने आती है।
0: तांत्या साहब, इस आग में तपन और तेजी कब आएगी?
1: हम प्रयत्न तो कर ही रहे हैं भाई साहब। अपनी गोरी चमड़ी को लेकर अंग्रेज खुद को हिंदुस्तानियों से बेहतर समझते हैं।
0: ईश्वर अपनी रची हुई सृष्टि में भेदभाव की इस दृष्टि को सहन नहीं करेगा।
1: कदापि नहीं, ईश्वर ने सभी को समान भाव से रचा है, बिना किसी ऊंच नीच के। ईश्वर की सब संतानें हैं और सब मनुष्य हैं, बराबरी के मनुष्य, ना कोई स्वामी ना कोई दास।

0: स्वतंत्रता की ललक मनुष्य की गरिमा स्थापित करने का अभियान है भाई साहब। यह सिर्फ राजपाट के लिए किया जाने वाला संघर्ष नहीं है, यह तो मानवीय अधिकारों की लड़ाई है
1: और इसके पीछे हजारों सालों का इतिहास है। हम उस सिलसिले की एक कड़ी मात्र हैं, परंपरा का एक पांव, लक्ष्य की सनातन यात्रा की दिशा में गतिशील एक उठा हुआ कदम।
0: अंग्रेज छावनियों में आए दिन घटनाएं होती रहती हैं भाई साहब। फिरंगी अपना हुक्म लादने की कोशिश करते हैं और सिपाही उसे नहीं मानते। अभी हिंदुस्तानी फौजों को रंगून भेजा जाना था, बंगाल की फौजों ने इनकार कर दिया। पंजाब से सिखों की फौज बुलानी पड़ी। सभी जगह यही आलम है। बैरकपुर, रानीगंज, बरहमपुर, अंबाला, मेरठ, कानपुर, फिरोजपुर, जहां जहां हिंदुस्तानी सिपाही हैं वहां वहां असंतोष, नाफरमानी और असहयोग की घटनाएं आए दिन हो रही हैं।
1: कितनी होगी हिंदुस्तानी कुल संख्या?
0: अंदाजन 2 लाख से ऊपर।
1: और अंग्रेज?
0: सारा हमला मिलाकर कुल 40,000।
1: यानी कि संख्या बल में तो हम 5 गुने हैं।
0: छावनियों के हिंदुस्तानी सिपाहियों में आजादी का अलग जगाते घूम रहे हैं हमारे लोग। साधु, संत, फकीर नाचते गाते संदेशा देते। ये संदेशा फैलता जा रहा है भाई साहब। सिपाहियों ने नए कारतूस को चलाने से मना कर दिया, जिन पर चिकनाई लगी है। उनका मानना है कि ये चिकनाई सुअर और गाय की चर्बी है जो धर्म भ्रष्ट करने के लिए लगाई गई है।
1: ये बात तो बड़ी तेजी से फैली है तांत्या साहब।
0: स्वतंत्रता का संदेश भी उतनी ही तेजी से फैल रहा है।
1: ये काम अपनी झांसी में भी हो रहा है। राजा साहब की रंगशाला की अभिनेत्रियां याद होंगी आपको?
0: जूही और मोतीबाई।
1: हाँ वही। रंगशाला तो अब रही नहीं, लेकिन उन्हें अभिनय के लिए समाज का व्यापक रंगमंच मिल गया है। अब वो छावनियों में जाती हैं, संदेशा पहुंचाती हैं और वहां से खबर लाती हैं। दोस्त दुश्मन की पहचान हमें उन्हीं से मिलती है।
0: धन्य है इस महायज्ञ में जूही और मोतीबाई जैसी संविधाओं का भी महत्व बना रहेगा।

0: इस इलाके में झांसी पर ही हमारी आशाएं टिकी हुई है। भाई साहब, महाअभियान आपकी अगुवाई में ही संपन्न होगा।
1: झांसी प्रस्तुत है सरदार साहब। वीर प्रसु बुंदेलखंड की धरती, छत्रसाल और चंपत राय की संतानें आपको निराश नहीं करेंगी। तांत्या साहब, इस माटी के कण कण में अंगड़ाई है और इसके हौसलों में आग है, धार है और तरुणाई है।

कार्यक्रम संग्रहालय से के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे रेडियो धारावाहिक अमर वीर बलिदानी झांसी वाली रानी का पांचवा भाग। डीटीएच के ऑडियो चैनल पर यह आकाशवाणी का भोपाल केंद्र है। हमारे अगले प्रसारण की प्रतीक्षा कीजिए।

0: मीडियम वेव 188.32 यानी 1593 किलो हर्ट्ज़, साथ ही डीटीएच की ऑडियो चैनल, न्यूज़ ऑन एआईआर एप्लीकेशन और वेव्स ओटीटी ऐप पर यह आकाशवाणी का भोपाल केंद्र है। शाम के 5 बजने को हैं। मीडियम वेव पर हमारी सांध्यकालीन सभा अब आरंभ होती है। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है, सुनते हैं इस घंटे की खास खबरें।
1: देश आज 80वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले से कहा कि देश के पास शक्ति है और सामर्थ्य है और इसलिए कोशिश करनी चाहिए कि वैश्विक नेतृत्व हमारे हाथ में होना चाहिए। उन्होंने कहा कि 2047 के विकसित भारत के सपनों को साकार करने के लिए पुराने नियमों के साथ नहीं बल्कि आने वाले सपनों के अनुसार नीतियां बनानी होंगी। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा है कि सांदीपनी विद्यालयों के 50 से अधिक विद्यार्थियों ने राज्य स्तरीय मेरिट सूची में स्थान बनाया है। उच्च शिक्षा में 73 विश्वविद्यालय और 1400 से अधिक महाविद्यालय 16 लाख से अधिक युवाओं के भविष्य को आकार दे रहे हैं। उन्होंने स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करते हुए पिछले 3 माह में 1000 नए डॉक्टरों की नियुक्ति की गई है और अगले 6 माह में 1000 और डॉक्टरों की नियुक्ति होगी। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने पुलिस अधिकारियों कर्मचारियों को 9 विशिष्ट सेवा पदक, 33 सराहनीय सेवा पदक एवं होमगार्ड को अधिकारियों कर्मचारियों को सराहनीय सेवा के लिए 3 पदक प्रदान कर सम्मानित किया गया। प्रदेश के नर्मदापुरम, छतरपुर और उमरिया में आज अति भारी बारिश का अनुमान है। वहीं जबलपुर, सागर, रायसेन, रीवा, शहडोल समेत कई जिलों में भारी बारिश हो सकती है। और भारत ने श्रीलंका के खिलाफ पहले क्रिकेट टेस्ट मैच में 2 विकेट पर 236 रन बना लिए हैं। पड्डिकल 107 रन बनाकर खेल रहे हैं जबकि केएल राहुल 77 रन बनाकर रिटायर हट हुए। आप सुन रहे

ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण है। शाम के 5:02 हुए हैं। प्रस्तुत है युवा मित्रों के लिए कार्यक्रम युववाणी। आज का ये कार्यक्रम आकाशवाणी रीवा की प्रस्तुति है।

0: जमी पर घर बनाया है मगर जन्नत में रहते हैं। हमारी खुशनसीबी है कि हम भारत में रहते हैं। दोस्तों, शुरुआत करते हैं आपके पसंदीदा कार्यक्रम युववाणी की। मैं आपकी रेडियो दोस्त इशिका, नमस्कार। दोस्तों, मनुष्य और समाज दोनों परस्पर पूरक हैं और छात्र इसका एक अभिन्न अंग हैं। छात्र शक्ति समाज को सुधारने, उसे मजबूत करने वाली घटकों में से एक है। इसलिए कहा जाता है कि युवा देश की रीढ़ हैं, जिनके कंधे पर देश का भविष्य टिका होता है। दोस्तों, स्वतंत्रता संग्राम में छात्रों ने एक ऊर्जावान और क्रांतिकारी शक्ति के रूप में अहम भूमिका निभाई है। उन्होंने असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा और भारत छोड़ो आंदोलन जैसे प्रमुख राष्ट्रव्यापी आंदोलनों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, रैलियां निकाली, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया और जन जागरण का संदेश घर घर तक पहुंचाया। महात्मा गांधी के आह्वान पर असहयोग आंदोलन में हजारों छात्रों ने सरकारी स्कूल और कॉलेज छोड़कर राष्ट्रीय विद्यालयों में प्रवेश लिया। वहीं नमक सत्याग्रह और अन्य आयोजनों में युवाओं और विद्यार्थियों ने जुलूस निकालकर और गिरफ्तारियां देकर सक्रिय योगदान दिया। भारत छोड़ो आंदोलन में करो या मरो के नारे से प्रेरित होकर छात्रों ने आगे रहकर नेतृत्व तो संभाला। दोस्तों, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद और सुखदेव जैसे कई महान सेनानी छात्र जीवन से ही देश की आजादी के संघर्ष में कूद पड़े। अखिल भारतीय छात्र महासंघ जैसे संगठनों ने छात्रों को एकजुट कर राष्ट्रवादी विचारों को पूरे देश में फैलाने का काम किया। छात्रों ने नुक्कड़ नाटक, पत्र पत्रिकाओं और नारों से आम जनता के भीतर स्वतंत्रता की अलख जगाई। दोस्तों, आज के छात्रों और युवाओं को भी देश के प्रति अपना कर्तव्य निभाना चाहिए। इसके लिए अपनी शिक्षा और कौशल को मजबूत करें, नैतिक मूल्यों को अपनाएं, सामाजिक कार्यों में भाग लें और देश की अखंडता की रक्षा करते हुए आत्मनिर्भर और सशक्त भारत के निर्माण में अपना योगदान दें।
1: दोस्तों, अब सुनते हैं ये गीत माँ तुझे सलाम फिल्म से, ए आर रहमान की आवाज में।

दोस्तों, अब मैं आपको बताऊंगी स्वतंत्रता सेनानी महादेव देसाई के बारे में। महादेव देसाई महात्मा गांधी जी के निजी सचिव, एक महान स्वतंत्रता सेनानी, लेखक और पत्रकार थे। उन्होंने 25 वर्षों तक गांधी जी की छाया बनकर भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में अतुलनीय योगदान दिया, जिसे गांधी जी के विचारों और इतिहास के दस्तावेजीकरण के रूप में स्वर्ण अक्षरों में याद किया जाता है। 1917 में गांधी जी से जुड़ने के बाद उन्होंने जीवन भर उनका निजी सचिव बनकर हर प्रशासनिक, राजनीतिक और व्यक्तिगत कार्य संभाला। गांधी जी के सभी दौरों की रूपरेखा तैयार करना, पत्र व्यवहार संभालना और देश विदेश के बड़े नेताओं से संवाद स्थापित करना मुख्य कार्य था। देसाई जी ने अपनी प्रसिद्ध डायरियों में गांधी जी के जीवन, आंदोलनों और उस दौर के स्वतंत्रता संग्राम का पल पल इतिहास दर्ज किया है। उनकी डायरियों में भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का प्रमाणित दस्तावेज माना जाता है। चंपारण सत्याग्रह, बारडोली सत्याग्रह और सविनय अवज्ञा आंदोलन जैसे बड़े आंदोलनों में उन्होंने सक्रिय रूप से भाग लिया और कई बार जेल भी गए। 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान उन्हें गांधी जी के साथ आगा खां पैलेस पूना में गिरफ्तार करके रखा गया, जहां 15 अगस्त 1942 को उनका निधन हो गया। दोस्तों, महादेव देसाई जी ने यंग इंडिया, नवजीवन और हरिबंधु जैसे समाचार पत्रों व पत्रिकाओं के संपादन और लेखन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने वीर वल्लभ भाई और खान अब्दुल गफ्फार खान की जीवनी, बेखुदाई खिदमतगार जैसी कई प्रेरक पुस्तकें लिखी। अंग्रेजी और गुजराती में कई उत्कृष्ट अनुवाद भी किए। उनकी पुण्यतिथि पर उन्हें सत सत नमन। दोस्तों, अब हम सुनते हैं ये गीत शहीद फिल्म से मोहम्मद रफी की आवाज में।

0: दोस्तों, अब हम युवा कवित्री स्नेहा त्रिपाठी से सुनेंगे कुछ देशभक्ति कविताएं।
1: नमस्कार, आपको स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ और स्वतंत्रता दिवस पर दो पंक्तियां सुनेगा कि आ स्वदेश प्यारे स्वतंत्र, आ अभिनंदन करती हूँ तेरा, तुझे देखकर हो रहा दूना प्रमुदित मन मेरा। ये आजादी का उत्सव है, हमें सबको पता है कि कितनी मुश्किलों के बाद हमें आजादी मिली है और इसके बाद हम स्वतंत्रता दिवस मनाते आ रहे हैं। अब आजादी को संरक्षित रखना, सुरक्षित रखना हम युवाओं का कार्य है। मैं चार पंक्तियां उन वीर शहीदों के नाम पढ़ती हूँ जिन्होंने अपनी जान गवा दी देश के खातिर और आज हम खुली हवा में सांस ले रहे हैं। सुनिएगा। वतन की शान के खातिर लहू अपना बहाते हैं, न किंचित हौसले उनके कभी भी

खेल के इस देश का गौरव बढ़ाते हैं, जो जहाँ पे खेल के इस देश का गौरव बढ़ाते हैं। और माँ भारत माँ के लिए चार पंक्तियां सुनिएगा। केसरिया परिधान उन्हीं से जिंदा है, भारत माँ का मान उन्हीं से जिंदा है, भारत का सम्मान उन्हीं से जिंदा है, जो सीमा पर अपनी जान लुटाते हैं, जो सीमा पर अपनी जान लुटाते हैं, अपना हिंदुस्तान उन्हीं से जिंदा है, अपना हिंदुस्तान उन्हीं से जिंदा है। और हमारा देश कैसा है, चार पंक्तियों में सुनिए।

0: हूँ, आप मेरे इन मूल्यों पर विचार करिएगा और देश की हित में कार्य करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।
1: दोस्तों, अब हम सुनते हैं ये देशभक्ति गीत कर्मा फिल्म से कविता कृष्णमूर्ति और मोहम्मद अजीज की आवाज में।

दोस्तों, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड में गाए जाने वाले भोला गीत हमारी अनमोल सांस्कृतिक धरोहर हैं। हमारे आज के विशेष स्तंभ में आज हम जानेंगे भोला गीत के बारे में। ये पारंपरिक लोकगीत मुख्य रूप से भगवान शिव की भक्ति, प्रकृति प्रेम और सामाजिक जुड़ाव को दर्शाते हैं। ये गीत विशेषकर सावन के महीने, शिवरात्रि और सोमवार के दिन भारत के विभिन्न राज्यों में गाए और सुने जाते हैं। इन गीतों में भोलेनाथ की सादगी, उनके स्वरूप जैसे गले में सांप, सिर पर गंगा, भस्म रमाने वाले और माता गौरा के साथ उनके घरेलू और प्रेमपूर्ण रिश्तों का वर्णन होता है। ये गीत हिंदी के अलावा बुंदेली, बघेली, भोजपुरी, हरियाणवी और पहाड़ी जैसी क्षेत्रीय लोक भाषाओं में बहुत लोकप्रिय हैं। इनमें डमरू, ढोलक और मंजीरे की थाप का उपयोग होता है, जो भक्तों को झूमने पर मजबूर कर देता है। दोस्तों, भोला गीत भोलेनाथ की महिमा, उनकी भक्ति और माता पार्वती के साथ उनके विवाह व संवाद पर आधारित लोक और भक्ति गीत होते हैं। तो दोस्तों, अब हम सुनते हैं शिव जी का ये भजन।

0: दोस्तों, अब वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का, लेकिन चलने से पहले आपको हमारा ये कार्यक्रम कैसा लगता है हमें जरूर बताइएगा। आप अपनी शिकायतें और अपने सुझाव हमें ईमेल के माध्यम से भेज सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है yuvvaadiriva@gmail.com। तो फिर मिलने के वादे के साथ अपनी रेडियो दोस्त इशिका यानी मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार, शुभ संध्या।
1: आकाशवाणी रीवा के योगदान के अंतर्गत कार्यक्रम युववाणी का प्रसारण अभी किया जा रहा था। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। हम आपसे पुनः जुड़ेंगे इस अंतराल के बाद।
2: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
3: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
2: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
4: क्या आप ग्रो करने के लिए रेडी हैं? क्या आप आगे बढ़ने के लिए रेडी हैं? तो अपने बिजनेस को दीजिए नई बुलंदियां।
5: अप टू 85% एलटीवी के साथ अब मन्नापुरम आईजीएल गोल्ड लोन से फंड्स पाना हुआ आसान,
4: जो लेकर आए हैं 5 करोड़ तक का लोन खास आपके लिए, ताकि आपके बिजनेस को हर कदम पर मिले सहारा।
5: कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़िए, अपने गोल्स तक पहुंचिए। मन्नापुरम के साथ अपने बिजनेस को आगे बढ़ाइए।
4: मन्नापुरम फाइनेंस लिमिटेड, मेक लाइफ इजी। टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233।
2: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
3: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
2: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
4: क्या आप ग्रो करने के लिए रेडी हैं? क्या आप आगे बढ़ने के लिए रेडी हैं? तो अपने बिजनेस को दीजिए नई बुलंदियां।
5: अप टू 85% एलटीवी के साथ अब मन्नापुरम आईजीएल गोल्ड लोन से फंड्स पाना हुआ आसान,
4: जो लेकर आए हैं 5 करोड़ तक का लोन खास आपके लिए, ताकि आपके बिजनेस को हर कदम पर मिले सहारा।
5: कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़िए, अपने गोल्स तक पहुंचिए। मन्नापुरम के साथ अपने बिजनेस को आगे बढ़ाइए।
4: मन्नापुरम फाइनेंस लिमिटेड, मेक लाइफ इजी। टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233।
2: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
3: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
2: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
4: क्या आप ग्रो करने के लिए रेडी हैं? क्या आप आगे बढ़ने के लिए रेडी हैं? तो अपने बिजनेस को दीजिए नई बुलंदियां।
5: अप टू 85% एलटीवी के साथ अब मन्नापुरम आईजीएल गोल्ड लोन से फंड्स पाना

0: वह आसान
1: जो लेकर आए हैं 5 करोड़ तक का लोन खास आपके लिए, ताकि आपके बिजनेस को हर कदम पर मिले सहारा।
0: कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़िए, अपने गोल्स तक पहुंचिए। मणप्पुरम के साथ अपने बिजनेस को आगे बढ़ाइए।
1: मणप्पुरम फाइनेंस लिमिटेड, मेक लाइफ इजी। टोल फ्री नंबर 1800-420-2233।
2: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
3: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मणप्पुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
2: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मणप्पुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1800-420-2233 पर कॉल करें। फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
3: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मणप्पुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
2: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मणप्पुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1800-420-2233 पर कॉल करें। फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
3: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मणप्पुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
2: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मणप्पुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1800-420-2233 पर कॉल करें।

श्रोताओं, आकाशवाणी मध्य प्रदेश ट्यून किया है आपने और आप आनंद ले रहे हैं कार्यक्रम फिल्म संगीत का। कार्यक्रम का अगला गीत आइए सुनते हैं अरिजीत सिंह की आवाज़ में। इस गीत को बोल दिए हैं कौसार मुनीर ने, संगीतबद्ध किया है प्रीतम ने। फिल्म का नाम है 83।

विशाल ददलानी और सलीम मर्चेंट की आवाज़ों में ये गीत आप सुन रहे थे। इस गीत को शब्द दिए संदीप सिंह ने, संगीत था शिवम का, और ये गीत आप सुन रहे थे फिल्म मैरी कॉम से। कार्यक्रम फिल्म संगीत का अगला गीत आइए आपको सुनवाते हैं फिल्म एयर लिफ्ट से। के और अमाल मलिक की आवाज़ें हैं, कुमार के लिखे बोल और संगीत है अमाल मलिक का।

0: मनोज मुंतशिर का लिखा गीत अभी आप सुन रहे थे बी प्राक की आवाज़ में फिल्म केसरी से। इस गीत को संगीत दिया था आर्को ने। श्रोताओं, इसी गीत के साथ फिल्म संगीत यहीं संपन्न होता है। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। हम आपसे पुनः जुड़ेंगे इस अंतराल के बाद।
1: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
2: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
1: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
3: भारतीय जीवन बीमा निगम मध्य क्षेत्र भोपाल की ओर से आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं।
1: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए। फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
2: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
1: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें। फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
2: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
1: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें। फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
2: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
1: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।

नमस्कार, मैं हूं कैलाश खेर और आकाशवाणी के सभी श्रोताओं को मेरा बारंबार प्रणाम। और भारत की सेना को समर्पित ये मेरा गीत भारतीय सेना, जो तीनों सेनाओं को समर्पित है, हर देशवासी को समर्पित है तथा भारत के हर सैनिक को समर्पित है, पैरामिलिट्री के अर्ध

भारत ने श्रीलंका के खिलाफ पहले क्रिकेट टेस्ट मैच के पहले दिन 2 विकेट पर 278 रन बना लिए हैं। पडिक्कल 124 रन बनाकर खेल रहे हैं, जबकि केएल राहुल 77 रन बनाकर रिटायर्ड हर्ट हुए। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।

ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। शाम के 6 बज रहे हैं। अब प्रस्तुत है स्वाधीनता दिवस के अवसर पर मध्य प्रदेश के विभिन्न स्थलों पर आयोजित समारोहों पर आधारित समन्वित रेडियो रिपोर्ट।

0: भारत माता की जयघोष के बीच राष्ट्र के महाकाश में पूरी आन बान शान से फहराते तिरंगे के साथ भारत का जन गण मन आज अपना 80वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। हमारा तिरंगा सारे जगत में अपने सर्वप्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य के गौरव का शंखनाद करता है। इस तिरंगे के 3 मूल मंत्र हैं, त्याग, शांति और समृद्धि। इन्हीं 3 संकल्पों ने संसार के इस सबसे बड़े प्रजातंत्र को शक्ति दी है, समृद्धि दी है, शांति और सहयोग का मार्ग प्रशस्त किया है। इस पावन अवसर पर आज मध्य प्रदेश के विभिन्न स्थानों पर स्वतंत्रता दिवस की वर्षगांठ का भव्य आयोजन संपन्न हुआ। इसी भावना और संदर्भ को समेटे हमारी ये रेडियो रिपोर्ट मध्य प्रदेश के विभिन्न अंचलों में आयोजित स्वतंत्रता दिवस समारोह पर केंद्रित है। प्रदेश के विभिन्न आकाशवाणी केंद्रों के माध्यम से ये ध्वनि चित्र हम आप तक पहुंचा रहे हैं। तो सबसे पहले रुख करते हैं मध्य प्रदेश के जबलपुर केंद्र का और सुनते हैं आकाशवाणी जबलपुर से प्राप्त ये रिपोर्ट।
1: 80वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर जबलपुर नगर में हर्ष और उल्लास का वातावरण देखा गया। वर्षा की सुहानी फुहारों के मध्य जबलपुर में मुख्य समारोह पुलिस लाइन ग्राउंड में आयोजित किया गया। समारोह के आरंभ में मुख्य अतिथि माननीय लोक निर्माण मंत्री मध्य प्रदेश शासन श्री राकेश सिंह द्वारा ध्वजारोहण किया गया। राष्ट्रगीत वंदे मातरम का गायन किया गया और 3 रंग के गुब्बारे आकाश में छोड़े गए। मुख्य अतिथि द्वारा परेड का निरीक्षण किया गया।
2: परेड कमांडर श्री जय प्रकाश आर्या अब माननीय मुख्य अतिथि महोदय से परेड के निरीक्षण के लिए रिपोर्ट प्रस्तुत करने आ रहे हैं।
3: स्वतंत्रता दिवस समारोह परेड आपके लिए निरीक्षण के लिए तैयार श्रीमान।
1: समारोह में हर्ष फायर और परेड द्वारा मार्च पास्ट किया गया। परेड कमांडर और प्लाटून कमांडरों का परिचय दिया गया।
2: सबसे पहले प्लाटून के सामने से एसटीएफ 6वीं वाहिनी एसएएफ जबलपुर उसका नेतृत्व कर रहे हैं उप निरीक्षक संदीप घोड़ेश्वर और वाहन आगे की ओर होमगार्ड्स जिसका नेतृत्व कर रहे हैं सहायक उप निरीक्षक तार सिंह कुमरे। ये सुंदर सा आकर्षक सा मार्च पास्ट जिसका नेतृत्व कर रहे हैं हमारे परेड कमांडर रक्षित निरीक्षक जयप्रकाश आर्य, परेड उप कमांडर सूबेदार रूमा सिरसाम और अब ये माननीय मुख्य अतिथि महोदय के मंच के सामने से उन्हें अभिवादन करते हुए धीरे धीरे यहाँ से प्रस्थान करेंगे। ओले जे परेड कमांडर महोदय मंच के सामने से आ रहे हैं।
1: समारोह में स्वतंत्रता और लोकतंत्र सेनानियों का सम्मान और देहदान और अंगदान करने वाले व्यक्तियों और उनके परिवारजनों का सम्मान किया गया। समारोह में विभिन्न विभागों में उत्कृष्ट कार्य करने वाले अधिकारी कर्मचारी गण को भी सम्मानित किया गया।
0: खंडवा में स्वतंत्रता दिवस किस प्रकार मनाया गया ये जानने के लिए सुनते हैं हमारे खंडवा केंद्र से प्राप्त ये विवरण।
4: नमस्कार, 80वां स्वतंत्रता दिवस समारोह खंडवा के पुलिस परेड ग्राउंड में हर्षोल्लास से मनाया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि थे जनजातीय कार्य लोक परिसंपत्ति प्रबंधन भोपाल गैस त्रासदी राहत एवं पुनर्वास मंत्री माननीय डॉक्टर कुंवर विजय शाह। वंदे मातरम के पूर्ण संस्करण की स्वर लहरियों ने सभी के मन को देश के प्रति सम्मान और कृतज्ञता से भर दिया। अनेक जनप्रतिनिधि, समाज सेवी, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के परिजन और खंडवा के देश प्रेमी नागरिकों की उपस्थिति में मुख्य अतिथि डॉक्टर कुंवर विजय शाह ने ध्वजारोहण किया। मुख्य अतिथि ने परेड का निरीक्षण किया। दो बड़ी स्क्रीन लगाई गई थी जिसके माध्यम से मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय डॉक्टर मोहन यादव के कार्यक्रम का भोपाल से सीधा प्रसारण सभी ने देखा। मुख्य अतिथि डॉक्टर कुंवर विजय शाह के उद्बोधन में खंडवा जिले की उत्तरोत्तर प्रगति की बातें रेखांकित की गई थी।
5: भारत के 80वें स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं बधाई। विगत एक वर्ष में जिले के विभिन्न विभागों में उल्लेखनीय उपलब्धियां हासिल करी। खंडवा जिले में विकास लगातार जारी है।
4: स्वतंत्रता दिवस अथवा गणतंत्र दिवस का मुख्य आकर्षण होता है सांस्कृतिक कार्यक्रम। खंडवा के 5 स्कूलों की चयनित प्रस्तुतियां बहुत ही असरदार और प्रेरक रही, जिसमें भारत की संस्कृति, उत्तरोत्तर प्रगति और भारत की बेटियां जैसे विषय सम्मिलित रहे। राष्ट्रगीत के गायन से कार्यक्रम संपन्न हुआ। एक सार्थक और सफल कार्यक्रम की समाप्ति पर दादाजी को सहारा देकर ले जाते हुए किशोर वहीन पोते के दृश्य को देखकर सभी सुखद अनुभूति से भर गए। जब 3 पीढ़ियों का समावेश और बेटियों की अधिकाधिक मौजूदगी हमारे राष्ट्रीय पर्वों में होती है, तो हमारे समाज के सही दिशा में होने का प्रमाण मिलता है।
0: अब हम आपको सुनवा रहे हैं आकाशवाणी के शहडोल केंद्र का डिस्पैच।
6: हे वंदनीय भारत, अभिनंदनीय भारत, हे न्याय बंधु निर्भय निबंधनीय भारत, मम प्रेम पाणी पल्लव अवलंबनीय भारत, मेरा ममत्व सारा तुझ में समा रहा है, भारत हमारा कैसा सुंदर सुहा रहा है। विंध्य की धरती पर बसा है विराट नगरी शहडोल। घने जंगलों, प्राकृतिक संपदा, आदिवासी संस्कृति और अपनी समृद्ध लोक परंपराओं के लिए विशेष पहचान रखता है शहडोल। यहाँ की मिट्टी में प्रकृति के साथ साथ लोक संस्कृति और देशभक्ति की भी गहरी जड़ें हैं। तिरंगे की आन बान और शान के साथ शहडोल ने स्वतंत्रता दिवस पर देशभक्ति का संदेश दिया और राष्ट्र निर्माण में अपनी भूमिका निभाने का संकल्प भी दोहराया। जिले का मुख्य समारोह शहर के हृदय स्थल गांधी मैदान में आयोजित किया गया। सुबह ठीक 9 बजे माननीय मुख्य अतिथि और जिलाधीश शहडोल श्री पार्थ जायसवाल के आगमन के साथ ही मुख्य समारोह आरंभ हुआ। सबसे पहले मुख्य अतिथि महोदय ने ध्वजारोहण किया, तत्पश्चात बैंड की धुन पर राष्ट्रगान संपन्न हुआ। राष्ट्रगान के पश्चात मुख्य

0: इस तरह मध्य प्रदेश के अन्य जिलों की भांति शहडोल में भी स्वतंत्रता दिवस का समारोह बहुत ही उल्लास और उमंग के साथ मनाया गया।
1: ये विवरण हमें प्राप्त हुआ है आकाशवाणी के शिवपुरी केंद्र से।
2: मध्य प्रदेश का ऐतिहासिक प्राकृतिक सौंदर्य से भरपूर शहर, जो अपने घने जंगलों, माधव राष्ट्रीय उद्यान, संगमरमर की छत्रियों, 1857 के अमर शहीद तात्या टोपे की समाधि स्थल के लिए प्रसिद्ध है। इस शिवपुरी में राष्ट्र का 80वां स्वाधीनता दिवस समारोह गर्मामय रूप से पुलिस परेड ग्राउंड में आयोजित किया गया। आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि थे जिलाधीश श्री अर्पित वर्मा। सुबह 9 बजे मुख्य अतिथि का आगमन मंच पर हुआ। पहली बार राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम का गायन किया गया। वंदे मातरम के पश्चात मुख्य अतिथि के द्वारा मुक्ताकाश में हमारा राष्ट्र ध्वज तिरंगा फहराया गया। गूंज उठी राष्ट्रगान की धुन। राष्ट्रगान के पश्चात आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के द्वारा श्वेत धवल वाहन पर परेड का निरीक्षण किया गया। इस समय आपके साथ जिले

आयोजित स्वतंत्रता दिवस समारोह में मध्य प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री द्वारा दिए गए संदेश का सीधा प्रसारण किया गया। मध्य प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के संदेश के पश्चात जिलाधीश द्वारा जिले की उपलब्धियों की झलक बधाई संदेश के माध्यम से दी गई और अब बारी थी बच्चों की, जिनकी सांस्कृतिक प्रस्तुतियों का इंतजार सभी लोग कर रहे थे। बच्चों की सांस्कृतिक प्रस्तुतियों को देखकर ऐसा लगा कि मानो श्रावण माह में इंद्रधनुष धरा पर उतर आया है।

0: हमें ये रिपोर्ट मिली है आकाशवाणी सागर केंद्र से।
1: 80वें जश्न आजादी की वर्षगांठ की सुबह मौसम का मिजाज थोड़ा बदला बदला सा था। जोश और उत्साह से भरे युवाओं और बच्चों की टोलियां प्रभात फेरियां और आजादी के नारों के साथ आ डटी थी सागर जिले के स्थानीय पीटीसी मैदान में। कार्यक्रम की शुरुआत मुख्य अतिथि श्री गोविंद सिंह राजपूत, खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग मंत्री मध्य प्रदेश शासन के आगमन से हुई। आज इस पर्व पर पहली बार राष्ट्रगीत का गायन किया गया। निर्धारित समय अनुसार मुख्य अतिथि के कर कमलों से ध्वजारोहण की प्रक्रिया संपन्न हुई। तत्पश्चात परेड कमांडर रक्षित निरीक्षक श्री आशीष कुमार तिवारी के अनुरोध पर विशेष रूप से सुसज्जित वाहन पर सवार होकर माननीय मुख्य अतिथि द्वारा परेड का निरीक्षण किया गया। इसके बाद 3 बार हर्ष फायर कार्यवाही के उपरांत बैंड की धुन पर राष्ट्रगान हुआ। तत्पश्चात खुले आकाश में आजादी और उल्लास के प्रतीक तिरंगे गुब्बारों को छोड़ा गया। इसके बाद शुरू हुआ एक के बाद एक प्लाटून कमांडरों के दलों का अनुशासित एवं लयबद्ध मार्च पास्ट का सिलसिला। तत्पश्चात स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों और लोकतंत्र सेनानियों को शॉल श्रीफल भेंट कर सम्मानित किया गया। इसके पश्चात प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के संदेश का सीधा प्रसारण किया गया। माननीय मुख्यमंत्री के संदेश के बाद मुख्य अतिथि महोदय द्वारा बधाई संदेश का वाचन किया गया और फिर मौका था कई दिनों से तैयारी कर रहे स्कूली बच्चों की मनमोहक सांस्कृतिक प्रस्तुतियों का। मौसम की तमाम प्रतिकूलताओं को भी मात देकर स्कूली बच्चों ने देश की विविधता, अनेकता में एकता, सांस्कृतिक प्रतिचिन्हों और सबसे अव्वल शहीदों के बलिदान को अपनी प्रस्तुति में बखूबी प्रदर्शित किया। सांस्कृतिक कार्यक्रमों के बाद सराहनीय प्रस्तुति और उत्कृष्ट कार्यों के लिए छात्र छात्राओं, कर्मचारियों और अधिकारियों को प्रशस्ति पत्र, पारितोषिक वितरण और आभार प्रदर्शन किया गया। फिर राष्ट्रगीत व राष्ट्रगान के साथ ये भव्य कार्यक्रम अपनी पूर्ण आहुति को प्राप्त हुआ।
0: आकाशवाणी गुना ने हमें भेजा है ये ध्वनि चित्र।
2: गुनिया नदी और गुलाब की खेती में राष्ट्र में पहचान बनने जा रही गुना जिले में स्थानीय लाल परेड ग्राउंड पर हमारे देश का 80वां स्वतंत्रता दिवस समारोह बड़े ही हर्ष और उल्लास के साथ मनाया गया। हमारे देश के गौरव वंदे मातरम राष्ट्रगीत को 150 वर्ष पूर्ण होने पर आज के समारोह में विशेष रूप से स्कूली छात्राओं से प्रस्तुत कराया गया, जिसने सभी का ध्यान आकर्षित किया। समारोह के मुख्य अतिथि श्री किशोर कुमार कन्याल कलेक्टर जिला गुना द्वारा ध्वजारोहण किया गया। राष्ट्रगान की धुन पर उपस्थित जनसमूह ने खड़े होकर अभिवादन किया। तत्पश्चात मुख्य अतिथि द्वारा परेड का निरीक्षण किया गया। इसके बाद हर्ष फायर हुई और एक बार पुनः पुलिस के बैंड पर बजती हुई राष्ट्रगान की धुन ने वातावरण को देशभक्ति से भर दिया। समारोह में भव्य मार्च पास्ट हुआ। इसके उपरांत मुख्य अतिथि द्वारा परेड कमांडरों से परिचय लिया गया। पिछले वर्ष की तरह इस वर्ष भी मध्य प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री श्री मोहन यादव का जनता के नाम संदेश का प्रसारण बड़ी बड़ी LCD के माध्यम से किया गया। संदेश प्रसारण के पश्चात कार्यक्रम के मुख्य अतिथि जिला कलेक्टर गुना श्री किशोर कुमार कन्याल ने अपने बधाई संदेश में शासन की विभिन्न योजनाओं पर प्रकाश डाला। इसके पश्चात आज के कार्यक्रम में पहली बार डॉग शो को भी शामिल किया गया।

0: हमारे देश के गौरव वंदे मातरम गीत के 150 वर्ष पूर्ण होने पर समारोह के आरंभ में और समापन दोनों समय पर वंदे मातरम गीत का गायन हुआ।
1: आकाशवाणी रीवा केंद्र से हमें ये विवरण प्राप्त हुआ है।
2: संपूर्ण भारत वर्ष की तरह मध्य प्रदेश के रीवा जिले में भी 80वां स्वतंत्रता दिवस परंपरागत हर्षोल्लास और देश प्रेम की भावना के साथ शहर के मुख्य समारोह स्थल SAF मैदान में मनाया गया। सुबह से ही मुख्य समारोह स्थल SAF मैदान पर आम जन के आने जाने का सिलसिला प्रारंभ हो गया। बच्चों का हाथों में तिरंगा लेकर आना इस आयोजन को भव्यता प्रदान कर रहा था। इस स्वतंत्रता दिवस के मुख्य अतिथि थे प्रदेश के उप मुख्यमंत्री माननीय राजेंद्र शुक्ला, जिनके आगमन के साथ ही ध्वजारोहण किया गया। तत्पश्चात राष्ट्रगान की आवाज फिजाओं में गूंज उठी। साथ ही वंदे मातरम के 150 वर्ष पूर्ण होने पर राष्ट्रीय गीत भी गाया गया। इसके बाद मुख्य अतिथि महोदय द्वारा परेड का निरीक्षण किया गया।
3: स्वतंत्रता दिवस परेड आपके निरीक्षण के लिए तैयार है श्रीमान।
2: स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाओं के साथ मुख्य अतिथि का उद्बोधन प्रारंभ हुआ। प्रदेश के आर्थिक विकास के संबंध में आपने बताया।
4: मुझे यह बताते हुए प्रसन्नता है कि रीवा जिला आज अधूर संरचना के विकास के क्षेत्र में नई ऊंचाइयां प्राप्त कर रहा है।
2: प्रदेश में कृषि के क्षेत्र के संबंध में आपने बताया।
4: हमारी क्षेत्र में सिंचाई का रकबा बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है।
2: तत्पश्चात मुख्य अतिथि द्वारा स्वाधीनता सेनानी शहीदों और उनकी पत्नियों को राजकीय सम्मान प्रदान कर उनके और उनके परिवार द्वारा देश को दिए गए अमूल्य योगदान को याद किया गया। विभिन्न छात्र छात्राओं द्वारा आकर्षक सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए।
1: आकाशवाणी के बैतूल केंद्र ने हमें ये रिपोर्ट भेजी है।
5: मध्य प्रदेश के हृदय स्थल पर अंकित प्राकृतिक संपदा से परिपूर्ण बैतूल जिले में भी स्वतंत्रता दिवस का राष्ट्रीय पर्व हर्ष और उल्लास के वातावरण में मनाया गया। स्वाधीनता दिवस का मुख्य आयोजन स्थानीय पुलिस परेड मैदान पर निर्धारित किया गया था। मध्य प्रदेश शासन के नवाचार के तहत इस बार भी प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री के संबोधन का सजीव प्रसारण भी लोगों के लिए कौतूहल का विषय था। चारों ओर देशभक्ति तरानों की अनुगूंज सुनाई पड़ रही थी। इसी माहौल में प्रातः ठीक 9 बजे कार्यक्रम के मुख्य अतिथि जिला कलेक्टर बैतूल डॉक्टर सौरभ संजय सोनावने द्वारा ध्वजारोहण किया गया। इसके पश्चात सामूहिक राष्ट्रगान संपन्न हुआ तथा मुख्य अतिथि द्वारा परेड का निरीक्षण किया गया।
3: स्वतंत्रता दिवस परेड आपके निरीक्षण के लिए तैयार है श्रीमान।
5: इस अवसर पर 3 रंगों से सजे गुब्बारे आकाश में छोड़े गए, जो हवा की दिशा के साथ ऊंचे आकाश में तिरंगे की आकृति बनाते हुए आंखों से ओझल हो गए। इसके बाद मैदान पर उपस्थित पुलिस दल के हर्ष फायर से सारा वातावरण गूंज उठा। अब आरंभ हुआ मार्च पास्ट, जिसमें बैंड की लयबद्ध धुन पर कदम से कदम मिलाकर चल रही टुकड़ियों को देखना एक अविस्मरणीय अनुभव था। इस मौके पर कार्यक्रम में उपस्थित स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों, लोकतंत्र सेनानियों तथा शहीदों के परिजनों का सम्मान भी किया गया। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर इस बार मध्य प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के संदेश का भोपाल से सीधा प्रसारण किया गया। इस राष्ट्रीय पर्व पर कार्यक्रम के मुख्य अतिथि जिला कलेक्टर डॉक्टर सौरभ संजय सोनावने द्वारा बधाई संदेश दिया गया।
6: जिलेवासी भाइयों बहनों एवं प्यारे बच्चों, भारत के 80वें स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं।
5: 15 अगस्त के पावन अवसर पर शहर की विभिन्न शालाओं के बालक और बालिकाओं द्वारा रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए।

0: कार्यक्रम के अंत में विशिष्ट उपलब्धियों के लिए शासकीय कर्मचारियों और छात्र छात्राओं को पुरस्कार और प्रशंसा पत्र प्रदान किए गए। साथ ही जिला प्रशासन द्वारा परेड तथा सांस्कृतिक कार्यक्रमों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले प्रतिभागियों को शील्ड देकर पुरस्कृत किया गया।
1: आकाशवाणी के इंदौर केंद्र से हमें ये विवरण प्राप्त हुआ है।
2: इंदौर में संभागीय स्वाधीनता दिवस का मुख्य राजकीय समारोह स्थानीय रुस्तम सशस्त्र पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय महेश गार्ड लाइन के मैदान पर आयोजित किया गया। माननीय मुख्य अतिथि मध्य प्रदेश सरकार के जल संसाधन मंत्री श्री तुलसीराम सिलावट का जैसे ही आगमन परेड ग्राउंड में हुआ, उपस्थित जन समुदाय ने तालियों की गड़गड़ाहट के साथ गर्मजोशी से उनका स्वागत किया। इसके बाद मुख्य अतिथि खुली जीप में सवार होकर परेड का निरीक्षण किया। उनके साथ कलेक्टर शिवम वर्मा और पुलिस कमिश्नर संतोष सिंह और परेड कमांडर उपस्थित रहे। तत्पश्चात स्वतंत्रता दिवस अमर रहे के नारों से पूरा परेड मैदान गुंजायमान हो उठा और उसके पश्चात आरएपीटीसी के मैदान पर बीएसएफ, सशस्त्र पुलिस बल, होमगार्ड, जिला पुलिस बल, एनसीसी, स्काउट गाइड, सृजन शौर्य दल, एसपीसी गर्ल्स और आरआई ग्रुप की टुकड़ियों द्वारा भव्य मार्च पास्ट किया गया। भव्य मार्च पास्ट के पश्चात मध्य प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने राज्य के नाम संदेश ऑनलाइन माध्यम से भोपाल स्थित लाल परेड ग्राउंड से दिया, जिसे स्क्रीन के द्वारा उपस्थित इंदौर की जनता ने गंभीरता से सुना। तत्पश्चात माननीय मुख्य अतिथि जल संसाधन मंत्री तुलसीराम सिलावट ने उपस्थित जनता को शुभकामनाएं दी।
3: महिला की नगरी के सभी भाई और बहनों, मैं आप सबको प्रणाम भी करता हूं और नमन भी करता हूं। स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत बधाई।
2: और अब सांस्कृतिक प्रस्तुतियों के आगाज ने उपस्थित दर्शकों को उत्साहित कर दिया और सभी अपने स्थान पर खड़े होकर रंगारंग नृत्य प्रस्तुतियों का आनंद उठाने लगे।

0: सांस्कृतिक प्रस्तुतियों के क्रम के पश्चात उत्कृष्ट कार्यों हेतु मध्य प्रदेश सरकार के अधिकारियों और कर्मचारियों को माननीय मुख्य अतिथि द्वारा पुरस्कार प्रदान किए गए।
1: आकाशवाणी के छिंदवाड़ा केंद्र ने हमें ये डिस्पैच भेजा है।
2: सतपुड़ा की हरित पर्वत श्रृंखलाओं के मध्य प्रकृति की अनुपम छटा से आलोकित छिंदवाड़ा आज स्वतंत्रता के महापर्व का साक्षी बना। जिले का मुख्य समारोह छिंदवाड़ा नगर के हृदय स्थल स्थानीय पुलिस परेड मैदान पर आयोजित हुआ। प्रातः से ही देशभक्ति का उल्लास स्पष्ट दिखाई दे रहा था। तिरंगे की शान में सजा पूरा परिसर राष्ट्रप्रेम की आभा से आलोकित था। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि थे श्री राव उदय प्रताप सिंह, कैबिनेट मंत्री, परिवहन और स्कूल शिक्षा विभाग मध्य प्रदेश शासन। प्रातः 9 बजे मुख्य अतिथि महोदय के आगमन के साथ ही स्वाधीनता पर्व का शुभारंभ हुआ। मुख्य अतिथि महोदय द्वारा ध्वजारोहण कर परेड की सलामी ली गई। जैसे ही राष्ट्रगान की स्वर लहरियां वातावरण में गूंजी, उपस्थित जनसमुदाय तिरंगे के सम्मान में गर्व और गौरव से भर उठा। इसके पश्चात मुख्य अतिथि महोदय द्वारा तिरंगे के रंग में रंगे गुब्बारों को मुक्ताकाश में छोड़ा गया। इसके पश्चात मुख्य अतिथि महोदय द्वारा परेड का निरीक्षण किया गया और फिर हुआ हर्ष फायर। तत्पश्चात स्वतंत्रता दिवस अमर रहे के नारे लगाए गए और इसके पश्चात कदम से कदम मिलाकर विभिन्न परेड दलों की दृढ़ पदचाप राष्ट्र की एकता, सुरक्षा और आत्मविश्वास का संदेश दे रही थी। अवसर था मार्च पास्ट का। मार्च पास्ट के बाद प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी के प्रदेश की जनता के नाम संदेश का सजीव प्रसारण लाल परेड मैदान भोपाल से किया गया। इसके उपरांत मुख्य अतिथि महोदय द्वारा उपस्थित जनसमुदाय को स्वाधीनता पर्व की बधाई देते हुए संबोधित किया गया और स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों एवं लोकतंत्र सेनानियों का सम्मान किया गया और फिर हुआ व्यायाम प्रदर्शन। व्यायाम प्रदर्शन के पश्चात सांस्कृतिक कार्यक्रमों का रंगारंग आयोजन हुआ।

0: इसके पश्चात विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य करने वाले अधिकारियों, कर्मचारियों, विद्यार्थियों तथा समाज सेवियों का सम्मान करते हुए उन्हें प्रशस्ति पत्र प्रदान किए गए।
1: अब सुनते हैं आकाशवाणी ग्वालियर की ये रिपोर्ट।
2: देश और प्रदेश के साथ ग्वालियर जिले में 80वां स्वतंत्रता दिवस परंपरागत हर्षोल्लास और देश प्रेम की भावना के साथ मनाया गया। सुबह से ही गली कूचों और सड़कों में गहमा गहमी थी। दुकानों और चौराहों की सजावट में राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे के रंगों की बहार देखते ही बन रही थी। देश प्रेम से सराबोर गीतों के माध्यम से इस महान राष्ट्र की गौरव गाथा चारों ओर प्रसारित हो रही थी। रात भर की फुहारों ने प्रातःकाल की हवाओं को भी नम और शीतल बना दिया था। रिमझिम बारिश के बीच जिला मुख्यालय में स्वतंत्रता दिवस समारोह का आयोजन स्थानीय SAF ग्राउंड में किया गया। मुख्य अतिथि थे मध्य प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष माननीय नरेंद्र सिंह तोमर। शुभारंभ ध्वजारोहण और राष्ट्रगान के साथ हुआ। उसके बाद माननीय मुख्य अतिथि द्वारा परेड का निरीक्षण किया गया। परेड के बाद मध्य प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री श्री मोहन यादव के संदेश का भोपाल के लाल परेड मैदान से सीधा प्रसारण किया गया। उसके बाद हर्ष फायर किया गया। उसके बाद माननीय मुख्य अतिथि श्री नरेंद्र सिंह तोमर ने अपने उद्बोधन में नगरवासियों को स्वतंत्रता दिवस की बधाई देते हुए कहा,
3: भारत के 80वें स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। जग कहता है तू विशाल है, तू महान है, जय तेरी, लोक लोक से बरस रही तुझ पर पुष्पों की ढेरी। देश के लिए जिएंगे, देश के लिए मरेंगे, जिए तो सदा इसी के लिए, यही अभिमान रहे यह हर्ष है। निछावर कर दें हम सर्वस्व, हमारा प्यारा भारत वर्ष है।
2: परेड द्वारा शानदार मार्च पास्ट का प्रदर्शन किया गया। खुले आकाश में राष्ट्रीय ध्वज के 3 रंगों के गुब्बारे छोड़े गए। तत्पश्चात माननीय मुख्य अतिथि महोदय द्वारा स्वतंत्रता सेनानियों के परिजनों, वीर नारियों, घायल सैनिकों और लोकतंत्र सेनानियों का सम्मान किया गया। उसके बाद BSF टेकनपुर के द्वारा श्वान दल का प्रदर्शन किया गया। सांस्कृतिक कार्यक्रमों की श्रृंखला उसके उपरांत शुरू हुई। ग्वालियर जिले के अनेक विद्यालयों की रंगारंग प्रस्तुति से उपस्थित जनमानस देशभक्ति के रंग में सराबोर हो गए। सांस्कृतिक कार्यक्रम के बाद कलरी पयटू प्राचीन युद्ध कला का प्रदर्शन किया गया और कार्यक्रम का समापन राष्ट्रगान के साथ हुआ।
1: आकाशवाणी के छतरपुर केंद्र से हमें ये डिस्पैच प्राप्त हुआ है।
4: महाराजा छत्रसाल की नगरी छतरपुर में भी 80वां स्वतंत्रता दिवस समारोह अत्यंत हर्षोल्लास पूर्वक संपन्न हुआ। प्रातःकालीन बेला में रिमझिम फुहारों के बीच राष्ट्रीय पर्व नन्हे कलाकारों की प्रस्तुतियों के साथ उत्साह पूर्वक मनाया गया। जिला स्तरीय मुख्य कार्यक्रम पुलिस लाइन स्थित परेड ग्राउंड में भव्यता पूर्वक संपन्न हुआ। प्रातः 9 बजे मध्य प्रदेश शासन के वन एवं पर्यावरण राज्य मंत्री श्री दिलीप अहिरवार ने ध्वजारोहण कर परेड की सलामी ली।
5: सलामी देगी राष्ट्रीय सलाम पेश।
4: तदुपरांत मध्य प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का प्रदेश की जनता के नाम संदेश का भोपाल से सजीव प्रसारण परेड ग्राउंड में लगी बड़ी स्क्रीन के माध्यम से सभी ने सुना और देखा। इसके पश्चात कार्यक्रम के मुख्य अतिथि मध्य प्रदेश शासन के वन एवं पर्यावरण राज्य मंत्री श्री दिलीप अहिरवार ने उमंग और उल्लास के प्रतीक रंग बिरंगे गुब्बारे मुक्त आकाश में छोड़े। तदुपरांत विभिन्न स्कूलों के छात्र छात्राओं द्वारा रंग बिरंगी पोशाकों में मनमोहक देशभक्तिपूर्ण गीतों पर आधारित देश प्रेम से ओतप्रोत सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दी गईं।

0: तत्पश्चात उत्कृष्ट कार्य करने हेतु शासन के विभिन्न विभागों के अधिकारियों कर्मचारियों को माननीय मुख्य अतिथि द्वारा सम्मानित किया गया।
1: आकाशवाणी बालाघाट ने हमें ये रिपोर्ट भेजी है।
2: देश भर के साथ साथ बालाघाट जिले में भी स्वतंत्रता दिवस का पावन पर्व बड़े ही हर्षोल्लास, गरिमा और देशभक्ति के माहौल में मनाया गया। मुख्य समारोह में जिले के सम्मानीय कलेक्टर श्री कुमार सत्यम मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। कार्यक्रम की शुरुआत मुख्य अतिथि के आगमन के साथ हुई, जिसके बाद पूरे प्रांगण में राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम की गूंज सुनाई दी। तत्पश्चात मुख्य अतिथि श्री कुमार सत्यम ने विधिवत ध्वजारोहण किया और तिरंगे को सलामी दी। इसके तुरंत बाद सभी ने सामूहिक रूप से राष्ट्रगान गाया। ध्वजारोहण के उपरांत मुख्य अतिथि द्वारा भव्य परेड का निरीक्षण किया गया और सलामी ली गई।
3: स्वतंत्रता दिवस परेड आपके निरीक्षण के लिए तैयार है श्रीमान।
4: समारोह के मुख्य अतिथि आपके करीब आते हुए हमारे जिले के नवागत तो कलेक्टर हैं, हम चाहेंगे तालियां बजाकर उनका अभिवादन करें, उनका सम्मान करें।
2: कार्यक्रम में मध्य प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी के प्रदेश वासियों के नाम संदेश का वाचन किया गया। शांति, समृद्धि और स्वतंत्रता के प्रतीक के रूप में मुख्य अतिथि द्वारा आसमान में तिरंगे के तीन रंगों वाले गुब्बारे छोड़े गए। समारोह के अगले चरण में शासकीय विद्यालयों के छात्र छात्राओं ने देशभक्ति से ओतप्रोत मनमोहक एवं रंगारंग सांस्कृतिक प्रस्तुतियां देकर उपस्थित जन समूह का दिल जीत लिया।
5: भारत में नमक बनाने या उसे बेचने पर सॉल्ट टैक्स रूल के तहत पाबंदी लगा दी गई। अपने हक के लिए और अपने नमक के लिए अपनी लाठी और अपने 78 साथी के साथ निकल पड़े महात्मा गांधी साबरमती आश्रम से एक सत्याग्रह पर, जिसे इतिहास ने नाम दिया दांडी मार्च।
2: विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य करने वाले अधिकारियों, कर्मचारियों, छात्र छात्राओं और परेड की श्रेष्ठ टुकड़ियों को मुख्य अतिथि द्वारा पुरस्कृत भी किया गया। कार्यक्रम के अंत में पुनः राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के गायन के साथ इस गरिमामयी स्वतंत्रता दिवस समारोह का विधिवत समापन हुआ।
1: उज्जैन में स्वतंत्रता दिवस किस प्रकार मनाया गया, आइए जानते हैं वहां से प्राप्त इस विवरण से।
6: पूरे देश और प्रदेश की भांति महाकाल की नगरी उज्जैन में भी 80वां स्वतंत्रता दिवस पूरे उल्लास और उमंग के साथ मनाया गया। स्वाधीनता दिवस का मुख्य समारोह नगर के देवास रोड स्थित स्थानीय परेड ग्राउंड दशहरा मैदान में आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में मध्य प्रदेश के माननीय कौशल विकास एवं रोजगार राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार तथा उज्जैन के प्रभारी मंत्री डॉ. गौतम टेटवाल द्वारा मुख्य अतिथि के रूप में ध्वजारोहण किया गया। समारोह की शुरुआत वंदे मातरम के सामूहिक गान से हुई। इसके बाद मुख्य अतिथि द्वारा ध्वजारोहण और उसके बाद राष्ट्रगान के स्वरों से पूरा दशहरा मैदान गुंजायमान हो उठा। राष्ट्रगान के बाद मुख्य अतिथि द्वारा परेड की सलामी और निरीक्षण किया गया। समारोह में उज्जैन आलोट से माननीय लोकसभा सांसद श्री अनिल फिरोजिया, उज्जैन उत्तर विधानसभा से माननीय विधायक श्री अनिल जैन कालूहेड़ा, संभागायुक्त श्री आशीष सिंह, कलेक्टर श्री रोशन सिंह, पुलिस उप महानिरीक्षक श्री नवनीत भसीन, पुलिस अधीक्षक श्री प्रदीप शर्मा सहित विभिन्न जनप्रतिनिधि, प्रशासनिक अधिकारी, स्वतंत्रता सेनानी और उनके परिजन उपस्थित रहे। बड़ी संख्या में स्कूली छात्र छात्राएं और शहरवासी भी इस समारोह में शामिल हुए। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि द्वारा मध्य प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के संदेश का वाचन किया गया। समारोह में हर्ष फायर के बाद मार्च पास्ट का भी आयोजन किया गया। इसके पश्चात सांस्कृतिक कार्यक्रमों तथा पुरस्कार वितरण समारोह भी आयोजित किया गया। स्कूली विद्यार्थियों ने देशभक्ति गीतों और सांस्कृतिक प्रस्तुतियों के माध्यम से स्वाधीनता दिवस के उत्सव में रंग भर दिए। कार्यक्रम में स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों, शहीदों के परिवारजनों, लोकतंत्र सेनानियों तथा देहदान करने वाले व्यक्तियों के परिजनों का सम्मान भी किया गया। आज़ादी के इस महापर्व पर पूरे उज्जैन शहर में भी उत्साह का वातावरण देखा गया।
1: अंत में प्रस्तुत है मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में आयोजित मुख्य कार्यक्रम की रिपोर्ट।

0: देश की हृदय स्थली और मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में भी 80वां स्वतंत्रता दिवस समारोह अत्यंत हर्षोल्लास और देशभक्ति के जज्बे के साथ मनाया गया। अनगिनत स्वतंत्रता सेनानियों और वीर रणबांकुरों के त्याग और बलिदान के फलस्वरूप आज ही के दिन वर्ष 1947 में हमने स्वतंत्र भारत के निर्माण की जो स्वर्णिम इबारत लिखी थी, उसकी गरिमामय स्मृति आज भी हमारे भीतर देश प्रेम की भावना को जागृत करते हुए हमें उल्लास, उमंग और नव चेतना से भर देती है। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर भोपाल की फिजाओं में भी देशभक्ति का रंग दिखाई दिया। हर ओर तिरंगा शान से लहराता नजर आया। हर घर तिरंगा अभियान ने इस राष्ट्रीय पर्व की गरिमा को और भी बढ़ा दिया। भोपालवासियों ने अपने घरों, प्रतिष्ठानों और शहर के विभिन्न प्रमुख स्थलों पर तिरंगा फहराकर राष्ट्र के प्रति अपनी निष्ठा और सम्मान को व्यक्त किया। विभिन्न शासकीय कार्यालयों में भी तिरंगा अपनी पूरी आन बान और शान के साथ लहरा रहा था। उल्लास और उमंग से सराबोर इस माहौल की चरम अभिव्यक्ति भोपाल के लाल परेड मैदान में देखने को मिली, जहां स्वाधीनता दिवस का राज्य स्तरीय समारोह पूरे गौरव, गरिमा और भव्यता के साथ आयोजित किया गया। सुबह से ही हल्की ठंडी बयार और सुहावने मौसम ने पूरे वातावरण को खुशनुमा बना दिया था। प्रत्येक नागरिक, हर देशवासी आज देशभक्ति और राष्ट्र प्रेम के रंग में डूबा हुआ नजर आ रहा था। स्वाधीनता दिवस समारोह की शुरुआत हुई लाल परेड मैदान में परेड की टुकड़ियों के आगमन से। सुबह ठीक 8:59 पर कार्यक्रम के मुख्य अतिथि महोदय मध्य प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का आगमन हुआ। तत्पश्चात राष्ट्र गीत का गायन किया गया। उसके बाद माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव द्वारा यथासमय राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा उन्मुक्त आकाश में फहराया गया और वातावरण में गूंज उठी राष्ट्रगान की धुन। तत्पश्चात उन्मुक्त आकाश में तिरंगे से मेल खाते 3 रंग के गुब्बारे छोड़े गए। ध्वजारोहण के पश्चात मुख्य अतिथि द्वारा परेड की सलामी ली गई।
1: आदरणीय मुख्य अतिथि महोदय, सभी प्लाटून्स की ओर अग्रसर होते हुए।
0: और अब बारी थी भव्य मार्च पास्ट की।
1: स्वाधीनता दिवस की गौरवशाली परेड मंच की ओर अग्रसर होती हुई परेड कमांडर SDOP श्री आदित्य सिंघारिया और परेड 2IC नगर पुलिस अधीक्षक श्री हेमंत कुमार के नेतृत्व में माननीय मुख्य अतिथि महोदय के ठीक सामने।
0: मार्च पास्ट के उपरांत स्वाधीनता दिवस की शुभकामनाओं के साथ माननीय मुख्यमंत्री महोदय का प्रदेशवासियों के नाम संदेश आरंभ हुआ।
2: प्रिय प्रदेशवासियों, स्वतंत्रता दिवस के शुभ अवसर पर आप सभी को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। मैं प्रदेश के 8.5 करोड़ नागरिकों की ओर से आज़ादी के सभी जननायकों और स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के चरणों में कोटि कोटि वंदन करता हूं।
0: उन्होंने मध्य प्रदेश वासियों की ओर से पुलिस और हॉक फोर्स के उन वीर जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा,
3: मैं मध्य प्रदेश वासियों की ओर से पुलिस और हॉक फोर्स के उन वीर जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ, जो आंतरिक सुरक्षा के मोर्चे पर असीम शौर्य का परिचय देते हुए वीरगति को प्राप्त हुए।
0: ब्रिक्स देशों के संस्कृति मंत्रियों की बैठक का उल्लेख करते हुए आपने कहा,
2: यह हर्ष का विषय है कि जून 2026 में ब्रिक्स देशों के कृषि मंत्रियों एवं कृषि कार्य समूह तथा अगस्त 2026 में ब्रिक्स देशों के संस्कृति मंत्रियों और ब्रिक्स कार्य संस्कृति के समूह की बैठक का आयोजन मध्य प्रदेश को प्राप्त हुआ।
0: प्रदेश के किसानों को संबोधित करते हुए माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने कहा,
2: किसानों के खेत सरकार के लिए देव स्थल है और खेत से उपजा एक एक दाना प्रसाद के समान है। वर्ष 2026 को हम किसान कल्याण वर्ष के रूप में मना रहे हैं। सभी जिलों में बलराम कृषि महोत्सव आयोजित कर किसानों की मेहनत और समर्पण को सम्मानित किया जा रहा है। प्रदेश के इतिहास में पहली बार शासकीय योजनाओं के लिए कृषि भूमि का भू अर्जन करने पर किसानों को 4 गुना मुआवजा देने का किसान हितैषी निर्णय हमारी सरकार द्वारा लागू किया गया है।
0: प्रदेश के युवाओं को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री महोदय ने अपने विचार प्रकट करते हुए कहा,
2: वर्ष 2027 को हमने युवा वर्ष के रूप में मनाने का निर्णय किया है। युवाओं के संपूर्ण व्यक्तित्व विकास और कल्याण के लिए हमने इंद्रधनुषी रणनीति का निर्माण किया है, जिसके 7 महत्वपूर्ण पिलर्स है। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, कौशल विकास, उद्यमिता और स्वरोजगार, सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र में रोजगार के अवसर, स्टार्टअप को सहयोग, खेल, कला, संस्कृति एवं शोध तथा अनुसंधान को प्रोत्साहन, नेतृत्व क्षमता का विकास। हमने 85,000 से अधिक युवाओं की शासकीय सेवाओं में नियुक्तियां की है।
0: अपने संदेश के अंत में आपने प्रदेश की जनता का उत्साह वर्धन किया।
2: भीतर एक चिंगारी है, आगे बढ़ना जारी है, संकल्प हमारा पक्का है और सिद्धि की तैयारी है। रात अंधेरी छट गई, देखो आजादी उजियारी है, लहर लहर लहराए तिरंगा, देखो दुनिया सारी है। जन जन का विश्वास है ताकत, जनता प्राणों से प्यारी है, आने वाला वक्त हमारा अब मध्य प्रदेश की बारी है। भीतर एक चिंगारी है, आगे बढ़ना जारी है, संकल्प हमारा पक्का है और सिद्धि की तैयारी है। एक बार पुनः आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की मेरी अपनी ओर से हार्दिक बधाई शुभकामनाएं। जय हिंद, जय मध्य प्रदेश।
0: माननीय मुख्य अतिथि महोदय के जनता के नाम संदेश के समापन के बाद पदक अलंकरण समारोह का आयोजन शुरू हुआ, जिसमें विभिन्न विभागों के अधिकारियों द्वारा किए गए उत्कृष्ट कार्यों के लिए उन्हें सम्मानित किया गया। पदक अलंकरण समारोह के साथ ही लाल परेड मैदान में आयोजित स्वतंत्रता दिवस का समारोह संपन्न हुआ।

इसी के साथ संपन्न होती है मध्य प्रदेश के विभिन्न अंचलों में आयोजित स्वतंत्रता दिवस समारोह पर केंद्रित ये रेडियो रिपोर्ट। आकाशवाणी परिवार की ओर से आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं। नमस्कार।

स्वाधीनता दिवस के अवसर पर मध्य प्रदेश के विभिन्न स्थलों पर आयोजित समारोहों पर आधारित समन्वित रेडियो रिपोर्ट का प्रसारण अभी किया जा रहा था। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। हमारे अगले प्रसारण की प्रतीक्षा कीजिए।

सदी हो तुम, या यूं कहें वक्त की रफ्तार हो। कच्ची यादों से उम्मीदों के चिराग जगमगाने तक, यूं ही चलते चलते अचानक कुछ याद आ जाने तक, हर कदम पर रहे हो साथ साथ। मनोरंजन, समाज और इतिहास तुम्हारी जुबान से ही तो सुना है हमने। सदा बहार हो तुम, बेमिसाल हो तुम, देश की आवाज हो तुम। आकाशवाणी।

श्रोताओं, आपके लिए एक विशेष सूचना। आकाशवाणी भोपाल के लोकप्रिय कार्यक्रम ग्राम सभा में रविवार दिनांक 16 अगस्त 2026 को शाम 7:30 से 8 बजे तक सजीव फोन कार्यक्रम का प्रसारण किया जाएगा। इस हेलो ग्राम सभा के लिए विषय है वर्तमान फसलों में निदाई एवं खरपतवार प्रबंधन। इस कार्यक्रम में जो श्रोता अपनी समस्याओं और जिज्ञासाओं के समाधान चाहते हैं, वो दिनांक 16 अगस्त 2026 को शाम 7:30 से 8 बजे के मध्य आकाशवाणी भोपाल के फ़ोन नंबर 2660902 या 2660903 पर फ़ोन कर समाधान प्राप्त कर सकते हैं। दिन, समय और फ़ोन नंबर एक बार फिर सुन लीजिए। दिनांक 16 अगस्त 2026 को शाम 7:30 से 8 बजे के मध्य फ़ोन नंबर हैं 2660902 और 2660903। भोपाल का एसटीडी कोड है 0755। सूचना समाप्त हुई। ये

0: देश और प्रदेश के साथ ग्वालियर जिले में 80वां स्वतंत्रता दिवस परंपरागत हर्षोल्लास और देश प्रेम की भावना के साथ मनाया गया। सुबह से ही गली कूचों और सड़कों में गहमा गहमी थी। दुकानों और चौराहों की सजावट में राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे के रंगों की बहार देखते ही बन रही थी। देश प्रेम से सराबोर गीतों के माध्यम से इस महान राष्ट्र की गौरव गाथा चारों ओर प्रसारित हो रही थी। रात भर की फुहारों ने प्रातःकाल की हवाओं को भी नम और शीतल बना दिया था। रिमझिम बारिश के बीच जिला मुख्यालय में स्वतंत्रता दिवस समारोह का आयोजन स्थानीय SAF ग्राउंड में किया गया। मुख्य अतिथि थे मध्य प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष माननीय नरेंद्र सिंह तोमर। बड़ी संख्या में दूर दराज से आए आम नागरिक, अधिकारी, कर्मचारी, जनप्रतिनिधि, स्कूल और कॉलेज के विद्यार्थी इस गरिमापूर्ण आयोजन के साक्षी बने। शुभारंभ ध्वजारोहण और राष्ट्रगान के साथ हुआ। उसके बाद माननीय मुख्य अतिथि द्वारा परेड का निरीक्षण किया गया। परेड कमांडर श्रीमती अनुश्री वाष्णेय के नेतृत्व में अनुशासित टुकड़ियां परेड कर रही थीं। परेड टुकड़ियों में BSF टेकनपुर बटालियन 2, IC सूबेदार श्रीमती सोनम पाराशर के नेतृत्व में, SAF दूसरी वाहिनी उपनिरीक्षक श्री सत्यम मिश्रा के नेतृत्व में, जिला महिला बल सुश्री क्षमा राजौरिया के नेतृत्व में शामिल रहीं। SAF 13वीं वाहिनी, SAF 14वीं वाहिनी, जिला पुलिस बल, होमगार्ड, NCC, स्काउट और गाइड, शौर्य दल, नगर रक्षा सेना, BSF बैंड की टुकड़ियां भी परेड में शामिल रहीं। परेड के बाद मध्य प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री श्री मोहन यादव के संदेश का भोपाल के लाल परेड मैदान से सीधा प्रसारण किया गया।
1: प्रिय प्रदेशवासियों, स्वतंत्रता दिवस के शुभ अवसर पर आप सभी को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। मैं प्रदेश के 8.5 करोड़ नागरिकों की ओर से आजादी के सभी जननायकों और स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के चरणों में कोटि कोटि वंदन करता हूं। स्वाधीनता के इस संग्राम में रानी दुर्गावती, रानी अवंतीबाई लोधी, महाराजा छत्रसाल, टंट्या मामा भील से लेकर चंद्रशेखर आजाद तक मध्यप्रदेश के अनगिनत वीर सपूतों ने अपनी अपनी आहुतियां दी है। कृतज्ञ मध्य प्रदेश आज उन सभी को श्रद्धा पूर्वक नमन करता है। मैं मध्य प्रदेश वासियों की ओर से पुलिस और हॉक फोर्स के उन वीर जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं, जो आंतरिक सुरक्षा के मोर्चे पर असीम शौर्य का परिचय देते हुए वीर गति को प्राप्त हुए। ऐसे ही जाबाजों की बदौलत नक्सल मुक्त प्रदेश बनाने की ऐतिहासिक उपलब्धियां हासिल हुई है। पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न आदरणीय अटल जी ने भारतवर्ष की महिमा को इन पंक्तियों में व्यक्त किया है। भारत जमीन का टुकड़ा नहीं है, जीता जागता राष्ट्र पुरुष है। हिमालय मस्तक है, कश्मीर किरीट है, पंजाब और बंगाल दो विशाल कंधे हैं, पूर्वी और पश्चिमी घाट दो विशाल जंघाएं हैं, कन्याकुमारी इसके चरण है, सागर इसके पग पखारता है। ये चंदन की भूमि है, अभिनंदन की भूमि है, यह तर्पण की भूमि है, यह अर्पण की भूमि है, इसका कंकर कंकर शंकर है, इसका बिंदु बिंदु गंगा जल है। हम जिएंगे तो इसके लिए और मरेंगे तो इसके लिए। आजादी का ये महोत्सव इसीलिए भी अविस्मरणीय हो गया है क्योंकि राष्ट्रीय पर्व पर राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम का भी गायन हो रहा है।
0: उसके बाद हर्ष फायर किया गया।
2: आप सभी सावधान की मुद्रा में हम एक साथ खड़े हो जाएंगे।
0: प्रेड खले कर। उसके बाद माननीय मुख्य अतिथि श्री नरेंद्र सिंह तोमर ने अपने उद्बोधन में नगरवासियों को स्वतंत्रता दिवस की बधाई देते हुए कहा,
3: ग्वालियर जिले के भाइयों बहनों और प्यारे बच्चों, भारत के 80वें स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। हम सब ने अभी अभी माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी का राज्य की जनता के नाम स्वाधीन सा संदेश सुना है। आज घर घर में हम सबका प्यारा तिरंगा लहरा रहा है। आज गली गली में देशभक्ति के तराने गूंज रहे हैं। आज जन जन के मन में देश प्रेम हिलोरे ले रहा है। आज धरती का कण कण आज़ादी के उत्सव और उल्लास में डूबा हुआ है। हर घर तिरंगा अभियान के अंतर्गत जिले भर में निकाली गई तिरंगा यात्राएं, चिर युवा भारत और अजर अमर स्वतंत्रता का जयघोष कर रही हैं। ये हम सबके लिए सौभाग्य और गर्व का विषय है कि भारत माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कुशल नेतृत्व में आज़ादी के 80वें वर्ष में प्रवेश कर रहा है। विकास, विश्वास और जनकल्याण का समर्पित विगत 12 वर्ष एक और 145 करोड़ से अधिक भारतवासियों के जीवन में सुख और समृद्धि लेकर आए हैं, तो दूसरी ओर पूरे विश्व ने भारत के सामर्थ्य का लोहा माना है। अब वो दिन दूर नहीं जब हम आज़ादी की 100वीं वर्षगांठ मना रहे होंगे और भारत एक विकसित राष्ट्र के रूप में संपूर्ण विश्व का पथ प्रदर्शक बनेगा। जग कहता है तू विशाल है, तू महान है, जय तेरी, लोक लोक से बरस रही तुझ पर पुष्पों की ढेरी। भाइयों और बहनों, स्वतंत्रता हमारे लिए एक उत्सव मात्र न होकर जन सेवा से जन विश्वास और जन विश्वास से जन कल्याण के संकल्प को साधना स्वरूप देने का दिव्य अवसर है। जिले के सर्व भारा वर्ग का सूर्योदय ही सरकार का साध्य है। लंबे संघर्ष और लंबे इंतजार के बाद मिली आज़ादी की प्राण देकर भी रक्षा करना और आज़ादी के मूल्यों को लोकतंत्र की प्राणवायु में परिवर्तित कर देना ही देश के अमर शहीदों को सच्ची श्रद्धांजलि होगी। आइए हम स्वतंत्रता दिवस के इस मंगलमय अवसर पर हम सब प्रण लें कि जिले के सर्वांगीण विकास में अपना यथासंभव योगदान देंगे और हम देश के लिए जिएंगे, देश के लिए मरेंगे। जिए तो सदा इसी के लिए, यही अभिमान रहे, यह हर्ष है। निछावर कर दें हम सर्वस्व, हमारा प्यारा भारतवर्ष है। जय हिंद।
0: परेड द्वारा शानदार मार्च पास्ट का प्रदर्शन किया गया। खुले आकाश में राष्ट्रीय ध्वज के 3 रंगों के गुब्बारे छोड़े गए। उसके बाद मुख्य अतिथि ने परेड कमांडर्स और प्लाटून कमांडर्स से मुलाकात की। तत्पश्चात माननीय मुख्य अतिथि महोदय द्वारा स्वतंत्रता सेनानियों के परिजनों, वीर नारियों, घायल सैनिकों और लोकतंत्र सेनानियों का सम्मान किया गया। उसके बाद बीएसएफ टेकनपुर के द्वारा श्वान दल का प्रदर्शन किया गया। सांस्कृतिक कार्यक्रमों की श्रृंखला उसके उपरांत जिले के अनेक विद्यालयों की रंगारंग प्रस्तुति से उपस्थित जनमानस देशभक्ति के रंग में सराबोर हो गए। सांस्कृतिक कार्यक्रम के बाद कलरी पयटू प्राचीन युद्ध कला का प्रदर्शन किया गया। बाद में माननीय मुख्य अतिथि महोदय द्वारा पुरस्कार एवं प्रशस्ति पत्र का वितरण किया गया और कार्यक्रम का समापन राष्ट्रगान के साथ हुआ। इसके साथ ही स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर ग्वालियर नगर में आयोजित विभिन्न कार्यक्रमों की रेडियो रिपोर्ट संपन्न होती है। ध्वनियांकनकर्ता और वाचन विभूति सिंह, तकनीकी सहयोग अश्विनी शर्मा और अनिल शर्मा, प्रस्तुति सुमित गौतम की।

0: क्या आप ग्रो करने के लिए रेडी हैं? क्या आप आगे बढ़ने के लिए रेडी हैं? तो अपने बिजनेस को दीजिए नई बुलंदियां।
1: अप टू 85% LTV के साथ अब मनापुरम IGL गोल्ड लोन से फंड्स पाना हुआ आसान।
0: जो लेकर आए हैं 5 करोड़ तक का लोन खास आपके लिए, ताकि आपके बिजनेस को हर कदम पर मिले सहारा।
1: कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़िए, अपने गोल्स तक पहुंचिए। मनापुरम के साथ अपने बिजनेस को आगे बढ़ाइए।
0: मनापुरम फाइनेंस लिमिटेड, मेक लाइफ इजी। टोल फ्री नंबर 1800420223। क्या आप ग्रो करने के लिए रेडी हैं? क्या आप आगे बढ़ने के लिए रेडी हैं? तो अपने बिजनेस को दीजिए नई बुलंदियां।
1: अप टू 85% LTV के साथ अब मनापुरम IGL गोल्ड लोन से फंड्स पाना हुआ आसान।
0: जो लेकर आए हैं 5 करोड़ तक का लोन खास आपके लिए, ताकि आपके बिजनेस को हर कदम पर मिले सहारा।
1: कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़िए, अपने गोल्स तक पहुंचिए। मनापुरम के साथ अपने बिजनेस को आगे बढ़ाइए।
0: मनापुरम फाइनेंस लिमिटेड, मेक लाइफ इजी। टोल फ्री नंबर 1800420223। क्या आप ग्रो करने के लिए रेडी हैं? क्या आप आगे बढ़ने के लिए रेडी हैं? तो अपने बिजनेस को दीजिए नई बुलंदियां।
1: अप टू 85% LTV के साथ अब मनापुरम IGL गोल्ड लोन से फंड्स पाना हुआ आसान।
0: जो लेकर आए हैं 5 करोड़ तक का लोन खास आपके लिए, ताकि आपके बिजनेस को हर कदम पर मिले सहारा।
1: कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़िए, अपने गोल्स तक पहुंचिए। मनापुरम के साथ अपने बिजनेस को आगे बढ़ाइए।
0: मनापुरम फाइनेंस लिमिटेड, मेक लाइफ इजी। टोल फ्री नंबर 1800420223।

0: अब इतना पानी कहाँ कि पानी के साथ खेला जाए।
1: पानी के छींटे व्यर्थ में ना उड़ाएं।
0: पानी का उपयोग सजगता के साथ करें।
1: ब्रश करते समय, दाढ़ी बनाते समय नल खुला न रखें।
0: सीधे नल के नीचे बर्तन न धोएं।
1: कपड़े धोते समय जमा पानी का ही उपयोग करें।
0: शावर के बजाय बाल्टी के पानी से नहाएं।
1: सब्जी फल धुले और पोछा लगे पानी को गमले में डालें।
0: जितनी प्यास हो ग्लास में उतना पानी ही लें।
1: अपने वाहन को पाइप से न धोएं।
0: शौचालय में फ्लश के बजाय बाल्टी के पानी का प्रयोग करें।
1: घर के टपकते नल को तुरंत ठीक करवाएं।
0: सार्वजनिक नल को बहता देख आगे न बढ़ जाएं।
1: उसे बंद कर अपना दायित्व निभाएं।
2: कभी कभी बातें तेरी अच्छी लगे,
1: कभी कभी नहीं, रोज ही रखें इन बातों का ध्यान।
0: समय है पानी बचाने का,
1: पानी का मोल समझने और समझाने का।
0: पानी बचाएं, भविष्य सजाएं।

0: इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किला के प्राचीर पर ध्वजारोहण कर महत्वपूर्ण घोषणाएं की। इस अवसर पर पहली बार राष्ट्रगीत वंदे मातरम का गायन हुआ। श्री मोदी ने इस वर्ष के आयोजन में 2047 तक विकसित भारत बनाने में युवा शक्ति की भूमिका पर बल दिया। प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले 12 वर्षों में करोड़ों देशवासियों के संकल्प, समर्पण और हर संभव प्रयास की बदौलत देश ने नई ऊंचाइयों को छुआ है।
1: पिछले 12 वर्षों में डिफेंस प्रोडक्शन करीब 4 गुना, खादी और ग्रामोद्योग का उत्पादन करीब 5 गुना हुआ, इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग करीब 7 गुना बढ़ा, आधुनिक रेलवे कोच का निर्माण 21 गुना बढ़ा, मोबाइल फोन उत्पादन 33 गुना बढ़ा। आधुनिक युग को देकर के भी डिजिटल और इनोवेशन की दुनिया में भी हमने अपना परचम लहराया। इंटरनेट यूजर करीब 4 गुना बढ़े, पेटेंट ग्रांट होने की संख्या 4 गुना बढ़ी, डिजिटल ट्रांजेक्शन 100 गुना बढ़े।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार ने अगले एक वर्ष में 1 करोड़ युवाओं को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में प्रशिक्षित करने का निर्णय लिया है। उन्होंने कहा कि गांवों, शहरों और स्कूलों में 15 वर्ष तक के मेधावी बच्चों की पहचान के लिए प्रतिभा खोज अभियान चलाया जाएगा। श्री मोदी ने गरीबों और मध्य वर्गीय परिवारों के बच्चों के लिए मुफ्त ऑनलाइन कोचिंग देने की घोषणा की। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर राष्ट्रीय युद्ध स्मारक पर वीर जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्होंने स्मारक पर पुष्पांजलि अर्पित कर शहीदों को नमन किया। बिहार में स्वतंत्रता दिवस पारंपरिक उत्साह और देशभक्ति के साथ मनाया गया। पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में आयोजित मुख्य राज्य स्तरीय समारोह में मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने राष्ट्रीय ध्वज फहराया और परेड की सलामी ली। लद्दाख में भी स्वतंत्रता दिवस देशभक्ति और उत्साह के साथ मनाया गया। LAHDC कारगिल के मुख्य कार्यकारी पार्षद डॉ. मोहम्मद जाफिर अखोन ने राष्ट्रीय ध्वज फहराया और भव्य मार्च पास्ट की सलामी ली। विश्व नेताओं और विभिन्न देशों के राजनयिक मिशनों ने स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर भारत को शुभकामनाएं दी। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने भारत और अमेरिका के बीच मजबूत होती रणनीतिक साझेदारी का उल्लेख किया। लातविया ने भारत की निरंतर प्रगति, एकता और समृद्धि की कामना की। मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइजू ने कहा कि आजादी के 8 दशक भारत की आकांक्षाओं, दृढ़ता और अटूट भावना को दर्शाते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर शुभकामनाएं देने वाले विश्व नेताओं का आभार व्यक्त किया है। भारत के स्वतंत्रता दिवस के अवसर को अनोखे और प्रतीकात्मक रूप से मनाने के लिए एक वैश्विक रिले श्रृंखला सूर्यपथ तिरंगा का आयोजन किया जा रहा है। इस अनूठी पहल के अंतर्गत भारतीय राष्ट्रध्वज उगते सूरज की दिशा का अनुसरण करते हुए दुनिया भर का चक्कर लगा रहा है। संस्कृति मंत्रालय ने बताया कि जर्मनी, नीदरलैंड, इटली, मिस्र, लातविया और दक्षिण अफ्रीका सहित दुनिया भर में मौजूद भारतीय दूतावासों ने देश के गौरव और एकता के इस उत्सव के लिए प्रवासी भारतीय समुदाय को एकजुट किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन का एक लेख साझा किया। लेख में स्वतंत्रता सेनानियों के बलिदान और 2047 तक विकसित भारत के निर्माण के संकल्प का उल्लेख किया गया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि लेख में अमृतकाल के दौरान 2047 तक विकसित भारत के निर्माण के लिए समर्पित होने का आह्वान किया गया है। इंडोनेशिया में फ्लोरेस द्वीप के तट के पास आज आए 7.7 तीव्रता के शक्तिशाली भूकंप में मरने वालों की संख्या बढ़कर 38 हो गई है। बचाव दल प्रभावित क्षेत्रों में राहत और बचाव अभियान चला रहा है। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने छोटे करदाताओं की विदेशी संपत्ति प्रकटीकरण योजना नियम 2026 को अधिसूचित कर दिया है। इसके अंतर्गत पात्र करदाता निर्धारित कर या शुल्क का भुगतान करके कुछ अघोषित विदेशी संपत्तियों और अघोषित विदेशी आय की घोषणा कर सकते हैं। गोल में श्रीलंका के साथ 2 मैचों की क्रिकेट टेस्ट श्रृंखला के पहले मैच के पहले दिन का खेल समाप्त होने तक आज भारत ने 2 विकेट पर 288 रन बनाए। नीदरलैंड्स में FIH हॉकी विश्व कप के ग्रुप डी के मैच में आज भारत ने विल्स को 3-1 से हरा दिया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण है। शाम के 7:05 हुए हैं और यह समय होता है कार्यक्रम विवरण का। श्रोताओं, कार्यक्रम विवरण के साथ हाजिर हूं मैं, आपका रेडियो साथी ऋषभ आहूजा। श्रोताओं, आपसे कुछ ही देर में यानी 7:30 पर सुनिए किसान साथियों के लिए कार्यक्रम किसान वाणी। रात्रि 8:00 आकाशवाणी दिल्ली से आप सुनेंगे इस सप्ताह संसद में। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर मोतीलाल नेहरू स्टेडियम भोपाल में आयोजित मुख्य समारोह की रेडियो रिपोर्ट का प्रसारण रात्रि 8:15 पर होगा। फिल्म संगीत का आनंद लीजिए 8:30 और रात्रि 9:30 पर। और संगीत के अखिल भारतीय कार्यक्रम में आज आप सुनेंगे जुनैद खान का सितारवादन रात्रि 10:00। यह कार्यक्रम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित किया जाएगा। ये थे इस सभा में प्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रम। अब एक नज़र कल यानी रविवार 16 अगस्त 2026 को प्रसारित होने वाले मुख्य कार्यक्रमों पर। श्रोताओं, सुबह की खूबसूरत शुरुआत होगी हमारे दैनिक सूचना परक कार्यक्रम नमस्कार भोपाल के साथ 7:20 पर। फिल्म संगीत पर आधारित कार्यक्रम सुरमई सवेरा का आनंद आप लेंगे 8:30 पर। सुगम संगीत के अंतर्गत 9:15 पर आप सुनेंगे चंद्रकला साहू द्वारा गाए बुंदेली लोकगीत। 9:30 पर सुनिए सिंधी कार्यक्रम सिंधियत जी सुरहाण।

सुबह 10:05 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम सामुदायिक गान शिक्षण पाठ और फिल्म संगीत का आनंद आप लेंगे 10:30 पर। श्रोताओं, इन सभी कार्यक्रमों का प्रसारण आकाशवाणी भोपाल के अंतर्गत होगा। आकाशवाणी मध्य प्रदेश से आप सुनेंगे फोन इन कार्यक्रम फोन करें गीत सुने सुबह 11:00। कार्यक्रम आपकी फरमाइश का समय होगा दोपहर 12:00। कार्यक्रम संग्रहालय से के अंतर्गत रेडियो धारावाहिक अमर वीर बलिदानी झांसी वाली रानी की 6वीं कड़ी आप सुनेंगे दोपहर 12:30 पर। दोपहर 1:00 सुनिए कार्यक्रम महिला सभा, 1:30 पर लोक संगीत, 1:45 पर सुगम संगीत और शाम 5:02 पर युवा श्रोताओं का दैनिक कार्यक्रम युववाणी। ये सभी कार्यक्रम आकाशवाणी शिवपुरी के योगदान से प्रसारित किए जाएंगे। फिल्म संगीत का आनंद लीजिए दोपहर 2:00, शाम 5:33, शाम 6:00 और रात्रि 8:30 पर। दोपहर 2:30 पर आप सुनेंगे बच्चों का कार्यक्रम बाल सभा, प्रस्तुति आकाश।

0: एवं खरपतवार प्रबंधन। रात्रि 8 बजे सुनिए कार्यक्रम सुर्खियों में, कार्यक्रम डगर विकास की आकाशवाणी जबलपुर के योगदान से 8:15 पर प्रसारित होगा, जिसका विषय होगा प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना। रात्रि 9:30 पर सुनिए नाटकों का अखिल भारतीय कार्यक्रम, और अखिल भारतीय रविवासरीय संगीत सभा में कल सुनिए रिथोम सरकार का गिटार वादन, जिसका प्रसारण रात्रि 10 बजे होगा। श्रोताओं, ये दोनों ही कार्यक्रम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित किए जाएंगे। ये थे कल यानी 16 अगस्त 2026 रविवार को प्रसारित होने वाले मुख्य कार्यक्रम। कार्यक्रम विवरण संपन्न हुआ। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार।
1: घर खर्च के पैसे दो हस्बैंड जी,
2: ये राशन के 15,000, सब्जियों के 2,000
1: और लाइट बिल के
2: अब 0 रुपए कैसे दूं?
1: ओहो, भूल ही गई थी, अब तो सोलर पैनल लग गए हैं ना, तो जो 4,000 बचे हैं उससे शॉपिंग हो जाए।
2: पक्का।
3: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in। हर घर सूर्य घर।
4: आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार।

0: नमस्कार, समाचारों के साथ मैं राना शाहिद। पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले की प्राचीर से लगातार 13वीं बार राष्ट्रीय ध्वज फहराया, कहा 2047 तक विकसित भारत बनकर रहेगा। प्रधानमंत्री ने गरीब और मध्यम वर्ग के परिवारों के बच्चों के लिए मुफ्त ऑनलाइन कोचिंग और अगले एक वर्ष में 1 करोड़ युवाओं को AI कौशल का प्रशिक्षण देने की घोषणा की। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने भोपाल में किया ध्वजारोहण, कहा वर्ष 2027 होगा युवा कल्याण को समर्पित। पूरे प्रदेश में हर्षोल्लास के साथ मनाया गया 80वां स्वतंत्रता दिवस। और आज सागर, जबलपुर, रायसेन, नरसिंहपुर, छिंदवाड़ा, सिवनी समेत 21 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्र आज 80वां स्वतंत्रता दिवस हर्षोल्लास के साथ मना रहा है। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले के प्राचीर से देशवासियों को संबोधित किया। पहली बार इस अवसर पर राष्ट्रगीत वंदे मातरम का गायन हुआ। इस वर्ष के आयोजन में 2047 तक विकसित भारत बनाने में युवा शक्ति की भूमिका पर बल दिया गया। प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले 12 वर्षों में करोड़ों देशवासियों के संकल्प, समर्पण और हर संभव प्रयास की बदौलत देश ने नई ऊंचाइयों को छुआ है। उन्होंने कहा कि पहले भारत 5 सबसे कमजोर अर्थव्यवस्था वाले देशों में गिना जाता था, लेकिन अब वह दुनिया की सबसे तेजी से विकसित होती अर्थव्यवस्था है। श्री मोदी ने कहा कि इन प्रयासों के कारण 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा से बाहर निकले हैं। उन्होंने कहा कि भारत ने 2047 तक देश को विकसित बनाने का बड़ा लक्ष्य निर्धारित किया है।
1: आज भारत ने भी एक बहुत बड़ा सपना देखा और वो सपना है जब आजादी के 100 साल होंगे 2047 में हम विकसित भारत बना के रहेंगे। 140 करोड़ देशवासियों के पुरुषार्थ से इस लक्ष्य को हमें हासिल करना है। और जब दुनिया की सबसे बड़ी आबादी वाला देश विकसित होने का संकल्प लेता है तो ये दुनिया की नजरों में भी हमारे साहस का परिचायक बन जाता है।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार ने अगले एक वर्ष में 1 करोड़ युवाओं को यांत्रिक मेधा यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में प्रशिक्षित करने का निर्णय लिया है। उन्होंने कहा कि इससे देश को AI के क्षेत्र में अग्रणी बनाने में मदद मिलेगी। श्री मोदी ने कहा कि देश को लागत, गुणवत्ता और कौशल पर विशेष ध्यान देना होगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि गाँव, शहरों और स्कूलों में 15 वर्ष तक के मेधावी बच्चों की पहचान के लिए प्रतिभा खोज अभियान चलाया जाएगा। उन्होंने कहा कि चुने बच्चों को अच्छा खिलाड़ी बनने के लिए प्रशिक्षित किया जाएगा। प्रधानमंत्री

0: ने गरीबों और मध्यम वर्गीय परिवारों के बच्चों परीक्षाओं के लिए मुफ्त ऑनलाइन कोचिंग देने की घोषणा की है।
1: विभिन्न परीक्षाओं के फ्री ऑनलाइन कोचिंग हमने करने का निर्णय किया है। डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, हमारे पास उत्तम टैलेंट है, टीचर्स हैं, उन संसाधनों को जोड़ करके हम देश के नौजवानों को फ्री कोचिंग देने का एक पूरा नेटवर्क हम खड़ा करने वाले हैं।
0: मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने देश के 80वें स्वतंत्रता दिवस पर भोपाल के लाल परेड ग्राउंड के राज्य स्तरीय कार्यक्रम में ध्वजारोहण किया। इससे पहले राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम का गायन हुआ। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने युवाओं के लिए बड़ा ऐलान करते हुए वर्ष 2027 को युवा कल्याण को समर्पित करने की बात कही।
2: वर्ष 2027 को हमने युवा वर्ष के रूप में मनाने का निर्णय किया है। हमने 85,000 से अधिक युवाओं की शासकीय सेवाओं में नियुक्तियां की है तथा आने वाले समय में प्रति वर्ष 1,00,000 से अधिक युवाओं को सार्वजनिक क्षेत्र के रोजगार में अवसर उपलब्ध कराएंगे। इसी प्रकार अगले 1 वर्ष में 1,00,000 से अधिक युवाओं को ITI में तथा प्रतिवर्ष 10,000 युवाओं को ग्लोबल स्किल पार्क में कौशल प्रशिक्षण दिलाने का काम करेंगे।
0: मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने कहा कि प्रदेश में 8,000 स्टार्टअप संचालित हैं, इनकी संख्या 12,000 से अधिक करने और 100 नए इंक्यूबेशन सेंटर स्थापित करने का लक्ष्य रखा गया है। डॉक्टर यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के नेतृत्व में मध्य प्रदेश नक्सलवाद के प्रभाव से पूर्णतः मुक्त हो गया है।
3: जब यशस्वी प्रधानमंत्री ने नक्सलवादी मूवमेंट के खिलाफ संकल्प लिया, माननीय गृह मंत्री जी के मार्गदर्शन में हमने आगे बढ़ने के लिए लगातार कदम बढ़ाए, तो मैं आपके सहित पूरे मंच और आप सबको बधाई देना चाहूंगा। हमारा अपना राज्य सबसे पहले उन राज्यों में शामिल हुआ जिसने लाल सलाम को आखिरी सलाम किया कि ये वो दौर है जिस दौर में अब नक्सलवादी गायब हो गए।
0: अब समाचारों में वक्त है ब्रेक का।
4: ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन यूट्यूब पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और फेसबुक साथ ही एक्स प्लेटफॉर्म पर AIR न्यूज भोपाल पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर अथवा न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं।
0: ब्रेक के बाद समाचारों में एक बार फिर आपका स्वागत है। प्रदेश में जिला स्तर पर भी स्वतंत्रता दिवस हर्षोल्लास धूमधाम एवं गरिमामय ढंग से मनाया गया। ग्वालियर में SAF मैदान पर आयोजित हुए जिले के मुख्य समारोह में विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर ने ध्वजारोहण कर संयुक्त परेड की सलामी ली। इस अवसर पर मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के संदेश का सीधा प्रसारण भी हुआ। जबलपुर में मंत्री राकेश सिंह, नर्मदापुरम में खेल और युवा कल्याण तथा सहकारिता मंत्री विश्वास सारंग ने ध्वजारोहण किया और परेड की सलामी ली। सीहोर में पिछड़ा वर्ग मंत्री एवं जिले की प्रभारी कृष्णा गौर ने ध्वजारोहण कर परेड की सलामी ली। सागर में खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री गोविंद सिंह राजपूत और मंडला में लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मंत्री संपतिया उइके ने मुख्य अतिथि के रूप में ध्वजारोहण किया और परेड की सलामी ली। खंडवा में मंत्री विजय शाह और झाबुआ में महिला एवं बाल विकास मंत्री निर्मला भूरिया ने ध्वजारोहण कर परेड की सलामी ली। अशोकनगर में आयोजित समारोह में कलेक्टर साकेत मालवीय तो गुना में कलेक्टर किशोर कुमार कन्याल, डिंडौरी में कलेक्टर अंजू पवन भदौरिया, नीमच में कलेक्टर हिमांशु चंद्रा ने ध्वजारोहण कर परेड की सलामी ली। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने भोपाल के लाल परेड ग्राउंड में आयोजित राज्य स्तरीय कार्यक्रम के दौरान पदक अलंकरण समारोह में पुलिस, होमगार्ड एवं अन्य विशिष्ट सेवाओं से जुड़े अधिकारियों कर्मचारियों को माननीय राष्ट्रपति द्वारा प्रदत्त पदकों से सम्मानित किया। इस अवसर पर पुलिस अधिकारियों कर्मचारियों को 9 विशिष्ट सेवा पदक, 33 सराहनीय सेवा पदक एवं होमगार्ड के अधिकारियों कर्मचारियों को सराहनीय सेवा के लिए 3 पदक प्रदान कर सम्मानित किया गया। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि मध्य प्रदेश पुलिस देश के सर्वश्रेष्ठ पुलिस बलों में से एक है। पुलिस विभाग के अधिकारी कर्मचारी अपनी दक्षता, समर्पण और कर्तव्य निष्ठा के बल पर निरंतर नई उपलब्धियां हासिल कर प्रदेश का गौरव बढ़ा रहे हैं। नई दिल्ली स्थित आकाशवाणी मुख्यालय में भी 80वें स्वतंत्रता दिवस समारोह का आयोजन किया गया। इस अवसर पर आकाशवाणी के महानिदेशक राजीव कुमार जैन ने राष्ट्रीय ध्वज फहराया और हार्दिक शुभकामनाएं

शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि यह दिन उन शहीदों को याद करने का दिन है जिन्होंने देश की आजादी के लिए अपने प्राणों का बलिदान दिया। आकाशवाणी भोपाल में भी ध्वजारोहण किया गया और हर्षोल्लास के साथ स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। प्रदेश में मानसून एक बार फिर जोर पकड़ रहा है। प्रदेश के पूर्वी हिस्से में स्ट्रॉन्ग सिस्टम एक्टिव होने से आज जबलपुर, शहडोल, सागर और रीवा संभाग के कई जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। अगले 24 घंटे में कुछ इलाकों में 4 से 8 इंच तक बारिश हो सकती है। अगले 4 दिन तक जबलपुर, रीवा, सागर और शहडोल संभाग में सिस्टम का ज्यादा असर रहने की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार शनिवार को नर्मदापुरम, छतरपुर और उमरिया में अति भारी बारिश का अनुमान है। वहीं जबलपुर, सागर, रायसेन, नरसिंहपुर, छिंदवाड़ा, सिवनी, बालाघाट, मंडला, डिंडौरी, अनूपपुर, शहडोल, कटनी, पन्ना, टीकमगढ़, रीवा, मऊगंज, सीधी और सिंगरौली में भारी बारिश हो सकती है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। जिला पंचायत परिसर में जबलपुर शहर का पहला दीदी कैफे शुरू होने जा रहा है। यहां महिला स्व सहायता समूह की महिलाएं नाश्ता, भोजन और अन्य घरेलू व्यंजन तैयार कर उपलब्ध कराएंगी। शहडोल जिले में मुख्यमंत्री जन विश्वास अभियान के तहत शुक्रवार को जनपद पंचायत जयसे नगर के ग्राम टेटका और कुआरसरई में जन संवाद कार्यक्रम आयोजित किए गए। नर्मदापुरम जिले में मुख्यमंत्री जन विश्वास अभियान के तहत संभाग आयुक्त श्रीकांत बनोट और आईजी चंद्रशेखर सोलंकी ने कल माखन नगर क्षेत्र में शासकीय संस्थाओं का निरीक्षण कर आमजन और विद्यार्थियों से संवाद किया। इस बुलेटिन में इतना ही। अगला बुलेटिन सुनिए सुबह 7:10 पर। नमस्कार।

0: फसल बीमा योजना से करीब 2,00,000 करोड़ रुपए क्लेम के रूप में किसानों को मिले हैं।
1: मेरा 20 एकड़ जमीन है और गेहूं धान का खेती करता हूं। नुकसान भी हुआ है ना, बोला बारिश हो गया था तो एक साल भी नुकसान हुआ है। पानी असिंचित के कारण, पानी का भी अभाव के कारण में नुकसान हुआ है। DBT के माध्यम से 1,44,767 रुपया हमको मिला है। तुम अपना बीमा का राशि जमा करते जाओ, जैसे मुझे को लाभ हुआ है वैसे आपको भी होगा।
2: खरीफ फसल बीमा के लिए शीघ्र पंजीकरण कराएं।
3: बैंक शाखा, बीमा कंपनी, कृषि ऋण समिति, जन
4: सीवे स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाओं के साथ BSNL लाया है मोबाइल ग्राहकों के लिए 1 रुपए फ्रीडम प्लान का प्यार। फाइबर के साथ तेज रफ्तार के लिए रुपए 1,111 का BSNL फाइबर फ्रीडम प्लान। दूरस्थ ग्रामीण क्षेत्रों में भारत नेट का 259 का प्लान। मनोरंजन के लिए BSNL एंटरटेनमेंट टीवी का साथ, और जहां जमीन का नेटवर्क भी साथ ना दे, BSNL सैटेलाइट फोन सर्विसेज उम्मीद की आवाज बने। जय हिंद, जय भारत।
5: अब पढ़ाई के साथ कमाई भी। मध्य प्रदेश सरकार लाई है मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना। 18 से 29 साल के युवाओं को मिलेगी इंडस्ट्री ट्रेनिंग और हर महीने 8,000 से 10,000 रुपए तक का स्टाइपेंड। हुनर सीखो, पैसा कमाओ और करियर बनाओ एक साथ। रजिस्टर करने का मौका अभी है।
6: mmsky.mp.gov.in पर जाएं। सीखो, कमाओ और लाइफ में कुछ बड़ा करो।
7: क्या आप ग्रो करने के लिए रेडी हैं? क्या आप आगे बढ़ने के लिए रेडी हैं? तो अपने बिजनेस को दीजिए नई बुलंदियां।
8: अप टू 85% LTV के साथ अब मनापुरम आइडियल गोल्ड लोन से फंड्स पाना हुआ आसान।
7: जो लेकर आए हैं 5 करोड़ तक का लोन खास आपके लिए, ताकि आपके बिजनेस को हर कदम पर मिले सहारा।
8: कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़िए, अपने गोल्स तक पहुंचिए। मनापुरम के साथ अपने बिजनेस को आगे बढ़ाइए।
7: मनापुरम फाइनेंस लिमिटेड, मेक लाइफ इजी। टोल फ्री नंबर 1800420223।

0: कम समय में ज्यादा मुनाफा, बस एक क्लिक में, कमाल है।
1: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए, RBI कहता है
2: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
3: क्या आप ग्रो करने के लिए रेडी हैं? क्या आप आगे बढ़ने के लिए रेडी हैं? तो अपने बिजनेस को दीजिए नई बुलंदियां।
4: अप टू 85% LTV के साथ अब मनापुरम IGL गोल्ड लोन से फंड्स पाना हुआ आसान।
3: जो लेकर आए हैं 5 करोड़ तक का लोन खास आपके लिए, ताकि आपके बिजनेस को हर कदम पर मिले सहारा।
4: कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़िए, अपने गोल्स तक पहुंचिए, मनापुरम के साथ अपने बिजनेस को आगे बढ़ाइए।
3: मनापुरम फाइनेंस लिमिटेड, मेक लाइफ इजी। टोल फ्री नंबर 1800420223।

0: क्या आप ग्रो करने के लिए रेडी हैं? क्या आप आगे बढ़ने के लिए रेडी हैं? तो अपने बिजनेस को दीजिए नई बुलंदियां।
1: अप टू 85% LTV के साथ अब मनापुरम IGL गोल्ड लोन से फंड्स पाना हुआ आसान।
0: जो लेकर आए हैं 5 करोड़ तक का लोन खास आपके लिए, ताकि आपके बिजनेस को हर कदम पर मिले सहारा।
1: कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़िए, अपने गोल्स तक पहुँचिए, मनापुरम के साथ अपने बिजनेस को आगे बढ़ाइए।
0: मनापुरम फाइनेंस लिमिटेड, मेक लाइफ इजी। टोल फ्री नंबर 1800420223।

0: खेती किसानी की समसामयिक जानकारियों से भरा कार्यक्रम।
1: इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।
2: प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना।
3: मिले

0: प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना से लघु सीमांत किसानों का भविष्य होगा सुरक्षित
1: और 60 वर्ष की आयु से 3000 रुपए मासिक पेंशन होगी सुनिश्चित।
0: 55 रुपए से 200 रुपए की मासिक किस्त देकर प्रवेश कर सकते हैं 18 से 40 वर्ष तक के किसान।
1: इस अंशदायक योजना में सरकार देगी बराबर का योगदान।
0: सभी किसान भाई बहन इस योजना के लाभ के लिए जन सेवा केंद्र में जाएं
1: और अपना निःशुल्क नामांकन कराएं।
0: प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना।
2: किसान वाणी के सभी श्रोताओं को महेश भैया की राम राम। भैयाओ, आज है 15 अगस्त यानी कि स्वतंत्रता दिवस। सभी दूर झलरमलर रोशनी से इमारतें जगमगा रही हैं, चारों ओर देशभक्ति के गीत की गूंज हो रही है। ऐसे में हमें भी अपने देश अपनी मातृभूमि पे खूब गर्व है और हम तो यही कहें कि मेहनत कश मजदूर मुलाजिम अफसर आला और किसान भारत माँ के राज मुकुट की दुनिया भर में ऊंची शान। विकसित भारत की मंशा है अब हम बन में विश्व गुरु कहवे में जो गौरव लागे फिर हमरो भारत देश महान। वाकई भैया रहो हमरो भारत देश जो है दुनिया भर में महान है और हम यही आशा करें कि भारत देश जल्द विश्व गुरु बने और हमारे देश के लोग देश के किसान खूब तरक्की करें उन्नति करें। हाँ भैयारों, और तरक्की की जब बात आई है तो सुने जा भेड़ वार्ता। आज को विषय है फसलों में सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी, लक्षण एवं समाधान। डॉक्टर रूपेंद्र खांडवे से बातचीत कर रही हैं पूनम सराओगी। अपन सभी मिलकर सुनते हैं जब बातचीत और इनसे फायदा उठाते हैं।
3: फसलों में जस्ता, बोरॉन, आयरन, मैग्नीज जैसे सूक्ष्म तत्वों की कमी से पौधों का विकास रुक जाता है, पत्तियां पीली पड़ जाती हैं और पैदावार भी घट जाती है। इनकी कमी को दूर करने के लिए मिट्टी की जांच करवाना, सही मात्रा में सूक्ष्म तत्वों का दिया जाना आवश्यक होता है और इसके संबंध में ही और जानकारी प्राप्त करने के लिए आज हमने अपने स्टूडियो में आमंत्रित किया है डॉक्टर रूपेंद्र खांडवे को। आप प्रधान वैज्ञानिक के पद पर कार्यरत हैं। आप हमें जानकारी देंगे फसलों में सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी, लक्षण एवं समाधान इस विषय पर। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि सूक्ष्म पोषक तत्व क्या होते हैं और ये मुख्य पोषक तत्वों से कैसे अलग होते हैं।
4: फसलों में वृद्धि विकास के लिए पोषक तत्वों की उपयोगिता होती है। यदि कोई खनिज तत्व पौधों की आंतरिक क्रियाओं और उसके बिना पौधा अपना जीवन चक्र पूरा न कर सके तो खनिज तत्व पौधे के लिए आवश्यक

0: माना जाता है। सामान्यतः यह पौधा किसी विशिष्ट पोषक तत्वों की कमी का संकेत देने वाला लक्षण प्रदर्शित करता है, जिससे उस तत्व को देने से, उसकी आपूर्ति करने से उसको ठीक किया जा सकता है। अब जहाँ तक के सूक्ष्म पोषक तत्व और जो वृहद पोषक तत्व हैं उनमें मतलब क्या अंतर है, तो पौधों के शरीर में पोषक तत्वों की जो पाई जाने की मात्रा रहती है उसके आधार पर हम दो भागों में उनको बांट सकते हैं। तो एक होते हैं जो बहुत कम मात्रा में लगते हैं, इसलिए उनको सूक्ष्म पोषक तत्व कहा जाता है। इस सूक्ष्म पोषक तत्वों में जैसे जिंक है, बोरान है, मॉलिब्डेनम है, लोहा है, मैग्नीज है, तांबा है, क्लोरीन, ऐसे तत्व आते हैं। और कुछ तत्व ऐसे रहते हैं जिनकी मात्रा बहुत प्रचुर मात्रा में पौधों को आवश्यकता पड़ती है, लगती है, तो इनको हम वृहद पोषक तत्व या ये कह लें मैक्रो न्यूट्रिएंट्स कहते हैं। इसमें जैसे वही तत्व हैं जो अभी तक के हम फसलों पे लगातार डालते आ रहे हैं, जैसे नाइट्रोजन है, पोटेशियम है, फास्फोरस है, सल्फर है, कैल्शियम है, मैग्नीशियम तत्व इसमें आते हैं। समय के अनुसार स्थिति बदलती जा रही है, जब हम लगातार फसलों का उत्पादन ले रहे हैं तो उसमें क्या हो रहा है कि जो सूक्ष्म तत्वों की मात्रा मिट्टी में कम होती जा रही है और उसका कहीं ना कहीं प्रभाव हमारी फसलों के उत्पादन पे और उसकी गुणवत्ता पे आ रहा है। तो इसका ये अर्थ नहीं है कि सूक्ष्म पोषक तत्व जो वृहद पोषक तत्व है उससे बहुत उनका महत्व कम है, ये भी अपनी जगह पे इनका बहुत महत्व है और इनकी मात्रा ही वृहद पोषक तत्वों के अवशोषण को भी निर्धारित करती है, निर्भर करती है। सूक्ष्म पोषक तत्वों में जैसे जिंक एक आवश्यक पोषक तत्व है, तो जिंक जो है पौधों में प्रकाश संश्लेषण की जो अभिक्रिया में लगने वाला क्लोरोफिल का निर्माण जिससे होता है उसमें बनाने में ये बहुत भूमिका महत्वपूर्ण है। साथ ही साथ पोषक तत्वों के अवशोषण में, प्रोटीन संश्लेषण में और पौधों को वृद्धि एवं उपज एवं दानों की गुणवत्ता के लिए बनाए रखने के लिए जिंक की बहुत आवश्यकता है। इसी प्रकार जो दूसरा पोषक तत्व है बोरान, तो बोरान भी पौधों में कोशिकाओं की भित्ति एवं जितनी प्रजनन संरचनाएं बनती है उनके निर्माण में एक महत्वपूर्ण घटक है। दलहनी फसलों में मुख्य तौर पे नाइट्रोजन स्थिरीकरण, जड़ों में ग्रंथियां जो नोड्यूलेशन होते हैं उनके लिए बोरान की बहुत आवश्यकता पड़ती है। सूक्ष्म तत्व एक मॉलिब्डेनम होता है जो भी पौधों में नत्रजन को आत्मसात करने के लिए आवश्यक है। यह तत्व फलीदार जितनी भी हमारी फसलें हैं तो उसमें नाइट्रोजन स्थिरीकरण का कार्य करता है और यह पौधों में पत्तियों की वृद्धि और पौधों को रोगों से बचाने के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका मॉलिब्डेनम की पौधों में रहती है। अभी हमारे यहाँ जो है उसमें कॉपर, आयरन, मैग्नीज और क्लोरीन वगैरह की ज्यादा मतलब कमी के ऐसे लक्षण दिखाई नहीं दे रहे, पर ये भी तत्व पौधे के लिए आवश्यक बहुत है। जो श्वसन क्रिया है तो श्वसन क्रिया में क्या होता है, जितना भोज्य पदार्थ बना है उसका ऑक्सीकरण होता है और ऑक्सीकरण से ऊर्जा मिलती है, तो ऊर्जा का जब स्थानांतरण होता है तो इलेक्ट्रॉन के माध्यम से होता है, तो ये जो क्रिया होती है श्वसन क्रिया में इलेक्ट्रॉन स्थानांतरण की, इसमें आयरन का बहुत अहम भूमिका है। सूक्ष्म तत्व मैग्नीज भी पौधों की प्रकाश संश्लेषण की क्रियाओं में दौरान में निकलने वाली जो ऑक्सीजन है
1: जी।
0: तो जो ऑक्सीजन निकलती है उसके लिए जो एंजाइम्स लगते हैं तो उनको बनाने के लिए जो रहता है उसमें मैग्नीज की बहुत आवश्यकता पड़ती है। इसी प्रकार जो कॉपर है सूक्ष्म तत्व, वो भी फसलों के लिए बहुत महत्वपूर्ण एंजाइमों को बनाने का काम करता है, जिनमें एंजाइम्स में जैसे साइटोक्रोम है, एस्कॉर्बिक अम्ल है, तो ये बनाने में जो है बहुत अहम भूमिका है कॉपर की।
1: सर एक और बड़ी ही महत्वपूर्ण बात मेरे जहन में आ रही है, सूक्ष्म तत्वों की कमी के लक्षण फसलों पर, पौधों पर किस प्रकार दिखाई देते हैं और पौधों में किस जगह पर स्पष्ट रूप से हमें दिखाई देते
0: हैं। हाँ, बहुत अच्छा प्रश्न है ये। जैसे बोरान तत्व की कमी से क्या है, नींबू एवं संतरा में नई पत्तियों में नई पत्तियां मुड़ जाती हैं कोने से और कटी फटी नजर आने लगती हैं। इसी प्रकार जो टमाटर की हमारी हम फसल लेते हैं तो उसमें भी नई पत्तियां, वो जो जहां जहां से कोपलें फूटती हैं नई, उसमें सिकुड़न आ जाती है, पत्तियां छोटी छोटी होके एक झुंड के आकार में दिखने लगती हैं, तो जिससे क्या होता है कि फसल हमारा अच्छा उत्पादन नहीं दे पाती। इसी प्रकार बोरान की कमी से क्या होता है, फल वृक्ष जितने रहते हैं तो फल वृक्ष में हम देखते हैं बाजार में भी कई बार हम फल खरीदते हैं तो हमको फल फटे हुए दिखते हैं। तो ये कहीं ना कहीं बोरान की कमी मिट्टी में होती है, जिससे उनकी जो गुणवत्ता है उसमें कमी आती है और बाजार में हमको किसान भाइयों को उसका मूल्य भी बहुत कम मिलता है। इसी प्रकार जो जिंक पोषक तत्वों की कमी, सामान्य तो पौधे में सबसे पहले लंबाई कम होने लगती है, पौधे थोड़े से छोटे होने लगते हैं और बौने होने लगते हैं, तो ये जिंक की कमी का लक्षण है। इसी प्रकार जिंक की कमी से जैसे मक्का के पौधे में हम देखते हैं तो छोटे पौधों में क्या होता है, सफेद कली बनने लगती है, तो उसको सफेद कली का रोग भी कहते हैं। और इसको पहचानने का तरीका यह है, जिंक की अगर कमी है तो हम देखते हैं मक्का के पौधों में जो बीज की पत्तियां, उसकी बीज की पत्तियों में आधार से ऊपर की ओर और जो बीज की लाइन रहती है मुख्य शिरा, तो मुख्य शिरा के दोनों ओर सफेद पट्टी का निर्माण होने लगता है। और साथ ही साथ क्या होता है, घूसर भूरे रंग के, कासे के रंग के ऐसे अनियमित धब्बे बनने लगते हैं, मतलब धब्बे एक से नहीं रहेंगे, कोई अलग अलग आकार के धब्बे बन जाते हैं। तो प्राय यह देखता है पत्तियों के जो धब्बे बनते हैं वो पत्तियों के एकदम बीच में बनते हैं। जैसे अभी धान की फसल भी किसानों के यहाँ लगी हुई है, तो धान की फसल में हम देखते हैं कि कई जगहों पे जिंक की कमी रहती है, तो जिंक की कमी के कारण वहाँ खैरा नाम का रोग आ जाता है। तो ये तत्व है जिनको हम ऐसा पहचान सकते हैं। इसी प्रकार जो मैग्नीज की कमी का लक्षण है, पौधों के नए भागों, जहाँ नए भाग वृद्धि करते हैं वहाँ पे हमको देखने को मिलता है कि वहाँ वृद्धि अच्छे से हो नहीं पाती। मैंगनीज, आयरन और मॉलिब्डेनम, ये सूक्ष्म तत्वों की कमी में मुख्यतः क्या होता है कि पौधा थोड़ा पीला पड़ने लगता है, हरी मानहीता लक्षण दिखाई देने लगते हैं। इससे क्या होता है कि पौधे में क्लोरोफिल का निर्माण नहीं होता है और पौधों में भोज्य पदार्थ अच्छा नहीं बन पाता है।
1: यानी कि सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी से हमें पौधे के रंग रूप और आकार में परिवर्तन
0: बिल्कुल दिखाई देना।
1: जी सर, ये जानना चाहती हूँ मैं आपसे, सूक्ष्म तत्वों की पौधों में कमी के लक्षण दिखाई देने पर हमें इनका समाधान कैसे और किस प्रकार करना चाहिए?
0: सूक्ष्म तत्वों की जो कमी के जब हमको लक्षण दिखाई देते हैं, मिट्टी में जब हम डालते हैं तो क्या होता है, ये आसानी से ऑक्सीकृत हो जाते हैं
1: जी।
0: और ऑक्सीकृत हो जाएंगे या अवक्षेपित हो जाएंगे, तो उससे क्या होता है, ये पौधे की जड़ों के माध्यम से पौधे को मिल नहीं पाते
1: जी।
0: तो जिससे इनका अवशोषण प्रभावी रूप से नहीं हो पाता है। इसलिए सूक्ष्म तत्वों को अगर जब हम पौधों में डालते हैं तो उसकी उपयोगिता बढ़ाने के लिए, उसकी दक्षता बढ़ाने के लिए कि वो पौधे में जाके अच्छे से काम करे, इसके लिए क्या समय के अनुसार चिलेटेड उर्वरकों का निर्माण किया जाए। तो इसमें क्या है, जो चिलेटेड उर्वरक रहते हैं ये बहुत आसानी से पौधों की जड़ों से अवशोषित हो जाते हैं और अवशोषित होने के बाद पौधे के शरीर में बहुत स्वतंत्र रूप से एक जगह से दूसरी जगह उनकी आवक जावक होती है, जिससे वो कार्य बहुत अच्छे से कर पाते हैं। कुछ सामान्य उपयोग किए जाने वाले जो चिलेटेड एजेंट हैं, जैसे कि EDTA आता है, कुछ एमिनो एसिड रहते हैं, अम्ल रहते हैं या कार्बनिक अम्ल है, ये चिलेटेड एजेंट है। इनपे सूक्ष्म तत्वों की बॉन्डिंग करके उसको जोड़ के उसके साथ सूक्ष्म तत्वों का उर्वरक बनाया जाता है। इसमें बनाने से क्या होता है कि इनकी जो मात्रा है हमारे पौधों को बहुत कम मात्रा में हमको देनी पड़ती है, तो बहुत आसानी से कम मात्रा में हम दे सकते हैं और फसलें भी इनको पूरी तरीके से अवशोषित कर लेती हैं और पौधों के शरीर में ये आसानी से गतिशील होके अपने कार्य को बहुत अच्छे से इसका निर्वहन कर पाते हैं।
1: सर, बड़ी ही अच्छी जानकारी आप हमारे श्रोताओं को दे रहे हैं। अब मैं आपसे जानना चाहती हूँ, हमारे प्रदेश में कौन कौन सी फसलों में सूक्ष्म तत्वों की कमी दिखाई देती है और उन्हें किस प्रकार दूर किया जा सकता है?
0: मध्य प्रदेश में जैसे हम बात करें तो किसी भी प्रकार की मृदा हो, उसमें जैसे काली मिट्टी हो, जैसे मालवा वगैरह में कहीं पे बहुत हल्की मिट्टी है, दोमट मिट्टी है, या जलोढ़ वाली मिट्टी है जहाँ पे ज्यादा पानी का वो किया जाता है, तो किसी भी प्रकार की मिट्टी हो, तो ये देखा गया है जिनकी कमी के लक्षण हमको सभी मिट्टियों में दिखाई दे रहे हैं, है ना। अभी जैसे अब हम आने वाले मौसम में रबी की फसल में गेहूं का हम बहुत उत्पादन लेते हैं पूरे मध्य प्रदेश में, तो गेहूं की फसल में जिंक की कमी के लक्षण दिखाई तो नहीं देते पर बहुत मतलब उभर के आते हैं ऐसा, पर क्योंकि मिट्टी में जिंक की कमी है तो अगर उस कमी को हम पूरा नहीं करते हैं तो उससे हमारी जो उत्पादन है हमारा थोड़ा कम होता है। तो इसमें क्या, इसकी कमी को दूर करने के लिए हम आधार खाद के रूप में, जब जैसे हम यूरिया डाल रहे हैं या DAP डाल रहे हैं, उसी समय बोनी के पहले हम जिंक सल्फेट आधार खाद के रूप में पौधों को दे सकते हैं। तो 25 किलो जिंक सल्फेट प्रति हेक्टेयर की दर से हम अगर बोनी के समय में दे देते हैं, तो उससे क्या होता है कि हमारा उत्पादन गेहूं का बहुत अच्छा मिलता है। और हमको जो खास तौर पे जब गर्मी बढ़ने लगती है उस समय थोड़ा गेहूं हरा रहते हुए हमको अच्छा उत्पादन देता है। इसी प्रकार अभी चने की फसल लगेगी, तो चने की फसल में भी जिंक की मात्रा देके उससे हम अच्छी हम फसल प्राप्त करते हैं। तो चने की फसल में हम जिंक सल्फेट से ही उसको दे सकते हैं बोनी के पहले, और उससे हम अच्छा उत्पादन ले सकते हैं। चने की फसल में खास तौर पे कुल आप समझ लीजिए हम लोगों ने प्रयोग किया गया और वो बिल्कुल निष्कर्ष है कि अमोनियम मोलिब्डेनम दायक, जैसे मोलिब्डेनम जो सूक्ष्म

0: पोषक तत्व है। तो अमोनियम मॉलिब्डेनम 1 ग्राम प्रति किलो बीज के हिसाब से हम उसको बीज से उपचारित करके बोते हैं, तो इससे हमको उपज में बहुत अच्छी वृद्धि मिलती है। और खास तौर पे जो जितना नत्रजन स्थिरीकरण का काम है चने की फसल में, तो वो उससे अमोनियम मॉलिब्डेनम से बहुत अच्छा होता है और नत्रजन पौधे को अच्छी उपलब्धता उसकी हो पाती है। सूक्ष्म तत्वों की कमी में उद्यानिकी वाली फसलों में साफ तौर से लक्षण दिखाई देते हैं, जैसे फलदार वृक्षों में बोरान की कमी के लक्षण दिखाई देते हैं। तो हम बोरेक्स 10 ग्राम प्रति वृक्ष हम बोरेक्स जब हम थाला बनाते हैं, हम उसको जैविक खाद दे रहे हैं या ये दे रहे हैं, तो उस समय हम उसको प्रति पौधा 10 ग्राम यदि हम देते हैं जैविक खाद के साथ मिला के, तो हमको बहुत अच्छे उसके परिणाम प्राप्त होते हैं, अच्छे फल प्राप्त होते हैं, गुणवत्ता वाले फल प्राप्त है। जैसे अभी आने वाली एक अमरूद की फसल भी रहेगी हम, तो फूल आने के पहले तो उस समय हम जिंक सल्फेट का 0.5% मतलब 5 ml जो ये है जिंक सल्फेट, उसको 1 लीटर पानी में घोलकर अगर हम पत्तों पे छिड़काव करते हैं तो उससे हमको अच्छे फल प्राप्त होते हैं। नींबू वर्गीय फसलों में भी जिंक सल्फेट का एवं संयुक्त सूक्ष्म पोषक तत्वों का 0.5% 5 ml 1 लीटर पानी में घोलकर छिड़काव करने पर हमको बहुत अच्छी फसल हम प्राप्त कर सकते हैं।
1: अंत में मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, आज के समय में हमारे प्रदेश और देश में सूक्ष्म तत्वों की क्या स्थिति है?
0: देखिए हमारे प्रदेश में जैसे अब जो मध्य प्रदेश है उसमें जितना मालवा का क्षेत्र है, तो मालवा के क्षेत्र में देखेंगे आप कि काली कपासी मिट्टी है, तो इसको देख के ऐसा लगता है कि इसमें कोई भी तत्वों की कमी नहीं है, पर वहाँ पे भी सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी के लक्षण हमको दिखाई देते हैं, तो हमको उन चीजों का उपयोग करना चाहिए। तो इस प्रकार की जो मिट्टी है काली मिट्टी, उसमें 6-7 फीट गहराई के बाद क्या चट्टाने हैं या ग्रेवल्स हैं, तो उसमें क्या होता है कि नीचे पत्थर या वो होने के कारण वहाँ पोषक तत्वों की कमी हमको दिखती है। इसी प्रकार जिंक की कमी हमारे प्रदेश में एवं देश की कोई भी मृदा हो, उसमें किसी भी प्रकार की मृदा, उसमें कहीं बिल्कुल निश्चित रूप से जिंक की कमी के लक्षण आ रहे हैं, और जिंक की उसमें वहाँ आधार खाद के रूप में अनुशंसा जरूरी है। इसी प्रकार मध्य प्रदेश में पोटाश एवं सल्फर जो वृहद पोषक तत्व हैं, इनकी भी कमी के लक्षण हमें दिखाई देते हैं। इन तत्वों के हम उर्वरक डाल के हम इसको सुधार सकते हैं।
1: सर बड़ी अच्छी जानकारी आपने हमारे श्रोताओं को दी। तो ये थे डॉक्टर उपेंद्र खांडे, आप हमें जानकारी दे रहे थे सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी लक्षण एवं समाधान इस विषय पर। डॉक्टर साहब आप हमारे स्टूडियो में आए, आपने बढ़िया जानकारी हमारे किसान श्रोताओं को दी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: धन्यवाद।
2: देखो भैया बहनों, सावन को महीना चल रहा है, चारों ओर हरियाली सुई है, खेत लहला रहा है, बारिश खूब हो रही है, ऐसे में अपने पारंपरिक लोक गीतन की छटा तो न्यारी सुई लगत है। तो अब देर न करत भय सुने जब प्यारी सी कजरी दिनेश सिंह से।

0: केमिकल्स जो हैं बाजार में उपलब्ध है, जैसे कि डेल्टा मेथ्रिन हुआ या फिर मेलाथियान का पाउडर हुआ, उसका उपयोग हम कर सकते हैं। और अंतः परजीवियों के लिए कुछ दवाइयाँ जैसे कि एल्बेंडाजोल या फेनबेंडाजोल, इनका उपयोग हम कर सकते हैं। ये हुआ कृमिनाशन। दूसरा है टीकाकरण। टीकाकरण पशुओं को संक्रमित रोगों से बचाने के लिए एक बहुत ही कारगर उपाय है। तो इसके लिए ज़रूरी है कि बारिश के मौसम के पहले पशुओं का टीकाकरण हो जाना चाहिए। पर अगर किसी पशुपालक ने अब तक टीकाकरण नहीं करवाया है तो वे अब भी करवा सकते हैं। और वे कौन से रोग हैं जिनके लिए टीकाकरण करवाना है? तो उनमें है खुरपका मुंहपका रोग, गलघोटू एवं लंगड़ी बुखार। जो खुरपका मुंहपका रोग है, इसका टीकाकरण साल में 2 बार होता है। बाकी गलघोटू और लंगड़ी बुखार, इन रोगों का साल में 1 बार होता है टीकाकरण, जो आपको बारिश के पूर्व लगवा लेना चाहिए। दूसरा चीज है पोषण प्रबंधन। चूंकि बारिश का मौसम है और हरा चारा अधिक मात्रा में उपलब्ध है, तो अगर हम पशुओं को हरा चारा खिलाते हैं तो हमें ध्यान रखना है कि हरे चारे के साथ में हमें संतुलित मात्रा में सूखा चारा भी दिया जाना चाहिए, क्योंकि ज़्यादा अधिक हरा चारा खाने से पशुओं में अफरा रोग का होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। इसके अलावा मिनरल मिक्सचर, जिसमें मिनरल मिक्सचर का जो संतुलित दाने में जो हमको देना है, वो भी हमें प्रतिदिन 50 ग्राम प्रति पशु को दिया जाना चाहिए। साथ ही अब आप जब पानी पिलाते हैं पशुओं को तो स्वच्छ पानी दें, बाहर किसी तालाब नदी का पानी न पीने दें। ये हुआ पोषण संबंधी सलाह। अब तीसरी महत्वपूर्ण सलाह है आवास संबंधी, कि पशुओं का आवास सूखा, स्वच्छ एवं हवादार हो, और जिसमें गोबर या कीचड़ आदि अगर होता है पशुशाला में तो उसकी समय समय पर सफाई होती रहे, और पशुओं की पशुशाला को हमें सूखा बनाए रखना है, और जल निकासी की व्यवस्था समुचित हो, ताकि जो पशु अगर पेशाब कर रहा है तो उसका भी निकासी अच्छे से हो सके और पशुशाला सूखी रहे। अब पशुशाला के फर्श की बात करें तो पशुशाला का फर्श, पशु मालिकों के पास कंक्रीट फर्श होता है, कुछ के पास मिट्टी का होता है। तो अगर कंक्रीट फ्लोर आप बनाते हैं तो उसमें आपको विशेष ध्यान देना है कि उसमें एक ढलान रखे, और ढलान का जो अनुपात है 1:40 में होना चाहिए, ताकि जो भी पेशाब या जो भी पानी है वो नीचे ढाल की तरफ बहकर आए और पशुशाला सूखी बनी रहे।
1: और भैयारों, अब है आप हरों से विदा लेवे की बिरिया मनोहा। इससे पहल हम किसान भैयारों को आगाह कर देते हैं कि भैयारों देखो, बारिश को मौसम है, अगर पानी नहीं गिर रहा है आपके इतने, तो आप खरीफ फसलों में नींदा नियंत्रण पे जरूर ध्यान रखे। कैसे कि जैसे ही बारिश रुकत है तो नींदा बहुत ज्यादा हो जाते हैं, तो उनकी रोकथाम जरूर करें। और हाँ, यदि कीट व्याधि हो रही है तो कीट व्याधि को रोकवे के लाने जैविक उपाय जरूर अपनाएं।
2: अरे अरे अरे, क्या कर रहा है? इधर इधर इधर, हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का।
3: पुतला बोल रहे?
2: पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं, पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं?
3: मतलब?
2: देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है, और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? अरे पहले ऐसा नहीं था, पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से कैसे फसल लहलहाती थी, शुद्धता झलकती थी। हाँ, माटी भी तंदुरुस्त और लोग। अरे अब पहली वाली बात कहाँ,
3: पर हम तो सब ही डाले हैं।
2: सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं, पर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं।
3: सच है?
2: रे बेटे, एक्सपीरियंस से बता रहे हैं, धूप में बाल सफेद नहीं किए हैं।
3: ठीक है भाई, मैं भी आज तक जैविक खेती शुरू करूंगा।
4: माटी से प्रेम की परंपरा है परंपरागत खेती।
5: इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।
1: तो जो हो तो आज को किसान वाणी कार्यक्रम, अब महेश भैया को दे आज्ञा, सभी जनों को राम राम।
6: आप सुन रहे थे कार्यक्रम किसान वाणी।

0: किसान साथियों के लिए कार्यक्रम किसान वाणी का प्रसारण अभी किया जा रहा था। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। कुछ ही पलों में आकाशवाणी दिल्ली से आप सुनेंगे इस सप्ताह संसद में।
1: ये आकाशवाणी है। अब आप वैष्णवी से संसद में हुई इस सप्ताह के कार्यवाही की समीक्षा सुनिए। लेखक हैं पीटीआई भाषा के अविनाश। संसद के मॉनसून सत्र का ये चौथा और अंतिम सप्ताह था। इस सप्ताह भी दोनों सदनों में विपक्षी सदस्यों ने नीट प्रश्न पत्र लीक के खिलाफ प्रदर्शन करने वाले छात्रों पर पुलिस कार्रवाई तथा अयोध्या के राम मंदिर चढ़ावा चोरी जैसे मुद्दों को लेकर भारी हंगामा किया। सप्ताह के पहले दिन यानी सोमवार को लोकसभा में विपक्षी सदस्यों ने इन मुद्दों पर गृहमंत्री अमित शाह के बयान की मांग को लेकर हंगामा किया। सदन की कार्यवाही 11 बजे शुरू होते ही विपक्ष के सदस्य हंगामा करने लगे। हंगामे के कारण बैठक एक मिनट के अंदर ही दोपहर 12 बजे तक स्थगित कर दी गई। सदन की कार्यवाही फिर आरंभ होने पर भी विपक्षी सदस्यों की नारेबाजी जारी रही। हंगामे के बीच ही विधि एवं न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने न्यायाधिकरण सुधार विधेयक 2026 और कोयला एवं खान मंत्री जी किशन रेड्डी ने खान एवं खनिज विकास एवं विनियमन संशोधन विधेयक 2026 पेश किए। गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने केरल नाम परिवर्तन विधेयक 2026 और सहकारिता राज्य मंत्री मुरलीधर मोहोल ने राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम संशोधन विधेयक 2026 पेश किए। सदन की बैठक दो बार के स्थगन के बाद जब दोपहर 2 बजे शुरू हुई तो संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि सरकार छात्रों के मुद्दे पर सदन में चर्चा के लिए तैयार है और गृह मंत्री अमित शाह विस्तार से जवाब देने को भी तैयार है। इस बीच विधि एवं न्याय मंत्री मेघवाल ने न्यायाधिकरण सुधार विधेयक 2026 को चर्चा एवं पारित करने के लिए पेश किया। उन्होंने कहा कि विधेयक न्यायाधिकरणों के अधिकार क्षेत्र बदलने का विधेयक नहीं है। विधेयक का प्रमुख उद्देश्य विभिन्न न्यायाधिकरणों के अध्यक्षों और सदस्यों की नियुक्ति के लिए दक्षता बढ़ाने के साथ स्वतंत्रता, पारदर्शिता और पात्रता संबंधी मानदंडों में एकरूपता सुनिश्चित करना है। सदन ने विपक्ष के हंगामे के बीच ही विधेयक को बिना चर्चा के ध्वनिमत से पारित कर दिया। इसके बाद बैठक दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। उधर राज्यसभा की सुबह 11 बजे बैठक शुरू होने और सरकारी दस्तावेज सदन के पटल पर रखे जाने के बाद विपक्षी सदस्यों ने हंगामा शुरू कर दिया। हंगामे के कारण सभापति सीपी राधाकृष्णन ने करीब 11:20 पर बैठक दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। दोपहर 12 बजे जब प्रश्नकाल के लिए सदन की कार्यवाही शुरू हुई तब भी सदन में वही नजारा दिखा और कार्यवाही 2 बजे तक स्थगित कर दी गई। 2 बजे बैठक शुरू होने पर उपसभापति हरिवंश ने बैंकर्स बुक्स एविडेंस विधेयक 2026 को सदन में चर्चा और पारित करने के उद्देश्य से पेश करने के लिए कहा, लेकिन विपक्षी सदस्यों ने अपनी मांग दोहराते हुए हंगामा जारी रखा। सदन में व्यवस्था न बनते देख हरिवंश ने बैठक को 15 मिनट तक के लिए स्थगित कर दिया। 15 मिनट बाद बैठक फिर शुरू होने पर सदन में बैंकर्स बुक्स एविडेंस विधेयक और कराधान एवं अन्य विधियां संशोधन विधेयक 2026 को लिया गया। बैंकर्स बुक्स एविडेंस विधेयक 2026 का उद्देश्य अदालतों में डिजिटल और इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग रिकॉर्ड को साक्ष्य के रूप में स्वीकार करने की प्रक्रिया को आधुनिक तथा स्पष्ट बनाना है। राज्यसभा ने संक्षिप्त चर्चा के बाद इस विधेयक को ध्वनिमत से पारित कर दिया। लोकसभा इसे पहले ही पारित कर चुकी है। विधेयक पर चर्चा के दौरान विपक्षी दलों के सदस्यों ने कुछ देर नारेबाजी करने के बाद विरोध जताते हुए सदन से बहिर्गमन किया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने विधेयक पर हुई चर्चा का जवाब देते हुए कहा कि इस विधेयक के माध्यम से बैंकों को प्रतिस्पर्धी बनाने में मदद मिलेगी, साथ ही अदालती मामलों में बैंक के पक्ष को मजबूती से रखा जा सकेगा। इससे पहले विधेयक पर चर्चा के दौरान कई सदस्यों ने बैंक ग्राहकों के साथ बढ़ते साइबर अपराध को लेकर चिंता व्यक्त की। इस विधेयक के पारित होने के बाद सदन में कराधान एवं अन्य विधियां संशोधन विधेयक 2026 पर चर्चा हुई, जिसका उद्देश्य उस मौजूदा कानूनी प्रावधान को हटाना है जो बैंकों और भुगतान सेवा प्रदाताओं को अधिसूचित इलेक्ट्रॉनिक भुगतान तरीकों पर मर्चेंट डिस्काउंट रेट यानी MDR लागू करने से रोकता है। चर्चा का जवाब देते हुए वित्त मंत्री ने कहा कि विधेयक में भारत को विशेष रूप से इलेक्ट्रॉनिक क्षेत्र में विनिर्माण केंद्र के रूप में मजबूत करने और वैश्विक कंपनियों को उपकरण पूर्जे

तथा सामग्री लाने के लिए प्रोत्साहित करने का उद्देश्य निहित है। मंत्री के जवाब के बाद कराधान एवं अन्य विधेयक संशोधन विधेयक 2026 को ध्वनिमत से लोकसभा को लौटा दिया गया। तत्पश्चात विशेष उल्लेख के जरिए सदस्यों ने लोक महत्व से जुड़े अपने अपने मुद्दे उठाए। मंगलवार को लोकसभा की कार्यवाही 11 बजे शुरू होते ही विपक्षी दलों के सदस्य हंगामा करने लगे। हंगामा देखते ही अध्यक्ष ओम बिड़ला ने कुछ देर बाद ही बैठक दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। एक बार के स्थगन के बाद 2 बजे सदन की बैठक शुरू हुई तो गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने केरल नाम परिवर्तन विधेयक 2026 चर्चा एवं पारित करने के लिए पेश किया। उन्होंने कहा कि केरल की 15वीं विधानसभा ने 14 जून 2024 को संकल्प पारित कर केंद्र सरकार से अपील की थी कि संविधान के अनुच्छेद 3 के अनुसार राज्य का नाम बदलकर केरलम करने के लिए तत्काल कदम उठाया जाए। इस दौरान शोरगुल जारी रहा और हंगामे के बीच ही सदन ने ध्वनिमत से विधेयक को पारित कर दिया। इसके बाद सहकारिता राज्य मंत्री मुरलीधर मोहोल ने राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम संशोधन विधेयक 2026 को चर्चा एवं पारित करने के लिए पेश किया। सदन ने इस विधेयक को भी चर्चा के बिना ध्वनिमत से पारित कर दिया। इसके बाद सदन की कार्यवाही दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। उधर राज्यसभा की बैठक सुबह 11 बजे शुरू होने पर विपक्षी सदस्यों का हंगामा शुरू हो गया और सभापति ने सदन की कार्यवाही दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। जब 12 बजे सदन की कार्यवाही दोबारा शुरू हुई तो सदन में वही नजारा दिखा और सभापति ने सदन की कार्यवाही दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। 2 बजे सदन की बैठक शुरू होने पर विधि एवं न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने न्यायाधिकरण सुधार विधेयक 2026 को चर्चा एवं पारित करने के लिए पेश किया। इस दौरान विपक्षी सदस्यों का हंगामा जारी रहा। वहीं कुछ देर बाद विपक्ष के कई दलों के सदस्यों ने सदन से बहिर्गमन किया। सदन ने चर्चा के बाद इस विधेयक को मंजूरी प्रदान कर दी और विपक्ष द्वारा पेश संशोधनों को ध्वनिमत से खारिज कर दिया। लोकसभा इस विधेयक को पहले ही पारित कर चुकी है। इस विधेयक में विभिन्न न्यायाधिकरणों के अध्यक्षों और सदस्यों के चयन के लिए आयोग गठित करने का प्रावधान है। राज्यसभा ने न्यायाधिकरण सुधार विधेयक 2026 पर हुई चर्चा का विधि एवं न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल द्वारा जवाब दिए जाने के बाद विधेयक को ध्वनिमत से पारित कर दिया। विधेयक पर चर्चा का जवाब देते हुए कानून मंत्री मेघवाल ने कहा कि ये विधेयक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश में चल रही सुधार एक्सप्रेस का हिस्सा है। इसके बाद उच्च सदन में विशेष उल्लेख लिया गया जिसमें कई सदस्यों ने लोक महत्व से जुड़े विभिन्न मुद्दे उठाए। शाम 4:30 पर उच्च सदन की बैठक को दिन भर के लिए स्थगित कर दिया गया। बुधवार को लोकसभा की कार्यवाही सुबह 11 बजे शुरू होने पर विपक्षी सदस्यों का हंगामा जारी रहा और कुछ मिनट के भीतर ही बैठक दोपहर 2 बजे तक स्थगित कर दी गई। इससे पहले लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला ने हंगामा कर रहे विपक्षी सदस्यों से सदन की कार्यवाही और प्रश्नकाल चलाने में सहयोग का आग्रह करते हुए कहा, नीतियों और विचारों में मतभेद हो सकते हैं लेकिन देश सदन चलते हुए देखना चाहता है। 2 बजे बैठक पुनः शुरू हुई तो गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने विदेशी अंशदान विनियमन संशोधन FCRA विधेयक 2026 को संसद की संयुक्त समिति के पास भेजने का प्रस्ताव रखा। कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और द्रमुक ने विधेयक को अल्पसंख्यकों के खिलाफ करार देते हुए इसे वापस लेने की मांग की। सरकार ने विपक्ष के आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि इस विधेयक में एक भी प्रावधान अल्पसंख्यकों के खिलाफ नहीं है तथा ये सिर्फ देश की सुरक्षा से जुड़ा हुआ है। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने विधेयक को अल्पसंख्यकों के खिलाफ बताया। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि कांग्रेस और कई विपक्षी दलों ने खुद मांग की थी कि विधेयक को संयुक्त समिति को भेजा जाए और अब जब इसे भेजा जा रहा है तो इस पर आपत्ति क्यों है। इसके बाद सदन ने विपक्षी सदस्यों के हंगामे के बीच विधेयक को संयुक्त समिति को भेजने के प्रस्ताव को ध्वनिमत से मंजूरी दी। नियम के अनुसार इस संयुक्त समिति में 31 सदस्य होंगे जिनमें लोकसभा से 21 और राज्यसभा से 10 सदस्य शामिल होंगे। प्रस्ताव में कहा गया है कि समिति वर्ष 2026 के शीत

चर्चा एवं पारित करने के लिए पेश किया। हंगामे के बीच सदन ने बिना चर्चा के विधेयक को ध्वनिमत से पारित कर दिया। इसके बाद सदन की कार्यवाही 3:15 पर दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। इस बीच इलाहाबाद उच्च न्यायालय के न्यायाधीश यशवंत वर्मा के खिलाफ लगाए गए आरोपों की जांच करने वाली समिति की रिपोर्ट लोकसभा में पेश की गई। न्यायमूर्ति वर्मा के आधिकारिक आवास से कथित तौर पर नोटों की अधजली गड्डियां मिलने के मामले में उन्हें पद से हटाने की कार्यवाही शुरू की गई थी। लोकसभा महासचिव उत्पल कुमार सिंह ने जांच समिति की 2 खंडों वाली रिपोर्ट लोकसभा के पटल पर रखी। उधर राज्यसभा की बैठक शुरू होने पर विपक्ष का हंगामा जारी रहा। हंगामे के बीच ही माकपा सदस्य जॉन ब्रिटास ने कहा कि भाजपा की एक सदस्य ने उन्हें कथित तौर पर लुंगी वाला कहकर निशाना बनाया। विपक्षी सदस्यों ने ब्रिटास का समर्थन किया। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने सभापति से अनुरोध किया कि वे संबद्ध सदस्यों को अपने कक्ष में बुलाएं और उनकी बात सुनकर समाधान निकालें। सभापति राधाकृष्णन ने कृत सदस्यों को टिप्पणियां करते समय ये बात ध्यान में रखना चाहिए कि किसी की भावनाएं आहत ना हो। सभापति ने कहा कि वे संबंधित सांसदों को अपने कक्ष में बुलाकर इस मामले पर चर्चा करेंगे। सदन में हंगामा देखते हुए सभापति ने सदन की कार्यवाही दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। सदन की कार्यवाही दोपहर 2 बजे शुरू होने पर भाजपा सदस्य सुष्मिता देव ने अपना पक्ष रखा। सुष्मिता देव ने कहा कि उन्होंने किसी राज्य की वेशभूषा पर कोई टिप्पणी नहीं की और राज्यसभा से ऐसा कोई संदेश नहीं जाना चाहिए जिससे भारत को सांस्कृतिक या धार्मिक आधार पर बांटने की भावना पैदा हो। इसके बाद कांग्रेस सहित कई विपक्षी दलों के सदस्य विभिन्न मुद्दों पर विरोध जताते हुए सदन से बहिर्गमन कर गए। उसके बाद सदन ने राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम संशोधन विधेयक 2026 को चर्चा के बाद मंजूरी दे दी, जिसमें राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम NCDC के अधिकार क्षेत्र का विस्तार करने का प्रावधान है। राज्यसभा ने विधेयक पर हुई चर्चा का सहकारिता राज्य मंत्री मुरलीधर मोहोल के जवाब के बाद इसे ध्वनिमत से पारित कर दिया। लोकसभा इसे पहले ही पारित कर चुकी है। उच्च सदन ने विधेयक पर विपक्ष द्वारा पेश संशोधनों को खारिज कर दिया। इस विधेयक के पारित होने के बाद उच्च सदन ने केरल नाम परिवर्तन विधेयक 2026 को चर्चा के बाद ध्वनिमत से पारित कर दिया। लोकसभा इसे पहले ही पारित कर चुकी है। बृहस्पतिवार को दोनों सदनों की बैठक अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी गई। मानसून सत्र के आखिरी दिन लोकसभा की कार्यवाही 11 बजे आरंभ होने पर अध्यक्ष ने आसन पर बैठते ही सदस्यों से राष्ट्रगीत वंदे मातरम के सम्मान में खड़े होने के लिए कहा। हालांकि सामान्यतः सत्र समाप्ति के मौके पर वंदे मातरम से पहले वे अपने पारंपरिक संबोधन में उस सत्र की कार्य उत्पादकता, उसमें पारित विधेयक को पूछे गए प्रश्नों आदि का उल्लेख करते हैं। वंदे मातरम की सभी 6 अंतरों के गायन के रिकॉर्डिंग के बाद उन्होंने सदन की बैठक अनिश्चितकाल के लिए स्थगित करने की घोषणा की। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और कई अन्य दलों के प्रमुख नेता तथा सदस्य सदन में मौजूद थे। उधर राज्यसभा भी बृहस्पतिवार को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी गई। ये राज्यसभा का 271वां सत्र था। सुबह 11 बजे सदन की बैठक शुरू होने पर विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने आरोप लगाया कि भारतीय जनता पार्टी से संबद्ध लोगों ने उत्तराखंड के हल्द्वानी में रामलीला मैदान के उस मंच का शुद्धिकरण किया जहां उन्होंने भाषण दिया था। श्री खड़गे ने मांग की कि मंच का शुद्धिकरण करने वाले के खिलाफ अस्पृश्यता अधिनियम के अंतर्गत मामला दर्ज कर उन्हें गिरफ्तार कर जेल भेजा जाना चाहिए। सभापति राधाकृष्णन तथा सदन के नेता JP नड्डा ने इस घटना की निंदा की। सदन के नेता ने कहा कि पूरे मामले की जांच की जाएगी और जो भी दोषी पाया जाएगा उस पर कार्रवाई होगी। इसके बाद सदन में खान एवं खनिज विकास एवं विनियमन संशोधन विधेयक 2026 पर चर्चा हुई और इसे ध्वनिमत से पारित कर दिया गया। तत्पश्चात बैठक को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया गया। कोयला एवं खान मंत्री जी किशन रेड्डी ने विपक्षी सदस्यों के हंगामे के बीच विधेयक को सदन में चर्चा एवं पारित करने के लिए पेश किया। विधेयक पर हुई संक्षिप्त चर्चा का जवाब देते हुए खान मंत्री रेड्डी ने कहा कि प्रस्तावित कानून का उद्देश्य राज्यों की स्वायत्तता या उनके राजस्व अधिकारों में हस्तक्षेप करना नहीं बल्कि पूरे देश में खनिजों की दरों में एकरूपता सुनिश्चित करना है। रेड्डी ने कहा कि केंद्र सरकार कोयला, चूना पत्थर, लौह अयस्क, तांबा और मैंगनीज जैसे प्रमुख खनिजों को विनियमित करना चाहती है जबकि 49 गौण खनिजों के मामलों में राज्यों के अधिकार बरकरार रखेंगे। चर्चा के दौरान कुछ सदस्यों ने विधेयक का विरोध करते हुए आरोप लगाया कि सरकार राज्यों के अधिकारों का हनन कर रही है।
सदन ने विधेयक को राज्यसभा की प्रवर समिति के पास भेजने के लिए द्रमुक सदस्य तिरुचि शिवा और कुछ अन्य विपक्षी

0: सदस्यों द्वारा पेश संशोधन को विध्वनि मत से खारिज कर दिया। सदन की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित करने से पहले सभापति ने सदस्यों से सदन की गरिमा बनाए रखने का आग्रह किया। उन्होंने बताया कि 20 जुलाई से शुरू हुए मॉनसून सत्र के दौरान राज्यसभा की उत्पादकता महज 39.17% रही। हालांकि विधानों के बीच सदन ने 12 विधेयकों पर विचार किया और उन्हें पारित या वापस किया। अभी आप संसद में हुई सप्ताह की कार्यवाही की समीक्षा सुन रहे थे।
1: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। रात्रि के 8:15 हुए हैं। आइए अब सुनते हैं स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर मोतीलाल नेहरू स्टेडियम भोपाल में आयोजित मुख्य समारोह की रेडियो रिपोर्ट। वाचन स्वर पुरुषोत्तम श्रीवास का है, प्रस्तुतकर्ता है मनीष गजभिये और तकनीकी सहयोग दिया है कृष्ण कुमार सिंह, किशन गुप्ता और रेणु टोपो ने।

देश की हृदय स्थली और मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में भी 80वां स्वतंत्रता दिवस समारोह अत्यंत हर्षोल्लास और देशभक्ति के जज्बे के साथ मनाया गया। अनगिनत स्वतंत्रता सेनानियों और वीर रणबांकुरों के त्याग और बलिदान के फलस्वरूप आज ही के दिन वर्ष 1947 में हमने स्वतंत्र भारत के निर्माण की जो स्वर्णिम इबारत लिखी थी, उसकी गरिमामय स्मृति आज भी हमारे भीतर देश प्रेम की भावना को जागृत करते हुए हमें उल्लास, उमंग और नव चेतना से भर देती है। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर भोपाल की फिजाओं में भी देशभक्ति का रंग दिखाई दिया। हर ओर तिरंगा शान से लहराता नजर आया। हर घर तिरंगा अभियान ने इस राष्ट्रीय पर्व की गरिमा को और भी बढ़ा दिया। भोपालवासियों ने अपने घरों, प्रतिष्ठानों और शहर के विभिन्न प्रमुख स्थलों पर तिरंगा फहराकर राष्ट्र के प्रति अपनी निष्ठा और सम्मान को व्यक्त किया। विभिन्न शासकीय कार्यालयों में भी तिरंगा अपनी पूरी आन बान और शान के साथ लहरा रहा था। आसमान में लहराता तिरंगा केवल हमारी स्वतंत्रता का प्रतीक नहीं, बल्कि हमारी एकता, अखंडता और संप्रभुता का गौरवगान है। उल्लास और उमंग से सराबोर इस माहौल की चरम अभिव्यक्ति भोपाल के लाल परेड मैदान में देखने को मिली, जहां स्वाधीनता दिवस का राज्य स्तरीय समारोह पूरे गौरव, गरिमा और भव्यता के साथ आयोजित किया गया। सुबह से ही हल्की ठंडी बयार और सुहावने मौसम ने पूरे वातावरण को खुशनुमा बना दिया था। इस राष्ट्रीय पर्व के उल्लास में सहभागी बनने के लिए शासन के अधिकारियों और कर्मचारियों के साथ साथ शहर के प्रबुद्धजन, बुद्धिजीवी, महिलाएं, युवा और बच्चे भी बड़ी संख्या में समारोह स्थल पर उपस्थित रहे। विभिन्न वर्गों की इस उत्साहपूर्ण भागीदारी ने समारोह की भव्यता और गरिमा में चार चांद लगा दिए। प्रत्येक नागरिक, हर देशवासी आज देशभक्ति और राष्ट्र प्रेम के रंग में डूबा हुआ नजर आ रहा था। स्वाधीनता दिवस समारोह की शुरुआत हुई लाल परेड मैदान में परेड की टुकड़ियों के आगमन से।

0: सुबह ठीक 8:59 पर कार्यक्रम के मुख्य अतिथि महोदय मध्य प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का आगमन हुआ। तत्पश्चात राष्ट्रगीत का गायन किया गया। उसके बाद माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव द्वारा यथासमय राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा उन्मुक्त आकाश में फहराया गया और वातावरण में गूंज उठी राष्ट्रगान की धुन। तत्पश्चात उन्मुक्त आकाश में तिरंगे से मेल खाते 3 रंग के गुब्बारे छोड़े गए। ध्वजारोहण के पश्चात मुख्य अतिथि द्वारा परेड की सलामी ली गई। आज के परेड कमांडर थे आदित्य सिंघारिया।
1: स्वतंत्रता दिवस परेड आपके निरीक्षण के लिए तैयार है श्रीमान।
2: आदरणीय मुख्य अतिथि महोदय, सभी प्लाटून की ओर अग्रसर होते हुए महाराष्ट्र राज्य पुलिस का प्लाटून का नेतृत्व कर रहे हैं उप निरीक्षक श्री अजय वाल्मीकि।
0: और फिर हुआ हर्ष फायर। और अब बारी थी भव्य मार्च पास्ट की। इस मार्च पास्ट में शामिल थीं कुल 22 टुकड़ियां, जिसमें हॉक फोर्स और अश्वारोही दल ने सबका ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया।
2: स्वतंत्रता दिवस की गौरवशाली परेड मंच की ओर अग्रसर होती हुई परेड कमांडर SDOP श्री आदित्य सिंघारिया और परेड 2IC नगर पुलिस अधीक्षक श्री हेमंत कुमार के नेतृत्व में माननीय मुख्य अतिथि महोदय के ठीक सामने।
0: मार्च पास्ट के उपरांत स्वाधीनता दिवस की शुभकामनाओं के साथ माननीय मुख्यमंत्री महोदय का प्रदेशवासियों के नाम संदेश आरंभ हुआ। सर्वप्रथम देश की आजादी में अपनी आहुति देने वाले वीर शहीदों की शहादत को याद करते हुए आपने कहा,
3: प्रिय प्रदेशवासियों, स्वतंत्रता दिवस के शुभ अवसर पर आप सभी को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। मैं प्रदेश के 8.5 करोड़ नागरिकों की ओर से आज़ादी के सभी जननायकों और स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के चरणों में कोटि कोटि वंदन करता हूँ। स्वाधीनता के इस संग्राम में रानी दुर्गावती, रानी अवंतीबाई लोधी, महाराजा छत्रसाल, टंट्या मामा भील से लेकर चंद्रशेखर आजाद तक मध्यप्रदेश के अनगिनत वीर सपूतों ने अपनी अपनी आहुतियां दी है। कृतज्ञ मध्य प्रदेश आज उन सभी को श्रद्धा पूर्वक नमन करता है।
0: उन्होंने मध्य प्रदेश वासियों की ओर से पुलिस और हॉक फोर्स के उन वीर जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा,
4: मैं मध्य प्रदेश वासियों की ओर से पुलिस और हॉक फोर्स के उन वीर जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ जो आंतरिक सुरक्षा के मोर्चे पर असीम शौर्य का परिचय देते हुए वीर गति को प्राप्त हुए। ऐसे ही जाबाजों की बदौलत नक्सल मुक्त प्रदेश बनाने की ऐतिहासिक उपलब्धियां हासिल हुई।
0: ब्रिक्स देशों के संस्कृति मंत्रियों की बैठक का उल्लेख करते हुए आपने कहा,
3: वसुदेव कुटुम्बकम भारतीय संस्कृति का मूल है। यह हर्ष का विषय है कि जून 2026 में ब्रिक्स देशों के कृषि मंत्रियों एवं कृषि कार्य समूह तथा अगस्त 2026 में ब्रिक्स देशों के संस्कृति मंत्रियों और ब्रिक्स कार्य संस्कृति के समूह की बैठक का आयोजन मध्य प्रदेश को प्राप्त हुआ। इन आयोजनों ने न केवल मध्य प्रदेश को दुनिया के मानचित्र पर नई चमक दी बल्कि वैश्विक शांति और साझी संस्कृति का एक मजबूत रोड मैप प्रस्तुत किया है। लोक का तंत्र पर ही भरोसा सुशासन की पहली सीढ़ी है।
0: मध्य प्रदेश सरकार के जन विश्वास अभियान का उल्लेख करते हुए आपने बताया,
3: जन कल्याण यदि साध्य है तो जन विश्वास और जन संवाद उसके साधन। इसी लक्ष्य के साथ सरकार ने 7 अगस्त 2026 से मुख्यमंत्री जन विश्वास अभियान प्रारंभ किया है। जन विश्वास अभियान का लक्ष्य स्पष्ट है, ना देरी ना दूरी, समाधान से उत्थान के पवित्र भाव के साथ। इस अभियान का प्रथम चरण 8 जनवरी 2027 तक संचालित किया जाएगा।
0: प्रदेश के किसानों को संबोधित करते हुए माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने कहा,
3: किसानों के खेत सरकार के लिए देव स्थल है और खेत से उपजा एक एक दाना प्रसाद के समान है। वर्ष 2026 को हम किसान कल्याण वर्ष के रूप में मना रहे हैं। सभी जिलों में बलराम कृषि महोत्सव आयोजित कर किसानों की मेहनत और समर्पण को सम्मानित किया जा रहा है। प्रदेश के इतिहास में पहली बार शासकीय योजनाओं के लिए कृषि भूमि का भू अर्जन करने पर किसानों को चार गुना मुआवजा देने का किसान हितैषी निर्णय हमारी सरकार द्वारा लागू किया गया है। हमारी सरकार ने किसानों को आर्थिक सुरक्षा देने के उद्देश्य से नई कवच योजना शुरू की। ऐसी समितियां जिनकी जांच लंबित है परंतु उनके किसान भाइयों का उसमें कोई दोष नहीं, उनको नियमित किया जाकर योजनाओं का लाभ दिलाया जाएगा। किसान कल्याण वर्ष के दौरान सरकार ने प्रदेश के हर किसान को खाद बीज की उपलब्धता, पर्याप्त बिजली, हर खेत और को सिंचाई का पानी, न्यूनतम समर्थन मूल्य पर फसलों का उपार्जन, चिन्हित फसलों में भावांतर की राशि का भुगतान, खेती पर संकट आने की स्थिति में बीमा और राहत राशि का वितरण, किसान सम्मान निधि का राशि का भुगतान आदि सभी लाभ दिलाने का कार्य किया गया है। हमारी सरकार ने विगत ढाई वर्ष में विभिन्न योजनाओं के माध्यम से किसानों को खातों में 3 लाख करोड़ से अधिक की राशि का अंतरण किया है।
0: प्रदेश के युवाओं को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री महोदय ने अपने विचार प्रकट करते हुए कहा,
3: वर्ष 2027 को हमने युवा वर्ष के रूप में मनाने का निर्णय किया है। युवाओं के संपूर्ण व्यक्तित्व विकास और कल्याण के लिए हमने इंद्रधनुषी रणनीति का निर्माण किया है, जिसके 7 महत्वपूर्ण पिलर्स है। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, कौशल विकास, उद्यमिता और स्वरोजगार, सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र में रोजगार के अवसर, स्टार्टअप को सहयोग, खेल, कला, संस्कृति एवं शोध तथा अनुसंधान को प्रोत्साहन, नेत्र क्षमता का विकास। हमने 85,000 से अधिक युवाओं की शासकीय सेवाओं में नियुक्तियां की है तथा आने वाले समय में प्रतिवर्ष 1 लाख से अधिक युवाओं को सार्वजनिक क्षेत्र के रोजगार में अवसर उपलब्ध कराएंगे।
0: प्रदेश में प्लग एंड प्ले मॉडल पर मुख्यमंत्री महोदय ने कहा,
3: प्लग एंड प्ले मॉडल पर को वर्किंग स्पेस तैयार किए जाएंगे। युवा पीढ़ी की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए ड्रोन, सेमीकंडक्टर, AI, स्पेस टेक और ग्रीन मैन्युफैक्चरिंग जैसे उभरते क्षेत्रों में MSME की भागीदारी को अनिवार्य रूप से बढ़ाया जाएगा। प्रतियोगी परीक्षाओं से संबंधित न्यायालय मामलों की सुनवाई त्वरित और निराकरण के लिए राज्य सरकार द्वारा 4 फास्ट ट्रैक कोर्ट स्थापित करने का निर्णय भी हमारे द्वारा किया गया है।
0: आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के महत्व के बारे में आपने बताया।
3: आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के इस युग में माननीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से मध्य प्रदेश ऑरेंज इकोनॉमी के और भी तेजी से कदम बढ़ा रहा है। इसके अंतर्गत मल्टीमीडिया, गेमिंग, कला, मीडिया, मनोरंजन जगत, संस्कृति, आध्यात्म, अन्य रचनात्मक गतिविधियां शामिल है। राज्य सरकार ने समाज को दिशा देने वाले डिजिटल करंट कंटेंट क्रिएटर्स को विभिन्न कैटेगरी में सम्मानित करने का निर्णय किया है।
0: ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट 2027 के आयोजन के बारे में उन्होंने बताया,
3: मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि औद्योगिक क्षेत्र में मध्य प्रदेश सरकार द्वारा बनाई गई विभिन्न नीतियों को भारत सरकार के नीति आयोग द्वारा सर्वाधिक निवेश मित्र नीति के रूप में सराहा गया है। मध्य प्रदेश की धरती पर ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2027 पुनः भोपाल में आयोजित की जा रही है। मुझे पूरा विश्वास है कि यह समिट मध्य प्रदेश के औद्योगिक विकास, निवेश और रोजगार की दृष्टि से मील का पत्थर साबित होगी।
0: माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के मंत्र वोकल फॉर लोकल का उल्लेख करते हुए माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने कहा,
3: प्रधानमंत्री जी ने मंत्र दिया है वोकल फॉर लोकल, लोकल गोज ग्लोबल। मध्य प्रदेश इसमें अपनी पंक्ति जोड़ रहा है। गर्व से कहो ये मध्य प्रदेश में बना है। भारत जब $1 ट्रिलियन के वास्तु निर्यात का इतिहास रचेगा तो मध्य प्रदेश की धड़कन भी सबसे तेज सुनाई देगी।
0: जनता के नाम संदेश में आपने मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना पर प्रकाश डालते हुए कहा,
3: जिस घर में बेटी मुस्कुराती है उस घर में खुशियां आती है। जिस प्रदेश की नारी आगे बढ़ती वही धरती नई कहानी गढ़ती है। मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना 1,25,00,000 से अधिक बहनों को जिंदगी में सशक्त बनाने का माध्यम बन गई है। लाडली लक्ष्मी योजना के माध्यम से 53,55,000 से अधिक बेटियां जुड़ी है।
0: प्रदेश की चिकित्सा सुविधा और मेडिकल शिक्षा के विकास के बारे में सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाते हुए आपने कहा,
3: भाइयों और बहनों, डॉक्टरों की कमी दूर करने के लिए हमारी सरकार ने पिछले 3 माह में 1000 नए डॉक्टरों की नियुक्तियां की है और अगले 6 माह में 1000 और चिकित्सकों की नियुक्ति हम करने जा रहे हैं। मध्य प्रदेश की स्थापना दिवस 1 नवंबर 2026 से हम मरीजों की जांच को पेपरलेस बनाने जा रहे हैं। इससे रोगी की सभी जानकारियां डिजिटल रूप में संधारित रहेगी। मरीजों की जांच के बाद उन्हें विशेषज्ञ डॉक्टरों का परामर्श भी ऑनलाइन उपलब्ध कराया जाएगा। इससे विशेषज्ञ डॉक्टरों की कमी की पूर्ति हो सकेगी। मरीजों को भी डॉक्टर का परामर्श लेने के लिए कहीं और जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। पूरे प्रदेश में बेहतर चिकित्सा सुविधा के लिए निरंतर नए मेडिकल कॉलेज खोल रहे हैं। इसमें पढ़ने वाले विद्यार्थियों को उच्च गुणवत्ता की शिक्षा प्राप्त हो सके, इसके लिए एक और चिकित्सा विश्वविद्यालय खोले जाने का निर्णय किया है।
0: प्रदेश में सड़कों के निर्माण के बारे में उन्होंने बताया,
3: लोक निर्माण से लोक कल्याण के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए विगत 2.5 वर्ष में प्रदेश में लगभग 23,000 करोड़ की लागत से 15,000 किलोमीटर से अधिक सड़कों का निर्माण, उन्नयन और सुदृढ़ीकरण किया गया है। इंदौर उज्जैन कॉरिडोर, इंदौर पीथमपुर इकोनॉमिक कॉरिडोर, जावरा उज्जैन हाईवे का निर्माण का भूमि पूजन सिमस्त को लेकर के किया गया है। भोपाल, इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर और उज्जैन में रिंग रोड परियोजना प्रगति पर है, जिन्हें वर्ष 2028 तक पूर्ण करने का लक्ष्य रखा है।
0: अपने संदेश में आपने पीएम श्री पर्यटन वायु सेवा, पीएम श्री पर्यटन हेली सेवा का भी उल्लेख किया।
3: पर्यटकों को आकाश की ऊंचाई देने के लिए हमने पीएम श्री पर्यटन वायु सेवा पीएम श्री पर्यटन हेली सेवा की भी शुरुआत की है। प्रदेश में बीते 2 वर्ष में 10 नए हवाई मार्गों की शुरुआत हुई है। उड़ान योजना के अंतर्गत मध्य प्रदेश को अगले चरण में 5 नए और एयरपोर्ट की सौगात मिल रही है। अब तो इंदौर से अबू धाबी के लिए सीधी अंतर्राष्ट्रीय उड़ान प्रारंभ हुई है और आने वाले समय में भोपाल से भी शारजाह की अंतर्राष्ट्रीय उड़ान प्रारंभ करने का टारगेट लिया है।
0: शासकीय कर्मचारियों की पदोन्नति और उनके द्वारा किए जा रहे सराहनीय कार्यों का जिक्र करते हुए आपने कहा,
3: शासकीय कर्मचारी सच्चे अर्थों में कर्मयोगी है। ये पिछले 10 वर्षों से पदोन्नति की राह देख रहे थे। राज्य सरकार ने इस विषय पर संवेदनशीलता से प्रयास करते हुए पदोन्नतियों का मार्ग भी प्रशस्त किया है और अब तक प्रदेश में 67,000 से अधिक पदोन्नतियों का लाभ हमारे कर्मचारियों को दिलाया जा चुका है।
0: अपने संदेश के अंत में आपने प्रदेश की जनता का उत्साह वर्धन किया।
3: प्रदेश के लोक और सरकार के तंत्र दोनों कंधे से कंधा और कदम से कदम मिलाकर चले। भीतर एक चिंगारी है, आगे बढ़ना जारी है। संकल्प हमारा पक्का है और सिद्धि की तैयारी है। रात अंधेरी छट गई, देखो आजादी उजियारी है। लहर लहर लहराए तिरंगा, देखो दुनिया सारी है। जन जन का विश्वास है ताकत, जनता प्राणों से प्यारी है। आने वाला वक्त हमारा, अब मध्य प्रदेश की बारी है। भीतर एक चिंगारी है, आगे बढ़ना जारी है। संकल्प हमारा पक्का है और सिद्धि की तैयारी है। एक बार पुनः आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की मेरी अपनी ओर से हार्दिक बधाई शुभकामनाएं। जय हिंद, जय मध्य प्रदेश।
0: माननीय मुख्य अतिथि महोदय के जनता के नाम संदेश के समापन के बाद परेड द्वारा माननीय राष्ट्रपति की जय के उद्घोष किए गए।
1: परेड 3 बार राष्ट्रपति जी की जय की नारी देगी। राष्ट्रपति जी की, राष्ट्रपति जी की, राष्ट्रपति जी की।
0: और फिर पदक अलंकरण समारोह का आयोजन शुरू हुआ, जिसमें विभिन्न विभागों के अधिकारियों द्वारा किए गए उत्कृष्ट कार्यों के लिए उन्हें सम्मानित किया गया। पदक अलंकरण समारोह के साथ ही लाल परेड मैदान में आयोजित स्वतंत्रता दिवस का समारोह संपन्न हुआ। आप सभी को पुनः स्वाधीनता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। इसी के साथ रेडियो रिपोर्ट यहीं संपन्न होती है। इस कार्यक्रम के निर्माण में तकनीकी सहयोग दिया के सिंह, किशन गुप्ता और रेणु टोप्पो ने। वाचक पुरुषोत्तम श्रीवास और प्रस्तुतकर्ता मनीष गजभिया।

स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर मोतीलाल नेहरू स्टेडियम भोपाल में आयोजित मुख्य समारोह की रेडियो रिपोर्ट का प्रसारण अभी किया जा रहा था। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण है। प्रस्तुत है कार्यक्रम फिल्म संगीत। श्रोताओं, फिल्म संगीत में आइए सबसे पहले हम सुनते हैं बी प्राक की आवाज़ में फिल्म स्काई फोर्स का ये गीत। इस गीत को लिखा है मनोज मुंतशिर ने और संगीत दिया है तनिष्क बागची ने।

0: समीर का लिखा गीत अभी आप सुन रहे थे फिल्म द लेजेंड ऑफ भगत सिंह से। आवाज़ें थी सोनू निगम और मनमोहन वारिस की। इस गीत को संगीतबद्ध किया था AR रहमान ने। श्रोताओं, इसी गीत के साथ कार्यक्रम फिल्म संगीत यहीं संपन्न होता है। यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। हम आपसे पुनः जुड़ेंगे इस अंतराल के बाद।
1: भारतीय जीवन बीमा निगम मध्य क्षेत्र भोपाल की ओर से आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं।
2: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
3: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी EMI गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान EMI के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
2: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-333 पर कॉल करें।
1: भारतीय जीवन बीमा निगम मध्य क्षेत्र भोपाल की ओर से आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं।

0: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। रात्रि के 8:45 होने को हैं। कुछ ही पलों में आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से आप सुनेंगे समाचार संध्या। कृपया प्रतीक्षा करें।
1: क्या आप परेशानियों से घिरे हैं? मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा? याद रखें, समाधान आपके पास है। टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें। कहीं से भी कभी भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। यहाँ आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं है, मदद बस एक कॉल दूर है।
2: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं जया भारती। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 80वें स्वतंत्रता दिवस समारोह का नेतृत्व किया। नागरिकों से मजबूत और आत्मनिर्भर भारत के लिए बड़े सपने देखने का आग्रह किया। प्रधानमंत्री ने विकसित भारत के लिए आत्मनिर्भरता और युवाओं तथा महिलाओं के सशक्तिकरण पर बल दिया। भारत को नई ऊंचाइयों पर ले जाने में युवा शक्ति का उपयोग करने के लिए सप्तधारा रूपरेखा का आह्वान किया। प्रधानमंत्री मोदी ने 2047 तक 100 गीगावाट परमाणु ऊर्जा क्षमता का लक्ष्य घोषित किया। विश्व नेताओं ने भारत को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं दी। देश की लोकतांत्रिक यात्रा, समृद्ध सभ्यतागत विरासत और क्षेत्रीय तथा वैश्विक सहयोग में बढ़ती भूमिका की सराहना की। इंडोनेशिया में फ्लोरेस तट के पास आए 7.7 तीव्रता के शक्तिशाली भूकंप में 47 लोगों की मौत। अरुणाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल के गांगेय क्षेत्र, ओडिशा, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में कल तक तेज बारिश का ऑरेंज अलर्ट। FIH हॉकी विश्व कप में भारत ने ग्रुप डी के मैच में वेल्स को 3-1 से हराया और टेस्ट क्रिकेट में भारत ने गोल में मेजबान श्रीलंका के खिलाफ पहले मैच के पहले दिन का खेल समाप्त होने तक 2 विकेट के नुकसान पर 288 रन बनाए। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्र आज 80वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किला के प्राचीर पर ध्वजारोहण कर महत्वपूर्ण घोषणाएं की। इस अवसर पर पहली बार राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम का गायन हुआ।
3: आजादी के बाद 15 अगस्त को लाल किले पर पहली बार वंदे मातरम गूंज रहा है। आज जब हम देश के लोग वंदे मातरम के 150 वर्ष मना रहे हैं, इससे बड़ा उत्तम अवसर क्या हो सकता है।
2: श्री मोदी ने इस वर्ष के आयोजन में 2047 तक विकसित भारत बनाने में युवा शक्ति की भूमिका पर बल दिया।
3: आज भारत ने भी एक बहुत बड़ा सपना देखा और वो सपना है, जब आजादी के 100 साल होंगे 2047 में हम विकसित भारत बना के रहेंगे। 140 करोड़ देशवासियों के पुरुषार्थ से इस लक्ष्य को हमें हासिल करना है।
2: प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत कई अभूतपूर्व संकटों से बाहर निकलने में सफल रहा है। उन्होंने कहा कि इन संकटों के दौरान टीके, ईंधन, गैस, डीजल और उर्वरक की कमी को लेकर काफी अफवाहें फैलाई गई थी। श्री मोदी ने कहा कि सुनियोजित नीतियों, तैयारियों और समय रहते उठाए गए कदमों के कारण देश ने इन चुनौतियों का डटकर मुकाबला किया। श्री मोदी ने कहा कि सरकार 2047 तक 100 गीगावाट परमाणु ऊर्जा क्षमता हासिल करने की दिशा में बढ़ रहा है।
3: एनर्जी सिक्योरिटी, ये हमारे समय की मांग है और इसलिए हमने पहले से ही उस दिशा में एक के बाद एक मजबूत कदम उठाए हैं। एनर्जी सिक्योरिटी का एक बड़ा माध्यम है परमाणु ऊर्जा, न्यूक्लियर एनर्जी। हमने पार्लियामेंट में शांति एक्ट पास कर करके एक नए लक्ष्य तरफ जाने का रास्ता तय कर लिया है। 2047 तक हम 100 गीगावाट न्यूक्लियर पावर का लक्ष्य लेकर के चल रहे हैं।
2: प्रधानमंत्री ने संसद और राज्य विधानसभाओं में 33% महिला आरक्षण के लिए सभी राजनीतिक दलों से सहयोग की अपील की।
3: जल्द से जल्द हमारी माताओं बहनों को 33% विधानसभा और लोकसभा में उनको प्रतिनिधित्व मिले, वे भारत की नीति घड़तर के अंदर अपना योगदान दे, समय की मांग है। और मैं सभी राजनीतिक दलों से फिर से आग्रह करता हूं, आइए महिला आरक्षण लागू करके महिला सम्मान में आप भी जुड़िए, लेकिन मेरी माताओं बहनों को हक दीजिए।
2: श्री मोदी ने देशवासियों से सप्तधारा की शक्ति के उपयोग का आह्वान किया।
3: मैं आज उस युग को भी याद करना चाहूंगा जब देश भारत का सामर्थ्य सप्त सिंधु के रूप में हम जानते थे, हम समझते थे, हम सुनते थे। अब विकसित भारत बनाने के लिए हमें नई धारा चाहिए। आज लाल किले की प्राचीर से मैं देश के सामने शक्ति की सप्त धारा का आह्वान करता हूं। आने वाले 5-7 साल में जो पिछले 5-7 दशक में नहीं हुआ, वो सप्त धारा के सामर्थ्य से, शक्ति से हम देश को नई ऊंचाई, नई गति देंगे और नए लक्ष्यों को पार करने वाला सामर्थ्य देंगे। और इसके साथ साथ देश की युवा शक्ति का सामर्थ्य का भरपूर राष्ट्र निर्माण में उपयोग होगा।
2: स्वतंत्रता दिवस समारोह पर हमारे संवाददाता की विस्तृत रिपोर्ट।
4: आज स्वतंत्रता दिवस समारोह में राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम की 150 वर्षों से चली आ रही गौरवशाली विरासत का स्मरण किया गया। इस वर्ष पहली बार लाल किले पर आयोजित स्वतंत्रता दिवस समारोह के दौरान वंदे मातरम का सामूहिक गायन किया गया। प्रधानमंत्री को तीनों सेनाओं और दिल्ली पुलिस के जवानों ने गार्ड ऑफ ऑनर दिया। इसके बाद प्रधानमंत्री ने राष्ट्रीय ध्वज फहराया, जिसके साथ 21 तोपों की सलामी दी गई। वहीं भारतीय वायुसेना के 2 MI-17 हेलीकॉप्टरों ने समारोह स्थल पर पुष्प वर्षा की। सेना के बैंड ने वंदे मातरम की मधुर धुन प्रस्तुत की और लाल किले पर मौजूद सभी लोगों ने एक साथ राष्ट्रीय गीत का गायन किया। इसके बाद राष्ट्रगान का भी गायन किया गया। इस वर्ष स्वतंत्रता दिवस समारोह में समाज के विभिन्न क्षेत्रों से जुड़े लगभग 5,000 विशेष अतिथियों को लाल किले पर आमंत्रित किया गया था। सुपर्णा और सौम्य के साथ सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
2: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने स्वतंत्रता दिवस पर राष्ट्रीय युद्ध स्मारक पर वीर जवानों को श्रद्धांजलि दी। उन्होंने स्मारक पर पुष्पांजलि अर्पित कर शहीदों को नमन किया। महाराष्ट्र में स्वतंत्रता दिवस पर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने लोगों को संबोधित करते हुए किसानों, श्रमिकों, महिलाओं और युवाओं के कल्याण तथा विकास के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई। मेघालय के राज्यपाल सीएच विजय शंकर ने शिलांग स्थित लोकभवन में स्वतंत्रता दिवस पर पारंपरिक एट होम समारोह का आयोजन किया। बिहार में स्वतंत्रता दिवस पारंपरिक उत्साह और देशभक्ति के साथ मनाया गया। पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में आयोजित मुख्य राज्य स्तरीय समारोह में मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने राष्ट्रीय ध्वज फहराया। लद्दाख में स्वतंत्रता दिवस समारोह करगिल के ख्री सुल्तान चो स्पोर्ट्स स्टेडियम में देशभक्ति और उत्साह के साथ मनाया गया। आकाशवाणी करगिल ने बारू परिसर में उत्साह के साथ स्वतंत्रता दिवस मनाया। मणिपुर में स्वतंत्रता दिवस समारोह इम्फाल पश्चिम स्थित प्रथम मणिपुर राइफल्स परेड ग्राउंड में आयोजित हुआ। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। विश्व नेताओं और विभिन्न देशों के राजनयिक मिशनों ने आज स्वतंत्रता दिवस पर भारत को शुभकामनाएं दी। उन्होंने भारत की लोकतांत्रिक यात्रा, समृद्ध सभ्यतागत विरासत और क्षेत्रीय तथा वैश्विक सहयोग में बढ़ती भूमिका की सराहना की। एक रिपोर्ट।
5: अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने भारत और अमेरिका के बीच मजबूत होती रणनीतिक साझेदारी का उल्लेख किया। सिंगापुर के राष्ट्रपति थर्मन षणमुगरत्नम ने कौशल विकास, डिजिटल तकनीक, सतत विकास और उन्नत विनिर्माण के क्षेत्रों में बढ़ते सहयोग का उल्लेख किया। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने भी भारत को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं दी। नेपाल के प्रधानमंत्री बालेंद्र शाह ने भी भारत को शुभकामनाएं दी। लातविया के विदेश मंत्रालय ने भारत की निरंतर प्रगति, एकता और समृद्धि समृद्धि की कामना की। इसराइल के राजदूत रुवे नजार, अर्जेंटीना के राजदूत मारियानो कोसिनो, श्रीलंका के उच्चायुक्त महेशिनी कोलोन ने, ऑस्ट्रेलिया उच्चायुक्त और कनाडा के उच्चायोग ने भी भारत को शुभकामनाएं दी। मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मोइजू ने कहा कि आजादी के 8 दशक भारत की आकांक्षाओं, दृढ़ता और अटूट भावना को दर्शाते हैं। समाचार कक्ष से मैं सरफिरोजी।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर शुभकामनाएं देने वाले विश्व नेताओं का आभार व्यक्त किया है। नेपाल के प्रधानमंत्री बालेंद्र शाह की शुभकामनाओं के जवाब में श्री मोदी ने कहा कि भारत और नेपाल के बीच बहुआयामी तथा सदियों पुराने सभ्यतागत संबंधों को और मजबूत करने के लिए दोनों पक्ष मिलकर काम करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। इंडोनेशिया में फ्लोरेस द्वीप तट के पास आज आई 7.7 तीव्रता के शक्तिशाली भूकंप में मृतकों की संख्या बढ़कर 47 हो गई है। बचाव दल प्रभावित क्षेत्रों में राहत और बचाव अभियान चला रहे हैं। भूकंप के बाद देश के कई हिस्सों में 1 मीटर से कम ऊंचाई की सुनामी लहरें भी दर्ज की गई। मुख्य शहर माओमेर में बचाव दल ने 20 शव बरामद किए और 6 घायलों को बाहर निकाला। दक्षिणी लेबनान में आज इसराइल के हवाई हमले में 7 लोगों के मारे जाने की खबर है। लेबनान की राष्ट्रीय समाचार एजेंसी ने बताया कि अंसार गांव में एक मकान पर हुए इस हवाई हमले में 3 लोग घायल हुए हैं। इसराइल की सेना ने कहा है कि इसराइली सैनिकों के खिलाफ की गई एक कार्रवाई के जवाब में हिजबुल्ला के ठिकानों को निशाना बनाया गया है। ये समाचार हमारी वेबसाइट news.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। राष्ट्रपति भवन स्थित अमृत उद्यान कल से 15 सितंबर तक आम जनता के लिए खुला रहेगा। उद्यान सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक खुला रहेगा, जबकि अंतिम प्रवेश शाम 5 बजे तक होगा। यह रखरखाव के कारण प्रत्येक सोमवार को बंद रहेगा।
6: अमृत उद्यान के संस्करण में देशज और स्थानीय ग्रीष्मकालीन पुष्प प्रमुख आकर्षण है। इस वर्ष उद्यान में सजावटी ग्रीष्मकालीन मौसमी पुष्पों के साथ देशज और स्थानीय प्रजातियों का विशाल संग्रह प्रदर्शित किया गया। अमृत उद्यान आगंतुकों के लिए मंगलवार से रविवार तक सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक खुला रहेगा। वहीं रखरखाव कार्य के लिए उद्यान प्रत्येक सोमवार को बंद रहेगा। अमृत उद्यान में प्रवेश निःशुल्क है और आगंतुक उद्यान में भ्रमण के लिए राष्ट्रपति भवन की आधिकारिक वेबसाइट से ऑनलाइन बुकिंग करा सकते हैं। इसके अलावा केंद्रीय सचिवालय मेट्रो स्टेशन से अमृत उद्यान के प्रवेश द्वार तक शटल सेवा उपलब्ध रहेगी। सकलेन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से करिश्मा राय।
2: सहकारिता मंत्री अमित शाह कल राजस्थान के अलवर में अलवर सरस डेयरी परिसर में नए डेयरी प्लांट की आधारशिला रखेंगे। वे वर्चुअल माध्यम से विभिन्न डेयरी प्रसंस्करण संयंत्रों और पशु आहार संयंत्रों का उद्घाटन करेंगे। सहकारिता मंत्रालय के अनुसार कार्यक्रम के दौरान राजस्थान के 17 जिलों में 6,262 करोड़ रुपए की विभिन्न विकास परियोजनाओं का वर्चुअल माध्यम से शिलान्यास और उद्घाटन किया जाएगा। इसके अलावा रोजगार उत्सव के तहत नवनियुक्त 10,500 से अधिक कर्मचारियों को नियुक्ति पत्र वितरित किए जाएंगे। दूरसंचार विभाग पुणे में 17 से 21 अगस्त तक ब्रिक्स सूचना और संचार प्रौद्योगिकी ICT ट्रैक का आयोजन करेगा। इस वर्ष का विषय है लचीले भविष्य के लिए नवाचार, सहयोग और बदलाव। कार्यक्रम की शुरुआत 7वें ब्रिक्स ICT कार्य समूह की बैठक से होगी। मौसम विभाग ने अरुणाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल के गंगा के तटीय क्षेत्र, ओडिशा, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में कल तक तेज बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। छत्तीसगढ़, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, झारखंड, कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में अगले 2 से 3 दिनों के दौरान मूसलाधार वर्षा की संभावना है। पूर्वोत्तर क्षेत्र में 21 अगस्त तक इसी तरह के मौसम का अनुमान है। और खेलों में नीदरलैंड्स के एम्स्टलविन में FIH पुरुष हॉकी विश्व कप के ग्रुप डी के मैच में आज भारत ने वेल्स को 3-1 से हरा दिया। भारत की ओर से कप्तान हरमनप्रीत सिंह ने 2 जबकि संजय राणा ने 1 गोल किया। हरमनप्रीत को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। भारत अपना अगला मैच 17 अगस्त को इंग्लैंड से खेलेगा। वहीं श्रीलंका के साथ गोल में खेले जा रहे भारत के ऐतिहासिक 600वें टेस्ट मैच के पहले दिन का खेल समाप्त होने तक भारत ने 2 विकेट पर 288 रन बनाए। भारत की ओर से देवदत्त पडिक्कल 131 और ऋषभ पंत 27 रन बनाकर नाबाद रहे। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 80वें स्वतंत्रता दिवस समारोह का नेतृत्व किया। नागरिकों से मजबूत और आत्मनिर्भर भारत के लिए बड़े सपने देखने का आग्रह। प्रधानमंत्री ने विकसित भारत के लिए आत्मनिर्भरता और युवाओं तथा महिलाओं के सशक्तिकरण पर बल दिया। भारत को नई ऊंचाइयों पर ले जाने में युवा शक्ति का उपयोग करने के लिए सप्तधारा रूपरेखा का आह्वान किया। प्रधानमंत्री मोदी ने 2047 तक 100 गीगावाट परमाणु ऊर्जा क्षमता का लक्ष्य घोषित किया। विश्व नेताओं ने भारत को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं दी। देश की लोकतांत्रिक यात्रा, समृद्ध सभ्यतागत विरासत और क्षेत्रीय तथा वैश्विक सहयोग में बढ़ती भूमिका की सराहना की। इंडोनेशिया के फ्लोरेस तट के पास आए भूकंप में 47 लोगों की मौत और टेस्ट क्रिकेट में भारत ने गोल में मेजबान श्रीलंका के खिलाफ पहले मैच के पहले दिन का खेल समाप्त होने तक 2 विकेट के नुकसान पर 288 रन बनाए। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
7: Good evening. This is Akashvani. I am Valsa Williams with the news at 9. The headlines. Prime Minister Narendra Modi leads the nation in celebrating 80th Independence Day, urges citizens to dream big for a strong and self-reliant India. Prime Minister emphasizes on empowerment of youth and women for a Vikasit Bharat, unveils Saptadhara framework with aim of harnessing youth power to propel India to new heights. Prime Minister Modi announces target of 100 gigawatts nuclear power capacity by 2047. World leaders extend Independence Day greetings to India, praising its democratic journey, civilizational heritage, and expanding role in regional and global cooperation. In Indonesia, death toll in powerful earthquake rises to 47. Heavy rain alert issued in Arunachal Pradesh, Gangetic, West Bengal, Odisha, Uttar Pradesh, and Uttarakhand till tomorrow. In hockey, India defeat Wales 3-1 in Group D match of FIH World Cup in the Netherlands. And in cricket, India post 288 for 2 at stumps on day 1 of first test against hosts Sri Lanka. The nation is celebrating its 80th Independence Day today. Prime Minister Narendra Modi led the Independence Day celebrations from the iconic Red Fort in Delhi. Addressing the nation from the ramparts of Red Fort, the Prime Minister said over the past 12 years, crores of citizens of the country, with their determination and dedication, made every possible effort to take the country to new heights. He said, "A nation achieves greatness when it moves forward on the strength of its own dreams and resolve." The Prime Minister stressed that higher dreams and stronger resolutions raise the overall scale and capability of the nation's efforts.
8: कोई भी राष्ट्र तब महान बनता है जब अपने सपनों, अपने संकल्पों और अपने सामर्थ्य के दम पर आगे बढ़ता है। बड़े सपने हमारी सोच को विस्तार देते हैं, हमारे संकल्प दृढ़ होने चाहिए। जब संकल्प दृढ़ होता है तो कठिनाइयों से, आपदाओं के बीच से रास्ते निकालने का सामर्थ्य अपने आप उभर करके आता है।
7: Prime Minister Modi said energy security is one of the major requirements of the present times, and the government has taken several significant steps in this direction. He said nuclear energy is an important means of ensuring a country's energy security.
3: Energy security ye hamare samay ki mang hai aur isliye humne pehle se hi us disha mein ek ke baad ek majboot kadam uthaye hain. Energy security ka ek bada madhyam hai परमाणु ऊर्जा, न्यूक्लियर एनर्जी। हमने पार्लियामेंट में शांति एक्ट पास कर करके एक नए लक्ष्य तरफ जाने का रास्ता तय कर लिया है। 2047 तक हम 100 गीगावाट न्यूक्लियर पावर का लक्ष्य लेकर के चल रहे हैं।
7: Prime Minister Modi said the government has opened up 99% of offshore areas that were once designated as no-go zones and converted them into go-ahead areas. He said the government is now actively pursuing exploration beneath the sea and making efforts to discover new reserves.
8: हमने 99% को जो कभी नो गो एरिया हुआ करते थे हमने उसको गो अहेड एरिया के रूप में खुला कर दिया और अब हम समुद्र के भीतर भी एक्सप्लोरेशन करने की और नए नए भंडार खोजने की दिशा में हम प्रवृत्त है, हम प्रयास कर रहे हैं। हमने पिछले वर्ष उसी दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम रखते हुए समुद्र मंथन की घोषणा करके काम को गति देने का निर्णय कर लिया है।
7: Stressing on empowerment of youth and women for a Vikasit Bharat, Prime Minister Modi announced to provide free online coaching for poor and middle-class families for various public examinations. He also announced that the government has decided that 1 crore youth will be given training in AI skilling in the next 1 year. He said this will enable them to take the lead in the global AI sector.
8: हमने पिछले दिनों AI Impact Summit किया था। AI का विस्तार बहुत तेजी से बढ़ रहा है। लाल किले से मैं देश के नौजवानों के लिए घोषणा करना चाहता हूं, हमने तय किया है कि आने वाले 1 वर्ष में 1 करोड़ युवाओं को AI स्किल के लिए ट्रेनिंग देने का हम काम करेंगे।
7: The Prime Minister urged all parties to support the implementation of women's reservation in Parliament and state assemblies without making it a political fight. He said women should be given the opportunity to contribute to shaping India's policies. On nationalism, the Prime Minister said the people of the country gave the opportunity to serve the nation in 2014 and he resolves to make the country free from nationalism. In his address, the Prime Minister called upon the nation to harness the 7 streams of strength called Saptadhara. He said in the next 5 to 7 years, the country will achieve all that could not be achieved in the past 5 to 7 decades.
8: आज लाल किले की प्राचीर से मैं देश के सामने शक्ति की सप्त धारा का आह्वान करता हूँ। आने वाले 5-7 साल में जो पिछले 5-7 दशक में नहीं हुआ, वो सप्त धारा के सामर्थ्य से, शक्ति से हम देश को नई ऊंचाई, नई गति देंगे और नए लक्ष्यों को पार करने वाला सामर्थ्य देंगे। और इसके साथ साथ देश की युवा शक्ति का सामर्थ्य का भरपूर राष्ट्र निर्माण में उपयोग होगा।
7: Prime Minister Modi said in the next 7 to 8 years, another 5 to 8 semiconductor plants are set to commence operations. He said India has started production at 3 semiconductor manufacturing plants.
8: कोई भी इलेक्ट्रॉनिक गुड्स होगा, हमारे मेडिकल इक्विपमेंट होंगे, हमारे ट्रांसपोर्ट के रास्ते होंगे, हर किसी में चिप अनिवार्य है और इसे चिप के बिना दुनिया थम जाए ऐसी स्थिति पैदा हो जाए और इसलिए भारत ने आत्मनिर्भर होने की दिशा में अपना सेमीकंडक्टर प्लांट, बड़ा सेमीकंडक्टर प्लांट, 3 सेमीकंडक्टर प्लांट शुरू हो चुके हैं।
7: The Prime Minister highlighted the government's focus on critical minerals, saying that modern technology depends entirely on critical minerals and India is actively working to secure its position in this sector. Our correspondent takes a glimpse at independence celebrations at the Red Fort today.
9: Independence Day celebrations today commemorated 150 years of the enduring legacy of the national song Vande Mataram. For the first time, Vande Mataram was rendered during the celebrations at Red Fort. Upon his arrival at the Red Fort, Prime Minister Narendra Modi was received by Defence Minister Rajnath Singh, Minister of State for Defence Sanjay Seth and Defence Secretary Rajesh Singh. The Guard of Honour contingent for the Prime Minister consisted of 1 officer and 24 personnel, each from the Army, Navy, Air Force and Delhi Police. The Prime Minister hoisted the national flag, which was synchronized with 21-gun salute. Flower petals were showered at the venue by 2 Mi-17 helicopters of the Indian Air Force. The Army band played the tune of Vande Mataram and the national song was sung by everyone present at Red Fort. It was followed by the national anthem. Around 5,000 special guests from different walks of life were invited to witness the celebrations at Red Fort this year. With Suparna Sekia, Saklan Akhtar, Akashwani News, Delhi.
7: Reports of Independence Day celebrations have also come in from all states and union territories. Chief ministers, governors, lieutenant governors led the celebrations in the state capitals. Special programs were also held. World leaders and foreign missions have extended Independence Day greetings to India, praising its democratic journey, civilizational heritage, and growing role in regional and global cooperation. U.S. Secretary of State Marco Rubio highlighted the strengthening India US strategic partnership, while Singaporean President Tharman Shanmugaratnam stressed growing cooperation in skills development, digitalization, sustainability and advanced manufacturing. French President Emmanuel Macron conveyed his warm wishes on India's 80th Independence Day, while Israeli President Isaac Herzog congratulated President Draupadi Murmu, Prime Minister Narendra Modi and the people of India in a message shared in Hindi. Prime Minister Narendra Modi has thanked world leaders for their greetings, including President Macron and Maldives President

ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। रात्रि के 9:30 हुए हैं। अब प्रस्तुत है कार्यक्रम फिल्म संगीत। श्रोताओं, फिल्म संगीत में आइए आपको सुनवाते हैं महेंद्र कपूर और साथियों की आवाज़ में ये गीत, फिल्म पूरब और पश्चिम से। इंदिवर के लिखे इस गीत को संगीतबद्ध किया है कल्याण जी आनंद जी ने।

प्रदीप का लिखा गीत सुनिए फिल्म जागृति से। मोहम्मद रफ़ी ने इस गीत को गाया है और धुन बनाई है हेमंत कुमार ने।

हम हिंदुस्तानी, इस फिल्म का गीत अभी आप सुन रहे थे मुकेश और साथियों की आवाज़ में। बोल लिखे प्रेम धवन ने और संगीत था उषा खन्ना का। श्रोताओं, आकाशवाणी मध्य प्रदेश ट्यून किया है आपने और आप आनंद ले रहे हैं फिल्म संगीत का। शांति माथुर और साथियों की आवाज़ों में ये अगला गीत सुनिए, शकील बदायूनी की शब्द रचना, नौशाद का संगीत, फिल्म है सन ऑफ इंडिया।

0: तुम्हारे बाबूजी को कभी प्यार का पैगाम भेजना ही नहीं आया।
1: क्या कहती हो शामू की माँ?
0: और क्या, आपको जब भी प्यार जताना होता था हिंदुस्तान का झंडा भेज देते थे।
2: माँ जानती हो बाबूजी ने सबसे ज्यादा प्यार किससे किया है? इस मुल्क से, इस देश से।

0: ये था राग रागेश्री। अपने सितार वादन को जारी रखते हुए श्री जुनैन खान अब प्रस्तुत कर रहे हैं राग किरवानी। द्रुतगत तीन ताल में निबद्ध है।
1: That was Raag Rageshri by Shri Zunain Khan. He continues his sitar recital with Raag Kirwani, Drutgat set to Teen Taal.

0: ये थी राग देश में धुन। इसी के साथ आज के अखिल भारतीय संगीत कार्यक्रम में श्री जुनैन खान का सितार वादन संपन्न होता है। आपके साथ तबले पर थे श्री अनीश प्रधान। ये कार्यक्रम आकाशवाणी मुंबई केंद्र में ध्वनि मुद्रित एवं आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित किया गया।
1: दैट वॉज धुन इन राग देश एंड दैट कंक्लूड्स द सितार रिसाइटल बाय श्री जुनैन खान। In tonight's national program of music, he was accompanied on the tabla by Shri Anish Pradhan. This program was recorded at the studio of Akashwani Mumbai and the broadcast came to you from Akashwani Delhi.

0: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। रात्रि के 11 बजने को हैं। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे हिंदी में समाचार, तत्पश्चात अंग्रेजी में समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। कृपया प्रतीक्षा करें।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं अपर्णा सिंह। राष्ट्र आज 80वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले के प्राचीर पर ध्वजारोहण कर महत्वपूर्ण घोषणाएं की। इस अवसर पर पहली बार राष्ट्रगीत वंदे मातरम का गायन हुआ।
2: आजादी के बाद 15 अगस्त लाल किले पर पहली बार वंदे मातरम गूंज रहा है। आज जब हम देश के लोग वंदे मातरम के 150 वर्ष मना रहे हैं, इससे बड़ा उत्तम अवसर क्या हो सकता है।
1: श्री मोदी ने इस वर्ष के आयोजन में 2047 तक विकसित भारत बनाने में युवा शक्ति की भूमिका पर बल दिया। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत कई अभूतपूर्व संकटों से बाहर निकलने में सफल रहा है। श्री मोदी ने कहा कि सरकार 2047 तक 100 गीगावाट परमाणु ऊर्जा क्षमता हासिल करने की दिशा में बढ़ रही है। प्रधानमंत्री ने संसद और राज्य विधानसभाओं में 33% आरक्षण के लिए सभी राजनीतिक दलों से सहयोग की अपील की।
2: जल्द से जल्द हमारी माताओं बहनों को 33% विधानसभा और लोकसभा में उनको प्रतिनिधित्व मिले, ये भारत की नीति घड़तर के अंदर अपना योगदान दे, समय की मांग है। और मैं सभी राजनीतिक दलों से फिर से आग्रह करता हूँ, आइए महिला आरक्षण लागू करके महिला सम्मान में आप भी जुड़िए, लेकिन मेरी माताओं बहनों को हक दीजिए।
1: श्री मोदी ने देशवासियों से सप्तधारा की शक्ति के उपयोग का आह्वान किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर राष्ट्रीय युद्ध स्मारक पर वीर जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्होंने स्मारक पर पुष्पांजलि अर्पित कर शहीदों को नमन किया। विश्व नेताओं और विभिन्न देशों के राजनयिक मिशनों ने आज 80वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर भारत को शुभकामनाएं दी। उन्होंने भारत की लोकतांत्रिक यात्रा, समृद्ध सभ्यतागत विरासत और क्षेत्रीय तथा वैश्विक सहयोग में बढ़ती भूमिका की सराहना की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर शुभकामनाएं देने वाले विश्व नेताओं का आभार व्यक्त किया है। नेपाल के प्रधानमंत्री बालेन शाह की शुभकामनाओं के जवाब में श्री मोदी ने कहा कि भारत और नेपाल के बीच बहुआयामी तथा सदियों पुराने सभ्यतागत संबंधों को और मजबूत करने के लिए दोनों पक्ष मिलकर काम करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। अमृत उद्यान कल से 15 सितंबर तक आम जनता के लिए खुला रहेगा। उद्यान सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक खुला रहेगा, जबकि अंतिम प्रवेश शाम 5 बजे तक होगा। ये रखरखाव के चलते प्रत्येक सोमवार को बंद रहेगा। इंडोनेशिया में आज फ्लोरेस के तट के पास आए 7.7 तीव्रता के शक्तिशाली भूकंप में मृतकों की संख्या बढ़कर 47 हो गई। भूकंप के बाद दर्जनों झटके महसूस किए गए। राहत और बचाव दल सबसे अधिक प्रभावित इलाकों तक पहुंचने के प्रयास में जुटे हैं। देश के कई हिस्सों में 1 मीटर से कम ऊंचाई की सुनामी लहरें भी दर्ज की गई। अधिकारियों के अनुसार कई प्रभावित इलाकों में अब भी लोगों के इमारतों के भीतर फंसे होने की आशंका है। नीदरलैंड्स के एम्स्टलविन में FIH पुरुष हॉकी विश्व कप के ग्रुप डी के मैच में आज भारत ने वेल्स को 3-1 से हरा दिया। भारत की ओर से कप्तान हरमनप्रीत सिंह ने 2 जबकि संजय राणा ने 1 गोल किया। हरमनप्रीत को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। भारत अपना अगला मैच 17 अगस्त को इंग्लैंड से खेलेगा। श्रीलंका के साथ गोल में खेले जा रहे भारत के ऐतिहासिक 600वें टेस्ट मैच के पहले दिन का खेल समाप्त होने तक भारत ने 2 विकेट पर 288 रन बनाए। भारत की ओर से देवदत्त पडिक्कल 131 और ऋषभ पंत 27 रन बनाकर नाबाद रहे। श्रीलंका के लिए एकमात्र विकेट प्रभात जयसूर्या ने लिया। मौसम विभाग ने अरुणाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल के गंगा के तटीय क्षेत्र और उत्तराखंड में कल तेज बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। और इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। मीडियम वेव 188.32 मीटर्स यानी 1593 किलोहर्ट्ज़, साथ ही डीटीएच की ऑडियो चैनल, न्यूज़ ऑन एआईआर एप्लीकेशन और वेव्स ओटीटी ऐप पर ये आकाशवाणी का भोपाल केंद्र है। रात्रि के 11:10 हुए हैं। अब हमारी ये सभा यहीं विराम लेती है। कल प्रातः 5:51 पर हमारे कार्यक्रमों के साथ हम पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार, शुभ रात्रि, जय हिंद।